आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन नाउ, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव थिंकिंग की। अभी तक हम सुनते आ रहे थे, पढ़ते आ रहे थे, लेकिन जीवन में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। कोशिश मुझे लगती थी कि कर सकती हूँ, और एक थॉट ही तो बदलना है। हर चीज़ को अगर पॉजिटिवली ले लें तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और पॉजिटिव थिंकिंग में कर पाऊंगी। लेकिन जब इम्प्लीमेंट किया तो समझ में आया कि नहीं, उसके पहले ज़रूरी ये है कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास जा रही है, हर रोज़ की जो जानकारी मेरे पास आती है, मेरे जो आसपास का माहौल है जो मुझे इन्फ्लुएंस करता है, वो पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। और उसमें कैसे फिल्टर करना है वो मेरे हाथ में है। सिचुएशंस, इन्फ्लुएंसेस, लोगों को नहीं बदला जा सकता, लेकिन जो जानकारी मैं लेना चाहती हूँ वो मेरे हाथ में है। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि और कौन से स्टेप्स होंगे कि मैं पॉजिटिव थिंकिंग को इनकॉर्पोरेट कर पाऊँ या अपने थिंकिंग प्रोसेस को पॉजिटिव कर पाऊँ। और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, पिछली कड़ी में अगर हम देखें तो एक होमवर्क हमारे साथ था कि किस तरह से जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास जा रही है वो मुझे गवर्न कर रही होती है। और हमने ये समझा था कि हर थॉट, मेरी सोच जो है वो पूरी की पूरी डिपेंडेंट हो जाती है जिस तरह की जानकारी जा रही है।
1: अभी क्या होता है, सुबह उठे नहीं कि यू नो माय फर्स्ट अब्सॉर्प्शन जो होती है, जो ब्लॉटिंग पेपर एकदम क्लीन है उस पे फर्स्ट चीज जो अब्सॉर्ब करते हैं दैट इज द फर्स्ट पेज। मतलब मेजोरिटी के तो हम देखते हैं बेड में ही न्यूज़पेपर आता है, तो फर्स्ट पेज एक क्लीन माइंड के ऊपर क्या छाप दिया सुबह सुबह। फिर अब उसके बाद बोलो पॉजिटिव थिंकिंग, then we are looking for something very difficult. फिर आपको मेहनत ज़्यादा, result कम, क्योंकि आपने foundation तो negative information का create किया है, लेकिन अब आप सारा दिन मेहनत ये करने वाले हैं कि positive thought create करनी है, तो आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कुछ step नहीं लिया जाएगा, let us not expect miracle. और इसीलिए हो रहा है कि इतना सोचने के बाद भी, समझने के बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं निकल रही है, क्योंकि उस पे जो थोड़ा सा परिवर्तन, और हमने बहुत भाई बहनों से मिले हैं जिन्होंने सिर्फ ये किया है अभी, और ज्यादा तो किया ही नहीं है कुछ, उसके बाद कुछ नहीं किया है मेहनत, उसके बाद सिर्फ इतना किया कि सुबह सुबह अखबार पढ़ना बंद कर दिया, दे आर फाइंडिंग अ चेंज।
0: इन फैक्ट नो, आई विल टेल यू, बिकॉज़ मैंने भी जब शुरू में किया, आप बहुत लाइट रहते हैं।
1: अगर हर एक अपने आप को सिर्फ अपने जीवन को रिवाइंड करे थोड़ा सा, लास्ट कब बैठ कर एफर्ट करके पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन भरी थी अपने अंदर, व्हेन वाज दैट द लास्ट टाइम, तो हमें याद नहीं आएगा। तो जो चीज भरी नहीं वो क्रिएट कहाँ से होगी। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरे घर पे कोई लेट आए शाम को, तो एक्सीडेंट ना हो गया हो, ये ना हो गया हो, ये जो नेगेटिव नेचुरल हम कहेंगे नेचुरल आ जाता है, ये नेचुरल इसलिए आता है क्योंकि सुबह मैंने वही भरा था। आप थोड़े दो महीने के लिए सुबह वो भरना बंद करें और सुबह सुबह ये भरें जो परमात्मा के महावाक्य हैं कि आपके साथ जो हो रहा है अच्छा, आप कल्याणकारी बाप के कल्याणकारी बच्चे हैं, आपके साथ क्या गलत होगा। अब रात को देखो अगर कोई लेट आता है तो यू डोंट हैव टू मेक एफर्ट दैट टाइम। अभी तो पॉजिटिव उस टाइम बोलेंगे, उस टाइम तो याद नहीं रहेगा कि पॉजिटिव सोचना है, उस टाइम तो वो पूरा एपिसोड खत्म हो जाएगा, यू नो ड्रेनिंग योर सेल्फ आउट, तो ये उस टाइम नहीं एफर्ट हो सकता कि हाँ नाउ समवन हैज कम लेट नाउ और हैज नॉट रीच्ड नाउ आई हैव टू थिंक पॉजिटिव। ये तो ऐसा तो होने नहीं वाला है, बिकॉज अगेन थिंकिंग हैज बिकम वेरी ऑटोमेटिक। लेकिन हमें इसलिए सिक्योर रहेंगे क्योंकि हमें पता है भरा ही क्या था, और ये प्रैक्टिकल में आपको रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। सेकेंड चीज जो हमें

0: प्रैक्टिस करने होंगे, ये भी ऑटोमेटिकली नहीं होंगे, वो है साक्षी दृष्टा या डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन। अगेन डिटैच्ड वर्ड सुनते ही इट विल सी योर फेस ओनली हाउ इट हैज बिकम,
1: बिकॉज़ इट बिकम्स लाइक यू नो इट इज अ फीलिंग लॉट ऑफ पीपल से कि डिटैचमेंट कहते ही हो तो ऐसा लगता है कि कोल्ड, देयर इज अ कोल्डनेस व्हिच सेट्स इन, मतलब ऐसा लगता है कि बिल्कुल हर चीज से हम परे हो गए, तो वो उससे डर लगता है लोगों को, लोगों को लगता है कि हम दूर हो जाएंगे अपनों से, हम अपनों से प्यार ही नहीं कर पाएंगे, और कोई मुझसे डिटैच हो गया तो वो मुझसे दूर चला जाएगा।
0: डिटैचमेंट को तो हम समझेंगे ही वो क्या है, लेकिन फर्स्ट वे सेइंग डिटैचमेंट मींस डिटैच्ड ऑब्जर्वर, कि एक परिस्थिति को एक साक्षी दृष्टा होकर देखने से मुझे क्या प्राप्ति होने वाली है। व्हाई डू आई नीड टू सी इट, बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड द वन थिंग ओवर लास्ट फ्यू डेज कि सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है, नाउ आई एम मैनेजिंग माई सेल्फ, तो उस पर तो हम आ गए, लेकिन सेल्फ को मैनेज करने के लिए मुझे उससे एक स्टेप पीछे होकर उस परिस्थिति को देखना पड़ेगा, ताकि परिस्थिति मेरे ऊपर हावी ना हो जाए। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि मैं लोगों से दूर हो जाती हूँ, डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, किसी को बीमार होना हो, किसी को दर्द हो रहा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट्स नॉट डिटैचमेंट। डिटैचमेंट इज नॉट कोल्डनेस लाइक यू से, इट्स नॉट हार्डनेस ऑल्सो, कई लोग समझते हैं बहुत हार्ड हो जाते हैं, बहुत कड़क हो गए हैं, दैट इज इनसेंसिटिव, वो इनसेंसिटिव है। उल्टा जो डिटैच्ड होगा, सही मायने में डिटैच्ड होगा, वो तो और भी कंसर्न्ड होगा, क्योंकि डिटैच्ड अगर हम होंगे तो मैं दर्द में नहीं गई, और अगर मैं दर्द में नहीं गई तो मैं आपके लिए तो और भी कर सकूंगी, आपके लिए जो कंसर्न है, आपको अगर मदद करनी है तो मैं और भी ज्यादा कर सकूंगी, बट माई सेइंग कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट्स नॉट डिटैचमेंट, दैट इज इनसेंसिटिव, दैट इज अनकंसर्न्ड, नॉट बॉदर्ड अबाउट पीपल, दैट्स नॉट अ पॉजिटिव, नॉट अ वेरी हेल्दी थिंग फॉर रिलेशनशिप्स। डिटैचमेंट मतलब एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए पॉज एंड स्टेप बैक, ताकि जो हमारा रिस्पॉन्स होगा वो, जिसको कहते हैं ना सोच समझ कर फिर बोलना या सोच समझ कर करना, दैट इज डिटैचमेंट, कि टेक दैट वन मोमेंट टू पॉज, ताकि जो हमारा रिस्पॉन्स होगा वो एक मेजर्ड रिस्पॉन्स होगा, मतलब एक
1: नपातुला होगा,
0: मेजर नपातुला, यस राइट, मतलब एक आई नो व्हाट आई एम रिस्पॉन्डिंग, बट अगर डिटैच नहीं होते तो इट इज अ रिएक्शन,
1: और वो फैलता है, फिर वो
0: दैट इज अ मेरा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हैबिचुअल रिएक्शन हो गया ना, वो मेरा रिएक्शन हो जाता है। डिटैचमेंट मतलब रिस्पॉन्ड करना, और पहले हम क्या करते थे, हम दूसरे के, जैसे सपोज अगर आप मुझे कुछ सुना रहे हैं अपने बारे में, आपकी लाइफ में ये हुआ या ये है ये है, इंस्टेड ऑफ सीइंग इट एज अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर एंड देन अंडरस्टैंडिंग इट, आई वुड गेट सक्ड इनटू इट, एंड तो क्या होता था कि अगर आप दर्द में हैं तो आप रो रहे हैं अंदर से या बाहर से जो भी, एंड वेरी सून यू विल फाइंड कि मैं भी आपके साथ रो रही हूँ,
1: क्योंकि आप उसके साथ ही मर्ज हो गए ना, मैं उसमें,
0: यू गेट सक्ड इनटू द इमोशंस ऑफ समबडी एल्स। तो डिटैचमेंट इज जस्ट दैट वन मोमेंट, एक मोमेंट उस तरफ से, जैसे कि सपोज अगर हम स्टेज पर हैं तो हम पूरे प्ले को उतनी ठीक से नहीं देख सकते, लेकिन जो ऑडियंस है वो ऑडियंस उस प्ले को बहुत अच्छी तरह से देख सकती है। तो जब मैं परिस्थिति में हूँ तो मुझे परिस्थिति राइट पर्सपेक्टिव में नहीं समझ में आती, क्योंकि मैं परिस्थिति को सिर्फ अपनी साइड से देख रही हूँ, मैं आपकी साइड से या किसी और साइड से तो उसको देख ही नहीं पाती, बिकॉज आई एम स्टक टू माई पोजिशन, पोजिशन कुड बी माई आइडिया, सपोज मैं राइट हूँ आप रॉन्ग है, दिस इज अटैचमेंट टू माई आइडिया ऑफ बींग राइट, तो मैं अपने राइट के आइडिया से इतनी अटैच्ड हूँ कि आपका आइडिया तो देखने का मेरे पास कोई मार्जिन ही नहीं है। सो अनलेस आई सेपरेट माई सेल्फ फ्रॉम माई अटैचमेंट ऑफ अ राइट आइडिया, हाउ विल आई बी एबल टू अंडरस्टैंड यू, एंड जब तक मैं आपको अंडरस्टैंड नहीं किया तो जो परिस्थिति है वो राइट पर्सपेक्टिव में मुझे कहाँ दिखाई देगी, इट्स नॉट पॉसिबल। तो डिटैचमेंट मतलब स्टेज से हटकर एक मिनट ऑडियंस की तरफ से देखें।
1: लोगों का एक और इस पे आता है कि हम कब तक करते रहे,
0: वो तो जब तक आप अपने आप को मैनेज करना चाहते हैं। सी वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, हम कुछ भी किसी और के लिए नहीं कर रहे, हम ये समझते हैं कि आपने गुस्सा किया और मैं चुप रही, ये आपके लिए किया, आपके लिए नहीं किया, हम ये प्रॉब्लम इसलिए होने लगती है, मैंने सहन किया आपके लिए किया, ना ना किसी और के लिए तो कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, इट इज ओनली टू बी डन फॉर माई सेल्फ. हाँ, उसका बेनिफिट ऑटोमेटिकली औरों को होता जाएगा, लेकिन हम जो भी करते हैं हम अपने लिए कर रहे हैं. एंड ये हर एक कर रहा है, विद द ज्ञान और विदाउट द ज्ञान. दैट इज डेफिनेटली, भले हमें ऊपर ऊपर से पता नहीं चलेगा बिकॉज इट इज हैपनिंग सो फास्ट, लेकिन हम जो भी कर रहे हैं, आज अगर मैं गुस्सा भी कर रही हूँ तो किसके लिए कर रही हूँ? हमें लगता है वो मैं आपके फायदे के लिए कर रही हूँ, आपको सुधारने के लिए कर रही हूँ. नहीं नहीं, उसके लिए गुस्सा करने की जरूरत नहीं है. गुस्सा मैं इसलिए कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा कर दिया है जो मेरे अटैच्ड आइडियाज ऑफ राइट में नहीं फिट होता है. एंड दैट इज व्हाई आई एम रिएक्टिंग. इट इज बिकॉज आई एम हर्ट, सो आई हैव रिएक्टेड. इट्स नथिंग टू डू विद यू.
1: लेकिन मैं अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज पे कॉम्प्रोमाइज करे जा रहा हूँ. अपने जॉब में मुझे कंटिन्यू करना है क्योंकि मेरा परिवार कैसे चलेगा, या मैं एक रिश्ते में जिसमें हूँ तो उसमें बच्चा. बहुत सी आज
0: कॉम्प्रोमाइज कहाँ हो रहा है? स्टेबल रहकर वी आर टॉकिंग कॉम्प्रोमाइज. हम कॉम्प्रोमाइज बाहर तो कर लेते हैं, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? सर, अंदर. तो वी आर टॉकिंग कि सिचुएशन कोई भी होगी, क्या हम अपने आप को सिचुएशन में स्टेबल रख सकते हैं, और उसके लिए मुझे क्या करना है. एंड उसमें ये जो अगर हम प्रैक्टिस करें, दिस विल अगेन नॉट हैपन ऑटोमेटिकली. कि सिचुएशन है आपके सामने, अभी आज आप अपनी सारी 1, 2, 3 सिचुएशंस लिख लीजिए, जो जो आपकी परिस्थितियां हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन है, चाहे वो जॉब की जो प्रॉब्लम है. अब इसको अपनी जगह से हटकर इस पोजीशन को देखने की कोशिश करें, और कोशिश करें दूसरे के दृष्टिकोण से देखने के लिए. बिकॉज व्हाट यू आर सेइंग एंड व्हाट यू आर थिंकिंग इज आल्सो राइट, बट इट्स ओनली राइट फ्रॉम द अदर साइड.
1: इट्स सो डिफिकल्ट.
0: इट्स नॉट राइट फ्रॉम माय साइड.
1: लेकिन इट इज सो डिफिकल्ट. अनदर थिंग जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बार बार हम ये कह तो रहे हैं कि अंदर से करें, लेकिन शिवानी आज ऊपर से ही मेंटेन कर पाना इतना मुश्किल हो जाता है, खासकर जब रिश्तों की बात घर में.
0: ऊपर से मेंटेन करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि हम ऊपर से मेंटेन कर रहे हैं,
1: अंदर से कर ही नहीं रहे.
0: दैट इज व्हाई वी आर सेइंग अगेन एंड अगेन, अंदर तो फाउंडेशन पूरा गड़बड़ हो गया, ऊपर आप बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं अपने ऊपर, तो वो हर थोड़े दिन के बाद वो आपकी बिल्डिंग क्रैश हो जाती है. और हम कहते हैं हम तो कितनी मेहनत कर रहे हैं, आवर रिलेशनशिप्स, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड आवर रिलेशनशिप्स. व्हाट्स द फाउंडेशन? तो फाउंडेशन पर क्योंकि टाइम नहीं है, या इंक्लिनेशन नहीं है, या पता ही नहीं है कैसे करना है फाउंडेशन पर, तो सारी मेहनत हो रही है उस स्ट्रक्चर को खड़ा करने में. आई वांट टू बिल्ड माय रिलेशनशिप एंड एवरी फ्यू डेज दैट स्ट्रक्चर जस्ट फॉल्स.
1: ऑफ कोर्स
0: दैट स्ट्रक्चर जस्ट फॉल्स, देन अगेन आई स्टार्ट ऑल ओवर अगेन. बट आई एम जस्ट नॉट वर्किंग ऑन द फाउंडेशन, जस्ट नॉट वर्किंग. इज इट पॉसिबल फॉर वन डे? और उसके लिए सिर्फ क्या करना पड़ेगा, थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ता है थॉट प्रोसेस को. कि जैसे ही कोई परिस्थिति में हम आते हैं, और ये तब हो पाएगा अगर हमने मॉर्निंग के टाइम पर वो थोड़ा सा साइलेंस
1: एक्सपेरिमेंट किया. सिचुएशन ऐसी लें कि हस्बैंड आते ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. मतलब बहुत घरों में ये होता है कि, और सेम सिचुएशन ही हो जाती है, उसी सिचुएशन पे बार बार लड़ाई होती जाती है, और दोनों में से कोई भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता कि वो गलत है या वो. वैसे ही बॉस और सबॉर्डिनेट का भी सिचुएशंस अगर देखें तो मैक्सिमम टाइम वही होती है. उसकी आदत हमारे, हमें सबकॉन्शियस में जो भी है वो ऐसी हो चुकी होती है कि जैसे ही वो सिचुएशन आई मेरा रिएक्शन वही हो रहा होता है.
0: आपने अभी कहा कि हम वो कोशिश कर रहे होते हैं ढूंढने की कि वो गलत है या वो गलत है, बट एक्चुअली दोनों में से कोई भी गलत नहीं है. कौन गलत है दोनों में से? Which one of the two is ever wrong? Have you been able to find out? अगर आप logically decide करने की कोशिश करेंगे तो आपका answer हमेशा एक ही होगा कि मैं right हूँ, आप गलत है. इसीलिए तो हम, मैं जो कह रही हूँ वो तो right ही, मैं wrong थोड़ी बोलूँगी. That is the same way I will have to understand कि सोच समझ कर अपने दृष्टिकोण से मैं जो भी कर रही हूँ, जो भी बोल रही हूँ, वो मेरे हिसाब से उस समय वो right है. And same goes for you. I may look at it and say it's wrong, but for you, it's right.
1: लेकिन मैं तो सोच समझ के बोल रही हूँ, वो तो सोच समझ के बोल ही नहीं रहे.
0: ये किसने बताया?
1: यही तो हम कहते हैं हर बार.
0: आपने कभी खुद ये गलत है ये सोचकर ऐसा किया? This is wrong. Now come, let me do it. ऐसा आपने कभी? Even if let's say I'm going to tell a lie, yeah, I am going to give a bribe, or I'm going to take a bribe, or whatever, anything.
1: But this is a need of the hour.
0: Whatever. तो सारी logic है ना उसके पीछे, कि ये नहीं देंगे तो काम नहीं होगा, फिर वो government office में मेरा काम रुक जाएगा. तो लॉजिक तो दे देंगे ना उसको अपने आप को, और जैसे लॉजिक दिया मतलब क्या कहने की कोशिश की,
1: इट्स जस्टिफाइड, इट्स ओके,
0: तो इट्स राइट, मेरे लिए वो राइट है, भले इवन द लॉ ऑफ द कंट्री सेज दैट इट्स रॉन्ग, बट मेरे लिए उस समय वो राइट है. हमें कई अपने कर्म थोड़ी देर के बाद लग सकता है कि ये गलत थे, लेकिन जिस क्षण हम वो कर रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं उस क्षण हमें वो राइट ही लगते हैं. कभी भी सोच समझ के कोई गलत नहीं करेगा, उसके पीछे उसके पास लॉजिक होगा कुछ ना कुछ करने के लिए. लेकिन बट द सेम अप्लाइज टू एवरीवन एल्स, एंड जिस समय, लेकिन आपका राइट देखने के लिए मुझे इस कुर्सी से उठकर उस कुर्सी पर आना पड़ता है कि आपको क्या दिखाई दे रहा है जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन वो देखने के लिए मुझे अपनी सिचुएशन से, अपनी साइड से, अपने आइडिया से डिटैच होना पड़ेगा. तो डिटैचमेंट डजंट मीन यू नो कट ऑफ या बीइंग इनसेंस, इट मींस बीइंग एब्सोल्युटली देयर, लेकिन डिटैच्ड मतलब उस सिचुएशन के प्रभाव से डिटैच्ड,
1: जो हमने कहा
0: सिचुएशन से नहीं डिटैच्ड, सिचुएशन से नहीं डिटैच्ड. कुछ लोग क्या होते हैं सिचुएशन से विड्रॉ कर जाएंगे, चलो ये मेरे से नहीं हो रहा फॉर फेस, लेकिन सिचुएशन के प्रभाव से डिटैच्ड, और डिटैच्ड मतलब स्टेबल, सिचुएशन के प्रभाव में आ गए, जो वो हमने कहा नदी पर, तो फिर कभी दर्द भी होगा कभी कुछ होगा, लेकिन सिचुएशन के प्रभाव से डिटैच्ड मतलब पेनलेस एग्जिस्टेंस. ना इफ आई वॉन्ट टू लिव अ पेन फ्री लाइफ दैट्स माई चॉइस, इट्स नॉट कोल्डनेस. और जितना पेन फ्री मैं हूँ, दर्द के बिना हूँ, उतना मेरा औरों के साथ रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा. तो कई लोगों को लगता है डिटैचमेंट मतलब फिर ये तो परिवार में
1: डजंट वर्क,
0: बट एक्चुअली वो रिश्ते और भी
1: स्ट्रांग
0: होते जाएंगे. से समथिंग टू मी राइट नाउ विच इज लाइक वेरी इंसल्टिंग, इफ आई एम वेरी अटैच्ड, मेरे को कह दिया ऐसा, आई विल गो इनटू सो मच पेन, उसके बाद मैं चार दिन आपसे चाहे बात ही ना करूँ या जो भी करूँ, लेकिन you are right whatever you're saying but I still have to take care of myself, to main thodi der mein aapse fir se baat karna shuru kar dungi, lekin dard mein gayi fir us process se guzri fir apne aap ko theek kiya kitna time bita,
1: lekin wo itni jaldi main aapse baat karna shuru kar paungi,
0: wo to kitna time leke aata hai, kitna time hum lagate hain to get over that whatever
1: pain.
0: Because create bhi humne kiya, ab usko get over bhi humne hi karna hai, how much time that depends on again me, not on you, not on you. So, jitna jaldi I will be able to get detached from my idea of what is, this is mine, this is what I think is right, I'll be able to see your perspective. और इस तरह अगर हम सारा दिन में प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा माइंड है ना हल्का रहता है, नहीं तो सबकी बहुत सारी क्लटर जो है वो सारा दिन यहाँ चलती रहती है, एक इंटरनल चैटर जो है ना वो सारा दिन यहाँ चलती रहती है, और फिर साइलेंस प्रैक्टिस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सारा दिन अगर बहुत सीन्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंटेंगल्ड हो जाते हैं, तो अगर मॉर्निंग में साइलेंस में बैठने की भी कोशिश करेंगे अपने आप को देखने की, लेकिन वो सारा दिन जो नॉइज़ क्रिएट की थी वो ही वापस रिप्ले होने लगती है. तो साइलेंस सिर्फ मॉर्निंग में नहीं, वॉचिंग योर थॉट्स सिर्फ मॉर्निंग में नहीं, लेकिन सारा दिन, सारा दिन की इस परिस्थिति को साक्षी होकर जिसको देखना, एंड साक्षी मीन स्टेबल स्थिति में. तो लेकिन क्योंकि हमारी स्थिति अभी स्टेबल नहीं है, सो वी आर गोइंग द अदर वे अराउंड कि लेट मी फर्स्ट लुक एट द सिचुएशन. अब उस समय ये नहीं कर पाएंगे, हो सकता है कि जैसे ही सिचुएशन आए, अभी हमें प्रैक्टिस नहीं है तो हम कर नहीं सकते. हम ये कर सकते हैं जो सिचुएशन गुजर गई है, लेट से
1: उसको एनालाइज कर ले
0: ताकि वो मेरा लर्निंग, नॉट उसके दर्द में चले जाए. दैट इज अगेन वेरी
1: इंपॉर्टेंट. वो तो हम जाते ही हैं, वो तो चलते ही रहता है हमारे साथ. कुछ हमारे साथ हो गया, किसी ने कल कुछ कह दिया या कुछ ऐसा हो गया, वो दर्द तो कंटिन्यूस प्रोसेस हम अपने साथ रखते हैं.
0: फिर वो डिटैचमेंट नहीं प्रैक्टिस हो पाएगा, क्योंकि डिटैचमेंट मतलब दर्द नहीं. लेकिन अगर हमें पास्ट के सिचुएशन से कुछ सीखना है तो हम एक पल के लिए उस सिचुएशन को वैसे का वैसे सामने लाएं, लेकिन एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें, अगेन ऑडियंस में बैठकर, कि वो सिचुएशन मुझे कैसी दिखाई देती है, ताकि उसमें आप सिर्फ, मैं अपना रोल नहीं लेकिन आपका रोल भी उतना ही इक्वली बैठकर देखूं, तो शायद मुझे उस सिचुएशन में क्लैरिटी और आती जाएगी. लेकिन सिर्फ अपने रोल पर देख रहे हो और आपके रोल को तो बिल्कुल दूसरी साइड से देख रहे हो कि ये तो है ही गलत सारा कुछ, देन आई एम नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट पेन एंड देन माई माइंड इज फिल्ड विद सो मच ऑफ बिटरनेस, सो मच ऑफ पेन द होल डे. फिर क्लैरिटी और स्टेबिलिटी ये पॉसिबल नहीं.
1: और सेल्फ को लेके जो सेल्फ पिटी वाला एस्पेक्ट है,
0: विक्टिमाइजेशन,
1: मेरे साथ गलत हुआ. मैं जब भी मैं एनालाइज करने लगती हूँ अपने साथ जो सिचुएशन हुई होती है, चलिए खुद अंदर भी एनालाइज कर रहे हैं, तो हर बार मुझे नजर आता है कि मेरे साथ गलत हुआ. मैक्सिमम लोग यही सोच पाते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ. तो एक साक्षी भाव, यानी कि मैं अपने आप से भी परे हूँ.
0: यस.
1: और उससे भी परे हूँ.
0: यस. और उसमें जो हम आगे देखेंगे कि सोल कॉन्शियसनेस, जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं कि मैं कौन हूँ, तो वो है डिटैचमेंट कि मैं कौन हूँ. ये सब तो मेरे रोल्स हैं, ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये सब मेरे रिलेशनशिप्स हैं, लेकिन मैं कौन हूँ जो ये रोल प्ले कर रही हूँ. वो मैं जब इस पूरे ड्रामा को देखेगा तो वो ड्रामा को उसके सही परिप्रेक्ष्य में देख पाएगा, नहीं तो इट गेट्स सक्ड इनटू द ड्रामा. You know, it just gets consumed by the whole scene and then it can't see the scene in its right perspective. इसको अगर हम सारा दिन में, मुझे अगर रोज की अपनी तैयारी करनी है तो इसकी प्रोग्रामिंग मुझे सुबह से शुरू करनी पड़ती है. तो इसको हम आज तो 2 मिनट के लिए अभ्यास भी करेंगे, लेकिन सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि कल एक दिन इसको प्रैक्टिस करेंगे 24 आवर्स. आज आप प्रोग्राम देख रहे हैं, कल जब आप फिर प्रोग्राम देखेंगे आप तब तक अपनी चेकिंग करेंगे कि सिर्फ 24 आवर्स के लिए एक प्रैक्टिस करनी है कि वो हर सीन जैसे जैसे गुजरता जा रहा है, हर डायलॉग इंटेंगलमेंट जैसे जैसे होती जा रही है, एक दिन के लिए थोड़ा सा स्लो डाउन करके उसको देखने की कोशिश करें, रादर देन गेटिंग कंज्यूम्ड इनटू द ड्रामा. इट विल नॉट हैपन ऑन द फर्स्ट डे इन अ वेरी ईजी मैनर, बिकॉज हमें आदत पड़ी हुई है उस सीन के अंदर जाने की. तो डिटैच्ड होने के लिए शुरू में, क्योंकि हमें अभ्यास नहीं है, हमें उसी सीन के अंदर 2 मिनट साइलेंस कर लेना चाहिए. लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग, देयर इज लॉट ऑफ नॉइज, एवरीवन इज गोइंग इनटू केओस, क्या होगा, कैसा होगा. जस्ट 2 मिनट स्टेप बैक एंड ट्राई एंड लुक एट दिस सीन. आपको वो सीन बहुत बड़ा पता चलेगा कि इतना बड़ा है नहीं. जैसे ना कभी कंपनी में होता है प्रोजेक्ट नहीं हो रहा, ओ यू विल फाइंड दैट इट जस्ट गोज इनटू केओस, क्या किया तुमने, नहीं किया, ऐसा नहीं हो. स्टेप, स्टॉप बैक 1 मिनट. तो जैसे ही आप ये स्टेप बैक अगर कल प्रैक्टिस करेंगे, यू विल रियलाइज वेरी सून एक बहुत वंडरफुल चीज, और वो ये कि मेरी स्थिति तो मेरे हाथ में,
1: क्योंकि मैं कर पाई.
0: इवन
1: स्टेप बैक में तो मैंने अपने आप
0: डिसाइड किया, मैंने तो किया अपने आप. सिर्फ ये याद रखना है कि मुझे करना है, एंड भले थोड़े दिन अटेंशन से करना पड़ेगा, थोड़े दिन के बाद इट विल बिकम वेरी इजी टू डू. के देन वी विल रियलाइज कि परिस्थिति ने क्रिएट कर रही है ये सारा जो हम क्रियोस क्रिएट कर रहे थे, ये जो मैं अभी तक शोर मचा रही थी इस तरह से, ये मैं खुद ही बना रही थी. परिस्थिति तो वैसे की वैसे है. एंड धीरे धीरे वो रियलाइजेशन, जो ज्ञान समझ में आ गया है कि परिस्थिति ने स्थिति क्रिएट करती, लेकिन उसका एक्सपीरियंस, वो परिस्थिति में हमें एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा. विल यू ट्राई टुमारो?
1: वेरी ट्रू.
0: यस. लेट्स डू 2 मिनट्स मेडिटेशन. इस सृष्टि नाटक रंगमंच पर हम सब एक्टर्स अपना अपना रोल प्ले करते हैं. आज सारा दिन जैसे जैसे मैं अपना रोल प्ले करती जाऊं, तो मुझे सिर्फ एक स्मृति रखनी है, मैं एक्टर हूँ, ये मेरा रोल है, और मुझ एक्टर को इस रोल को अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है. और मुझ एक्टर की विशेषता है, आई एम अ पावरफुल बींग, मैं शक्तिशाली हूँ, और इस शक्ति के साथ मैं हर रोल प्ले करने वाली हूँ आज. चाहे कोई भी परिस्थिति आए, मेरे चारों तरफ कुछ भी हो जाए आज सारा दिन, आई एम अ पावरफुल बींग, आई एम द मास्टर ऑफ द सिचुएशन. जैसे ही मैं ये परिस्थिति में ये स्मृति रखती हूँ, तो परिस्थिति छोटी होती जाती है. जस्ट 1 thought टू टेक विद मी टुडे द होल डे. आई आई एम अ पावरफुल बींग, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, एंड आई एम मास्टर ऑफ एवरी सिचुएशन, परिस्थिति मेरी रचना है। अगर आप सुबह कुछ देर, ये तो हमने बहुत, but this is a conversation, this is a mental programming that I am doing. Now I will do this again tomorrow morning. And कल की अपने दिन को fast forward करके थोड़ा सा देख लें, क्योंकि normally पता होता है आज सारा दिन में क्या क्या scenes आने वाले हैं most of the time. And अपने आप को उन सब scenes में देख लीजिए already, कि you are going to remain stable. So this is a scene, you know, this is a suggestion which I'm already telling myself, कि this is your capacity. तुम ये कर सकते हो. क्यों? Because you're a powerful being. लेकिन अगर मैंने अपने आप को thought दिया, मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, that will be the result. The thought is creating destiny, right? So just the thought, I am a powerful being. परिस्थिति is here, I am here. परिस्थिति मेरे ऊपर नहीं, मैं अपनी स्थिति से परिस्थिति को परिवर्तन करती हूँ. स्टार्ट द डे उन थॉट्स के साथ, और फिर जैसा हम हर बार करते हैं, हर एक घंटे के बाद एक मिनट बीच में, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि थॉट्स फिर कई बार कहाँ कहाँ चली जाती है और फिर पता ही नहीं चलता, तो इसलिए बीच में रुक कर कल एक ही थॉट लेते हैं सिर्फ, आई एम अ पावरफुल बींग, मैं शक्तिशाली हूँ. और हर एक घंटे के बाद उसे एक ही थॉट को ही लेना है, लेट्स नॉट डू टू मच हार्ड वर्क. एक थॉट, आई एम अ पावरफुल बींग, वो एक थॉट मुझे सारी सिचुएशन को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में दिखाता है बिल्कुल. सो लेट्स ट्राई दैट आउट टुमारो,
1: एंड वी शुड ऑल ट्राई एक्चुअली. सचिवानी, थैंक यू सो मच आज जो हमने बात की, और यहीं से पॉजिटिव थिंकिंग क्या पॉजिटिव लाइफ शुरू हो सकती है, यू नो, क्योंकि यहीं से थॉट जो है वो मेरी पॉजिटिव डेस्टिनी बनता जाएगा. थैंक यू सो मच. ओम शांति.
0: ओम शांति.
1: कोई सवाल, कोई बात आपके पास है, आपका हम स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से. आप हमें फोन पर संपर्क करें या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org. Awakening with Brahma Kumaris में आज इतना ही, लेकिन जिस पॉजिटिव थिंकिंग प्रोसेस पर हम चल रहे हैं वो हमारा अपना अनुभव हो सकता है. हर रोज का अनुभव, हर रोज का होमवर्क हमें मिल रहा है, जो कि हमें एम्पावर करेगा, हमें वो खुशी देगा जिसे हम शायद सिचुएशंस में भूलते जा रहे थे, उसके अंदर साक्टिन होते जा रहे थे. तो अब हम सिचुएशन से ऊपर हो जाएंगे, ये हमें एक एश्योरेंस मिल रही है. आने वाली कड़ी में फिर मुलाकात करेंगे. इजाज़त दीजिए. ओम शांति.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रहे, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस, कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी हैं और स्टेबल भी हैं, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब। यू नो, तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जो पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड हैं कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप एक तहत रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

बोल भवानी माधव साहब। सत्तर रुपये

0: आनंदाचे सुर पुण्याचा नाद आपण ऐकत आहेत रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियां बांटो।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफस्टाइल चेंज। दीज आर लाइफस्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियां बांटो।

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज. ओम शांति. जिंदगी के कई सारे इन मरहलों से गुजरने के बाद अब बारी आती है कि हम हर रोज़ अपनी ज़िंदगी को कैसे जिए. बार बार हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बात करते आए हैं कि ब्रह्मा कुमारीज सेंटर जो जहाँ आप हैं उसके बहुत नज़दीक ही आपको मिल जाते हैं और किस तरह उस सेंटर से जुड़ सकते हैं, कैसे वहाँ जाकर आपको लगता है कि आप परमात्मा के घर में हैं और कैसे ये कनेक्शन जो है वो जिस सशक्त होने का, जिस एम्पावरिंग का बात करता है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाती है. मुरली एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम परमात्मा के जो महावाक्य हैं उनसे रूबरू होते हैं हर रोज़. क्या होता है ऐसा ख़ास मुरली में, क्यों ज़रूरी है और किस तरह से हमारी ज़िंदगी में बदलाव आ सकते हैं, इन सभी पर बात करने के लिए आज फिर हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी. ओम शांति. सिस्टर शिवानी, इतना सब कुछ हमने जाना है, इतना सब कुछ समझ लिया है, लेकिन एक बार फिर बात यही आ जाती है कि क्या मेरे या आपके द्वारा संभव है ये सब कह पाना, ये समझ पाना, ये जान पाना, या फिर ये वो परमात्मा है जो सीधी बात कह रहे हैं.
1: हर चीज़ जो हम इस प्रोग्राम के दौरान डिस्कस कर रहे हैं, हर ज्ञान की वो बात, हर वो सत्य वास्तविकता जिससे हम बहुत दूर हो चुके थे, वो परमात्मा द्वारा ही हमें समझाई जाती है. सृष्टि रंगमंच पर जैसे जैसे ये ड्रामा आगे बढ़ता, तो वर्तमान समय जो हम कहते हैं परिवर्तन का समय चल रहा है, क्योंकि चारों तरफ अंधकार है, यू नो, मोर इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज, कि इतना भय है. और बहुत बार सुनने को मिलता कि ये कलयुग है, आखिर ये कलयुग कब तक ऐसा चलेगा. तो कलयुग अर्थात कलह कलहेश का युग, कि आत्माएं सारी कलह कलहेश में, घर घर में कलेश है और आत्मा सारा दिन में बहुत ज़्यादा दुख और दर्द का अनुभव करती, तो ये कलयुग है. लेकिन कलयुग सदा तो नहीं चल सकता, और वर्तमान समय आजकल देखे तो बहुत भय भी हो गया है कि आखिर इस सृष्टि का भविष्य क्या है, क्या होने वाला है आगे. तो यही वो समय है जो परमात्मा अपने वायदे अनुसार, आज दिन तक हमने कई बार ये पढ़ा कि जब जब इस सृष्टि पर धर्म की अतीक लानी होगी, तो परमात्मा का वायदा है कि मैं स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित होऊंगा. तो ये वो समय है जब वो निराकार परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित होते, और अवतरित होकर सबसे पहले वो हम आत्माओं को अपना परिचय देते कि हम कौन हैं आत्मा, और फिर आत्मा से जुड़ी हुई हर बात हमें समझ में आने लग जाती है, और फिर परमात्मा अपना परिचय देते कि जैसे तुम निराकार जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट कॉन्शियसनेस, तो मैं भी तुम्हारे ही तरह, और अपना नाम भी बताते कि मेरा नाम है शिव, और क्योंकि वो हमारे पिता हैं तो हम उन्हें शिव बाबा कहकर पुकारते हैं. और फिर परमात्मा हमें समय का परिचय देते हैं कि समय जो ये चल रहा है, ये नहीं कि कोई विनाश होने वाला है, क्योंकि वो हम बहुत डर में रहते, लेकिन एक परिवर्तन की वेला है. हम इस कलयुगी सृष्टि से सत्ययुगी दुनिया की ओर जा रहे हैं. सृष्टि तो वही होगी, लेकिन आत्मा जो वर्तमान समय कमज़ोर है, वो जब शक्तिशाली बन जाएगी तो वही सृष्टि बहुत सुंदर बन जाएगी, प्रकृति पवित्र हो जाएगी. तो ये परिवर्तन का जो कार्य है कि अ बैटरी द सोल जो कम्प्लीटली वीक हो चुकी है, आज वो फिर से चार्जिंग की प्रोसेस पर चल चुकी है, वो पावर हाउस के बिना नहीं हो सकता. हम आत्माएं समझे, हम अपने आप को सशक्त कर लें, तो ये वर्तमान समय थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हम बहुत कमज़ोर हो चुके हैं. और क्या होता कि वायुमंडल,
0: आसपास जो माहौल है, बिल्कुल
1: वायुमंडल भी बहुत चैलेंजिंग है. तो अगर हम थोड़ा सा ट्राई भी करते, फिर हमारे सामने इतनी सारी बातें आ जाती कि हम फिर से अपने आप को कमज़ोर महसूस करते. तो ऐसे समय पे वो पावर हाउस की शक्ति मिलना, वो परमात्मा से संबंध जुड़ना, वो इस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को ईजी बना देता है. और सबसे सुंदर बात तो ये कि परमात्मा द्वारा दिया हुआ ज्ञान हमें जब रोज़ रोज़ सुनने को मिलता, जो हम सेंटर पे जाते और जिसको मुरली कहते हैं, वो निराकार परमात्मा शिव बाबा के डायरेक्ट सुनाए हुए महावाक्य, वो महावाक्य जब हमें सुनने को मिलते, तो वो प्योर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे जब पढ़ती जाती है, तो जैसी इन्फॉर्मेशन उसी से थॉट्स चेंज होते जाते हैं, उसी से बिलीफ सिस्टम में क्लैरिटी आती जाती कि आज दिन तक हम क्या सोच के चल रहे थे. और बस थोड़ा सा फिर प्रोसेस होता है उसको अपने जीवन में ट्राई आउट करने का, और जैसे ट्राई करते हैं तो उस सुप्रीम टीचर की दी हुई टीचिंग है, तो लगता कि ये तो ईजी है, इसको ऑब्स्टिकल तो मैंने ही बनाया हुआ था कि ये बहुत डिफिकल्ट है, करने लगे तो लगता है ईजी है, और जैसे ही वो प्राप्ति होती गई तो और करने की मोटिवेशन मिलती गई। एंड मेडिटेशन में क्योंकि वो पावर भी साथ में मिलती, तो एक है नॉलेज और दूसरी है पावर, और ये दोनों चीज़ें मिल जाएं तो ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरल होने लगता है, हम हेल्दी होते जाते हैं, तो किसी भी परिस्थिति को फेस करने की पावर क्रिएट नहीं करनी पड़ती, इट्स लाइक नेचुरली आई एम बिकमिंग पावरफुल। तो इसलिए अगर हम थोड़ा समय निकाल कर सेंटर पे जाते हैं तो परमात्मा के जो महावाक्य हैं बहुत सिंपल होते हैं, दे आर सो सिंपल कि एक क्षण के लिए आप समझेंगे इतना सिंपल, यू नो,
2: ये तो मुझे मालूम था, हाँ
1: इतना सिंपल, क्योंकि सुप्रीम टीचर ने हमारी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को एकदम सिंपल करके रख दिया,
2: सहज सा बन जाता है बिल्कुल। वहाँ से दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि मुरली, आज तो हम मुरली की बात कर रहे हैं और मुरली सुनेंगे भी हम कुछ, लेकिन कितने बजे, क्योंकि वक्त का जो एक हर रोज वहाँ वक्त निकालना, ज़्यादातर स्केड्यूल्स अगर हम देखते हैं तो मुश्किल हो जाता है, तो क्या कैसे हम कब कब मुरली जो है वो सुनाई जाती है?
1: जो हर सेंटर पे, every center all over the world in every country, एक होती है morning class और एक होती है evening class. तो morning class हर center पे approximately 6:30 और 7 के बीच शुरू होती, थोड़ा सा city में vary करेगा, but otherwise normally it is anywhere between 6:30 to 7 सुबह, और ये approximately 45 minutes to 1 hour की क्लास होती, जिसमें 10 minutes, 15 minutes मेडिटेशन भी होता एंड 45 minutes के लिए हम ये ज्ञान की चर्चा भी करते। तो मॉर्निंग क्लास एक है, फिर दूसरा है इवनिंग क्लास, कि जो लोग मॉर्निंग में नहीं आ सकते तो इवनिंग में भी समय थोड़ा थोड़ा वेरी करेगा सेंटर पे, बट एनीवेयर बिटवीन अगेन 6:30 to 7:30, शाम के 6:30 to 7:30 के बीच क्लास होगी हर सेंटर पे। लेकिन इसके भी अलावा अगर आपको मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइमिंग नहीं सूट करता, इसके भी अलावा आप मॉर्निंग 8 o'clock से दोपहर 12 के तक कभी भी सेंटर पे जा सकते हैं और आपको बहने मुरली सुनाएंगी, और शाम को भी 4:30 to 7:30 तक आप कभी भी सेंटर पे जा सकते हैं। हाँ, आज हम कुछ महावाक्य डायरेक्ट सुनते हैं। जैसे कई बार हम लोगों का क्वेश्चन उठता कि हम करना तो चाहते हैं, हम उस स्टेज तक पहुंचना तो चाहते हैं जो स्टेबिलिटी की है, या जिसको हम कहें कंप्लीशन की है या पॉजिटिविटी की है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं कर पाते, क्या है जो हमें रोक देता है? तो शिव बाबा परमात्मा हमें सुनाते कि उस स्थिति तक पहुंचने के लिए मुख्य दो कारण देखे जाते जो उससे हमें रोकते हैं। एक तो है वेस्ट अर्थात गवाना, और दूसरा वेट अर्थात वज़न ज़्यादा। अब फिर बाबा ये एक्सप्लेन करेंगे कि इसका अर्थ क्या। जैसे आजकल के ज़माने में शारीरिक रोगों का कारण वेट जास्ती है, सर्व बीमारियों का निवारण वेट कम करना है, यू नो, बहुत सारी बीमारियां ओबेसिटी के कारण होती हैं, तो बाबा ने कहा सर्व बीमारियों का निवारण वेट कम करना है। वैसे पुरुषार्थ की गति का कारण कि क्यों नहीं पुरुषार्थ तेज हो पाता, वो है वेट ज़्यादा। तो वेट कम न करना, जैसे शरीर में भारीपन होने के कारण ऑटोमेटिकली बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, वैसे आत्मा के बोझ से भी आत्मिक रोग भी स्वतः ही पैदा हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, बाबा इतनी सिंप्लीफाई करके उसको समझाते हैं कि हमें क्लियरली दिखाई देता है कि आत्मा पर बोझ इतना ज़्यादा है कि बीमारियां फिर जो रोग हैं आत्मा के वो ऑटोमेटिकली आ जाते। सबसे ज़्यादा वेट बढ़ने का कारण क्या होगा?
2: बहुत से थॉट्स एक्चुअली,
1: पर वो किस तरह के थॉट्स?
2: कहीं ना कहीं हर्ट, एंगर, नेगेटिविटी, अब तो
1: समझ में आ गया ना, तो ये सारा बाबा का ही समझाया हुआ है।
2: इमोशन कहते हैं।
1: यस, सबसे ज्यादा वेट बढ़ने का कारण, जैसे शारीरिक हिसाब से ज्यादा वेट बढ़ने का कारण होता है सड़ी हुई चीजें खाते हैं,
2: जंक खाना।
1: तो तो बाबा ने जंक खाने के लिए कहा, सड़ी हुई चीज़ें खाते हैं, वैसे यहाँ भी सड़ी हुई वस्तु अर्थात बीती हुई बातें जंक है, क्योंकि उससे कोई एनर्जी नहीं मिलने पड़ती, बिल्कुल जंक यार्ड में फिट करने जैसा। तो अर्थात बीती हुई बातें जो न सोचने की हैं, अर्थात न खाने की हैं,
2: आधे से ज्यादा वक्त हम जिंदगी का इसी पे
1: नहीं, उससे भी ज्यादा बहुत ज्यादा समय पास्ट में होता है। सी पास्ट कैन बी नॉट बहुत पहले,
2: पिछला
1: ये क्षण नहीं, ये क्षण यू नो, इस क्षण से परे हट के ऐसा क्यों हुआ,
2: अभी जो हुआ है
1: एक क्षण। तो बाबा ने कहा जो बीती हुई बातें जो न सोचने की हैं अर्थात न खाने की हैं, ऐसी सड़ी हुई बातों को बुद्धि द्वारा स्वीकार कर लेते हैं, अथवा हर आत्मा की कमियों या अवगुणों का स्वयं में धारण करना।
2: दूसरों को देख देख के
1: परमात्मा ये बहुत क्लियर करके हमें, ये बहुत डीप फिलोसफी है जो बाबा ने आकर बहुत सिंपल कर दिया कि जितना समय आप किसी आत्मा के अवगुण को देख रहे हो या आप किसी कमजोरी को देख रहे हो, तो आप समझ लो कि उसको आप अपने अंदर धारण कर रहे हो। सो इनिशियली व्हेन आई यूज्ड टू लिसन टू दिस एट द मुरली, आई वाज लाइक हाउ इज दिस पॉसिबल कि आप किसी की कमजोरी को देख रहे हो तो वो आपकी कैसे बन जाएगी। बट देन स्लोली ग्रेजुअली यू रियलाइज कि किसी की कमजोरी को देखना मतलब क्या,
2: उसी से होकर गुजरो,
1: नहीं वो थॉट्स क्रिएट करना ना। लेट्स से कि मैं आपके अंदर कमजोरी देख रही हूँ कि आप बहुत गुस्से वाले हो, लेट्स से, एंड मेरा फोकस सारा इस पर आ जाता है, तो मेरी हर थॉट जो क्रिएट हो रही है वो क्रोध से रिलेटेड है। इसका मतलब आपकी एनर्जी मैंने कंज्यूम कर ली। और इसी का ऑपोजिट कि हर आत्मा की विशेषता को देखना, जो भी, क्योंकि हर आत्मा के अंदर
2: अच्छाई तो है,
1: दोनों चीजें हैं, लेकिन मेरा दृष्टिकोण बहुत ज्यादा आज कमियों को ढूंढता रहता है हमेशा।
2: बहुत अच्छी बात यह है कि जहां हमने कमियों को ढूंढना शुरू किया, मतलब उस कमी को हमने खुद धारण कर लिया।
1: और अगर ये समझ में आ जाए तो हम कितना अटेंशन रखेंगे,
2: हाँ हम क्यों करेंगे, डेफिनेटली द वे यू नो लाइक समवेयर व्हेन वी अंडरस्टैंड कि जैसे गुस्सा करते हैं हमारे ब्रेन सेल्स परमानेंटली डेड हो जाते हैं, तो वो गुस्सा करने का थॉट भी नहीं आएगा,
1: नहीं आएगा। अब यही मुझे समझ में आने लगे कि जो कमजोरी मुझे आपके अंदर अच्छी नहीं लग रही है, लेट्स से मुझे नहीं अच्छी लगती कि आपके अंदर ये आदत है, लेकिन उसके ऊपर फोकस करने से आपके अंदर तो वो है ही है, मुझे अच्छी नहीं लग रही है, और एक्चुअली मैं उसको ग्रहण कर रही हूँ, तो कितना डैमेज है। और चिंतन ये कर रही हूँ कि आपको कैसे चेंज कर दूँ कि आपके लिए ये बहुत हानिकारक है, लेकिन वो चिंतन करते करते मैं उस एनर्जी को अपने अंदर कंज्यूम करती हूँ। तो बाबा ने कहा दो बातें, सड़ी हुई भोजन है जो हम खाते हैं, बीती हुई बात जो हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, और दूसरा है आत्माओं की कमियाँ वो व अवगुण को स्वयं में धारण करना, इसको भी सड़ी हुई वस्तु ही कहेंगे। तली हुई जो वस्तु होती है वो खाने में बड़ी अच्छी लगती है, तली हुई है हम सबको पता है कि वो हार्मफुल है, फिर भी वो बहुत टेम्पटिंग है, बहुत अट्रैक्टिव है। तो बाबा ने कहा तली हुई वस्तु खाने में बड़ी अच्छी लगती है, अपने तरफ आकर्षण भी बहुत करती है, न दिल होते भी थोड़ा सा खा लेते हैं, जितना ही आकर्षण वाली होती है उतना ही नुकसान वाली भी होती है, वैसे यहां भी फिर आकर्षण की चीजें हैं, एक दो द्वारा व्यर्थ समाचार सुनना और सुनाना, गॉसिप। एंड अगेन गॉसिप करना मतलब अगर हम क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं किसी को तो हम वही एनर्जी अपने अंदर क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन गॉसिप मतलब किसी के बारे में बात करना, इधर उधर की बात करना, पता होते हुए भी अट्रैक्टिव बहुत लगते हैं और बहुत जल्दी हम उसकी तरफ तो इसलिए कितनी अच्छी तरह से बताया कि तली हुई चीज पता भी है फिर भी वो आकर्षण करती है, न चाहते हुए भी करते हैं कि थोड़ा सा खा ले। तो इसी तरह यहाँ जो आकर्षण की चीजें हैं वो है एक दो द्वारा व्यर्थ समाचार सुनना और सुनाना। कितनी बार एक दूसरे के पास जाते हैं और क्या खबर है, यू नो कि क्या खबर मिलती है, समथिंग न्यू ऑफिस में क्या हो रहा है, आस पड़ोस में क्या हो रहा है, लेन देन करने का होता है लेकिन उसका रिजल्ट कहते हैं हम बातों में लेन देन कर रहे हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, न्यूज़ एक्सचेंज, उसका रिजल्ट एक दो के प्रति घृणा दृष्टि हो जाती है। आपको पता है वो ऐसे, आपको पता है वो ऐसे, जितना मैं जिसके साथ शेयर करूँगी तो एक दो के प्रति हमारी क्या हो जाएगी, घृणा दृष्टि हो जाती है। समझते हैं मनोरंजन है, टाइम पास नहीं कहते, क्या कर रहे थे, बस टाइम पास बातें कर रहे थे, लेकिन अनेकों के मन को रंजन करते हैं, अनेकों के मन को चोट पहुंचाते हैं, दर्द देते हैं। तो बाहर का रूप आकर्षण का है लेकिन रिजल्ट गिराने वाला है। ऐसी बातों का बुद्धि द्वारा धारण करना अर्थात सेवन करना, इस कारण से वेट बढ़ जाता है। हमें रियलाइज भी नहीं होता सारा दिन में कि किन बातों से आत्मा के ऊपर का बोझ जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो बाबा ने तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें आज बताई, पास्ट का चिंतन करना, बीती हुई बातों के बारे में सोचना, दूसरा आत्माओं की कमियां, कमजोरियों को देखना, और तीसरा व्यर्थ समाचार की लेन देन करना, जो हम समझते कि मनोरंजन है लेकिन अनेकों के मन को रंजन करता है। जैसे शारीरिक वेट बढ़ने के कारण दौड़ी नहीं लगा सकते, चढ़ाई नहीं चढ़ सकेंगे, वैसे ही यहाँ भी जब आत्मा पर इतना बोझ हो जाएगा तो यहाँ भी पुरुषार्थ में तीव्र गति नहीं प्राप्त कर सकते। फिर कहेंगे हम करना तो चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा, तो वो हमें पता ही नहीं चलता कि ये जो सारा दिन में छोटी छोटी बातें कर दी, इसकी वजह से आत्मा पर बहुत बोझ हो गया है। अब जब हम वो ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं तो वो हो नहीं सकता। सारा दिन हल्का रहना चाहते हैं, इंटरनली उड़ते रहना चाहते हैं लेकिन हैवी हो गए, तो आई कांट फ्लाई इनसाइड। हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव नहीं कर सकते। चढ़ती कला अर्थात मेरी जर्नी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चल रही है, इन अ बेटर डायरेक्शन, इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन,
2: बिकॉज़ आई विल बी सो हैवी, इट्स सो डिफिकल्ट टू क्लाइम अप,
1: वो हो नहीं पाएगा। वजन भारी वाला हर स्थान पर सेट नहीं हो पाता। अगर किसी का बहुत ज्यादा वेट है, उसको सीट बहुत मुश्किल से उसके लिए मिलती है, और अगर कोई बहुत पतला है वो कहीं भी फिट हो जाएगा। तो बाबा ने कहा इसी तरह हम, अगर आत्मा भारी है तो वो हर परिस्थिति में अपने आप को सेट नहीं कर पाएगी। तो बाबा ने कहा इसलिए हल्के रहना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए बाबा भी बार बार याद दिलाते कि वेट कम करो। इसका साधन क्या साधन होगा वेट कम करने का? जैसे शारीरिक हल्केपन का साधन है एक्सरसाइज, वैसे ही आत्मिक एक्सरसाइज, योग अभ्यास द्वारा हम वेट को कम कर सकते हैं। अब बाबा ने यह भी बताया कि योग अभ्यास क्या करना है। अभी अभी कर्म योगी अर्थात साकारी, कर्म कर रहे हैं ना, कर्म से तो न्यारे नहीं होंगे, तो अभी अभी कर्म योगी साकारी, साकारी मतलब कॉर्पोरियल फॉर्म में, इस साकार शरीर में, तो इस क्षण इस साकार शरीर में, नेक्स्ट क्षण निराकार, यू नो दिस इज लाइक दिस एक्सरसाइज। अब जैसे हम स्ट्रेट हैं एंड देन वी बेंड डाउन एंड टच, अगेन कम बैक स्ट्रेट, अगेन बेंड डाउन एंड टच, जब हम बार बार ये करते हैं तो हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है और फिर हम किसी भी सिचुएशन में
2: हैंडल कर सकते हैं।
1: अगर मेरी बॉडी बहुत स्टिफ है, यू नो, तो फिर अगर मुझे बहुत मूव करना पड़े, एडजस्ट करना पड़े, मैं थोड़ा सा ऐसे करती हूँ तो मेरे हाथ में दर्द हो जाएगा क्योंकि मेरी बॉडी बहुत स्टिफ है। लेकिन रोज़ वो फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करने से किसी भी सिचुएशन में बहुत ईजी।
2: बस जैसे सिचुएशन आएगी मुझे निराकार जाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी,
1: नहीं आएंगे। और ज़्यादातर होगा क्या कि बार बार ये एक्सरसाइज करने से मेरे अंदर इतनी पावर उस टाइम भरी होगी, जैसे हम हमेशा अनुभव करते कि दो मिनट भी योग करते तो कितना पावरफुल लगता है। तो अगर हर घंटे ये किया होगा साकार निराकार, साकार निराकार, और ये हम घंटे के बीच भी कर सकते हैं। निराकार अर्थात जो इस साकार दुनिया से परे है, जो हम हमेशा देखते कि परम धाम अपना घर, तो एक सेकेंड मैं यहाँ हूँ, अगले सेकेंड वहां। अभी क्या हो रहा है, हम बैठते हैं करने लगता है, पहुंच नहीं रहे, हो नहीं रहा, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। इसको सारा दिन में अगर अभ्यास किया होगा, एक सेकंड यहाँ, नेक्स्ट सेकंड वहाँ, तो फिर करना बहुत इजी हो जाएगा। तो अभी अभी कर्म योगी अर्थात साकारी बन, साकार सृष्टि का पाठ बजाना, इस साकार सृष्टि पर अपना पाठ बजाना, और अभी अभी निराकारी बन परम धाम का अनुभव करना। ऐसे बुद्धि की एक्सरसाइज करो तो सदा हल्के हो जाएंगे, भारीपन खत्म हो जाएगा, पुरुषार्थ की गति तीव्र होती जाएगी, बिकॉज जितनी फ्लेक्सिबिलिटी आती जाएगी उतना फिर ट्रांसफॉर्मेशन लाना बहुत ईजी हो जाएगा। और जितनी बार हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो सोल कॉन्शियसनेस
2: ज़्यादा होती जाएगी, ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी
1: एक्चुअली, सोल कॉन्शियसनेस मेरी नेचुरल बनती जाएगी, और जितनी सोल कॉन्शियसनेस होती गई ईगो खत्म होता जाएगा, और जहाँ ईगो खत्म हो रहा है वहाँ सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है, क्योंकि सेल्फ एस्टीम मेरा बहुत बढ़ जाता है। फिर बाबा ने कहा कि ये सब कुछ समझ तो आ जाता है हमें, लेकिन फिर भी करते करते इस यात्रा के दौरान मुश्किल क्यों लगता है, सहज फिर भी मुश्किल लगता। तो बाबा ने कहा ज्ञान का कोर्स तो 7 दिन का ही है, 7 दिन में सब कुछ समझ में आ जाता, सारी पॉइंट्स भी समझ में आ जाती, सत्य परिचय भी मिल जाता, लेकिन फिर भी चलते चलते कहते ये मुश्किल क्यों। और जबकि इस राजयोग को हम कहते ये सहज राजयोग है, लेकिन फिर भी हम खुद ही उसको मुश्किल बना देते। परंतु मुश्किल क्यों होता है, उसका कारण है अपनी ही कमजोरी, कोई ना कोई पुराना संस्कार। बाबा ये नहीं कहता आपका संस्कार, बाबा नेवर सेज कोई ना कोई आपका संस्कार बीच में आता, बिकॉज ही इज वेरी क्लियर कि आपका संस्कार तो ओरिजिनल, कोई ना कोई पुराना संस्कार सहज रास्ते के बीच में बंधन बन रुकावट डालता है, जो हमने देखा ऑब्स्टिकल अपने ही संस्कार कई बार बन जाते, और शक्ति न होने के कारण पत्थर को तोड़ने लग जाते हैं। जो हमने देखा ना ऑब्स्टिकल आएगा हम उसको ही तोड़ने लग जाते हैं, और तोड़ते तोड़ते दिल शिकस्त हो जाते हैं, थक जाते हैं। लेकिन सहज तरीका क्या है, पत्थर को तोड़ना नहीं है लेकिन जंप लगाना है। द होल हर्डल थिंग कम्स फ्रॉम द मुरली। तो कई बार भाई बहने कहते ये कहाँ से इतना सिंप्लिसिटी से आता, ये सारा कुछ तो बाबा ने मुरली में ही सुनाया है। तो पत्थर को तोड़ना नहीं है लेकिन जंप लगा के पार होना है। ये क्यों हुआ, ये होना नहीं चाहिए, आखिर ये कब तक चलेगा, ये तो बड़ा मुश्किल है, ऐसा क्यों होता है, ये सब है व्यर्थ संकल्प, पत्थर को तोड़ने का प्रयास। क्यों हुआ, क्या क्या कर रहे हैं हम, मूव अहेड, नो वील स्टैंड देयर,
2: स्टक देयर एक्चुअली।
1: तो कितने बाबा कहते सारे आपके क्वेश्चन है, ये क्यों हुआ, ये होना नहीं चाहिए था, जो क्यों हुआ ठीक है समझ में आ गया, होना नहीं चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको, ये होना नहीं चाहिए था, आखिर ये कब तक ऐसा चलेगा, ये तो बड़ा मुश्किल है, ऐसा क्यों। तो ये सारे व्यर्थ संकल्प पत्थर तोड़ना है, लेकिन एक ही शब्द है ड्रामा। ये ड्रामा की ये सीन है, इस सीन को एक्सेप्ट करें एंड जंप। इसे पत्थर तोड़ो नहीं, पत्थर के ऊपर जंप कर जाओ, लेकिन उस समय इस पॉइंट को याद रखना है कि ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है, एक्यूरेट है, बेनिफिशियल है। तो उसके लिए एक ही वर्ड याद रखना पड़ता, ड्रामा। कि ड्रामा में ये सीन इस टाइम जैसी है वैसी परफेक्ट है। दूसरी कमजोरी ये होती है कि समय पर पॉइंट टच ही नहीं होती। बहुत सारा ज्ञान सुन लिया, समझ लिया, पढ़ भी लिया, यहाँ बैठ भी गया, लेकिन बाबा कहते कहते हैं समय पर तो पॉइंट याद ही नहीं रहे।
2: yes.
1: समय पर जब वो परिस्थिति आई, बाद में सोचेंगे राइट एक्सेप्ट करना चाहिए, चेंज तो हम लोगों को कर नहीं सकते, तो बाद में सारी पॉइंट्स याद आ जाती है, लेकिन समय पर वो पॉइंट टच नहीं होती। वैसे सब पॉइंट्स बुद्धि में या डायरी में बहुत सारी हैं, लेकिन समय रूपी डायरी में उस समय वो पॉइंट टच नहीं होती। इसके लिए क्या करें, सदा ज्ञान की मुख्य पॉइंट्स को रिवाइज करते रहो। इट शुड बी देयर ऑन माय टॉप शेल्फ, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऊपर आती जाती है ना, और ये सारी जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है ये कहीं ना कहीं अंदर के कबर्ड में चली जाती है। तो फिर जब वो परिस्थिति आती है तो उतना टाइम नहीं होता कि जो उसको बैक ऑफ द माइंड से आगे लाना है. तो बहुत सिंपल तरीका है कि हर रोज़ ज्ञान के मुख्य पॉइंट्स को रिवाइज करते रहो, और यही रिविजन का साधन मुरली बन जाती है. क्योंकि रोज जब हम सेंटर पर मुरली सुनने जाते हैं तो ज्ञान के वो पॉइंट्स रिवाइज होती जाती है बार बार, रोज रोज. अगर हम महीने में एक बार सुने तो फिर तो कभी भी नहीं याद रहेगी परिस्थिति के दौरान. अनुभव में फिर लाते रहो, पहले रिवाइज करते रहो, फिर उसको अनुभव में लाते रहो, चेक करते रहो, और अपने आप को चेक करते करते साथ में चेंज करते रहो. सिर्फ नॉलेज को पॉइंट बनाकर डायरी में रखेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं निकलेगी. तो चेक करते रहो, और चेक करते करते साथ साथ चेंज करते रहो, फिर कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होगा. जो पत्थर तोड़ने में टाइम वेस्ट होता है कि क्यों, क्या, कैसा, तुरंत वर्ड याद आएगा ड्रामा एंड आई जंप. ड्रामा मीन्स एक्सेप्टेंस. जैसे ही हम ड्रामा शब्द कहते हैं तो एक्सेप्टेंस याद आता. अभी कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में नहीं लगना. व्यर्थ संकल्पों के हथौड़े से समस्या रूपी पत्थर को तोड़ने में नहीं लगना. ना आई जस्ट हैव टू विजुअलाइज माई सेल्फ डूइंग दिस. कि परिस्थिति है, वो एक पत्थर ऑब्स्टिकल सामने खड़ी है, और मैं जितनी बार व्यर्थ संकल्प उसके प्रति क्रिएट करती तो मैं उस पत्थर को हथौड़े से तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ. अब ये मजदूरी करना छोड़ दो. अब इतनी सुंदर ये महावाक्य होते कि इतनी सुंदर बात सारा दिन में ऑटोमेटिकली मुझे याद रहती है, और जब वो सीन बनाकर उसको फिट कर लेते हैं.
0: Whenever the problem comes, actually, ये तो हमने भी realize किया है कि memory में अगर आपके आ गया एक बार तो वो कभी भी flash आ जाता है. जैसे situation होती है धीरे धीरे ये होने लगता है कि जैसे situation आएगी वही flash आएगा आपका mind.
2: आप regularly सुन रहे हो ना, तो regularly अंदर feed करने से.
0: तो आज की इस पूरी बातचीत के लिए मुरली आपने हमें सुनाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति. जीवन को चलाने के लिए हमें हर रोज दिशा निर्देश चाहिए, क्योंकि हम उस युग में हैं जहाँ शायद स्व के साथ काम करके, अपने आप काम करके, पूरे एनवायरनमेंट के साथ हम एक ना हो पाएं, और जिस राह पर हम चलना चाहते हैं वो ना चल पाएं. ऐसे में सेंटर पर जाना और मुरली सुनना जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करता है. कोई बात है, कोई ऐसा सवाल जो आपके पास है, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें फ़ोन कीजिए या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर्स है 9999344555, 9999344666, 9873666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसका ये सफर यूं ही चलता रहेगा. आपके सवाल अभी भी हमारे पास है, तो उन्हीं सवालों का जवाब मिलकर तलाशेंगे आने वाली घड़ी में. अब दीजिए इजाज़त. ओम शांति.

0: पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ।
2: अब की जान, अब की शान, अब निवासियों की है पहचान। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
3: नमस्कार, करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। जैसे कि हम लोग पिछली बार एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट के बारे में बातें की थी, ऐसे कि होम्योपैथी के बारे में। होम्योपैथी क्या है और कैसे हम लोग जुड़ सकते हैं और कितना टाइम लगता है और कैसे उसका मेडिसिन बनते हैं, कितना सेफ है, उसके बारे में डॉक्टर संदीप चेलके ने हमें काफ़ी अच्छी जानकारी दिया था। और जो लोग

0: पड़ता है। भले फीका नहीं हो आप, लेकिन फिर भी उसका पूरा उपयोग आप दिन भर करते रहते हैं किसी ना किसी माध्यम से। तो ये भी एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर हम अच्छा कुछ कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा जो है हमारा करियर बन सकता है। तो आइए आज के इस शो में करियर इन डिजिटल प्रिंटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। विशेष हमारे साथ मोहन जी उपस्थित है। मोहन जी बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप?
1: नमस्कार, मैं
0: नमस्कार।
1: बहुत अच्छा हूँ।
0: जी, मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए, वर्तमान में आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? जी
1: मैं वार्तालाप शुरू करने से पहले एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। जो
0: जी जी
1: आर्ट की आपने बात करा,
0: जी जी
1: इसमें अभी जो हम बात करेंगे वो हम डिजिटल प्रिंटिंग पे बात करेंगे।
0: बिल्कुल
1: उसमें जो व्यवसाय है, नौकरियां हैं, या अपना बिजनेस करने का किसी का लक्ष्य है, उसमें कैसे सुविधा मिल सकती है, हम उस पर बात करेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: मैंने अभी 35 साल से इसी डिजिटल प्रिंटिंग लाइन में रहा हूँ और मैंने इसका प्रोग्रेस देखी है, कैसे
0: जी।
1: एक टीना पे हैंड प्रिंटिंग की जाती थी और आज जो डिजिटल प्रिंटिंग हो रही है 6 कलर 8 कलर, वो मैंने जमाना भी देखा है। और अभी मैं एज रिटायर्ड पर्सन भिवाड़ी राजस्थान में मैं स्टे करता हूँ।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो मोहन जी, मैं चाहूंगा कि ये डिजिटल जो है, जिसके बारे में आप बात करने वाले हैं, डिजिटल प्रिंटिंग के बारे में, तो ये जो है इसका जो फेज है आपने देखा, और उसके पहले जो चीजें थी वो थोड़ा सा एक ऐतिहासिक तौर पे कुछ चीजें बताइए कि आपका जुड़ना कैसे हुआ है इस फील्ड से।
1: जी, डिजिटल प्रिंटिंग को जब हम बोलते हैं उसको मैं एक साधारण भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा।
0: जी
1: जो हम सड़क पर एक बिलबोर्ड्स बोलते हैं, होर्डिंग्स बोलते हैं, वो जो हम 20x40 और 20x60 का, चाहे वो बस शेल्टर हो या वो म्युनिसिपैलिटी के पोल्स हो, यहाँ पर हम कहीं पार्क में और कहीं बिल्डिंग पे डायरेक्शनल साइंस देखते हो, इसको हम डिजिटल प्रिंटिंग बोलते हैं। इसको करने के तरीके और इसके माध्यम अलग अलग हैं। आप पिक्चरों के पोस्टर देखते हैं, आप किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन आप देखते हैं, उसमें सेलिब्रिटी और वो प्रोडक्ट रहता है, वो भी एक डिजिटल प्रिंटिंग का ही हिस्सा है। हम कहीं पर सुलभ शौचालय का बोर्ड पढ़ते हैं, वो भी डिजिटल प्रिंटिंग के ही अंतर्गत में आता है। अब जो चीज हम करीबन 10 फीट 15 फीट 20 फीट के डिस्टेंस पे देखते हैं, उसका जो प्रिंटिंग का माध्यम होता है वो कहलाता है फ्लेक्स, FLEX। ये एक प्लास्टिक का बना हुआ पेपर मटेरियल होता है जो रोल्स में आता है, और ये फ्लेक्स प्रिंटिंग पर डिफरेंट कलर में, मीन्स 4 कलर 6 कलर प्रिंटिंग में छापा जाता है। ऐसा ही दूसरा, जो हम मॉल्स में जब जाते हैं, जहां पर हम 1 फीट के डिस्टेंस पे कोई विज्ञापन देखते हैं, उसमें हम बहुत बारीकी और शार्पनेस देखते हैं, उसको हम विनाइल प्रिंटिंग कहते हैं, वो भी 4 कलर और 6 कलर की प्रिंटिंग में आता है। अब रहा इनकी डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स आती हैं और डिफरेंट मटेरियल रहता है, इनकी डिफरेंट प्रिंटिंग कॉस्ट आती है, और इनसे ही संबंधित आपके रोजगार के साधन और व्यापार के साधन भी निकलते हैं। अगर आप चाहें तो मैं कंटिन्यू करूं, नहीं तो बीच में ब्रेक
0: बिल्कुल
1: लेके हम
0: बिल्कुल
1: कर सकते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: नहीं, कंटिन्यू थोड़ा
1: जी
0: कीजिए, 5-10 मिनट। हाँ
1: जी तो इसमें जो चीज होती है, हमने कहा कि ये पहले हम हाथ से कोई चीज, कोई आर्टिस्ट, कोई कलाकार होता था, तो वो एक टीना का बोर्ड के ऊपर वो उसको लिखा करता था, हनी ब्रांड शहद या भोलानाथ एंड कंपनी की दुकान, यहाँ पर आपको विश्वासी माल मिलेगा। तो ऐसे बोर्ड हुआ करते थे। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 1950s 60s में भी हम लेके चले, 70s में भी लेके चले। एक्चुअल रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन लेट 80s और अर्ली 90s।

0: इंपोर्ट करी गई मशीनरी हिंदुस्तान में लाई गई और उसका शुरुआत हुई थी विनाइल कटिंग प्लॉटर से। प्लॉटर को समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि ये डिजिटल प्लॉटर जिससे हम अपने आर्किटेक्चरल नक्शे भी बनाते हैं वो पेन प्लॉटर्स होते हैं। यहाँ पे मैं पेन प्लॉटर की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं विनाइल कटिंग प्लॉटर की बात कर रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, एक पहले फाइल बनाई जाती है, फाइल हमारी बनती है फोटोशॉप में, पेज पेकर में। तो पहला जो व्यवसाय या पहला जो रोजगार बनता है वो ये है कि हमें इसकी नॉलेज मिलनी चाहिए। जैसे हम अपने आप को 12th पास कहते हैं या ग्रेजुएट कहते हैं, इंजीनियर कहते हैं या मेडिकल साइंस स्टूडेंट कहते हैं, तो ये भी एक लाइन है जिसको हमें उसकी एक्सपर्टीज गेन करनी है। तो इट इज अ पीपल दोज हु हैव अ क्रिएटिव माइंड। मैं ये नहीं कहूंगा कि बाकी लोगों के लिए ये नहीं हो पाएगा, बट द पीपल दोज हु आर वेरी इमेजिनरी एंड दे आर विजनरी एंड दे हैव अ क्रिएटिव माइंड, उनके लिए ये बहुत आसान हो जाता है इसको कैप्चर करना और इसको सीखना। तो फिर वो फाइल का मतलब रहता है कि अगर मैंने उसमें अल्फाबेट्स लिखने हैं तो वो अल्फाबेट्स बनाए जाएंगे, या उसमें अगर मुझे किसी चीज का फोटो पिक्चराइज करना है, चाहे वो प्रोडक्ट है या एक ह्यूमन बीइंग है या एनिमल है या प्लांट है मशीनरी है, उसको वहां पर या तो मैं उसको ड्राइंग के थ्रू बनाऊंगा या मैं आज के जमाने में वो नेट से उसको डाउनलोड करूंगा या मैं उसको क्लिक करूंगा, जैसे हम पिक्चराइज कहते हैं वो पिक्चर करके। सो इन सब का मिश्रण करके वो एक फाइल बनाई जाती है। उस फाइल को जब मैं फायर करता हूँ, मैंने बताया वो फोटोशॉप पेज पेकर में बनता है, उसको जब मैं डिजिटल प्लॉटर पे डालूंगा तो वो कट के निकलेगा। इट इज अ विनाइल विच इज हैविंग ए स्टिकी सबस्ट्रेट। आगे से वो कलरफुल होती है, लाल पीली हरे रंग की होती है, और पीछे से उसके ऊपर गमिंग करा हुआ एक कागज चिपका रहता है। तो व्हेन आई विल फायर दैट फाइल, वो उसको वो उस शेप में, कृष्ण भगवान के शेप में या एक साइकिल के शेप में या एक मोटरसाइकिल या कार के, उसको काटेगा। देन आई विल पील इट ऑफ, तो पीछे का जो मेरा कागज है वो हट जाएगा और ये मेरी एक इमेज निकल के बाहर आ जाएगी। इसको और सिंप्लीफाइड वे में हम बात करें तो वी कैन चेक दैट जो हमारे गाड़ी के नंबर प्लेट्स होती हैं या हमारे घरों के बाहर जो नेम प्लेट्स लगी रहती है, लाइक माय नेम इज मोहन, सो व्हेन आई हैव क्रिएटेड द फाइल आई हैव रिटन दैट MOHAN। तो व्हेन आई गिवन ए कमांड और उसको पील करा तो एम मेरा अलग से निकल के आ गया, ओ मेरा अलग से निकल गया, एच मेरा अलग से निकल के आ गया। नाउ आई हैव दीज अल्फाबेट्स इन ए विनाइल शेप इन माई हैंड। इधर आई कैन पेस्ट इट ऑन एनी सबस्ट्रेट, इट इज कुड बी द स्टील, इट कुड बी प्लाई और इट कुड बी ACP एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल। उस पर मैंने उसको चिपका दिया, जैसे मैंने बताया गाड़ी के नंबर प्लेट, तो गाड़ी के नंबर प्लेट जो है ये एक शीट होती है, उस पर मैंने चिपका दिया DLMC 1234 और वो मेरी प्लेट बन गई, और जैसे ही मैंने मोहन लिखा तो वो मेरी नेम प्लेट बन गई। सो दिस वॉज द फर्स्ट डिजिटल फेज ऑफ व्हाट यू कॉल प्लॉटर कटिंग। फिर ग्रेजुअली वी मूव टू प्रिंटिंग। ये तो था कि इसमें हम क्या करते, इसमें ग्राफिक्स को ज्यादा हम डाल नहीं सकते थे, बट व्हेन वी स्टार्टेड इंपोर्टिंग प्रिंटर्स, उसमें फिर हमने फोर कलर से स्टार्ट किया था, जो सियान, येलो, मैजेंटा, ब्लैक, ये बेसिकली फोर कलर्स होते हैं, बेसिक कलर्स होते हैं जिससे बिलियंस ऑफ कलर्स बनते हैं। तो इन चार कलर्स की मशीन हिंदुस्तान में शुरुआत में आई और उसको हमने 8 फिट के बड़े रोल पे लिया। उस समय पेपर 10 फिट का नहीं आता था, तो ये जो मैंने फ्लेक्स बताया ये 8 फिट का आता था, उसके ऊपर हमने ये फाइल्स फायर करी और उसको प्रिंट निकाला, जिसे आज की तारीख में हम बिलबोर्ड होर्डिंग्स बोलते हैं, जो हम बस शेल्टर्स और डायरेक्शनल साइनेज में हम देखते हैं। देन ग्रेजुअली पर 8 फीट से वो फिर 10 फीट तक आ गई। सो दिस वॉज अ टू रिवोल्यूशनरी स्टेप्स, वन वॉज द प्लॉटर एंड सेकेंड वॉज द प्रिंटिंग। अब इसमें भी रोजगार के लिए वही चलता है, वही फोटोशॉप वही आपका चलेगा इसमें, और आपको वो जानकारी है तो आप मशीन ऑपरेटर बन सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द एबीसी सिटीज, जो इसका सैलरी स्ट्रक्चर रहता है, एक फ्रेशर के लिए अगर हम बात करें तो 12,000 से लेकर दिस कैन गो अप टू 40,000 रुपीज, डिपेंडिंग अबाउट द विच सिटी यू आर एंड व्हाट टाइप ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव। तो दैट फर्स्ट जो हमने बताया, दैट इज ग्राफिक डिजाइनर कम मशीन ऑपरेटर। अब जिनके पास ये कौन आपको जॉब देंगे और कौन करेंगे, इनको हम बोलते हैं पीएसपी, प्रिंट सर्विस प्रोवाइडर। अब ये बड़े बड़े एक कारखाना ही आप कह सकते हैं जहां जिन्होंने ये मशीनें लगाई होती हैं, जो इंटर्न कॉरपोरेट्स या गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। जैसे अगर हम बात करें एयरटेल या रिलायंस, तो इनके जो भी एडवर्टाइजमेंट के काम आएंगे वो इन पीएसपीज के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे कि हमें इस तरह के अपना लोगोस चाहिए, इस तरह के हमारे एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम है। मैं जैसे G5 रिलायंस लॉन्च कर रहा है या एयरटेल G5 लॉन्च कर रहा है नेशनली, तो हमारे इतने लाखों स्क्वायर फीट ये जो गिना जाता है, जैसे हम अपने मकान को लेते हैं तो हम कितने सोच बताते हैं कि हमारा कितने स्क्वायर फीट का घर है, 4 कमरे, तो 4 कमरे से नहीं हम कहते हैं हमें धरती का स्क्वायर फीट बताइए। तो ऐसे ही हम जब प्रिंटिंग की बात करते हैं, तो जो भी ये फ्लेक्स छपता है या विनाइल कटती है, तो हम इसको स्क्वायर फीट में गिनते हैं। तो ये लाखों स्क्वायर फीट का जॉब होता है, जो ऑपरेटर से उससे कुछ लेना देना नहीं। ऑपरेटर ने तो एक फाइल बनाई और मशीन को कमांड दिया, नाउ द मशीन इन टर्न चर्न आउट दैट मच लैक्स ऑफ स्क्वायर फीट। उसकी मशीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसका स्पीड क्या है, दैट इज सेकेंडरी। राइट नाउ हमें फोकस करना है कि हम मेरे को रोजगार कैसे मिलेगा और मेरे लिए उसके लिए क्या बेसिक क्वालिफिकेशन होने चाहिए। तो वेरी फर्स्ट आई मेंशन्ड हियर, इट इज द ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर एंड ग्राफिक डिजाइनर। सो दीज आर द टू इन डिजिटल प्रिंटिंग आज की तारीख में है, और जिनका मैंने सैलरी स्ट्रक्चर बताया। एंड इट इज अ वेरी डिग्निफाइड, आई विल कॉल इट, क्योंकि ये जो हमारे साथीगण होते हैं जिन्हें हम ऑपरेटर या ग्राफिक डिजाइनर कह रहे हैं, ये उन बड़ी कंपनियों के एग्जीक्यूटिव के साथ बैठ के मीटिंग करते हैं, उनका पहले विचार अपने जहन में लेते हैं कि उनको क्या चाहिए, उसको फिर वो अपने स्टेप्स वाइज एक एक दो दो तीन तीन चार चार डिजाइन बना के उनको दिखाते हैं, उनसे
1: बिल्कुल
0: अप्रूवल
1: बिल्कुल
0: लेते हैं। कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी कॉरपोरेट कंपनी के लिए, जो उनका कलर होता है, जो उनका लोगो का कलर होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: उसपे उसकी उसकी मिश्रण बनाना कैसे रहेगा, तो वो बताना उन एग्जीक्यूटिव से उसका अप्रूवल लेना। तो इसलिए ये काम मैं बहुत ही, बिकॉज दीज आर द वेरी प्रिलिमिनरी कहूंगा, बट स्टिल दे आर वेरी वेरी वैल्यूएबल पीपल, बिकॉज वो जब तक फाइल नहीं बनाएगा, जब तक कमांड नहीं देता, तब तक वो पीएसपी तो कमाई नहीं होगी। सो दिस इज वेरी बेसिक एप्लीकेशन विच आई एम टॉकिंग अबाउट।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: देन
1: मोहन जी, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और इसके बाद में आगे हम लोग जो है डिजिटल प्रिंटिंग के बारे में वैश्विक तौर पे कैसे काम कर सकते हैं आगे आपसे सुनेंगे। आप सुन रहे हैं रिनोद 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कराते रहो।

0: नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। करियर इन डिजिटल प्रिंटिंग के बारे में बातें हो रही हैं। निश्चित तौर पे आपको ये बातें सुनकर अच्छा भी लग रहा होगा, और जो लोग कंप्यूटर से रिलेटेड काम करना चाहते हैं और कुछ बनाने में या इस चीज को शौकीन है और वो इस तरह की कुछ चीजें करना चाहते हैं, एडवर्टाइजमेंट में या फिर प्रिंटिंग में अपना कुछ करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और ये मुझे लगता है कि सीखने के लिए भी शायद सबसे ज्यादा कम टाइम लगता है इन चीजों को सीखने में, समझने में, अगर आपकी रुचि हो तो। तो आइए इस विषय को लेकर और आगे बात करते हैं। कितना टाइम हमें ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने में लगता है या फिर किस तरह के कोर्सेस अवेलेबल है, इसके बारे में अभी जानते हैं। तो मोहन जी, फिर से एक बार स्वागत है।
1: इसमें अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट, हेलो,
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: हाँ, दीज आर नॉट द डिग्री कोर्सेज जैसे हम बीए और एलएलबी करते हैं,
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो ऐसा ये किसी विश्वविद्यालय में नहीं बताया जाता। आज तक जो हमने देखा है ये ऑन जॉब पर ही इसको कराया जाता है। आज की तारीख में जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो डाउनलोडेबल हैं और फ्री मिलते हैं। तो बेसिकली पेज मेकर एंड फोटोशॉप एंड कोरल ड्रॉ, अगर ये तीन सॉफ्टवेयर को आप नोट कर लें और इसको आप ऑनलाइन डाउनलोड करें और उस पे अपना हाथ साफ करने की कोशिश करें, तो वो आप कम से कम नहीं तो 2 महीने 3 महीने 4 महीने आप वो कर लेते हैं, तब आप किसी पीएसपी को अप्रोच कर सकते हैं। एंड एज आई सेड कि आपको वो फ्रेशर अपॉइंट करेंगे,
0: बिल्कुल,
1: और आपसे वो जानना चाहेंगे कि आप कितना तुरंत उसको फाइल को बना सकते हैं और कलर का मिश्रण कर सकते हैं। तो ये तो हमने बात करी इनके ऑपरेटर्स लेवल पे। अब आपने जॉब कर लिया, अब आप इसको अगर व्यवसाय में लेना चाहते हैं, तो मैंने जहां 2 मशीनों की बात करी, वन वाज द विनाइल कटिंग प्लॉटर एंड सेकंड वाज द डिजिटल प्रिंटर, सो इनकी कीमत आज की तारीख में जो शुरुआत हुई थी 90s और लेट 80s और अर्ली 90s में, वो तो बहुत महंगी थी, बट नाउ द प्राइसेस हैज गॉट स्लैश, कॉम्पिटिशन बढ़ गया है और विश्वव्यापी इसका प्रोडक्शन होने लगा है, और आज की तारीख में हिंदुस्तान में भी अब ये प्रोड्यूस करी जा रही है। सो नाउ टुडे यू कैन हैव विनाइल कटिंग प्लॉटर राइट फ्रॉम 60,000 रुपीज टू 1.5 लाख, 60,000 से 1.5 लाख रुपए तक का आप ये
0: विनाइल
1: कटिंग ले सकते हैं जी। और जो डिजिटल प्रिंट मैंने बताया 10 फीट की, अगर हम फ्लेक्स प्रिंटिंग मशीन की बात करें तो वो 7 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक की आज की तारीख में अवेलेबल है। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा, सरकार मोदी सरकार के थ्रू एक स्कीम निकाली गई है जिसको मुद्रा लोन कहते हैं। ये मुद्रा लोन 10 लाख रुपए तक का इन प्रोफेशनल्स को दिया जा रहा है, जिसमें किसी भी तरह का कोई कोलेट्रल नहीं लिया जाता। ये आप किसी भी सरकारी बैंक में जाएंगे और आप अपना बेसिक क्वालिफिकेशन बताएंगे कि हाँ जी मैं ग्रेजुएट हूँ या 12वीं पास हूँ, और साथ में मैं ये इस चीज का हुनर रखता हूँ कि मुझे ये डिजिटल का काम करना है। अगर आप ऐसे ही अपनी प्रतिलिपि बना के उनको बैंक को देते हैं तो वो आपका लोन पास करते हैं, और वो 10 लाख रुपए आप लेके उसमें कम पैसा है तो वो बच जाता है, और अगर ज्यादा है तो आपको अपनी तरफ से डाल के ये चीज आप ले सकते हैं। अब रहा इसकी स्पेस का सवाल, तो जब आप काम करते हैं तो डिजिटल प्लॉटर, जैसे मैंने कहा कि आप एक ऑटोमोबाइल मार्केट में जाके ये प्लॉटर लगा सकते हैं, वहां पे लोगों को बोल सकते हैं कि मैं नंबर प्लेट्स बनाता हूँ, जबकि आज की तारीख में हाई सिक्योरिटी वाली नंबर प्लेट्स आ गई है, इनका प्रचलन बहुत कम हो गया है, बट आज भी लोगों के घरों में उनकी नेम प्लेट्स और उनके चित्रकारी के लिए आज भी ये प्रचलित है। तो आप ये छोटा सा आपको स्पेस चाहिए, दिस वी कैन नीड अबाउट 8x8 का अगर जगह है, वहां पे आपको बेसिक एक कंप्यूटर है और आपके पास ये विनाइल कटिंग प्लॉटर है, तो आप ये व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। और जहां तक प्रिंटर का है, क्योंकि 10 फीट की तो मशीन ही है और 10 फीट का रोल आता है, तो उसके लिए आपको कम से कम ही तो 12x15 की एक स्पेस चाहिए जिसमें आप ये प्रिंटर लगा सकते हैं। और रहा ये किसी व्यावसायिक औद्योगिक क्षेत्र में लगाए तो ज्यादा रहेगा, कि क्योंकि वहीं पे आपके जो बोर्ड्स होंगे, दुकानदारों के बोर्ड्स होंगे या कंपनी के जो फैक्ट्रीज हैं उनके अंदर में जो जिनके डिजाइन्स वगैरह का जो रहेगा और साइनेज का जो काम रहेगा वो आपको मिलेगा। सरकारी टेंडर्स का भी इसमें योगदान रहता है। जेम करके ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार अपने टेंडर्स निकालती है, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ने निकाला या रेलवे ने निकाला, ये भी अपने प्रमोशंस के लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए टेंडर खोलते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करके। तो रोजगार और व्यवसाय दोनों की इस समय इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। एक्चुअली आज की तारीख में गिना जाए तो इंडिया में इट्स अ बिलियंस डॉलर की इंडस्ट्री बन चुका है। ये आज एक मतलब एक रोग की तरह हर जगह ये फैल चुका है। आपको मैंने कहा ना कि इसमें आई यूज अ वेरी टिपिकल टर्म, मैं कहता हूं कि खुराफाती दिमाग। अगर आपका खुराफाती दिमाग है तो आप इसमें इस व्यवसाय और इस रोजगार में सफलता पा सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता, बिकॉज ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। जैसे हम सीए की बात करते हैं, लॉयर की बात करते हैं, तो आपने डिग्री ले ली पर आपको काम फिर भी नहीं मिल पाता बिकॉज आपको अपना नाम स्टैब्लिश करना पड़ता है। सिमिलरली इन दिस ट्रेड ऑल्सो यू हैव टू मेक योर नेम कि यस He is the फला graphic designer, he is the फला machine operator. एक ही मशीन है पर उस मशीन को चलाने के तरीके जो है वो 10 तरह के हो सकते हैं। How you are going to maintain, how you are going to run that, how effectively you are maintaining that. So these are the things जो कि आपके व्यवसाय और उसमें चलते हैं। इसी में आगे एक प्रोडक्ट और आता है जिसको हम लेजर कटर या प्लॉटर कहते हैं, राउटर कहते हैं। राउटर जो होता है वो हमारा लकड़ी को, एमडीएफ को, एल्युमिनियम को, ग्लास को, मार्बल को, इनको काटा जाता है। और जो लेजर है वो भी आपका एसीपी स्टील और आयरन लोहे को काटता है। तो ये जहां पे मैंने डिजिटल प्रिंटिंग की बात करी उसकी जगह पर ये 3D के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये कटिंग करते हैं, ये प्रिंटिंग नहीं करते हैं। जब भी आप फाइलें वही रहती हैं बट इसमें सिर्फ एक और सॉफ्टवेयर जुड़ जाता है जिसे हम 3D सॉफ्टवेयर बोलते हैं, वो सॉफ्टवेयर जुड़ जाता है, उससे हम इनके जो वर्ड्स हैं या जो इमेजेस हैं, बच्चों के खिलौने हैं, या अगेन डायरेक्शनल साइन में हमने सब लिख दिया कि सुलभ शौचालय, पर उसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए मैंने एक एमडीएफ की डंडी काट के, लकड़ी काट के उसका डायरेक्शन दिखाया। सो दैट इज पॉसिबल थ्रू द लेजर एंड दिस राउटर मशीन। तो ये भी वो उसी फील्ड में गिने जाते हैं जो कि PSPs के पास होते हैं, प्रिंट सर्विस प्रोवाइडर्स के पास, बिकॉज दिस ऑल थिंग्स आर फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड। ये सारी चीजें एक ही छत के नीचे रहती हैं, तभी वो कॉर्पोरेट्स या गवर्नमेंट आपके पास अप्रोच करता है उस काम को करने के लिए। तो जहां विनाइल कटिंग प्लॉटर और प्रिंटर का मैंने कॉस्ट और जगह बताया, ऐसे ही इसमें लेजर और राउटर में भी अब हिंदुस्तान में ये चीजें बनने लगी हैं। ये भी आपको 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं और इनकी इनकी टेबल साइज होती है। जहां मैंने आपको प्रिंटर का विड्थ बताया रोल वो 10 फीट का, तो ये टेबल साइज होती है 4x8, 3x3, 2x2, जितना बड़ा आप साइज का कोई भी टुकड़ा काट के उस पर डिजाइन बनाना चाहते हैं। आज की तारीख में अगर हम इस लाइन से जो जुड़े होते हैं वो आर्किटेक्ट भी जुड़े होते हैं। अगर आपने आज की तारीख में मॉल्स देखे हैं या घर देखे हैं, पेंट हाउसेस देखे हैं, तो वहां पे लोग MDF की कटिंग लगाते हैं, स्टील की कटिंग लगाते हैं, डिजाइंस लगाते हैं। तो ये इसमें जो एक और महकमा जुड़ता है वो आर्किटेक्ट का जुड़ता है, वो अपने डिजाइन्स इन लोगों से बनवाते हैं और फिर किस सबस्ट्रेट पे जोड़ना है, इसमें वास्तुशास्त्र जुड़ जाती है। लोग कहते हैं नहीं जी MDF वाला नहीं, हम आज की तारीख में SS चल रहा है तो ड्राइंग रूम में SS की जाली लगनी चाहिए। सो दीज आर द मिक्सचर्स ऑफ ऑल, बट वी एज अ ऑपरेटर और एज ए जॉब वर्कर और एज ए ओनर ऑफ द मशीन, हमें उनसे लेना देना नहीं, हमें अपना व्यापार देखना है कि उसको किस दाम पर हम करें सो दैट हम अपनी ईएमआई मशीनों में निकाल सकें, अपने वर्कर्स को पैसा दे सकें और हम घर में कुछ प्रॉफिट भी कर सकें। सो ये दो चीजें और जुड़ जाती है, वन इज लेजर एंड वन इज अ राउटर विच इज कवरिंग द डिजिटल प्रिंटिंग एस्पेक्ट्स, जो एक ही अम्ब्रेला में सारी चीजें जुड़ती हैं।
0: जी जी जी मोहन जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। मैं फिर से आपको थोड़ा सा वो बताना पूछना चाहूंगा, जैसे कि डिजिटल प्रिंटिंग और फिर वो आपने जो बताया था प्लॉटर, जो मशीन प्लेट वाली प्लॉटर,
1: जी जी जी जी,
0: तो इसमें दोनों में क्या अंतर रहता है, उसमें क्या कर सकते हैं? और डिजिटल प्रिंटिंग में शायद बहुत सारी चीजें हो सकती हैं,
1: तो दोनों का दोनों काम, दोनों में जो आपका क्वालिफिकेशन है वो सेम रहती है।
0: हाँ।
1: आपको मैंने बताया कि आपको वो पेज मेकर, फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ सीखना पड़ेगा।
0: हाँ,
1: बट अब जब व्यवसाय में आप आना चाहते हैं तो उसकी इन्वेस्टमेंट, आपकी जो बैंडविड्थ है वो आपको फर्क कर जाती है। जैसे मैंने कहा प्लॉटर आपका वो 60,000 से 1.5 लाख रुपए तक में आपका व्यापार शुरू हो जाता है।
0: इसमें भी वो डिजिटल प्रिंटिंग में जो काम हो रहे वो इसमें भी हो जाएगा ऐसा?
1: नहीं, प्रिंटिंग इज प्रिंटिंग, यहाँ पे सिर्फ विनाइल कटिंग प्लॉटर होगा, विनाइल कटेगी, जहां पर भी आप किसी तरह की चित्रकारी को चिपकाएंगे, प्रिंट नहीं करता ये।
0: अच्छा,
1: मैंने बताया ये विनाइल है, विनाइल एक सबस्ट्रेट है, उसको वो भी पीवीसी के ही प्लास्टिक से ही बना रहता है, पर इसमें पीछे कागज लगा रहता है, मतलब इसमें गमिंग होती है। अच्छा। तो जब मैं उसको प्लॉट करता हूँ, एक पेन होता है, एक पेन की जगह पे एक नीडल होती है, और जब मैंने वो फाइल फायर करी तो वो नीडल उस विनाइल के ऊपर चलती है। मैंने राधा कृष्ण का फोटो छापा है, मतलब राधा कृष्ण का फोटो की फाइल बनाई, तो जब मैंने उसको विनाइल कटर पे डाला तो उसने वो राधा कृष्ण की बांसुरी, मोर मुकुट और ये सब काट दिया। अब मैंने उस पेपर को पीछे से पील ऑफ कर दिया तो मेरे पास एक हॉलो नजर आ गया, राधा कृष्ण का हॉलो आ गया। अब वो राधा कृष्ण का हॉलो या तो मैं सीधा दीवार पे चिपका सकता हूँ, या मैं MDF पे चिपका सकता हूँ, ACP पे चिपका सकता हूँ, ग्लास पे चिपका सकता हूँ, तो वो मेरा जो कलरफुल जो राधा कृष्ण का हॉलो था वो निकल के आ गया। वो तो ये चीजें बहुत चल रही हैं। आपने ग्लास के ऊपर देखा होगा कि बहुत चित्रकारी है। अब ग्लास पे प्रिंट भी होता है, ग्लास पे विनाइल भी लगता है। विनाइल सस्ता वो है, जिसे जुगाड़ कहते हैं, ये हल्का काम है, प्रिंटिंग महंगा काम है। तो जहां पे ग्लास इंडस्ट्री, जो जहां पे अगर आपने प्लॉट लगाया और आपने अपने मोहल्ले, अपने कॉलोनी के ग्लास बेचने वाले, जो शीशा बेचने वाले, उनको अप्रोच करा, उनसे कहा कि देखिए ये आपका नंगा ग्लास है, ये 4 mm का 45 रुपए का है, अब इस 4 mm का 45 रुपए के ग्लास के ऊपर अगर मैं ये राधा कृष्ण की फोटो चिपका देता हूँ तो यही 45 रुपए का जो आपका ग्लास है वो आपका 70 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए में बिकना शुरू हो जाएगा। तो आपका दोनों का एक सामंजस्य बैठ गया, ग्लास वाले को और आपका। अब ग्लास वाले के बाद जब कोई ग्राहक आता है तो वो उनको बोलेगा कि मैं आपके ग्लास को कलरफुल बना सकता हूँ। कैसे बनाऊंगा? वो फिर चित्रकारी दिखाएगा उनको, फिर ये बच्चे को अप्रोच करेगा जिसके पास प्लॉटर होगा, वो उसको ग्लास पे चिपका के उसको दे देगा। तो इस तरह से ये एक चेन है जो कि पूरे व्यवसाय को बढ़ाती है। तभी मैंने कहा इट इज $1 billion इंडस्ट्री, इट इज नॉट ए स्मॉल कोई मोहल्ले का काम नहीं रह गया है। तो अब आ जाते हैं प्रिंटिंग के ऊपर। तो प्रिंटिंग का बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज सब्सटेंशियली हाई, जबकि जो आपकी कौशलता है वो कौशलता सेम है, आपने उसमें भी वही ग्राफिक बनाया, इसमें भी वही ग्राफिक बनाया, बट आपको पहला पैसा थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ा, थोड़ी स्पेस ज्यादा लेनी पड़ी। अब यहाँ पे हम वो चिपकाते नहीं है, यहाँ पे हम सीधा छापते हैं। अब जो मैंने राधा कृष्ण का मैंने उस पर हॉलो बनाया, वो मैं हॉलो नहीं बनाऊंगा, इस पे सीधा वो राधा कृष्ण का मुकुट, मोर, बांसुरी, मटकी, वो सीधा प्रिंट हो जाएगा।
0: बिल्कुल।
1: अब वो प्रिंट को मैं लेके जाऊंगा और मैं कहूंगा कि आपके ग्लास की जगह पे मैं इसको पेंटिंग के रूप में, या आप कैनवस के ऊपर भी छाप सकते हैं, फ्लेक्स के ऊपर भी छाप सकते हैं, विनाइल के ऊपर भी छाप सकते हैं, और फिर आप उस जो जो आदमी ग्लास वाले के पास गया था उसी के घर में ये पेंटिंग बनके उनके ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में, लिविंग रूम में लग सकती है, या मैंने बताया कि ये होर्डिंग्स पे चल सकता है। तो इनका मार्केट आप क्या करना चाहते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट है, क्या बैंडविड्थ है आपकी, कितना नेटवर्किंग, जी हाँ नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके कॉन्टेक्ट होने चाहिए, नहीं तो बनाने पड़ेंगे, तो उस हिसाब से आप उसको चला सकते हैं। एक हो गया आपका प्लॉटर, एक हो गया आपका प्रिंटर, सेम फिर हम बात करते हैं वो लेजर कटिंग के ऊपर, अगर आपने एक और जो स्ट्रीम जोड़ ली, आपने सेगमेंट जोड़ लिया दैट इज आर्किटेक्चर का, उनको अप्रोच करा, तो फिर आपका जो लेजर और जो राउटर की इन्वेस्टमेंट है वो आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी एंड यू विल गेट द फास्टर बेटर आउट ऑफ इट।
0: मोहन जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से प्लॉटर काम करता है और किस तरह से प्रिंटिंग का काम होता है, वो सारी चीजें आपने बिल्कुल स्पष्ट करके बताया। और निश्चित तौर पे जब हम लोग इस विषय को लेकर बात करते हैं तो ये दोनों चीजें जो है अपनी अपनी जगह पर है, तो दोनों एक नहीं है, दोनों का अलग अलग वर्कआउट है और दोनों के कस्टमर्स और अपन देखेंगे तो वो सब चीजें जो है अलग अलग हो जाएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर करियर इन डिजिटल प्रिंटिंग के बारे में बातें हो रही हैं और हमारे साथ मोहन जी हैं जो इस व्यवसाय के काफी बड़े अनुभवी हैं और अभी वर्तमान में वो इस काम को जो है करते हुए अपने साथ बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे बड़ा अच्छा लगता है। और जब कोई व्यक्ति इन सभी चीजों को करने के बाद जब बताता है तो एक्सपीरियंस आपके पास बहुत ही अच्छी तरह से वो शेयर करते हैं और उनका एक्सपीरियंस जो है सुनकर आप समझ पाते हैं कि हाँ ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसे। आपके मनस पटल पर कुछ कुछ सवाल आते होंगे तो सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे। रेडियो मधुबन के 94 14 15 14 15 इस नंबर पे आप मैसेज करके कोई सवाल हो तो जरूर पोस्ट कर सकते हैं और फिर अगले एपिसोड में हम लोग इस विषय को लेकर, उसी सवालों को लेकर बातचीत भी कर सकते हैं। तो मोहन जी, मैं चाहूंगा कि जाते जाते हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं उन सभी के लिए अभी करंट सिनेरियो में हम लोग कैसे कैसे काम कर सकते हैं और आने वाले समय में इनकी संभावनाएं तो बढ़ती जा रही हैं क्योंकि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे लोग एक्टिव रहते हैं। तो किस तरह से हम लोग जो हैं एज ए ग्राफिक डिजाइनर या फिर हम लोग कुछ और चीजें जैसे आपने कहा पेज मेकर, फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ, इन चीजों को अगर ठीक से समझ लेते हैं, सीख लेते हैं तो क्या क्या करने की संभावना और कौन कौन सी जगह पे हम अगर समझो बिजनेस नहीं स्टार्टअप करते हैं थोड़ा समय के लिए और हम लोग कहीं नौकरी करना चाहते हैं, तो जो आपने बताया कि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस, इसके अलावा हम लोग कोई कंपनी में या फिर कहीं कॉर्पोरेट्स जो वर्ल्ड है उसमें कहाँ अपन अपनी जगह बना सकते हैं, थोड़ा सा वो बताएं।
1: जी जरूर। इसमें अभी आपने जो तीन चीजें कही जी, तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ जो अभी उठता हुआ जो हम डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल लाइन की बात करते हैं जिसमें हमारा ये जो रेडियो और टेलीविजन का जो माध्यम आ रहा है जिसके थ्रू हम अपने चीजों को पॉपुलर करके और लोगों को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज इंडोर एडवर्टाइजमेंट एंड आउटडोर एडवर्टाइजमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट एंड दिस इज अ डिजिटल एडवर्टाइजमेंट। सो ये तीसरा सेगमेंट जुड़ गया, आयाम जुड़ गया। हम अभी तक पहले इंडोर और आउटडोर की बात करते थे। आउटडोर वो हुए जो सड़कों पे होर्डिंग्स लगते थे, इंडोर वो हुए जो मॉल्स में और कारखानों में, फैक्ट्रियों के डायरेक्शनल साइंस में आया। अपना जो डिजिटल मार्केटिंग वाला जो अप्रोच हुआ तो खुशी की बात ये है कि जब आपने ये हुनर हासिल किया, ये हुनर आपके तीनों जगह पे ही चलेगा क्योंकि आपने अगर उसको, मैंने डिजिटल ग्राफिक के थ्रू अगर उसको एडवर्टाइजमेंट करना है, प्रमोट करना है और ये मोबाइल पे और टेलीविजन पे दिखाना है तो मेरे को फिर भी वो इमेज तो बनानी ही बनानी है ना, तो वो तो रहेगी रहेगी। तो इसलिए ये व्यवसाय आप एज ए प्रोफेशनल लेना चाहें या अपनी एज ए हॉबी लेना चाहें, मैं इसको बड़े जोर परोश से कहूंगा कि इसको प्रमोट करना ये आपके लिए बहुत जरूरी है। आप अपने इसको लीजिए अपनी हॉबीज में, जो आप अभी कहते हैं मैं म्यूजिक करता हूँ या मैं साइकिलिंग करता हूँ या मैं ट्रैकिंग करता हूँ, तो ये भी एक चीज है, ये भी गिटार बजाने की तरह ही है, ये भी आपको अपने तनाव से मुक्ति देने वाली चीज है। आप अगर एक कलम उठाएंगे या अपने कंप्यूटर पे ये चीज बनाएंगे तो वो बहुत ही आपको सुकून देगा। तो ये तो रहा आपका अपने तीनों सेगमेंट के लिए हुनर को लेना। अब आता है इसको मैं व्यवसाय में ना लेके अगर मैं नौकरी के लिए ढूंढूं तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो उसकी भी खुशी की बात यह है कि जो आज बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, मैंने जो बात बताई जैसे रिलायंस और एयरटेल की मैंने बात करी है, हिंदुस्तान लीवर की हम बात करें या नेस्ले की हम बात करें, इनका करोड़ों का बजट होता है जो कि इंडोर, आउटडोर और डिजिटल तीनों के लिए प्रमोशनल के लिए आज की तारीख में सेगमेंट होता है। वहां पे ब्रांड मैनेजर्स बैठे होते हैं, वहां पे डिजाइनर्स बैठे होते हैं। आज की तारीख में हर अच्छी कंपनी विच इज अबाउट 50 करोड़ ऊपर की जिसका टर्नओवर है वो और एफएमसीजी में है या वाइट गुड्स में है, उसमें उसने अपनी चाहे 2 लोगों की टीम हो या 12 लोगों की टीम हो अपने इनहाउस रखे हैं, बिकॉज व्हेन दे अप्रोच टू पीएसपी के पास जाते हैं तो अपना कुछ खाका लेके जाते हैं कि दिस इज व्हाट कहते हैं ना, मेरे जहन की चीज को वो लड़का जो लड़की है वो पहले उतारती है, जो सीईओ उस कंपनी का या वाइस प्रेसिडेंट उस कंपनी का है, जो मार्केटिंग मैनेजर उस कंपनी का है या ब्रांड मैनेजर उस कंपनी का है, वो पहले इनको कारीगरों को बोलता है कि ये चीज मुझे करके दिखाओ, जब वो इनहाउस इसको बोलते हैं इनहाउस, सो इनहाउस में वो उसको बना के दिखाते हैं, फिर देन दे अप्रोच टू द ये एक्सटर्नल एजेंसीज, वो एजेंसीज होती हैं एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड वाइड की, दीज आर ऑल्सो वेरी ह्यूज वन। तो आपका सिर्फ रोजगार लेने का जरिया यहाँ पर नहीं खत्म हो जाता, यू कैन हैव अपना तजुर्बा लीजिए, आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन है चाहे वो बीए है बीकॉम है या आपकी इसमें बीसीए में है, उसके बाद आपने ये हुनर हासिल किया तो आप ये कॉर्पोरेट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ये आप पीएसपी वालों को भी अप्लाई कर सकते हैं, ये आप सरकारी में भी जा सकते हैं, डीएवीपी एक सरकार का है, डायरेक्टरेट ऑफ ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी, ये भी एक डिपार्टमेंट है सरकार का जो ये काम करते हैं और ऐसे लोगों को व्यवसाय में रखते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो ये चीज लेना, कहते हैं कई बार हुनर बिना पैसे के भी खर्च करा जा सकता है अगर आपको गुरु ऐसा अच्छा मिल गया, और कई बार आपको पैसा लगा के भी लेना पड़ता है, तो किसी भी तरह का अगर आप चीज करते हैं तो ये लेना अच्छा रहेगा आपके लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी, चलिए मोहन जी, बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया और मुझे लगता है कि हम अगर कुछ छूट रहा है हमसे तो अगले एपिसोड में जरूर कवर करेंगे, मुझे लगता है कि आपके पास काफी इन्फॉर्मेशन भी है, नॉलेज भी है, हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जैसा वक्त मिलेगा। तो आज के लिए बस,
1: मुझे खुशी होगी अगर हमारे श्रोतागण अगर उन अपनी जो जो उनकी जिज्ञासा है जो उनकी क्वेरीज है
0: उनके क्वेरीज अगर वो मैसेज करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, कंटिन्यू कर सकते हैं अगले एपिसोड में। मोहन जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत ही अच्छा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपने बातें की। तो मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, करियर इन डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हमने बातें की और जो ए टू जेड शुरुआत से लेकर अब तक की बातें आपको क्लियर करके मोहन जी ने बताया है।
2: अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो प्लीज आप 9944151415 इस नंबर पर मैसेज करके अपने सवाल या अपनी भावनाओं को साझा कर सकते हैं। आप अपने करियर को बहुत अच्छा बनाएं, अपना और परिवार का नाम रोशन करें, इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में, कुछ नए करियर के बारे में वार्तालाप करेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम ये वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ऐतिहासिक सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झक्कास रेडिओ स्टेशन पुणेरी आवाज ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंद
1: रेडिओ पुणेरी आवाज खुश रहो खुशिया बाटो। नमस्कार रेडिओ श्रोतागण, आपके पसंदीदा रेडिओ स्टेशन रेडिओ पुणेरी आवाज पर प्रस्तुत है ज्ञान चिंतन, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको ज्ञान और सोच के नए आयामों से रूबरू कराएगा। ज्ञान चिंतन
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक जैन 107.8 FM से। आज मैं ज्ञान चिंतन का एक नया विषय लेकर आया हूँ, एकाग्रता। आइए हम आज एकाग्रता के बारे में समझते हैं। एकाग्रता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। एकाग्रता किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी होती है। यह मानसिक शक्ति का वह गुण है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने और बाहरी व आंतरिक बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है, चाहे वह शिक्षा हो, खेल हो, व्यवसाय हो या व्यक्तिगत विकास। हर क्षेत्र में एकाग्रता सफलता की नींव होती है। आइए अब हम समझते हैं एकाग्रता का अर्थ क्या होता है। एकाग्रता का अर्थ है मन को एक ही दिशा में केंद्रित करना और भटकाव से बचाना। जब व्यक्ति किसी कार्य को पूरे मनोयोग से करता है तो उसकी गुणवत्ता और सफलता की संभावना बढ़ जाती है। यह न केवल अध्ययन और कार्य क्षेत्र में बल्कि जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए अब हम समझते हैं एकाग्रता का हमारे जीवन के भिन्न भिन्न पड़ावों पर क्या महत्व होता है। अध्ययन में सफलता के लिए विद्यार्थी जीवन में एकाग्रता का विशेष महत्व है। जो छात्र अपने अध्ययन पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं वे अधिक तेजी से और बेहतर तरीके से सीखते हैं। कार्य में दक्षता लाना है तो इसके लिए भी एकाग्रता बहुत जरूरी है। कोई भी कार्य यदि पूरी तन्मयता से किया जाए तो उसमें त्रुटियों की संभावना कम हो जाती है और गुणवत्ता बढ़ जाती है। एकाग्रता से निर्णय लेने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। जब व्यक्ति पूरी तरह से एकाग्र होता है तो वह सही और प्रभावी निर्णय लेने में सक्षम होता है। एकाग्रता से हमारी सृजनात्मकता भी बढ़ती है। जब मन शांत और केंद्रित होता है तो नई और रचनात्मक सोच विकसित होती है। एकाग्रता से मानसिक शांति और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। एकाग्रता हमें तनाव मुक्त रखती है। आइए अब हम समझते हैं कि हमारी एकाग्रता में क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो कि बाधाएं पैदा करते हैं। सबसे ज्यादा जो हमारी एकाग्रता को एडवर्सली अफेक्ट करता है वो है अत्यधिक विचार। जब व्यक्ति एक साथ बहुत अधिक चीजों के बारे में सोचता है तो उसका मन भटक जाता है। आजकल मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी, इनका बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, खासकर यंग जनरेशन और बुजुर्ग लोग भी जो फ्री रहते हैं। ये हमारी तकनीकी व्याकुलता बढ़ाता है जो कि एकाग्रता को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तनाव और चिंता हमारी मानसिक तनाव बढ़ाता है और नकारात्मक विचारों को भी बढ़ाता है जो कि हमारी एकाग्रता को कमजोर करता है। अनियमित दिनचर्या का भी हमारी एकाग्रता पे बहुत

0: भोजन करें, समय पर सोएं, पर्याप्त नींद लें, शारीरिक व्यायाम करें, इससे हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है। बीच में हम छोटी छोटी विश्राम की अवधि लें, जिससे कि मानसिक थकावट नहीं होती और हमारी एकाग्रता बढ़ती है। हमेशा सकारात्मक सोच रखना है। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से दृष्टिकोण में बदलाव होता है और व्यक्ति अपने कार्य पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इस चर्चा से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एकाग्रता जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक गुण है। यदि व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना, ध्यान केंद्रित करना सीख ले तो वह किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। अभ्यास, अनुशासन और सही जीवन शैली अपनाकर एकाग्रता को मजबूत किया जा सकता है, जिससे जीवन अधिक सार्थक और सफल बन सकता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी नए टॉपिक के साथ चिंतन के लिए। धन्यवाद, बने रहिए पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। खुश रहिए, खुशियां बांटें।
1: आशा करते हैं कि आज की ज्ञान चिंतन ने आपके मन में नई सोच और नए विचारों को जगा दिया होगा। अगले ज्ञान चिंतन में हम आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक बने रहें रेडियो पुनेरी आवाज पर। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
3: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। Lifestyle is not only about what we are eating, drinking, wearing. Lifestyle is about what we are thinking, speaking, behaving. That's my lifestyle.
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो।

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
1: नमस्कार, वेलकम टू एवरीथिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी वेलकम।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन।
2: थैंक यू।
1: आपने बड़ा डिफिकल्ट होमवर्क दे दिया मुझे।
2: डिफिकल्ट?
1: आपने बोल दिया मी एज अ कपड़ा।
2: द शर्ट दैट आई एम वेयरिंग इज आई।
1: आई, हाँ, तो मैं अपने आप को सोचू कि मैं ये हूँ।
2: हाँ।
1: तो मैंने सोचा जब मैं ये हूँ तो फिर मैं ये नहीं हूँ।
2: हाँ,
1: बॉडी नहीं,
2: वो नहीं हूँ, ठीक है, बट ये मैं हूँ। और अब मैं सारा दिन काम कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा?
1: तो ध्यान उधर ही रहेगा, मेरे भी कपड़ों पे, दूसरों के भी कपड़ों पे।
2: एक फर्स्ट चीज ये होगी कि ध्यान किस पर रहेगा? सिर्फ
1: कपड़ों,
2: मेरे
1: पे।
2: भी कपड़ों पे, दूसरों के भी कपड़ों पे। ठीक है, एक दूसरे के साथ अपना कंपैरिजन अगर हम करने लगेंगे कि कौन बेटर, यू नो हाउ वी टेंड टू डू, कौन बेटर, कौन हायर, कौन मोर ब्यूटिफुल, तो किस बेसिस पे करने लगेंगे?
1: मेरी शर्ट ज्यादा सफेद है।
2: वेरी ट्रू, क्योंकि हमने सोचा मैं शर्ट हूँ। अब अगर चलते चलते, खाना खाते हुए, कुछ करते हुए इस कपड़े पे कुछ गिर गया,
1: मैं मैला हो गया,
2: मैं मैला हो गया, फिर अगर किसी दरवाजे से, कीले से लटके ये फट गया, तो कौन फट गया?
1: मुझे चोट लग गई,
2: मैं फट गया। इज इट ट्रू?
1: इज इट ट्रू? मेरे कपड़े को लगी,
2: मेरे कपड़े को लगी और मैं फट गया, दोनों में फर्क? दोनों में फर्क। ये लगती कितनी छोटी बात है, लेकिन अगर इस तरह से हम जीवन जीने लगे तो सारा दिन हमारा ध्यान सिर्फ किस पर होगा? ये ड्रेस उस ड्रेस से बेटर होनी चाहिए। अगर ये ड्रेस पर दाग लग गया तो ये ड्रेस परफेक्ट कैसे हो जाए, और अगर ये ड्रेस फट गई तो हाय मैं फट गया, मेरा क्या होगा, ये जीवन कैसी जीवन होगी? अब इस ड्रेस के नीचे हमने एक और ड्रेस पहनी हुई है, वो है ये ड्रेस। जितना हमें ये डिफिकल्ट लग रहा था एक घंटे के लिए करना कि इस ड्रेस को मैं समझूं, उतना ही इजी और नेचुरल हमने इसको बना दिया है, इस ड्रेस को हमने मैं समझना शुरू कर दिया है। वो भी किसी दिन शुरू हुआ होगा।
1: हम शीशे में नहीं देख के कपड़े पहन के नहीं पूछते अपने वाइफ से, फ्रेंड से, मैं कैसे लग रहा हूँ,
2: हाउ एम आई लुकिंग टूडे, इज बेस्ड ऑन हाउ दिस बॉडी इज लुकिंग। क्योंकि आई थॉट बॉडी इज आई।
1: क्या?
2: अब अगर आपने मैं ड्रेस को समझ लिया होता, तो ड्रेस अगर ब्यूटीफुल होती तो मैं ब्यूटीफुल। शरीर को मैं समझ लिया तो शरीर अगर ब्यूटीफुल तो मैं ब्यूटीफुल। जब आपने कहा मैं ड्रेस हूं अगर, तो अपने को भी ड्रेस देखा तो दूसरे को भी ड्रेस देखा। तो मैं शरीर समझ लिया अगर, तो अपने को भी शरीर देखा, दूसरे को भी क्या देखा?
1: शरीर देखा।
2: कंपेयर किया तो किस बेसिस पर किया? शरीर के बेसिस पर ही किया। इस शरीर को कहीं थोड़ा सा कुछ हुआ तो हमने कहा मुझे हो गया, मेरा नाक परफेक्ट नहीं, मेरा दांत परफेक्ट नहीं, मैं समझने लग गया, क्योंकि आई वॉन्टेड टू बी परफेक्ट, सो आई स्टार्टेड मेकिंग माई बॉडी परफेक्ट।
1: तो इंस्टेड ऑफ सेइंग मेरा नाक, आई से मैं परफेक्ट नहीं हूँ,
2: मैं परफेक्ट नहीं हूँ,
1: मैं कितना खराब हूँ,
2: यस, मैं
1: कितना गोरा हूँ।
2: फिर चलते चलते इस शरीर को अगर कोई बीमारी हो गई, तो हमने ये नहीं कहा मेरे शरीर को ये बीमारी हुई है, हमने कहा मुझे ये बीमारी हो गई, मुझे है डायबिटीज, मुझे है कैंसर, मुझे है ये सब, मुझे नहीं था। ये दोनों चीजों में बहुत फर्क है। मुझे जो बीमारियां वो अलग है, और मेरे शरीर को जो बीमारियां वो अलग है, लेकिन मेरे शरीर को जो बीमारियां हुई, मैंने कहा मुझे ये हो गया, जो मैं नहीं है उसको मैं नहीं कहना, जो मेरा है उसको मेरा कहकर ही चलाना, उसको मैं नहीं समझना, क्योंकि उससे बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। अब देखो इस कॉन्शियसनेस शिफ्ट में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। आज एक फुल इंडस्ट्री है जो सिर्फ शरीर को परफेक्ट बनाने में लगी हुई है। फुल इंडस्ट्री है जो शरीर को ब्यूटिफाई करने में लगी हुई है।
1: सबसे ज्यादा बिजनेस वही कर रहे हैं,
2: शरीर को सुंदर,
1: नाक के, कान के।
2: क्यों? क्योंकि जो मैं हूं, मेरा संस्कार है ब्यूटी, मेरा संस्कार है परफेक्शन, लेकिन मैंने समझा मैं कौन हूं, ये शरीर, तो मैंने ब्यूटी और परफेक्शन किस में ढूंढनी शुरू कर दी? शरीर को ब्यूटीफुल और परफेक्ट बनाने में मेरी सारी अटेंशन चली गई। दोनों चीजों में फर्क था, तो मैंने ब्यूटी भी शरीर में ढूंढी, परफेक्शन भी शरीर में ढूंढी। बीमारी हुई तो मैंने कहा मैं बीमार हो गई, कंपैरिजन किया तो भी शरीर के बेसिस पे किया। इतना स्ट्रेस सारा दिन इस बात का है कि आई नीड टू लुक गुड। इट्स ट्रू, आई नीड टू लुक गुड, बट हु इज द आई हु नीड्स टू लुक गुड? आई नीड टू लुक गुड। वी स्टार्टेड सेइंग आई नीड टू लुक गुड। दोनों बातों में फर्क। एंड ये नहीं है कि शरीर ठीक नहीं चाहिए, हेल्दी नहीं चाहिए, चाहिए, लेकिन आई नीड टू लुक गुड जब इधर फोकस हो गया तो यहाँ आई जो था उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग गई। उसमें ईर्ष्या भी आने लग गई, उसमें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी आने लग गया, उसमें रिजेक्शन की फीलिंग भी आने लग गई। इस आई में ये सब होने लगा जब दिस वॉज नॉट लुकिंग गुड। इफ माई इंटेंशन इज दैट आई नीड टू लुक गुड, तो मेरा अटेंशन कहाँ पे होना चाहिए? आई नीड टू लुक गुड,
1: माई बिहेवियर शुड लुक गुड,
2: आई नीड टू लुक गुड, आई वॉन्ट टू बी ब्यूटिफुल, सो वेर डू आई वॉन्ट टू बी ब्यूटिफुल? आई वॉन्ट टू बी ब्यूटिफुल। आई,
1: व्हाट इज दिस आई?
2: आई, ये आई वो है जो इसको माय कहता है, ये मेरा शरीर है। वो कौन है जो सबको कह रहा है मेरा है, लेकिन खुद को भूलने के कारण अपनी परफेक्शन, अपनी ब्यूटी को हम अपने अंदर नहीं, अपनी जो चीजें हैं उनके अंदर ढूंढना शुरू कर दिया। बॉडी शुड बी परफेक्ट, माय रोल शुड बी परफेक्ट, माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई हैव टू डू परफेक्टली, इम्पोर्टेंट, बट फर्स्ट आई हैव टू बी परफेक्ट, देन एवरीथिंग एल्स परफेक्ट। बट इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एवरीथिंग एल्स परफेक्ट आई वेंट, बिकॉज मैंने आई पर ध्यान नहीं दिया। तो ये सब कुछ जो मेरा है, जिसको हम चलाते हैं, जिनको हम निभाते हैं, ये सबको चलाने वाली जो शक्ति है, जो एनर्जी है, उसको हम आई कहेंगे। वो एनर्जी कह रही है दिस इज माइन, दैट एनर्जी। आपने कहा ये आंखें, हम इन आंखों के द्वारा देखते हैं। आंखें दो लोगों की सेम हो सकती हैं, लेकिन उन आंखों के द्वारा देखना क्या है वो कौन डिसाइड करेगा?
1: आई,
2: आई। आपकी और मेरी आंखें दिखने में सेम है, लेकिन इस पूरे गार्डन में आप अपनी आंखों के द्वारा क्या देखते हैं और मैं अपनी आंखों के द्वारा क्या देखना चूज करती हूँ, डिफरेंट,
1: अपना परसेप्शन अलग अलग है।
2: तो वो ये आंखों को यूज करते हुए हम क्या देखेंगे? तो ये आंखें मेरा इंस्ट्रूमेंट है।
1: थ्रू दीज आईज आई सी। जैसे मैं अपनी गाड़ी में बैठ के यहाँ से वहां तक ट्रेवल करता हूँ,
2: सो थ्रू दीज आईज आई सी, थ्रू दिस माउथ आई स्पीक। मुख नहीं बोल रहा, मुख के द्वारा बुलवाने वाली वो शक्ति कौन है जो चूज करती है मीठा बोलना है, प्यारा बोलना है, कड़वा बोलना है? वो कौन है? ये मुख अपने आप तो नहीं बोलता। कान सुन रहे हैं, लेकिन कान के द्वारा सुनना क्या है? किसी की महिमा सुननी है या किसी की ग्लानि सुननी है? ये हाथ है, आपका मेरा हाथ दिखने में एक जैसा है, लेकिन इस हाथ के द्वारा किसी को आशीर्वाद देना है या किसी को थप्पड़ मारना है, वो कौन डिसाइड करेगा?
1: I
2: who is using this body, I who is operating through this body, I who is playing all my roles and responsibilities through this body. इस हाथ में एक चाकू लिया, ठीक है, उस चाकू से हम सब्जी भी काट सकते हैं, उस चाकू से हम किसी को मार भी सकते हैं। चाकू की responsibility? Is it the knife which will decide?
1: No, it's my choice.
2: Is it the hand which will decide?
1: No.
2: Then who will decide?
1: I will decide.
2: I. We're very clear ke chaku instrument hai. Haath kya hai?
1: Haath bhi is mera instrument hi samajh sakta hun.
2: Mera instrument bhi samajh sakta hun? Nahi, hai instrument.
1: Ha.
2: Hai instrument.
1: Ha.
2: Jaise wo chaku instrument tha, uske paas decision making power nahi thi ke kya karna hai. ये हाथ के पास भी डिसीशन मेकिंग पावर नहीं है क्या करना है, ये भी इंस्ट्रूमेंट है। इस हाथ के द्वारा मुझे क्या करना है? आई। तो सिमिलरली ये पूरा शरीर भी मेरा क्या है फिर?
1: फिर वो गलती से हाथ उठ गया, गलती से मुंह खुल गया, गलती से टंग जबान फिसल गई, ये सब बातें क्या रॉन्ग है सब?
2: आए गलती से यहाँ हुई, हाथ के द्वारा किया,
1: तो मेरी गलती है,
2: मेरी हाथ की थोड़ी है। तो ये पूरा शरीर मेरा इंस्ट्रूमेंट है ना, अगर ये हाथ इंस्ट्रूमेंट है, आपने कहा वी लुक थ्रू आर आईज,
1: ये है अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज,
2: दिस इज द अटैचमेंट टू द फर्स्ट रॉन्ग इमेज,
1: बॉडी
2: बॉडी,
1: एंड व्हाट इज द,
2: क्योंकि ये फर्स्ट चीज थी जो हमने अक्वायर की,
1: एंड व्हाट इज द सेकंड रॉन्ग,
2: सेकंड विल बी रिलेशनशिप, क्योंकि वो सेकंड चीज थी जो हमने अक्वायर की, थर्ड थी हमारी पोजिशंस, डेजिग्नेशंस, नॉलेज, क्योंकि वो थर्ड चीज थी,
1: सेकंड कैन नॉट बी एक्वायर्ड, सेकंड तो आप मां के पेट से निकले, पैदा हुए,
2: मां के रिश्ता अक्वायर किया ना आप अपने जीवन की यात्रा में, कितने सारे रिश्ते अक्वायर करते हैं,
1: इट इज बाय बर्थ ना,
2: सबसे पहली चीज आपको क्या मिली, ये शरीर मिला,
1: फिर माँ, फिर बाप,
2: फिर पेरेंट्स मिले, फिर भाई बहन मिले,
1: दोस्त, टीचर्स,
2: फिर फ्रेंड्स, फिर टीचर्स, फिर स्पाउस, फिर चिल्ड्रन, ये सब रिश्ते अक्वायर किए ना इस पूरी जीवन की यात्रा में,
1: अक्वायर भी किए फिर छूट भी जाने,
2: दिस रियलाइजेशन, अक्वायर भी किया छूट भी जाना है,
1: वो जॉब जो है जो जनरल था आर्मी का वो भी छूटेगा, प्राइम मिनिस्टर का भी छूटेगा, एक्टर का भी टाइम खत्म हो जाएगा, मतलब और बॉडी का भी, इस बॉडी का भी,
2: दिस इज इट, इसका मतलब सब कुछ जो अक्वायर किया,
1: जो सब कुछ जो है वो मतलब टेम्पररी है,
2: सब कुछ जो अक्वायर किया वो टेम्पररी है,
1: एक्वायर किया
2: सब कुछ,
1: बॉडी को हम एक्वायर किया कह सकते हैं,
2: बॉडी को ही सबसे पहले अक्वायर किया, सब कुछ जो मेरा है,
1: जो मिली, समझो जो मिली और मेरा है,
2: मिली है जो मिली है, जो
1: ब्यूटीफुल लाइन थी सिस्टर, आज मेरे समझ में आ रही है, मेरे गुरु के गुरु कहते थे, मेरे तब समझ में नहीं आई थी, उन्होंने इंग्लिश में लिखा था, एवरीथिंग इज फॉर मी, नथिंग इज माइन, सब कुछ मेरे लिए है, मेरा नहीं,
2: मेरे लिए है, मतलब
1: उसको ऐसे समझो कि आज ये कुर्सी जो भी है, आज जिस गद्दी पे प्राइम मिनिस्टर बन के मैं बैठा हूँ, आज ये मेरे लिए, इवन दिस चेयर,
2: इवन दिस,
1: इवन द शर्ट टुडे,
2: शर्ट तो मेरे लिए, बट इवन दिस,
1: हाँ
2: ये मेरे लिए,
1: इसके बाद यहाँ आ रहा हूँ मैं, कुर्सी, फिर शर्ट, फिर ये बॉडी, मेरे लिए है,
2: मेरे लिए,
1: मेरे नहीं,
2: मेरे लिए, ये लाइन
1: यहाँ अटैचमेंट हटाने के लिए,
2: ये मेरी नहीं, ये मेरे लिए है, तो फॉर मी करके जब हम उसको यूज
1: तो
2: करें, डिटैच हो गया, और डिटैच होके बहुत अच्छे से यूज करेंगे, डिटैच होंगे तो इसको बहुत अच्छे से यूज करेंगे,
1: देखिए आपकी बातों से
2: माइंड कहकर
1: शास्त्र क्लियर हो रहे हैं, जब है। मुझे समझ में नहीं आया था, जब अष्टावक्र ने ज्ञान दिया था अपने राजा जनक को, उनको इतना ज्ञान मिला तो बोले मैं तो जा रहा हूँ जंगल, अब क्या मैं राजा की गद्दी पे बैठा, नहीं बोले अब मैं, अब ज्ञान रख के मेरे लिए समझ के अब तुम गद्दी पे बैठो,
2: मीन्स ट्रस्टी होकर,
1: हाँ ट्रस्टी होकर,
2: ट्रस्टी होकर उस सब चीज को यूज करना है। स्पिरिचुअलिटी क्या सिखाती है? डिटैचमेंट। डिटैचमेंट से हम एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं कि डिटैचमेंट मतलब जैसे कि हमारा किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा, हम एक बहुत
1: बैराग,
2: डिटैचमेंट मीन्स हम उन चीजों से डिटैच होंगे, जब ट्रस्टी होकर उनको यूज करेंगे तब हम उन चीजों को, वो चीज मतलब शरीर हो सकती है, वो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, हम उसको बहुत एक्यूरेटली और बहुत प्यार से निभाएंगे, लेकिन मेरा है तो कैसे भी यूज करते हैं उसको।
1: तो यहाँ तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपसे, ये तो मुक्ति भी होगी।
2: हाँ देखो,
1: एक जैसे अब डिटैच हो गए तो मुक्त हो गए,
2: डिटैच हो गए तो अटैचमेंट से सबसे पहले मुक्त हो गए।
1: बस
2: हम क्या कहते हैं परमात्मा को, ये तन मन धन सब कुछ तेरा है, गाते हैं ना सुबह खड़े होकर, ये तन मन धन सब कुछ तेरा है। अब ये सुबह हमने कह दिया कि ये तन मन धन सब कुछ तेरा है, क्या सारा दिन में हम उस लाइन को जीते हैं?
1: नहीं,
2: सिर्फ एक घंटे के लिए कॉन्शियसनेस शिफ्ट कि ये तन मन धन सब कुछ तेरा है, अब इसको यूज करें पूरा दिन।
1: तो जैसे बैंक का मैनेजर है,
2: हाँ,
1: वो बोलता है धन उसका है, ये भाई ये तेरे पास बुक ले जा, तू ये लेके जा, तू ये कर ले, मतलब ही जस्ट सिटिंग देयर, सबका सब कुछ दे रहा है।
2: ये क्यों हमें सिखाया गया कि रोज सुबह बोलो ये तन मन धन सब कुछ तेरा है?
1: क्यों?
2: तूने दिया, तुझको अर्पण, ये सब कुछ तेरा है। क्यों सिखाया गया? ताकि हम इन तीनों चीजों को, फिर ये तीनों भी तो शक्तियां है ना, तन मन धन की जो शक्ति है, हम इन तीनों चीजों को सारा दिन में फिर कितने ब्यूटीफुली और एक्यूरेटली यूज करेंगे। और किसकी अमानत?
1: घर में किसी का बच्चा भी कुछ दिन रहने के लिए आता है या बेटी, तो बोलते हैं संभाल के रखना ध्यान से, यहाँ कुछ गड़बड़ ना हो जाए हमारे घर में, अच्छी तरह जैसे आई वैसे वापस भेजना।
2: बच्चा क्यों? अगर कोई अपना कोई पेट डॉग भी आपके घर छोड़ के चला जाए कि मैं एक दिन बाहर जा रहा हूँ, ये आप संभालना, ट्रस्टी होकर संभालेंगे। किसी की कार चलानी होगी, किसी और की कार है, ट्रस्टी होकर संभालेंगे। एक दिन ये थॉट क्रिएट करें, ये शरीर उसका है, उसने दिया है, मुझे इसको अब सारा दिन यूज करना है, तो इस शरीर को कैसे यूज करेंगे?
1: दूसरे की अमानत,
2: इसमें क्या डालेंगे क्या नहीं डालेंगे?
1: जो मंदिर में खिलाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, वो यहाँ भी लगाएंगे।
2: हम बाकी सब चीजों का इतना ध्यान रखते हैं, फिर इसका क्यों नहीं रखेंगे?
1: शर्ट का रखते हैं। ये बहुत महंगी है, महंगा कपड़ा है, देखो स्त्री कितनी डिग्री पे है, पहले दूसरे कपड़े पे स्त्री करके देखते हैं कि जल तो नहीं रहा, ठीक है।
2: और इस शरीर में क्या कुछ डाल देते हैं, अंदर जाके वो क्या क्या कर रहा है
1: शरीर में, थॉट्स में, ब्रेन में, माइंड में,
2: तन मन धन
1: सब में।
2: अब ये सब कुछ जो हमें मिला है यूज करने के लिए, जो मेरा है, अगर हमारा इससे अटैचमेंट हो जाता है, पहले तो रॉन्ग इमेज एंड देन अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज, तो क्या रिजल्ट होगी? सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये मुझे मिला है यूज करने के लिए, ठीक है। अब मैंने इसको पकड़ा ऐसे, जब मैंने इसको ऐसे पकड़ा, मुझे मालूम है ना ये एक दिन गिरेगा। फॉर हाउ लॉन्ग कैन आई होल्ड इट लाइक दिस?
1: जब तक उसकी लाइफ है, जब तक उसकी बैटरी है, जब तक वो,
2: ये एक दिन गिरेगा, राइट? ये कुछ घंटे बाद गिर सकता है, ये कुछ दिन बाद गिर सकता है, आई डोंट नो, लेकिन ये नॉलेज है कि ये एक दिन
1: गिरेगा जरूर,
2: ये सर्टेन है,
1: सर्टेन है, 100%
2: नॉलेज है। जैसे आपने कहा गिरना सर्टेन है, लेकिन फिर भी पकड़ा ऐसे कि गिरना नहीं चाहिए। फाइनली एक दिन ये गिरा, लेट्स से ये 10वें दिन गिरा, 10 days आई वॉज एबल टू होल्ड इट वेरी टाइट, तो 10th day दिस फॉल्स, 10वें दिन ये गिरा, 10th day आई विल फील बैड कि मेरी ये चीज चली गई, गुम गई, टूट गई, व्हाटएवर, 10th day। क्वेश्चन इज 10 दिन कैसे बीते?
1: टेंशन में।
2: क्यों टेंशन में?
1: क्योंकि पकड़ के रखो, ध्यान रखो, संभाल के रखो, और फिक्र है कि टूटे ना, गिरे ना, खत्म ना हो जाए।
2: तो मतलब 10 दिन भी उसको एंजॉय करने की बजाय
1: हाथ से छूटे ना,
2: ये फियर है, हाथ से छूटे ना, स्ट्रेस है। अब अगर कोई आया और किसने इसकी तरफ देखा भी, तो मैंने उसको भी डांट देना है, कहीं मेरी चीज ही ना ले जाइए मेरे हाथ से। ये हमारा जीवन है, इस जीवन में हर चीज मिली थी यूज करने के लिए। आपने कहा एवरीथिंग इज फॉर मी, शरीर मिला यूज करने के लिए, रिश्ते मिले एंजॉय करने के लिए, रिलेशनशिप्स, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के लिए, लेकिन सब कुछ जो मिला,
1: एक चीज आप भूल गए, पैसे मिले
2: यूज करने के लिए
1: उसको,
2: इसको कुछ ना हो जाए,
1: प्रॉब्लम
2: नहीं है, इसको कुछ ना हो जाए तो
1: रोज
2: कुछ...
1: पूजा भी करते लोग, मेरे फैक्ट्री में आग ना लग जाए, ना खत्म ना हो जाए, लॉस ना हो जाए,
2: केयर एंड कंसर्न बट नॉट वरी। अगर ऐसे पकड़ा, तो आपने कहा 10 दिन भी टेंशन में बीते। सपोज ये शरीर मुझे मिला है 80 साल के लिए, ठीक है, सपोज दैट्स माय डेस्टिनी, 80 इयर्स ये शरीर मिला, रोल मिले, रिश्ते मिले, 80 इयर्स मिला था, जिसमें आपने कहा ये सब चीजें मिलती भी हैं और साथ साथ यात्रा में कुछ कुछ चीजें जाती भी। इस यात्रा के स्टार्टिंग से हमें नॉलेज है कि एक दिन ये सारी चीजें जानी है, इवन दिस बॉडी, ये भी जाना है, पर ये 80 इयर्स के बाद जाना है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये 80 इयर्स बाद जाना है। मैंने अपने जीवन का हर दिन ये सारी चीजें, चाहे वो शरीर, चाहे वो रिश्ते, चाहे वो रोल, चाहे वो कुर्सी पोजीशन, सबको ऐसे पकड़ा कि ये ना चला जाए। तो वो जो पूरा जीवन था उसको एंजॉय करने के बजाय, उसको ट्रस्टी होकर यूज करके निभाने के बजाय, मैंने फियर, वरी, एंजाइटी और स्ट्रेस में क्रिएट कर दिया, बिकॉज आई थॉट ये सब कुछ आए है, ये ना चला जाए। ये आए है, आपने कहा डेजिग्नेशन मिलती है। आज डेजिग्नेशन छूटने के बाद भी हम अपनी डेजिग्नेशन को पकड़ के रखते हैं।
1: सही बात है, लोग करते हैं।
2: विजिटिंग कार्ड पे लिखा होता है छोटा सा
1: एक्सेलेंस,
2: नेम प्लेट जो घर की होती है उस पर लिखा होता है छोटा सा रिटायर्ड सो एंड सो। पोजीशन थी चली गई, क्यों पकड़ के रखा हुआ है उसको? बिकॉज दैट वाज आई, इफ दैट इज नॉट आई देन हु एम आई? दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी क्राइसिस।
1: मैं फलाने बैंक में एक बार उसके बोर्ड पे था, एक्स मेंबर ऑफ दिस एक्स,
2: क्योंकि वो पोजीशंस जो अक्वायर की उसको ही अपनी आइडेंटिटी बना लिया।
1: मुझे मेरे अंकल बोलते थे, अरे आप आए नहीं, मेरा देखा नहीं रो आप, क्या जब सुबह बैंड बजा के मुझे सिपाही उठाते थे सैल्यूट, उसकी वाइफ भी लग जाती थी साथ में, अरे आंटी भी, अरे तो अनु की पता सुरेश जी चाय के कप क्या स्टाइल में आती थी, क्या झंडे क्या लोग।
2: तो हम उसी दर्द में है हम अभी तक, क्योंकि वो पोजीशन वो आइडेंटिटी चली गई है। तो ये जो सारी चीजें हमने अक्वायर की, हमें मालूम थी छूट जाएंगे, शरीर भी जाना ये भी मालूम है, लेकिन सब चीजों को ऐसे पकड़ा, स्ट्रेस में जी रहे हैं, फियर में जी रहे हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सबको यूज करने वाली शक्ति मैं हूं, वो मैं को भूल गए हैं, और ये सब जो मेरा है उसको मैं समझ लिया, और इन सारी चीजों में ही मैं अपनी ब्यूटी, मैं अपनी परफेक्शन, इन सब खुशी सुख इन सब चीजों में ढूंढने लग गई, क्योंकि मैं जो हूं वो मैं भूल गई कि मैं कौन हूं। ईगो, अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ, ये ईगो से जीने से वन कॉन्शियसनेस बिलीफ, रॉन्ग बिलीफ, डेस्टिनी बदल जाएगी। हु एम आई, कॉन्शियसनेस शिफ्ट। अब वो जो आई जो है वो अंदर है, और ये लेयर लेयर लेयर लेयर लेयर, इतनी लेयर्स जब बन जाती हैं तो वो आई भूल जाता है। जैसे अगर किसी को याददाश्त चली जाए, उसको भूल जाए मैं कौन हूं, जीवन कैसे हो जाएगी? लॉस्ट, कंफ्यूज्ड, पेन, इन फियर। इसको भी हम कहेंगे स्पिरिचुअल एमनेशिया। आई हैव फॉरगॉटन हु आई एम, आई हैव फॉरगॉटन हु यू आर, आई हैव फॉरगॉटन व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, आई हैव फॉरगॉटन व्हाई आई एम हियर, आई हैव फॉरगॉटन। एंड दैट्स व्हाई आज सब कुछ प्राप्त हो गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन हम फिर भी कहते हैं पता नहीं क्यों मैं खाली खाली क्यों हूं। तो इज आई फॉरगॉटन के वो मैं ही कौन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आज हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं सारा दिन, एक एक जो अपने ऊपर लगा लेबल है,
1: वो बारी नाम बारी का लेबल,
2: नाम का लेबल सबसे पहले लगा था, शरीर के बाद सबसे पहले नाम मिला, फिर रिश्ते मिले, पोजीशन, एक एक लेबल को हटाएं। लेबल छूट नहीं रहा, जा नहीं रहा कहीं, लेकिन डिस आइडेंटिफाई करें उसके साथ, ये मैं नहीं, ये मेरा लेबल है। एक एक लेबल को, जैसे परत होती है ना, एक एक परत को, एक एक परत को, एक एक परत को हटाते जाएं, टिल वी रीच आई, एंड देन वी विल यूज ऑल दीज लेबल्स। वो सब कुछ हम यूज करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट विद द अंडरस्टैंडिंग, ये आए, ये सारे मेरे लेबल्स, अब इनको मुझे निभाना है, करना है, लेकिन अटेंशन फिर आए पर आ जाएगा। तो जस्ट सिट बैक टू मिनट्स एंड ट्राई राइट नाउ, अभी देखते हैं अपने आप को कि एक एक चीज, क्योंकि हर एक ने अलग अलग चीजें अक्वायर की है जीवन में, लेकिन एक एक चीज को देखते हुए अपने आप को चेक करते हैं, इस जीवन की यात्रा में एक एक चीज जो अक्वायर की है उसको देखते हैं, सबसे पहले शरीर मिला, just sit back and look at your body. Feel, this body is mine. मेरा शरीर, मैं इसको चलाने वाली शक्ति, मैं इसको यूज करने वाली एनर्जी, ये शरीर मैंने पहना हुआ है, ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है। I the being, I am separate from this body. Feel the difference. इस हाथ को, आंखों को मैं यूज करते हूं। रिश्ते मेरे हैं, परिवार मेरा है, पोजीशन मेरी है, प्रॉपर्टी मेरी है, मैं, ये सब कुछ जो मेरा है, आज है, कल नहीं। मैं कौन हूं इनको यूज करने वाला? लेट मी फील द आई, लेट मी लुक एट द आई, लेट मी अंडरस्टैंड दैट आई। ओम शांति।
1: ओम शांति। थैंक यू सो मच।
2: ओम शांति।
3: This body is mine, but we are living with the consciousness that this body is I. We like beauty and perfection, which is our true nature. So, we started looking for beauty and perfection in the body. This sometimes caused I, the soul, to feel inferior, imperfect, rejected, and I, the soul, shifted from true beauty and perfection. When the body gets diseased, we believe that I have this disease. I, the soul, do not have the illness, and neither does I, the soul, ever die. The body dies. I, the soul, am eternal and imperishable. Believing that we are this body made us live in the fear of death. The body is our instrument which we use. We see through the eyes, speak through the mouth. Eyes and mouth are the instrument through which I, the soul, choose what to do. We get attached to everything we acquire. Where there is attachment, there will be fear of losing. Even though we know that eventually we will lose all that we have, including our body, we spend our life holding on to it with stress, hoping we never lose our body, family, position or property.
4: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999 559 660.

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होके बात कर ही लेनी है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरस्व, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूं विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो ऐसे गुस्सा करना ही है। कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: गांव की मिट्टी हो या शहर की गलियां, हम सब के दिल में भारत है। उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, हर संस्कृति, हर भाषा, हर मन में भारत है। तिरंगे के रंगों से निकलते हैं तीन रंग, पर हर प्रदेश के अलग और अनोखे रंग इसी तिरंगे में समाए हैं। उन्हीं में से एक है समुद्र की ठंडक और सुंदर प्रकृति के दृश्य लिए भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। चलिए जानते हैं गोवा को करीब से। पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो। गोवा भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम तट पर स्थित है। गोवा राज्य उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व व दक्षिण में कर्नाटक और पश्चिम में अरब सागर से घिरा है। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा का क्षेत्रफल 3,702 किलोमीटर वर्ग है। ये समुद्र तट की ओर एक द्वीप युक्त शहर है, जो मुंबई से 400 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में मुख्य भूमि में स्थित है। गोवा क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के हिसाब से दूसरा सबसे छोटा राज्य है। पूरी दुनिया में गोवा अपने खूबसूरत समुद्र के किनारों और मशहूर स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। इसके उत्तर में तेरेखोल नदी बहती है, जो गोवा को महाराष्ट्र से अलग करती है। इसके दक्षिण में कर्नाटक का उत्तर कन्नड़ जिला, पूर्व में पश्चिम घाट और पश्चिम में अरब सागर है। पणजी, मडगांव, बास्को, मापुसा तथा पोंडा यहाँ के प्रमुख शहर हैं।

चलिए अब चलते हैं जानने गोवा के इतिहास को। गोवा प्राचीन काल में गोमांचल, गोपकट्टनम, गोपपुरी और गोमांतक आदि कई नामों से विख्यात रहा है। इस प्रदेश की लंबी ऐतिहासिक परंपरा रही है। गोवा पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित भूतपूर्व पुर्तगाली बस्ती था, जो 1961 से भारत का अभिन्न अंग बन गया। गोवा का प्राचीन हिंदू शहर, जिसके अवशेष का एक अंश ही बचा हुआ है, उसका निर्माण द्वीप के सुदूर दक्षिण बिंदु पर हुआ था और ये आरंभिक हिंदू दंत कथाओं और इतिहास में प्रसिद्ध था। पुराणों और अभिलेखों में इसका नाम गोवे, गोवपुरी व गोमत के रूप में आता है। मध्यकालीन अरबी भूगोलविद इसे सीतांबूर या संदाबूर के नाम से और पुर्तगाली बेल गोवा के नाम से जानते हैं। दूसरी शताब्दी से 1312 तक गोवा पर कदंब वंश और 1312 से 1367 तक दक्कन के मुस्लिम आक्रमणकारियों का शासन रहा। इसके बाद गोवा पर विजयनगर के हिंदू साम्राज्य का कब्जा हो गया और बाद में बहमानी वंश ने गोवा को जीत लिया, जिन्होंने 1440 में पुराने गोवा की स्थापना की। 1482 के बाद बहमानी राज्य के विभाजन के बाद गोवा बीजपुर के मुस्लिम शासक यूसुफ आदिल खां के अधीन आ गया, जो पुर्तगालियों के भारत आगमन के समय इसके शासक थे। इस शहर पर मार्च 1510 में अल्फांसो द अल्बुकर्क के नेतृत्व में पुर्तगालियों का आक्रमण हुआ। गोवा बिना किसी संघर्ष के पुर्तगालियों के कब्जे में आ गया और अल्फांसो ने एक विजेता की तरह इस शहर में प्रवेश किया। 3 महीने के बाद यूसुफ आदिल खां 60,000 की सेना लेकर वापस लौटे और बंदरगाह के मार्ग पर कब्जा कर लिया और पुर्तगालियों को मई से अगस्त तक अपने जहाजों पर रुकने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद ही मॉनसून की समाप्ति के कारण वे वापस समुद्र में पहुंच सके। नवंबर में अल्फांसो ज्यादा बड़ी सेना के साथ लौटे और उन्होंने शहर पर पुनः कब्जा कर लिया। गोवा पुर्तगालियों का एशिया में पहला क्षेत्रीय कब्जा था। अल्फांसो और उनके उत्तर अधिकारियों ने द्वीप के 30 ग्रामीण समुदाय के संविधान रीति रिवाजों में लगभग सती प्रथा के अलावा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। वहां सती प्रथा को उन्होंने समाप्त कर दिया। गोवा पूर्व दिशा में समूचे पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बन गया। इसे लिस्बन के समान नागरिक अधिकार दिए गए और 1575 से 1600 के बीच ये उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा। इसके बाद भारतीय सेना में डच आगमन के साथ गोवा का पतन होने लगा। 1603 और 1639 में डच बेड़े के द्वारा घेर लिया गया, हालांकि इस पर कभी कब्जा नहीं हो सका और 1635 में एक महामारी के कारण तबाह हो गया। 1683 में मुगल सेना ने इसे मराठा आक्रमणकारियों के कब्जे में जाने से बचाया और 1739 में पूरे क्षेत्र पर इन्हीं आक्रमणकारियों का हमला हुआ और नए वाइसरॉय के बेड़े के अनुपेक्षित आगमन के कारण ही बच सका। प्रशासन के मुख्यालय को पहले मर्मगांव और फिर 1759 में पंजिम, जो अब पणजी है, ले जाया गया। गोवा में स्थानीय निवासियों के पुराने गोवा से नए गोवा के प्रवास का मुख्य कारण हैजा नामक महामारी थी। 19वीं सदी में नेपोलियन के पुर्तगाल पर कब्जा के कारण 1809 में अंग्रेजों का अस्थाई अधिकार कांडे डी टोरस नोवास का गवर्नर काल 1855 से 1864, जिन्होंने कई सुधारों की शुरुआत की और शताब्दी के दूसरे अध्वेश में हुए सैनिक विद्रोह जैसी घटनाओं ने यहाँ की बस्तियों को प्रभावित किया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण 3 दिसंबर 1895 में हुआ विद्रोह है, जिसने पुर्तगाल को एक अभियान दल भेजने पर मजबूर कर दिया। इस अभियान दल के साथ अल्फांसो हेनरिक्स जूको डी ओपार्टो ने मार्च से मई 1896 में गवर्नर के अधिकारों का प्रयोग किया। 1948 और 1939 में भारत के गोवा पर दावे के बाद पुर्तगाल पर गोवा और इस उपमहाद्वीप में उसके अन्य संपत्तियों को छोड़ने का दबाव बढ़ता गया। 1954 के मध्य में गोवा के राष्ट्रवादियों ने दादरा
तथा नगर हवेली की बस्तियों पर कब्जा कर लिया और भारत समर्थक प्रशासन की स्थापना की। एक अन्य संकट की घड़ी तब आई जब भारत के सत्याग्रहियों अर्थात अहिंसक प्रदर्शनकारियों ने गोवा में घुसने का प्रयास किया। पहले तो सत्याग्रहियों को वापस भेज दिया गया, लेकिन बाद में जब बहुत ज्यादा संख्या में लोगों ने सीमा पार करने का प्रयत्न किया तो पुर्तगाली अधिकारियों को बल का प्रयोग करना पड़ा और उस समय कई मौतें हुईं। इससे 18 अगस्त 1955 को पुर्तगाल और भारत के बीच राजनीतिक संबंध टूट गए। भारत और पुर्तगाल के बीच तनाव 18 सितंबर 1961 को अपने चरम पर पहुंचा और नौसेना एवं वायुसेना की मदद से भारतीय सेना ने गोवा, दमन और दीप पर कब्जा कर लिया। 1962 में संविधान संशोधन द्वारा पुर्तगाली भारत को भारतीय गणराज्य में शामिल कर लिया गया।

आइए अब देखते हैं गोवा को एक भूगोलिक नजर से। 105 किलोमीटर समुद्र तट वाले गोवा में रेतीले तट, मुहाने व अंतरीप हैं। इसके भीतरी हिस्से में निचले पठार और लगभग 1220 मीटर ऊंचे पश्चिमी घाटों का एक हिस्सा है। गोवा की दो प्रमुख नदियां मांडोवी व जुआरी के मुहाने में गोवा का द्वीप स्थित है। इस त्रिकोणीय द्वीप का शीर्ष अंतरीप एक चट्टानी मुहान है, जिस पर दो लंगरगाह हैं। यहाँ पर तीन शहर मर्मगांव, मडगांव और पणजी हैं। पुराने गोवा शहर का ज्यादातर हिस्सा अब ध्वस्त हो चुका है, लेकिन गोवा के शेष भारत में विलय के बाद से ही इसकी अच्छी देखरेख की जाती रही है। पुराने गोवा का ही एक उपनगर पणजी भी मांडोवी के बाएं तट पर स्थित है। ये एक सुनियोजित शहर है और भव्य चर्चों, मुख्य पादरी के महल, सचिवालय, बाजार और कोंकण रेल मार्ग पर स्थित रेलवे स्टेशन से लगे एक विशाल बस अड्डे से युक्त है। पुराने गोवा में बाम जीसस का विशाल गिरजाघर, जो 16वीं सदी में निर्मित हुआ था, और एक विश्व स्मारक स्थित है, जिसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेष सुरक्षित रखे गए हैं। यहाँ पर 16वीं शताब्दी में स्थापित धर्मपीठ भी हैं। अब जानते हैं भारत के प्रमुख क्षेत्र यानी कृषि के बारे में। गोवा के कृषि उत्पादों में मुख्य खाद्य फसल चावल है। इसके अतिरिक्त दालें, रागी और अन्य खाद्य फसलें भी उगाई जाती हैं। नारियल, काजू, सुपारी तथा गन्ने जैसी नकदी फसलों के साथ साथ यहाँ अनानास, आम और केला भी होता है। ये फसलें गोवा के जीवन व जीविका के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। सौगान, बांस और काजू यहाँ के महत्वपूर्ण आर्थिक उत्पाद हैं। गोवा में मत्स्याकी का एक प्रमुख स्थान है, क्योंकि गोवा की 90% जनसंख्या मत्स्य उद्योग में लगी है। 1,00,000 लोग लगभग मत्स्य उद्योग में कार्यरत हैं। चलिए अब आपको ले चलते हैं एक अनूठी संस्कृति से अवगत कराने, यानी कि गोवा की संस्कृति। सुरभ्य सागर तट पर बसा गोवा अपनी प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। आजादी से पहले ये पुर्तगीज व फ्रांसीसियों का उपनिवेश रह चुका है। इस वजह से आज भी यहाँ का रहन सहन, भाषा व खान पान पर पश्चिमी संस्कृति का पूरा प्रभाव दिखाई देता है। 1542 में यहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर का आगमन हुआ। उन्होंने यहाँ रहकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। गोवा में 80% लोग ईसाई हैं। गोवा में समुद्री भोजन लोकप्रिय है। यहाँ मछली से बने व्यंजन प्रसिद्ध हैं। गोवा में व्यापक रूप से नारियल और नारियल तेल, मिर्च, मसाले, खाद्य सिरका के साथ खाना पकाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। मिठाई के रूप में यहाँ मिठाइयों के बजाय ज्यादातर चॉकलेट, केक, पेस्ट्री जैसे यूरोपीय व्यंजन प्रचलित हैं। भारत में जहाँ क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल है, वहीं गोवा का सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। गोवा में कई लोकप्रिय फुटबॉल क्लब भी स्थित हैं। फुटबॉल के अलावा गोवा के बहुत से खिलाड़ी हॉकी में भी दिलचस्पी रखते हैं। बात करें भाषा की, तो गोवा की मुख्य भाषाएं कोंकणी और मराठी है। कोंकणी गोवा की राजभाषा है। गोवा में सबसे ज्यादा कोंकणी ही बोली जाती है। कोंकणी गोवा महाराष्ट्र के दक्षिण भाग, कर्नाटक के उत्तरी भाग, केरल के कुछ क्षेत्रों में भी बोली जाती है। भाषाई तौर पर ये आर्य भाषा परिवार से संबंधित है और मराठी से इसका काफी निकट संबंध है। इसके अलावा यहाँ मराठी, कन्नड़, उर्दू और हिंदी भी बोली जाती है। गोवा के कुछ पारंपरिक नृत्य हैं देखनी, पुगड़ी, पूरी दिनों और दशावतारा तथा मांडू और दुलपोत यहाँ के लोकप्रिय संगीत शैली हैं।

गोवा एक छोटा राज्य जरूर है, पर यहाँ देशी और विदेशी पर्यटकों का आना जाना बहुत संख्या में होता है। तो चलिए आपको भ्रमण करवाते हैं सुंदर गोवा का। गोवा को पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। गोवा की मनमोहक सुंदरता और गोवा के मंदिरों, गिरजाघरों और पुराने निवास संस्थान की वास्तुकलात्मक भव्यता गोवा को दुनिया भर में आने वाले पर्यटकों का एक आकर्षक केंद्र बनाती है। गोवा की प्राकृतिक सुंदरता के अलावा यहाँ के प्रसिद्ध तट और सूर्य की धूप पर्यटकों को गोवा की ओर खींचती है। यहाँ का शांति प्रिय वातावरण, अतिथि सत्कार, दोस्ताना व्यवहार के कारण लोग अधिक आकर्षित होते हैं। गोवा में इतने अधिक समुद्र तट हैं कि पर्यटकों को गोवा के सभी तटों को देखने में एक महीने से भी अधिक वक्त लग जाता है। गोवा के इन समुद्र तटों पर आप समुद्र की लहरों पर वाटर सर्फिंग, पैरासेलिंग, वाटर स्कीइंग, स्कूबा डाइविंग और वाटर स्कूटर आदि का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ के कुछ प्रमुख तट हैं: अंगूठा तट, अरम्बोल तट, अंजुना तट, बागा तट, बोगमोला तट, कोलवा तट आदि। देखने के लिए यहाँ वन्य जीवन अभयारण्य भी हैं, जैसे कि सलीम अली पक्षी अभयारण्य, भगवान महावीर वन्य जीवन अभयारण्य और अन्य। अगर आप धार्मिक स्थल जाना चाहते हैं तो गोवा में आपके लिए बहुत कुछ है, जैसे कि मंगेश संस्थान मंदिर, महालसा देवी मंदिर, नागेश मंदिर, शांता दुर्ग मंदिर जो कि एक बहुत ही भव्य और प्राचीन मंदिर है। इसके अतिरिक्त यहाँ श्री मल्लिका अर्जुन मंदिर, दामोदर मंदिर आदि भी स्थित हैं। गोवा के किलों का भी बहुत महत्व है। यहाँ भागवत का किला है जो पुर्तगालियों ने शत्रुओं से रक्षा अर्थ वारदेज तालुका में मांडोवी नदी जहाँ समुद्र से संगम बनाती है वहाँ बनवाया था। इसके अलावा यहाँ कामसुक का किला है जो वागाटोर समुद्र तट पर स्थित है। और भी कई किले गोवा की शान बढ़ाते यहाँ मौजूद हैं। गोवा आकर अगर आपने यहाँ के प्राचीन और विशाल गिरजाघरों के दर्शन नहीं किए तो आपका सफर अधूरा है। 16वीं शताब्दी में पुराने गोवा में गिरजाघर निर्मित हुए। आज भी ये गिरजाघर पणजी पोंडा मुख्य मार्ग के किनारे शान से खड़े हैं। इसी स्थान पर एक और पुर्तगाल के महान कवि तुइशत कामोइश का विशाल पुतला खड़ा है, तो इसकी दूसरी ओर महात्मा गांधी की भव्य प्रतिमा है। पुराने गोवा में सर्वाधिक विशाल और आकर्षक गिरजाघर है, जैसे कि कैथेड्रल गिरजाघर, संत फ्रांसिस आसीसी गिरजाघर आदि। गोवा में क्रिसमस और नया साल बहुत खूब मनाने, इसीलिए यहाँ नया साल मनाने के लिए जगह जगह से लोग आते हैं और इस समय यहाँ की रौनक देखने लायक ही होती है। इसके अलावा गोवा में गणेश चतुर्थी, गुड़ी पड़वा, दिवाली, दशहरा, होली, रक्षाबंधन, रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी भी बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। गोवा सचमुच एक अनोखा स्थान है जहाँ जितने बड़े समुद्र तट हैं, उतना ही ज्यादा अपनापन भी। प्रकृति के साथ अपने अनूठे अंदाज के लिए गोवा हमेशा से जाना जाता है। इसी के साथ हमारा और आपका ये सफर यहीं पूरा हुआ। 29 राज्य, एक राष्ट्र, एक कहानी। जय हिंद। उनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुश।

नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना एमपी छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूँ। और आज ज्ञान के पीरियड से छुड़ाकर कुछ ऐसी बातों को लाई हूँ जो हमारे लिए और हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा देश, हमारा पूरा विश्व ही आज बहुत आगे निकल रहा है। आज अगर हम देखते हैं तो शिक्षा की वैल्यू बहुत है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर हम देखें तो आध्यात्मिक शिक्षा भी बहुत जरूरी है। तो आज का हमारा विषय आध्यात्मिक शिक्षा की उपयोगिता। कहा जाता है कि शिक्षा से अंधियारा दूर होता है। विद्यार्थी विद्या अध्ययन से पहले प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता है, अस्तु मां सद्मय तमसो मां ज्योतिर्गमय। कई वर्षों तक कड़ी मेहनत करने के बाद वह ऊंची शिक्षा ग्रहण कर लेता है और समाज का सुशिक्षित व्यक्ति कहलाता है। लेकिन क्या जीवन का अंधेरा मिटा? अध्ययन पूरा करने के बाद जब वह गृहस्थ में जाता है तो सिर्फ प्रार्थना के शब्द ही परिवर्तित होते हैं, बाकी सब तो वही का वही होता है। अब वह मंदिर में जाकर कहने लगता है, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। इसका अर्थ तो यही निकलता है कि इतना समय उसने जो शिक्षा पाई उससे उसके जीवन का अंधियारा मिटा नहीं है, प्रकाश उसके जीवन में आया नहीं है। कभी कभी वह ऐसे भजन भी गाता है कि नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाओ रे। इससे यह सिद्ध होता है कि ये दोनों आंखें होते हुए भी उसे गलत और सही की पहचान नहीं हो रही है। शिक्षा से उजियारा जीवन में आया नहीं है। फिर यदि वह व्यापार के क्षेत्र में आता है तो फिर कुछ धर्मों दान पुण्य के लिए कुछ पैसा निकालता है। वह समझता है कि धंधे में मेरे से कुछ पाप झूठ बेईमानी आदि होते हैं तो धर्माओं निकालने से वे हल्के हो जाएंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो मूल्यों को लेकर पिछड़ापन भी क्यों है? यहाँ प्रश्न ये उठता है कि वो कौन सी ऐसी शिक्षा है जो सचमुच जीवन का अंधकार मिटाए और वास्तविक रोशनी लाए। केवल धन कमाने की रोशनी नहीं, लेकिन मुझे जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से कर्म मेरे लिए व समाज के लिए सुखदायी है और किन कर्मों से समाज से जो समाज में हमारी व्यवस्था बिगड़ती है ऐसी रोशनी, ऐसी समझ मिले, वह शिक्षा कौन सी है, उसका स्रोत कहाँ है। वर्तमान शिक्षा की ढांचे अगर हम देखें, हाँ, वर्तमान शिक्षा के ढांचे में हमने मानव के लिए उपयोगी सर्व सामग्री पाठ्यक्रम में समाहित की है, लेकिन मूल्यों को लेकर आज भी शिक्षा में पिछड़ापन क्यों रह गया है? यह एक गंभीर और विचारणीय प्रश्न है। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं ज्योत्सना फिर से आपसे आकर मिलती हूँ। और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो मैं ज्योत्सना ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। आज का हमारा विषय है आध्यात्मिक शिक्षा की उपयोगिता। कहा जाता है कि विद्या ददाति विनियम का रस चखा ही नहीं। एक बाइक सवार जो है युवक को अति शीघ्र अपने गंतव्य पर पहुंचना था। रास्ते में चौराहे पर लाल बत्ती को पार करने लगा तो ट्रैफिक पुलिस ने रोका। गुस्से में आकर युवक ने तुरंत पुलिस को गोली मार दी कि मुझे जाने से क्यों रोका गया, मुझे बहुत

आज कर्म करने के संकल्प और उसे कर डालने के बीच का फासला ही समाप्त होता जा रहा है। ऐसी घटनाओं से पता चलता है कि सुशिक्षित युवा भी बिना सोचे समझे गलत कर्म कर बैठते हैं। आज तो धीरज, सहनशीलता या दीवारों की शुभा मात्र बढ़ा रहे हैं। इस घटना से यह सिद्ध होता है कि शिक्षित होकर हमारा अहम कुछ और मूर्ख होता जा रहा है। मैं जब चाहूं जो चाहूं वह करूं, यह प्रवृत्ति सिद्ध करती है कि हमने शिक्षा के फल विद्या ददाति विनियम का रस चखा ही नहीं है। एक बार एक विद्यालय में मूल्यों पर विद्यार्थियों को कुछ सुनाने के बाद जब विद्यालय के संचालक महोदय से मिले तो उन्होंने विचार दिया कि आपकी शिक्षाएं धार्मिक है, इसलिए विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए सर्वथा अनुपयोगी है। अगर कहा जाता है कि अगर ये शिक्षा अनुपयोगी है तो देखा जाता है कि कुछ समय के बाद एक बार एक अखबार में खबर आई कि उसी विद्यालय के वही संचालक महोदय गांव वालों के द्वारा स्कूल में आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए। अब बताइए विद्यालय के लिए अनुपयोगी कौन सी बातें हैं। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ। और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों। तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना फिर से आपका स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। आज का हमारा विषय है आध्यात्मिक शिक्षा की उपयोगिता। यहाँ पर हम देखते हैं कि सर्व जो आत्माओं का धर्म एक है और वह है शांति। जब हम कहते हैं हाँ धर्म कि हम धर्म निरपेक्ष है तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह है, यह बात ठीक है कि दैहिक धर्मों की भीड़ में से किसी एक धर्म के सिद्धांत को हम पढ़ाएं तो विद्यालय में एकता और सामंजस्य नहीं रह पाता, परंतु देह से परे आत्मा का भी तो धर्म है जो सबका एक है, उसे तो अपनी शिक्षा प्रणाली में अनिवार्य रूप से शामिल किया जा सकता है। जैसे संपूर्ण जगत का मालिक एक है, सूर्य भी एक है, चंद्रमा भी एक है, धरती एक है, उसी प्रकार सारे विश्व की सर्व आत्माओं का धर्म भी एक है और वह है शांति। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को हर समय हर स्थान पर शांति की ही कामना रहती है। जैसे जल का धर्म शीतलता है, वैसे ही आत्माओं का धर्म शांति है। कोई व्यक्ति 24 घंटे शांति में तो रह सकता है, पर 24 घंटे अशांति में रहना असंभव है। आध्यात्मिक शिक्षा की ही हमें क्या लगता है कि सच्ची शिक्षा है, आध्यात्मिक शिक्षा ही सच्ची शिक्षा है। शांति ही अन्य सभी गुणों की जननी है। शांति और समृद्धि तब आती है जब जीवन में पवित्रता हो। पवित्रता के लिए यह ज्ञान हमारे हर श्वास में रचा बसा कि हम एक पिता के बच्चे आत्मिक नाते से भाई भाई हैं। जहां भाई भाई की भावना विकसित हो जाती है वहां हिंसा लूट काम क्रोध लोभ सब रह ही जाती है। हाँ, उसके बिना हाँ रह ही नहीं पाते। शिक्षा का उद्देश्य है हाँ? मतलब इसका जो उद्देश्य है भी तो यही है ना कि वह समाज को व्यक्ति को विकार मुक्त बनाए। शिक्षा को तीसरा नेत्र कहा गया है। वेद कहता है नास्ति विद्या सम चक्षु, अर्थात विद्या अद्वितीय नेत्र है। इन दो आंखों से जो नहीं दिखता वह विद्या रूपी नेत्र से दिखता है। विद्यावान व्यक्ति को समाज का सच दिखाई देता है। वह समस्याओं को ऊपर से नहीं जड़ से पकड़कर समाधान सोचता है। आज की समस्याओं की जड़ है दैहिक दृष्टि, दैहिक आकर्षण। इनसे जो पार ले जाए वही सही शिक्षा है। इस अर्थ में आध्यात्मिक शिक्षा ही सच्ची शिक्षा है जो भौतिक जगत में रहते भी मानव को बुराइयों से अछूता रहना सिखाती है। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी। और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाएं, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया, कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ख्वाबों का सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, ख्वाबों के सफर में मैं हूँ आपका हम सफर सनी। आइए आज के इस सफर को सुहाना यादगार बनाते हैं और एक नए अल्फाबेट के साथ मैं आपको जोड़ना चाहूंगा। जी हाँ, अक्षर आर। जी हाँ, र से मैं जोड़ना चाहूंगा और र से जो बहुत ही खूबसूरत गाने हैं, जैसे राह बनी खुद मंजिल, पीछे रह गई मुश्किल, रात अकेली है बुझ गए दिए, रात और दिन दिया जले मेरे मन में फिर भी अंधियारा है, रात भर का है मेहमा अंधेरा, रात भी है कुछ भीगी भीगी, रात का शमा रात का समा जुमे चंद्रमा। रात के हम सफर थक के घर को चले, रात खामोश है चांद मदहोश है, रात और दिन दिया जले। जी हाँ, ऐसे बहुत ही खूबसूरत गाने आपको सुनाने वाले हैं आज के इस एपिसोड में। आइए कार्यक्रम को शुरू करते हैं इस गाने से।

जी हाँ, कैफी आजमी साहब का लिखा ये गीत है, हेमंत कुमार का गाया हुआ, हेमंत कुमार का संगीत से सजा। ये खूबसूरत गीत कोहरा इस एल्बम से है जो 1964 में रिलीज हुई थी। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में ये खूबसूरत गाना अभी आपके लिए आप सुनाए है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना और आशा करता हूँ आप सभी को बड़ा अच्छा लग रहा है। कहते हैं, तलाशी मेरे हाथों की लेकर क्या पालोगे तुम, चंद लकीरों में छिपे अधूरे से कुछ किस्से हैं, इन्हें देखकर क्या कर लोगे तुम। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना, रात बनी खुद मंजिल पीछे रह गई मुश्किल, कोरा इस एल्बम से आपने सुना। और इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से थी, विश्वजीत जो है उनकी शादी हो चुकी होती है, लेकिन फिर कुछ ऐसी ट्रेजेडी आती है जिसकी वजह से उन्हें दूसरा शादी करना पड़ता है, और फिर धीरे धीरे फिल्म आगे चलता है और विश्वजीत को अपनी पहली पत्नी की याद भुलाए नहीं भूलती है। तो इस तरह की कहानी इसमें बताई गई थी। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत गीत की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ, जैसे कि ये रात अकेली है।

0: जी हाँ, मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा ये खूबसूरत गाना आशा भोसले का गाया हुआ, सचिन देव बर्मन का संगीत से सजा ज्वेल टी फेस एल्बम का ये गाना है जो बहुत ही खूबसूरत है। खूबसूरत इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही मस्ती भरा गीत है और देवानंद, अशोक कुमार, वैजयंती बाला और तनुजा पर पिक्चराइज किया गया ज्वेलते फिल्म का ये गाना अभी आपके लिए। आप सुनाए हैं रियो को मेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: रात अकेली है

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में, रात अकेली है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रात के बाद दिन की तरफ चलते हैं। लेकिन क्या करें, आज हार अक्षर है तो रात ही आएगी। फिर कहते हैं, जब मोहब्बत को लोग खुरा मानते हैं, फिर क्यों प्यार करने वालों को बुरा मानते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। आइए अगला गाना आपके लिए मैं लेकर आया हूँ 1967 का रात और दिन इस एल्बम से। यह इस फिल्म का ये खूबसूरत गाना है, जैसे कि ये

हसरत जयपुरी साहब ने लिखा है, लता मंगेशकर ने गाया है, शंकर जय किशन का खूबसूरत संगीत से सजा ये गाना नरगिस फिरोज खान, प्रिंस कुमार, के एम सिंह, इन लोगों ने इस फिल्म में काम किया है और इस फिल्म का ये खूबसूरत गाना अभी आपके लिए आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। रात और दिन इस एल्बम से आपने गाना सुना। सत्येन बोस के निर्देशन में ये फिल्म बनी थी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। क्यों तन्हा कर देते हो यूं दूर जाकर, इंतजार करते हैं हम बेकरार होकर। चलिए, आप प्यार में इस तरह की बातें तो होती रहती है। अब आइए अगला गाना जो है, रात भर का है महिमा अंधेरा, साहिल दानवी साहब का लिखा ये गीत, मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ, ओपी नैयर का खूबसूरत संगीत से सजा। सोने की चिड़िया इस एल्बम का ये गाना है जो बहुत ही पॉपुलर रहा उस समय जब ये फिल्म 1958 में रिलीज हुई थी। तो चलिए, इस फिल्म का ये गाना जैसे कि

जी हाँ, ये खूबसूरत गाना है और इस फिल्म के जो हीरो रहे तलत महमूद, बलराज साहनी, नूतन और चंदा पर पिक्चराइज किया गया था। और कहानी बहुत ही सिंपल थी, लेकिन उस समय लोगों ने इसे काफी पसंद किया। तो चलिए सीधे मैं आपको गाने की तरफ ले चलता हूँ। आप सुना है रिव्यू पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

मेरी मोहब्बत की ना सही मेरे सलीके की तो दाद दे। कभी कभी प्यार में आदमी इतना करीब हो जाता है कि उसकी बातें उसकी सलीके कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। जो हो रहा है होने दो, ऐसा कहते हैं प्यार में। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के इस मोड़ पे। हम लोग आए हैं जहाँ पर एक और खूबसूरत गाना मैं आपको सुनाने वाला हूँ। ये एक फिल्म आई थी 1963 में, मुझे जीने दो। जी हाँ, ये टाइटल ही ये बता देता है कि कहीं ना कहीं ये फिल्म जो है कुछ गांव वाले डाकू ऐसे कुछ सिचुएशन हो सकता है। तो यहाँ पर यही चीजें बताई गई हैं, मुझे जीने दो। इस फिल्म की कहानी इस तरह से है, एक डाकू एक वेश्या से शादी करता है, उनका एक बेटा है। पुलिस से बचने के लिए वो निकट के गांव भेज देता है और दुर्भाग्य से गांव वालों को उसके पति से एक पुराना हिसाब चुकता करना होता है। फिर यहाँ पर क्लाइमेक्स बनती है। तो आइए, इस फिल्म के कलाकार है सुरेंद्र वैदारेमन, मुमताज और निरुपमा रॉय। तो चलिए, इन पर पिक्चराइज किया गया था ये फिल्म और इस फिल्म का ये गाना। जी हाँ, रात भी है कुछ भीगी भीगी, साहिल निदानी साहब का लिखा, लता मंगेशकर का गाया, जयदेव साहब का संगीत से सजा ये गाना अभी आपके लिए। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोगों के साथ जुड़ जाते हैं और आप लोगों का प्यारे प्यारे मैसेजेस जो हमारे तक पहुंचते हैं 7219190005 से, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो चलिए, अब कहते हैं कि मेरे अश्क तेरी बेरुखी का एहसास है, तेरी याद में ये फिर बेगाने हो चले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की तरफ। मैं ले सकता हूँ रात का समा जुमे चंद्रमा। ये बहुत ही खूबसूरत हिट गाना है जो उस जमाने में भी हिट था, आज भी ये गाना उतना ही खुशी देगा आपको अगर आप दिल से सुनेंगे। तो 1964 का ये गाना है, जिद्दी फिल्म का, हसरत जयपुरी साहब का लिखा, लता मंगेशकर का गाया, सचिन देव बर्मन का संगीत सिलसिला। ये गाना अभी आपके लिए

क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना। आशा करता हूँ सभी को अच्छा लगा हो। तो चलिए, जिद्दी इस एल्बम से आपने सुना। इस फिल्म के कलाकार थे आशा पारेख, जॉय मुखर्जी, महमूद अली और नाजमा। इस फिल्म की कहानी कुछ एक ऐसी महत्वाकांक्षी युवक की बताई गई है, जो पहले तो अपने एक घर की तलाश में पिता के साथ रहता है, और जब उसकी चीजें पूरी होने लगती है तो वो शहर चला जाता है, और वहाँ पर एक बिगड़ेल लड़की के साथ उसकी अनबन हो जाती है और वो उसके प्यार में पड़ जाता है। तो इस तरह की कहानी बताई गई है। तो चलिए, अब कहानी की बात न करते हुए एक और गीत की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। 1967 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था एन इवनिंग इन पेरिस। जी हाँ, ये खूबसूरत फिल्म बनी थी पेरिस पर, और इसमें बहुत सारे विदेशी सीन्स दिखाए गए थे, इसीलिए ये फिल्म जो है ना, लोग सीन सीनरी को देखने के लिए भी खास जाया करते थे उस समय में। शर्मिला टैगोर, शम्मी कपूर, राजेंद्र नाथ और प्राण पर पिक्चराइज किया गया ये फिल्म, और इस फिल्म का गाना है जैसे कि ये।

के हम सफर थके घर को चले। तो चलिए इस गीत का आनंद उठाते हैं, उसके बाद फिर आपसे रूबरू होते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: रोने की सजा है न रुलाने की सजा है, ये दर्द मोहब्बत को निभाने की सजा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना, एन इवनिंग इन पेरिस का। अब आगे चलते हैं। रात खामोश है, चांद मदहोश है, इस गीत को हम लोग सुनेंगे मुंतजिर। इस एल्बम से ये गजल है जगजीत सिंह साहब का, जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ अभी। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी हर हाल में एक मुकाम मांगती है, किसी का नाम तो किसी से ईमान मांगती है। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर। जी हाँ, ख्वाबों का सफर, और मैं हूँ आपका हम सफर सनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि हम लोग आखिरी गाने की तरफ पहुंच चुके हैं, और आखिरी गाना आपको सुनाने वाला हूं मैं, जैसे कि ये।
1: रात खली एक ख्वाब में आई।
0: आज के इस एपिसोड में मुझे लगता है कि हमने काफी बातें की, काफी अच्छे अच्छे गाने आपको सुनाए हैं, और आशा करता हूँ आप सभी को बहुत पसंद आया हो। तो जरूर मैसेज करके अपना प्यार जताइए 7219190005 पर। कहते हैं जीत भी मेरी और हार भी मेरी, तलवार भी मेरी और धार भी मेरी। तो चलिए, जिंदगी के सफर में ऐसे कई बार ऐसे मौके हमारे बीच में आते हैं जहां पर हम लोग इस तरह की सिचुएशन में फंस जाते हैं। तो चलिए, मैं चाहूंगा कि आप किसी भी ऐसे विकट परिस्थिति में ना फंसे, आप सदा आसान रहें, खुश रहें, और रेडियो पुनेरी आवाज को सुनते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सलाम नमस्ते, दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरवसु, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: हृदय की अथाह गहराइयों में तरंगित उस निराकार निरंजन की भक्ति हमारे जीवन, मन और कर्म को देती है नेकियों की शक्ति।

आइए इस विश्व के पालनहार उस निराकार को हम अपनी भावनाओं के स्वर में साकार करें। संगीत सुमन के अभिनंदन से सुकर्मों का आधार था।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफस्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। The person who I have to live with 24/7, I need to be comfortable with that person. I have to live with myself. दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, so we need to say.
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेक

पिछले कार्यक्रम में नटखट विवेकानंद के बाल्यावस्था की बातें जानकर आपको भी हंसी आ गई होगी। बचपन से ही वे किसी बात को बिना सही तरह से समझे नहीं मानते थे। प्रश्न पे प्रश्न कर वे अगर जवाब से संतुष्ट होते तो ही बात को मानते थे। छुआछूत जातिगत भेदभाव से वे घृणा करते थे। शरारती तो वे थे, पर मनपसंद की बातें हो तो घंटों ध्यान लगाकर सुनते या करते थे। आइए उनके बचपन की कुछ और बातें जानें।

0: एक पेशावरी मुस्लिम नरेंद्रनाथ के पिता विश्वनाथ बाबू के मुवक्किल थे। वे नरेंद्र के प्रति विशेष स्नेह रखते थे। उनके आने का समाचार पाते ही नरेंद्र उनके पास आ जाता और उनकी गोदी में बैठकर पंजाब और अफगानिस्तान के घोड़े और ऊंट की सवारी की भ्रमण कहानियां एकाग्र चित्त से सुनता।
1: चाचा जी, वहाँ लोग ऊंट की सवारी क्यों करते हैं? वहाँ बग्घियाँ नहीं चलती क्या?
2: ओए नहीं मेरा बेटा, मेरा बच्चा, ओए वहाँ तो रेगिस्तान है, रेगिस्तान। ओए सड़कें ज्यादा है नहीं, सो लोग ऊंट पर ही एक जगह से दूसरी जगह को जाती है।
1: हाँ, पर ऊंट तो बहुत धीरे धीरे चलते हैं ना।
2: ओ इसीलिए तो मेरा बच्चा, वो वहाँ पहुँचने में बहुत महीना लग जाते
1: हैं। फिर वो खाते पीते क्या है, लंबे सफर से थक जाते होंगे।
2: ओए होए, ओए वहाँ बीच बीच में सराय बना होती, वहीं पर हम रुकते है, आराम करता है, ओए फिर चलना शुरू करते है। और सफर भी रात को ठंडा ठंडा में करते है, दिन में बहुत तेज गर्मी होते है और तेज धूप होते है।
1: पर बड़ा मजा आता होगा ना चाचा जी, आप मुझे वहाँ ले चलेंगे ना? मैं भी ऊँट की सवारी करूँगा।
2: ओए हमारा बच्चा, ओए तुम अभी बहुत छोटा है, बस दो उंगल बड़ा होने को मांगते है, फिर हम तुमको जरूर ले जाएगी।
0: आग्रह की अधिकता से वो कभी कभी दूर से ही बोलता।
1: चाचा जी देखिए, मैं रात भर में दो उंगल बढ़ गया हूँ, अब आप मुझे ले चलिए।
2: ओए देखो तो, ओए हमारा बच्चा वाकई में बहुत बड़ा हो गई, अरे तुम तो दो उंगल ऊंचे हो गई। ओए अब तो ले जाना ही पड़ेगी। ओए हमारा बच्चा मिठाई खाएगा, ओए तब तक ये मिठाई खा लो बच्चा, ओए तुम्हारे ही वास्ते लाए है, तुमको पसंद है ना?
1: लाइए लाइए, कहाँ है, मैं दोनों ही खाऊंगा।
0: नरेंद्र बड़े चाव से चाचा की गोद में बैठकर मिठाई खाते और वहाँ बैठे दूसरे लोग इस अनाचार को देखते और सिहर जाते। परिवार में भी इस बात को लेकर बवंडर मचता, पर विश्वनाथ बाबू कट्टरपंथी ना थे, वे इस बात को हंसकर टाल देते।
3: विश्वनाथ बाबू के दफ्तर में भिन्न भिन्न समाज के मुवक्किल आते थे, उनके लिए अलग अलग हुक्के की व्यवस्था थी। एक दिन कमरा खाली देखकर नरेंद्र वहां आया और हुक्के की नली में मुंह लगाकर कश खींचने लगा। विश्वनाथ ने मुवक्किलों के साथ कमरे में दाखिल होकर नरेंद्र को हुक्का पीते देख लिया।
2: बिले, ये क्या हो रहा है?
1: बाबा, सब कहते हैं दूसरी जाति के लिए रखा हुआ हुक्का नहीं पीना चाहिए। मैं तो देख रहा था ऐसा करने पर क्या होता है, मैं तो वैसा ही हूँ। ये छत टूट तो नहीं पड़ी, मैं तो परीक्षा कर रहा था कि अगर मैं जाति भेद ना मानूं तो क्या होगा।
4: नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते, पाप लगता है।
1: क्यों, क्या होगा, क्या वह मर जाएगा? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हाथ का क्यों नहीं खाता? बाबा कहिए ना, क्या होता है?
0: विश्वनाथ बाबू ने हंसते हुए उसे प्यार से कहा,
2: बिले तू बड़ा दुष्ट हो गया है रे।
3: नरेंद्र ने सीताराम की मूर्ति को तोड़कर दूसरे ही दिन उसके स्थान पर एक शिव मूर्ति की स्थापना कर दी। माता का अनुकरण कर वे प्रतिदिन शिव पूजा करते थे। कभी पद्मासन में बैठकर ध्यान लगाते तो कभी अपने साथियों को बुलाकर सब मिलकर शिव मूर्ति को घेरकर ध्यानस्थ होकर बैठे रहते। यह खेल नरेंद्र को बहुत भाता था। उस समय उनके मन में क्या चलता था वही जाने। एक दिन ध्यान से उठकर उदास होकर माँ के पास गया और कहा,
1: माँ मुझे शिवजी के दर्शन क्यों नहीं होते? सचमुच क्या मैं दुष्ट हूँ? इसीलिए शिवजी ने मुझे अपने पास से हटा दिया है।
5: ऐसा किसने कह दिया रे तुझे?
1: मैं अगर साधु हो जाऊँ तो क्या शिवजी मुझे अपने पास लौट आने देंगे?
5: हाँ हाँ क्यों नहीं।
3: यह बात परिवार की महिलाएं सुन रही थीं, वे अवाक रह गईं।
6: बहू ये तुमने क्या कह दिया है बेटे से? एक ही तो बेटा है तुम्हारा, उसे भी संन्यास लेने को कह रही हो? कैसी माँ हो तुम?
3: यह बात अनजाने में कह जाने के बाद माँ का हृदय किसी अनजान डर से कांप उठा। उसी पर किसी के टोकने पर वह और विचलित हो उठी। अपने दादा की तरह अगर नरेन भी संसार छोड़कर चला गया तो? पर मन ही मन शिव का ध्यान लगाकर उन्होंने इस डर को मन से हटा दिया और कहा,
5: देखो भाई भगवान की जो इच्छा होगी वही तो होगा ना, मैं उसमें बाधा देने वाली कौन हूँ?
1: तब तो मैं सन्यासी ही बनूंगा।
0: बचपन से ही लगातार रामायण और महाभारत सुनते सुनते उन ग्रंथों का बहुत सा भाग उन्हें याद हो गया था। वे कभी कभी सुमधुर स्वर में उन्हें सुनाकर श्रोताओं को मुग्ध कर देते थे। कभी कभी भिक्षु गायकों से सीखे हुए राधा कृष्ण या सीताराम के गीतों को गाकर घर वालों और अपने पिता के मित्रों को आनंद प्रदान करते। लाड़ प्यार से पले नरेंद्र स्वतंत्रता प्रिय होने पर भी उनके बाल चरित्र में अपने माता पिता के नाना प्रकार के सद्गुणों का समावेश हो गया था। घर में नीति शास्त्र एवं लोकाचार का कठिन नियम ना होने पर उनका चरित्र अपनी स्वाभाविक मधुरता के साथ स्वतः ही विकसित हो रहा था।
3: श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हनुमान के अलौकिक कार्यों की कथाएं सुनना नरेंद्र को बहुत अच्छा लगता था। माता से उन्होंने सुना कि हनुमान जी अमर हैं, वे अभी भी जीवित हैं। तब से उन्हें देखने के लिए नरेंद्र के प्राण छटपटाने लगे। एक दिन वे माता के साथ कथा सुनने गए। कथाकार पंडित जी नाना प्रकार से हास्य रस मिलाकर हनुमान जी के चरित्र का वर्णन कर रहे थे। कथा खत्म होने पर नरेंद्र धीरे धीरे उनके पास गया और उनसे पूछा,
1: पंडित जी आपने कहा हनुमान जी केला खाना पसंद करते हैं और केले के बगीचे में ही रहते हैं, तो क्या मैं वहां जाकर उनके दर्शन पा सकूंगा?
7: हाँ बेटा, केले के बगीचे में ढूंढने पर तुम उन्हें पा सकते हो।
3: फिर क्या था, दूसरे ही दिन घर के पास वाले केले के बगीचे में केले के पेड़ के नीचे बैठ गए और हनुमान जी की प्रतीक्षा करने लगे। काफी समय बीत गया पर हनुमान जी नहीं आए। अंत में लाचार होकर शाम ढलते घर वापस आए। माँ को सारी घटना सुनाकर इसका कारण पूछा। बालक के विश्वास पर चोट न करना ही माता ने उचित समझा और बेटे को प्यार से चूम कर कहा,
5: ओले बेटा बेटा तुम दुखी मत हो, शायद देखो शायद आज हनुमान जी वो राम जी के किसी काम से कहीं दूसरी जगह पर चले गए होंगे, हाँ इसीलिए वो तुम्हें नहीं मिले। किसी और दिन मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। बेटा मेरा।
0: बालक शांत हुआ। उसने फिर कभी हनुमान जी से मिलने की कोशिश की या नहीं ये तो ज्ञात नहीं, पर हनुमान जी के प्रति गंभीर श्रद्धा भाव उनके मन से कभी लुप्त नहीं हुआ। ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करने के इच्छुक प्रत्येक युवक को विवेकानंद कहा करते थे।
8: महावीर के चरित्र को आदर्श बनाओ। हर घर में महावीर हनुमान जी की पूजा होनी चाहिए। इस दुर्बल जाति के सम्मुख उन्हीं का आदर्श रखना चाहिए। शरीर में शक्ति नहीं, हृदय में साहस नहीं, क्या होगा मांस के लोदों से। मैं चाहता हूं हर युवा महावीर जैसा ताकतवर हो।
3: बोध या विचार शक्ति के कुछ और बढ़ने के बाद उनमें साधु या भिखारियों के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण दिखाई पड़ा। उनके आने पर वे उनके निकट दौड़ जाते, उन्हें कोई रोक नहीं पाता और जो भी मिलता उन लोगों को दे देते थे। एक दिन नई धोती पहनकर साथियों के साथ खेल रहे थे, तभी दरवाजे पर आवाज हुई।
9: नारायण हरि, नारायण हरि, अरे कोई है?
1: आओ बाबा, अंदर आओ।
9: बेटा, कुछ पहनने ओढ़ने का मिल जाए तो।
1: हाँ हाँ, लो ना, मेरी यह धोती बिल्कुल नई है, आज ही तो पहना है, ये ले लो।
9: तुम्हारी ये छोटी सी धोती मैं कैसे पहनूंगा बेटा? पर तुम्हारा दिया दान मेरे सर आंखों पर, लाओ मैं से अपने माथे पर लपेट लूं। जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो।
0: साधुओं के आने पर नरेन को किसी कमरे में बंद कर दिया जाता था, पर खिड़की से वे उन्हें बुलाकर जो कुछ मिलता दे देते थे और घर के लोगों को हरा दिया समझकर खुश हो जाते।
3: दोनों बड़ी बहनों हरमोहिनी और स्वर्णमयी को वे हमेशा छेड़ा करते। दोनों हैरान परेशान होकर नरेन को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ती, पर पकड़ न पाती। उन्हें और भी तंग करने के लिए नरेन किसी गंदे नाले में उतर जाता या किसी कूड़े के ढेर पर चढ़ जाता। बहनें उनका पीछा करती।
6: रुक जा बिले, इधर आ, आज तुझे अच्छा मजा चखाऊंगी। मेरे कपड़े में अपना गंदा हाथ क्यों पोछा, बोल।
10: ओह, मेरी किताब तूने ही छुपाई है, निकाल निकाल दे जल्दी, नहीं तो मैं माँ को कह दूंगी।
6: एक बार पकड़ लूं तो तेरी खैर नहीं बिले। स्वर्ण, तू उधर से जा, उधर जाकर पकड़, मैं इधर से इसका रास्ता रोकती हूँ।
1: आओ आओ ना, आओ पकड़ो मुझे, इस गंदी नाली में उतरो, तब तो पकड़ पाओगी मुझे। अच्छा चलो, मैं ही निकल आता हूँ, पर मेरे कपड़े और पैर गंदे हो गए हैं, मुझे छुओगी क्या?
10: हाँ हाँ पकड़ूंगी, रुक, बिल्कुल पकड़ूंगी।
1: पकड़ोगी तो ये लो, मैं कूड़े के ढेर पे चढ़ गया, अब आओ यहाँ, पकड़ो पकड़ो पकड़ो।
11: माँ देखो ना, परेशान कर रहा है माँ, किताब माँ देखो ना माँ।
3: दोनों बहनें हार कर रोते रोते अंदर चली जाती हैं।
0: दत्त भवन में अनेक पालतू जानवर थे। नरेन को उनके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। विलायती सफेद चूहा, बंदर, बकरा, कबूतर, काकातुआ और अनेक तरह तरह की चिड़िया थी। घर की गाय के साथ नरेन की पक्की दोस्ती थी। उसके गले में माला पहनाकर, माथे में सिंदूर लगाकर, शरीर पर हाथ फेरकर वे उसके साथ कितनी मीठी मीठी बातें किया करते थे, और वो गाय भी उनके शरीर पर मुंह रगड़कर प्यार जताती थी।
3: सन्यासी होने की इच्छा उन्हें बचपन से ही थी। एक दिन एक गेरुआ वस्त्र को कॉपीन की भांति लपेटकर वे घूम रहे थे। उसे देखकर माँ ने पूछा,
6: क्यों रे बिले, है ये क्या कर रहा है?
1: माँ, मैं शिव हो गया हूँ। अब मैं ध्यान करने जा रहा हूँ।
6: अरे क्यों भला?
1: मैंने सुना है कि ध्यान में बैठे ऋषि मुनियों के बालों की जटा बढ़कर धरती को छूने लगती है और धीरे धीरे बरगद के पेड़ की जटा की तरह धरती में घुस जाती है। पर मैं तो कल भी ध्यान करने बैठा था, मेरे बाल तो बड़े ही नहीं, ना ही जमीन में घुसे। क्यों माँ?
6: बेटा, एक आध घंटा या एक दो दिन में जटाएं नहीं बढ़ती, कई साल लग जाते हैं।

0: नरेंद्रनाथ के पास खेलों की कमी ना थी। उनका एक प्रिय खेल था राजा बनने का खेल। अपने संगी साथियों के साथ पूजा घर जाने वाली ऊंची सीढ़ी पर ये खेल चलता था।
1: मैं राजा हूँ, इसीलिए मैं सबसे ऊंची सीढ़ी पर बैठूंगा। तू मंत्री है, इस पर बैठ। तू तो कोतवाल है, वहाँ बैठ। सेनापति, तुम इधर आकर बैठो। और तुम सब सभासद हो, नीचे बैठो। अब दरबार शुरू होगा, सब लोग मुझे प्रणाम करो।
2: प्रणाम महाराज।
1: मंत्री, राज्य का क्या समाचार है?
3: प्रजागण परम सुखी है महाराज।
1: सेनापति, कहो क्या कहना है?
4: महाराज, एक डाकू बड़ा उत्पात करता है, आए दिन हमला करके प्रजा को लूट लेता है।
1: उस दुष्ट आत्मा का सर काट दो।
0: तुरंत कुछ बच्चे डाकू को पकड़ने दौड़ते और वो सदर दरवाजे से भागकर जान बचाता। राजा सिंहासन पर बैठे बैठे मुस्कुराते रहते।
3: वोरा, पकड़ो उसे, पकड़ो। वोरा,
5: वहीं,
3: हाँ वहीं, नीचे,
5: पकड़ो, पकड़ो, जल्दी, जल्दी भागो, पकड़ लो उसे,
6: पकड़,
3: पकड़ो, पकड़ लिया, आ गया, पकड़ लिया, चल राजा के पास, चल ले चलो,
5: सबक सिखाएंगे,
3: ले चलो, मृत्यु दंड देंगे, बस चल राजा मेरा,
5: अच्छा,
3: चलो, चलो, ले चलो इसे।
7: इसी तरह खेलते खिलाते नरेंद्र बड़ा हो रहा था। साथियों ने सर्वसम्मति से उसे नेता मान लिया था। जहां भी जाते, जो भी करते, सब बच्चे नरेंद्र का ही कहा मानते। उम्र में बड़े बच्चे भी उसी को नेता मानते थे।
0: नरेंद्र बचपन से ही निर्भीक और साहसी थे। उसके एक सहपाठी पड़ोसी के घर चंपा का एक पेड़ था। अक्सर नरेंद्र उस पेड़ पर चढ़कर डाली में पांव फंसाकर और सिर नीचे लटकाकर झूलता था। एक दिन उस घर के मालिक दादाजी राम रतन बसु ने उसे ऐसा करते देख लिया। उन्हें लगा चंपा की नरम डाली टूट जाने पर नरेंद्र को चोट लग जाएगी। वो बाहर आकर नरेंद्र को समझाते हुए कहते हैं,
8: बेटा नरेंद्र, इस तरह चंपा की डाली पर नहीं झूलते, नीचे आ जाओ, मत चढ़ो पेड़ पर।
1: क्यों, क्यों इस पेड़ पर चढ़ने से क्या होता है?
8: नीचे तो उतरो, बतलाता हूँ।
1: ये लीजिए, आ गया, अब बताइए।
8: उस पेड़ पर एक ब्रह्म राक्षस रहता है, भयानक गुस्सेल है, पेड़ पर चढ़ने वाले की गर्दन मरोड़ देता है।
1: अच्छा दादाजी।
0: दादाजी के अंदर जाते ही नरेंद्र फिर से पेड़ पर चढ़ने लगा।
9: नरेंद्र, सुना नहीं दादाजी ने क्या कहा? ब्रह्म राक्षस गर्दन मरोड़ देगा।
1: अरे आने दे ब्रह्म राक्षस को, मैं उसके शरीर पर थूक कर उसे वशीभूत कर दूंगा।
9: नहीं बाबा, मुझे तो डर लगता है, मैं तो चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ।
1: तू भी जैसे गधा है। कोई आकर एक बात कहके डरा गया और तू उसी पर विश्वास करने लगा।
9: तो तू नहीं मानता ब्रह्म राक्षस को?
1: तेरे दादाजी की बात अगर सही होती तो वो बहुत दिनों पहले ही मेरी गर्दन मरोड़ देता। मैं तो अक्सर झूलता हूँ, मुझे तो कभी नहीं दिखा वो। जा जा जा, डरपोक कहीं का।
0: बच्चे की बुद्धि का विकास माता पिता की गोद में बैठकर ही होता है। विशेषकर नरेंद्र के माता पिता का था अपूर्व उदार हृदय और ज्ञान समृद्ध प्रगतिशील मन, अतः उनका मानसिक विकास और भी तेजी से और समृद्ध हुआ था। रामायण और महाभारत की कहानी, देवी देवताओं की कथा एवं भारत की सांस्कृतिक परंपरा के स्वरूप को उन्होंने इसी बचपन में लाड़ प्यार के माध्यम से ही ग्रहण करना शुरू किया। उनकी सुकुमार मन में इन सब की गंभीर रेखा चित्र खिंच गई थी, इसलिए परवर्ती काल में अपने व्याख्यान के प्रसंग में इन सब बातों का उल्लेख कर एवं सुंदर भाषा में उनकी व्याख्या कर श्रोताओं को मुग्ध कर देते थे।
7: रामायण पर उनका इतना अधिकार हो गया था कि एक बार घर के पास रामायण गायकों के एक दल द्वारा एक पद विशेष को गाते समय कई पंक्तियां भूल जाने से अशुद्ध रूप से गाने पर नरेंद्र ने पदों को शुद्ध रूप से गाकर सभी लोगों से प्रशंसा पाई थी। गायकों ने भी अपनी भूल मानकर श्रोताओं से माफी मांगी थी और नरेंद्र को मिली थी ढेर सारी मिठाइयां।
0: उनके महाभारत पाठ के संबंध में भी एक मर्मस्पर्शी घटना जानी जा सकती है। सन 1869 में दत्तग्रह के तत्कालीन मुखिया नरेंद्रनाथ के छोटे दादाजी काली प्रसाद दत्त मृत्युशैया पर पड़े थे। आखिरी समय में उनमें एक अंतिम इच्छा जगी कि मृत्यु पूर्व परिवार के बच्चों में से किसी के मुख से महाभारत का पाठ सुनेंगे। लज्जावश कोई भी बालक या बालिका पाठ करने के लिए राजी नहीं हुआ। सबने सबसे छोटे नरेंद्र से पाठ करने के लिए कहा। वे तुरंत अपने छोटे छोटे हाथों में विशाल काय महाभारत को समाहित किए हुए दादाजी के कमरे में आए और अपनी मधुर वाणी में महाभारत के कई पन्ने पढ़कर सुना दिए।
7: केवल अंतिम घड़ी में ही नहीं, उसके पहले भी दादाजी ने नरेंद्र के मुख से कई दिनों तक संपूर्ण रामायण का पाठ सुना था। पाठ के समय माँ भुवनेश्वरी देवी भी उपस्थित रहा करती थी।
0: परलोक की ओर आंखें पसारे हुए वृद्ध ने अपने इस कुल तिलक के महाभारत पाठ से उल्लासित होकर आशीर्वाद दिया।
6: बेटा, समय आने पर तुम निश्चय ही बड़े आदमी बनोगे। हाँ,
10: मेरे बेटे को यही आशीर्वाद दें कि वो हमेशा सच के पथ पर चले और मानवता की सेवा करे।
6: तुम्हारी जैसी माँ पाई है इस बालक ने, इसे कौन रोक सकेगा? अवश्य ही ये हमारे परिवार का नाम रोशन करेगा।
10: बिले बेटा, दादाजी तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, उन्हें प्रणाम नहीं करोगे?
1: हाँ माँ, दादाजी प्रणाम।
6: जीते रहो बेटा, जीते रहो, खुश रहो, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।

0: आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM।
0: आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
2: चल चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर, कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियां बांटो।
3: चल चल चल मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल कटारा की छके।
4: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन और मैं आरजे शांतनु आप सबका स्वागत करता हूं आज के हमारे यशस्वी भारत कार्यक्रम के एपिसोड में। जिंदगी संगीत है, या ऐसा कहें बगैर संगीत के जीवन क्या है। स्नान करते हुए व्यक्ति गुनगुनाता है, गाड़ी चलाते हुए व्यक्ति गुनगुनाता है, कुछ लिखते हुए, खाना पकाते हुए, हर समय हमारे मन के अंदर कोई ना कोई धुन बज रहा होता है। कभी ये धुन बॉलीवुड के फिल्मों की होती है, कभी ये धुन जस्ट कुछ शब्दों का होता है जो हमने हमारे जीवन से उतारा हुआ होता है। कई बार ये धुन लोक संगीत के होते हैं जो आपने अपने मम्मी से या दादी से, नानी से या अपने आस पड़ोस के लोगों से सुना होगा। ये धुन गुनगुनाते हैं और इन धुनों में हमारे जीवन के अनुभव बुने हुए होते हैं। आज के हमारे कार्यक्रम में साथियों एक ऐसी ही शख्सियत हमारे बीच में है, डॉक्टर माथुरी बर्थवाल जी। डॉक्टर माथुरी बर्थवाल जी हमारे बीच में है, ये एक गिफ्ट कहेंगे हम हमारे लिए एक तोहफा कहेंगे, क्योंकि डॉक्टर माथुरी जो है वो हमारे बीच में पहाड़ों से आई हुई है। पहाड़ों का गीत, उत्तराखंड के गीत, लोक संगीत को उन्होंने धरोहर की तरह बचाए रखा है और उसको आगे भी बढ़ा रही है। तो हम हमारी बातचीत में डॉक्टर माधुरी जी से बहुत चीज सुनेंगे, बहुत चीज जानेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। माधुरी जी आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत है।
1: आपको प्रणाम करती हूँ, सबको मेरा नमस्कार।
0: माधुरी जी आपका नाम ही मधुरता से भरा हुआ है, तो इससे पहले कि हम कुछ शुरू करें कुछ गुनगुना दीजिए जरा।
1: हमारे यहाँ एक मांगल लोकगीत होता है जिसमें की मंगल कामना होती है और सबके लिए ईश्वर से जय और यश प्रदान करने के लिए प्रार्थना की जाती है, तो वही है कि

0: इसी तरह से गणपति देव के को शुरू में उनके उनसे प्रार्थना की जाती है, उनका आवाहन किया जाता है। इसी प्रकार सारी देवी देवता, जल देवता, थल देवता, सब से विनती की जाती है कि सबको यश और जय प्रदान करें, पूरा समाज का कल्याण करें। ये मंगल कामना का लोकगीत है।
1: मैं तो आपके मंगल कामना में मैं पूरी तरीके से खो गया था। मुझे पता भी नहीं अब मैं आपको क्या सवाल पूछूं क्योंकि जो धुन आपने पेश किया उसमें एक सम्मोहन शक्ति है, एक सुला देने की शक्ति है। जहां पर कोई आत्मा जो बहुत दिनों से तड़प रही हो या अंदर में एक खलबली हो, एकदम से शांत कर देने की ताकत है। ये धुन इतना पावरफुल था, मुझे लगता है हमारे श्रोता साथी जो सुन रहे होंगे वो भी एक इस प्यारे से सम्मोहन करने वाली लोरी को सुनते हुए, मतलब आपने कहा जशोगान है, मंगल कामना है, बट मेरे लिए बहुत सुकून देने वाला ये सॉन्ग था। इसका इसी से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आज हमारे देश में, आज की बात नहीं है, बहुत पहले से बहुत प्रकार के संगीत उपलब्ध हैं, उसमें से लोकगीत भी एक है, शास्त्रीय संगीत है, उपशास्त्रीय संगीत है, फिल्मी संगीत है और फिर लोक संगीत है। अगर हम देखें तो जो सबसे ज्यादा प्रचलन में होता है वो फिल्मी संगीत है। ऐसे में लोक संगीत को बचाने में या उसको संरक्षण देने में कितनी तकलीफ आती है, कैसा रहा है आपका संघर्ष?
0: देखिए, संगीत जो है ऐसी चीज है कि जो हमेशा साथ में रहता है, संग ही तो है। मेरे पिताजी बोला करते थे, आज मुझे उसका आभास होता है कि उन्होंने कितनी बढ़िया परिभाषा दी इसकी, कि मैं टीचर थी अपने लैंसटाउन में, ये गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज लैंसटाउन में, तो वहां पर जो है मैं अकेली थी, सब भाई बहन गांव जा रहे थे, तो मेरी माँ ने पिताजी से कहा कि ये अकेली कैसे रहेगी, कौन इसके खाना बनाएगा, कैसे रह पाएगी यहाँ पर, एक हफ्ता इसको रहना है यहाँ पर। तो पिताजी ने कहा कि अरे संग ही तो है उसके। तो माँ ने कहा कि संग ही कौन है, उसके साथ तो कोई भी नहीं है। पिताजी ने कहा संग ही है, संग ही तो संगीत है, संगीत है ना, उसके साथ वो अकेले नहीं है। ऐसा संगीत ऐसी चीज होती है कि गायन वादन नृत्य तीनों कलाओं को साथ लेके चलता है और सबको एक साथ मिलकर रहना सिखाता है संगीत। तो शास्त्रीय संगीत एक ऊंची पायदान है। देशी संगीत और मार्गी संगीत दो संगीत होते हैं। मार्गी संगीत तो वो होता था जिनमें अनहद नाद होता है, जो कि ईश्वर प्राप्ति के लिए उसको ये ऋषि मुनि उसका प्रयोग करते थे। दूसरा होता है देशी संगीत। देशी संगीत में एक होता है शास्त्रीय संगीत और एक होता है भाव संगीत। तो शास्त्रीय संगीत तो नियमबद्ध होता है, वो तो ऊंची पायदान है, लेकिन जो भाव संगीत है उसमें सुगम संगीत और लोक संगीत। अब सुगम संगीत ऐसी बढ़िया चीज है कि वो उसके दोनों हाथ में लड्डू है, वो शास्त्रीय संगीत भी ले लेता है और लोक संगीत से भी ले लेता है और उसके अपने फिर मौज उड़ाता है वो। अब जो लोक संगीत है वो मूल है शास्त्रीय संगीत के भी और लोक सुगम संगीत के भी। मूल में क्या है, लोक संगीत, क्योंकि शास्त्रीय संगीत जो है तय राग रागनिया कहाँ से उत्पन्न हुई, थाट से। थाट कहाँ से आए, सप्तक से। सप्तक कहाँ से आया, स्वरों से। स्वर कहाँ से आए, नाद से। नाद कहाँ से आए, तो मधुर ध्वनि से। ध्वनि कहाँ से आई, आम जनता से। तो लोक संगीत सर्वप्रथम इस दुनिया में आया और उसके बाद उसको नियमबद्ध करके सुगम संगीत और शास्त्रीय संगीत का रूप दे दिया गया। तो लोक सुगम संगीत में बहुत सारे फिल्मी गाने ऐसे भी हैं जिनमें लोक संगीत के धुने हैं। कैन चुराया, कैन चुराया म्यार बड्यालो, कैन चुराया, कैन चुराया म्यार बड्यालो। ये हमारा गढ़वाली लोकगीत है, ये घसियारी लोकगीत,
1: और इसका फिल्मी वर्जन हमने सुना है बिछुआ वाले सॉन्ग में। बिल्कुल,
0: चढ़ गए हो पापी बिछुआ। बहुत सारे लोकगीत हैं ऐसे जिनको की फिल्म संगीत फिल्म वालों ने उसको, क्योंकि वो तो विद्वान लोग हैं, वो थोड़ा सा सुनेंगे उसी में वो चमत्कार कर देते हैं, और उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया हमारा लोक संगीत। तो ये उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना उसको जीवंत रखा, जो कि इस दुनिया से बिल्कुल हमारे क्षेत्र में खत्म हो चुका था जी। इस तरह से
1: माधुरी जी, जैसे आपने कहा कि कुछ विद्वानों ने इनको सुना और उसको कहां से कहां पहुंचा दिया, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इन विद्वानों को यह भी बताना चाहिए था कि ये प्रेरणा उनको लोक संगीत से मिली, क्योंकि जब मैंने कहीं से प्रेरणा ली और उसको मैं एक्नॉलेजमेंट नहीं देता हूँ, उसको मैं वो धन्यवाद नहीं प्रदान करता हूँ समाज के सामने, तो वो कहीं ना कहीं व्यक्ति छुप जाता है, वो संगीत छुप जाता है, वो रिसोर्स जहां से मैंने वो प्रेरणा ली वो संसाधन छुप जाता है, और इस छुपने में ही कहीं ना कहीं उसका जो लाइफ है वो छोटा हो जाता है। तो जैसे आपने ये बिछुआ वाले सॉन्ग को मेरे को एकदम तुरंत से याद दिलवा दिया, मुझे वो फिल्मी सॉन्ग तो याद था लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसकी प्रेरणा हिमाचली गीत से आई है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि लोक संगीत को बचाने में या उसको संरक्षण देने में कौन से मुख्य आयाम होते हैं?
0: देखिए, लोक संगीत को संरक्षण देने के लिए तो मैं सोचती हूँ सबसे पहले अगर हमको संगीत के लिए हम समर्पित हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है और हमारी जो भावी पीढ़ी है उसका भी कर्तव्य बनता है कि अपने माता पिता से अपने मूल को जाने, क्योंकि मूल अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है, है ना। तो गुनेर जी की जो ये दो पंक्तियां मुझे हमेशा झकझोरती रहती हैं और शायद ये मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है कि भूल गया जो संस्कार वो जीवन खरा नहीं रहता, और जड़ से अगर जुदा हो गया तो पत्ता हरा नहीं रहता। जड़ हमारी

0: कठिन परिश्रम कर कांटों पर चली, तब मैं, पर मैं डिगी नहीं। ये उसने ही दिया, ऊपर वाले ने ही मुझे इसका ये गुण उसने ही दिया मुझे।
1: तो मैं माधुरी जी, तो मैं ये जैसे आपने अभी बताया कि आपका पथ कोई साधारण या सरल पथ नहीं रहा है, शुरुआत में आपके ही जीवन से करना चाहूंगा कि जब आपके आसपास में ऐसे लोग रहे होंगे जिनको आपने देखा होगा कि उन्होंने जीवन के कठिन परिस्थितियों में, जो सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ एक किशोरावस्था की कठिनता होती है कि क्या करें। आज भी हमारे टीनेजर्स इस दौर से गुजरते हैं कि अभी मुझे क्या करना, चलो पढ़ाई तो हो गई, व्हाट शुड बी माय फील्ड ऑफ लाइफ, मुझे क्या चुनना है। ये चुनाव करना बड़ा कठिन होता है। ऐसे में लोग जनरली वो फील्ड चुन लेते हैं जहां पर धन बहुत आसानी से दिखता है, इंजीनियरिंग हो गया, डॉक्टरी हो गया, या आदि आदि इस प्रकार के पेशे लोग चुन लेते हैं जहां से उपार्जन बहुत सहज लगता है। लेकिन आज भी हम ये मानते हैं कि कला, साधना, संगीत, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर धन उपार्जन शायद इतना ज्यादा नहीं है। और आज से कई वर्षों पूर्व आपने ये कठिन निर्णय लिया, तो क्या प्रेरणा थी, कैसा रहा आपका सफर, थोड़ा आपके बारे में बताएं।
0: जी, सबसे पहले तो मैं, अपने घर से ही इंसान सीखता है, और मेरे पिताजी जो थे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, और उन्होंने भी बहुत यातनाएं सही हैं, तो उनको ही देख देख कर मैं, मेरे को लगता था कि हम जीवन में अगर कुछ करना चाहें तो जितने भी हमारे बीच में रुकावटें आती हैं हमको उनको बिल्कुल अडिग होकर के उन रुकावटों को दूर कर देना चाहिए। लेकिन एक साथ ये सब साधे सब साधे सब जाए, एक ही मार्ग चुनना पड़ेगा। अब मेरे साथ ये है कि मुझे कला में भी बहुत अच्छी थी, मैं ड्राइंग में भी बहुत अच्छी थी, मैं ये क्या बोलते हैं उसके लिए
1: तीरंदाजी
0: ने बंदूक चलाने में भी नंबर एक थी मैं, क्योंकि लैंसडाउन हमारा ये पूरा गढ़वाल राइफल्स का ये पूरा सैनिक छावनी है, तो वहीं पर जीवन मेरा बीता। तो देखा, देख देख के मेरे दिल में भी वही ये बंदूक भी चलाना मैंने सीखा, और वो भी बहुत अच्छा था मेरा। मुझे, मैं रेसर भी बहुत अच्छी थी, घुड़सवारी भी कर लेती थी, लेकिन सब एक किनारे रख करके एक ही सूत्री कार्यक्रम जब हम करते हैं तो उसके फल स्वरूप हम सब कुछ कर सकते हैं। कभी कभी
1: तो संगीत को क्यों चुना आपने? संगीत आप सब में अच्छे थे, फिर संगीत को क्यों चुना?
0: संगीत इसलिए चुना उसमें कि इसमें जो है ना, इसमें गायन वादन नृत्य तीनों है। और जब मैं गाती थी, जब अकेले बैठ रहा हूं तो गा रही हूँ, जब थोड़ा सा मन कर रहा है कि नृत्य करूं तो नृत्य भी कर दिया, और फिर कभी कभी कनस्तर भी बजा लेती थी मैं, जब साज नहीं था ना तो कनस्तर बजा लेती थी। बंदर आ रहे थे गांव में जाती थी, 2 महीने की छुट्टी होती थी हमारी, और गांव में जाते थे हम जो है कनस्तर बजाते बजाते बंदरों को भगाते थे, तो उनके सामने गाना भी गाती थी मैं, फिर कनस्तर बजाते थे।
1: हाँ, ये तो बहुत अच्छा है कि बंदर भी भाग गए और साथ में आपने एंजॉय भी कर लिया। मुझे यहाँ एक चीज पूछना था, जो शास्त्रों में लिखा है गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम मुच्यते, तो ये जो है क्या ये लोकगीत के लिए भी है?
0: जी हाँ, ये लोकगीत के लिए भी है। सबसे पहले गाना ही हुआ, और गाने के बाद फिर थोड़ा सा मनुष्य ने जो है, जब प्रकृति में मनुष्य आया होगा, जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई होगी, सृष्टि की उत्पत्ति हुई होगी, तो हमारे लोकगीतों में है कि

जल थल में जब सबसे पहले ओम शब्द स्थापित हुआ तो उससे आहद नाद पैदा हुआ, तो वही था। और उसके बाद मनुष्य कीड़े मकोड़े सब पैदा हुए होंगे, उसके बाद मनुष्य जन्म हुआ। और मनुष्य सबसे पहले बोलना सीखा होगा उसने, और उसने फिर जब वो खुश हुआ होगा तो गाना शुरू कर दिया उसने, जब और खुश हुआ तो बजाना शुरू कर दिया, और जब पराकाष्ठा हो गई नृत्य, जब बहुत ही खुश हो गया तो नृत्य करना भी शुरू हो गया। तो यही तीनों कलाओं के समावेश को संगीत कहते हैं इसीलिए। और नृत्य जो है वो वादन के अधीन है, वादन गायन के अधीन, जब गाया जाएगा तो उसमें वादन होगा।

0: वादन होगा तो नृत्य होगा। और वैसे तो हर चीज में जो है ताल है, हर चीज में लय है, चाहे हम सांस ले रहे हैं, चाहे पानी बरस रहा है, चाहे कुछ भी है, सब में ताल है। और ओम शब्द तो अपने आप में गायन है ही। तो इस तरह से इन तीनों कलाओं के समावेश को संगीत कहते हैं और एक दूसरे के पूरक है।
1: और आपके पिताजी ने ये भी कहा था कि संग ही तो है।
0: हाँ जी।
1: तो इसीलिए संगीत का ये परिभाषा जो है मुझे बड़ा अच्छा लगा कि संग ही तो है। संगीत हमेशा हमारे अंदर रहता है। हाँ। कभी हम उसको जाहिर करते हैं, कभी नहीं करते हैं, लेकिन हमेशा हमारे साथ रहता है।
0: बिल्कुल। और यही संगीत मेरे साथ नहीं होता तो मैं कोरोना पीरियड में जो है मैंने 15 किताबें लिखी।
1: वाओ।
0: वो जो अंदर मेरे दिमाग में जितना रहा होगा वो सब मैंने किताबों में लिख दिया, और वो भी स्वरलिपि सहित। स्वरलिपि सहित वो मर नहीं सकता। वो संगीत ऐसा लोकगीत है, ऐसे ऐसे लोकगीत है कि बहुत बढ़िया लोकगीत है।

0: ये बाजी गदाना आयूं चाहे आह कितना बढ़िया है। इसको कैसे तिरा सकती हूँ मैं, नहीं तिरा सकती।
1: इसका तो मतलब क्या था वैसे जो आपने अभी गाया?
0: ननद भाभी दोनों हैं वो, और वो नदी के किनारे खड़ी हैं और वो घास काटते हुए, उन्होंने अब घर जाना है वापस, तो भाभी ननद से कह रही है कि ननद ननद रानी ये जो नदी बह रही है इसके उस तरफ जाएंगे और वहां मीठी बेर खाएंगे। और ननद फिर बोल रही है भाभी से कि भाभी तुम ज्यादा नहीं हो रही हो, ज्यादा लालच नहीं कर रही हो बेरी बेरी के लिए, तुम्हें लगता नहीं है कि इतनी नदी बह रही है, बह जाओगी, और ये नदी आई हुई है वहां जाने की जरूरत नहीं है ज्यादा उसके लिए। मतलब नीति परक लोकगीत भी है, कितनी बढ़िया जो भाभी ननद।
1: और मुझे ऐसा लगता है इस तरीके का संवाद जो है ननद और भाभी का आजकल टीवी में देखने को नहीं मिलता। टीवी में भी तो ननद भाभी एक दूसरे का वो एक दूसरे के पीछे ही पड़े हुए होते हैं, लेकिन इस तरीके के संवाद जो है ये इतने मधुर हैं, इतने रोमांचक हैं और इतने संवेदनशील हैं कि ऐसे संवाद अगर हमारे टीवी पे भी आए, सिनेमा में भी आए और घरों में भी आए, तो घरों में भी इसका असर होगा। ननद और भाभी एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते हैं, वो एक दूसरे की सहेली भी हो सकते हैं।
0: इतनी बढ़िया सहेली होती है कि इसके इसके बराबर कोई नहीं हो सकता। देवर भाभी भी हमारे यहाँ बहुत अच्छी दोस्ती होती है उनमें। और कभी कभी तो ऐसे भी मैंने देखा है कि अगर जवान है और बहू, उसने उस पहले जमाने में जो है बाल भी भाभी हो जाते थे और सास भी खत्म हो गई, ससुर जी भी खत्म हो गए, और तब जो है भाभी नहीं पाला देवर। कितनी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया बात है। वो भाभी भी माँ भाभी, माँ समान है वो भाभी। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोकगीत हैं जिनको कि मैंने संरक्षित कर दिया किताब के रूप में
1: अलग, और वो भी लॉकडाउन के समय।
0: हाँ,
1: जब लोग परेशान हो रहे थे कि क्या करें, हाँ, समय नहीं कटता है, उस समय आपने समय को इतने अच्छे से पिरो दिया, बहुत बढ़िया।
0: मैं सोचती हूँ, मैं तो अपने को ही दोषदारी समझती हूँ उसमें, क्योंकि ईश्वर ने अगर मेरे को इस चीज के लिए भेजा है तो फिर मुझे उसका संरक्षण भी करना चाहिए था। जब मैंने सब महिलाओं को सिखाया लोक संगीत और वो उनको स्टेज पर मैं प्रदर्शन करवाती हूँ और लोग सब बहुत खुश होते हैं, क्योंकि लोक संगीत तो लोक संगीत है, उसके बराबर तो कुछ नहीं है दुनिया में। तो तब जो है फिर मेरे को, मैं उनके साथ जाने लगी थी तो फिर मेरा ये सब छूट गया था कि किताब कैसे लिखूं। तो मेरे लिए ईश्वर ने कहा कि चल एक जगह में बैठ जा और ये है तेरे सर, उसने सजा मुझे दी। अब तो फिर मैंने उसका सदुपयोग करा और फिर उसको जो है वो वरदान साबित हो गया मेरे
1: जी। अभी जब आपने कहा कि ईश्वर ने आपको इस कार्य के लिए नियुक्त किया, तो वही मैं वहां से ही फिर से शुरू करना चाहूंगा कि जब आपने चुना कि भाई संगीत को ही मुझे लेना है, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं जिनमें मैं पारंगत हूँ, बट संगीत वो है जिसको मुझे करने में सबसे ज्यादा मजा आता है, तो क्या क्या लोगों ने आपको नहीं बोला होगा कि अरे इसमें कुछ नहीं रखा है, तुम पढ़ लिख करके कुछ और कर सकती हो या कुछ और कर लो, या आपने अपने दोस्तों को भी देखा होगा कुछ और करते हुए, तो ये जो अंदर में आया आवाज कि नहीं ईश्वर ने मुझे इस चीज के लिए चुना है, इसका कोई घटना, कोई कहानी, कुछ ऐसी बात जो आपको लगता हो कि हाँ ये वो बात थी जिसकी वजह से मैं संगीत के साथ जुड़ी रही?
0: असल में ऐसा है कि मेरी आदत ये है, अगर कोई किसी का वो करता है कि ये नहीं है, बेकार है, ये बेकार है, तो मैं उसको अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ। तो ये मेरी आदत है, अगर कोई किसी को कुछ नहीं आ रहा है और वो उसे बोले बिल्कुल बेकार खाना बनाया, तो मैं उसको बोलती हूँ कि ऐसे बना, ऐसे भी बनता है, ऐसे भी कर। तो सकारात्मक रूप में लेंगे आप अगर सब चीजों को, तो वो सकारात्मक होगा। तो वही मेरे साथ भी हुआ कि जब मैं 2.5 साल की थी तो हमारे यहाँ लैंसडाउन में, उस समय उस बहुत पहले 50 के दशक में, तो उस समय मेरे को वहां पर एक डुगडुगी पिटी कि छोटे बच्चों को, 5 साल तक के बच्चों को यहाँ पर ले आए, हम उनको एक कोई कार्यक्रम करवाएंगे। तो मेरे पिताजी मेरे को ले गए वहां, तो वहां पर मेरा सिलेक्शन हो गया उसमें, और मेरे को राधा बनाया उन्होंने, तो अरे एक लड़की और थी उसको कृष्ण बनाया, तो हम लोग दोनों फर्स्ट आए उसमें पूरे प्रदेश में। और जब फर्स्ट आए तो फिर मेरा एडमिशन करा दिया उसी समय और जब स्कूल में एडमिशन हो गया तो फिर रोज मेरे ही गुणगान हो रहे थे वहां पर, फिर कभी मेरे को स्टेट रैली में ले जा रहे, कभी मेरे को डिस्ट्रिक्ट रैली में ले जा रहे, और सबके मुंह पर मेरा ही नाम था सब पे। तो यही होता है, तो वो ईश्वर ने पहले मेरे को खूब वो दी, क्या खूब, मतलब सबकी नजरों में बहुत बढ़िया बना दिया। और उसके बाद जब मैं 6ठी क्लास में आई तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि बेटा अभी स्टेज पर नहीं जाना और गाना भी नहीं है, हमारे यहाँ अच्छा नहीं मानते लड़कियों के गाना बजाना नाचना। तो फिर मेरे को इतना बुरा लगा कि मैं तो बिल्कुल जमीन में धंस गई और मैं जो है फिर बीमार पड़ गई। फिर एक मुरादाबाद की रहने वाली थी प्रिंसिपल हमारी, तो वो हमारे घर में आई। उन्होंने पिताजी से कहा कि आपने क्या कराई, आप जो है माता पार्वती के पुजारी हैं, आप उनको मानते हैं, और आपने जो है सरस्वती माता का मुंह बंद कर दिया, आपको इतना बड़ा वरदान दिया उन्होंने और आपने उनका मुंह बंद कर दिया। तो पिताजी ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। फिर पिताजी ने कहा कि मेरे को जो है ना मेरे समाज से मेरे को निष्कासित कर दिया जाएगा और समाज से मेरे को मेरा हुक्का पानी बंद हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं लड़की को नहीं गायन वादन नहीं करवा सकता। तो उन्होंने कहा कि आप छुप कर भी तो करवा सकते हो इसको, आप इसको मरते हुए देखोगे क्या, ये जिंदा नहीं रहेगी इसके बिना। तब फिर पिताजी ने कहा कि ठीक है फिर ऐसे करता हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए तो करूंगा ही, मुझे जो समाज से लुक करके। तब वो मुझे छुपा करके तब नजीबाबाद ले जाते थे और 4 दिन के लिए ले जाते थे, तो बोलते थे बेटा बेटा 40 दिन का याद करेगी, तू जाने तेरा काम जाने, अगर तू संगीत सीखना चाहती है तो। तब उन्होंने मेरे को 4 दिन अगर ले गए होंगे तो फिर उन्होंने कहा कि किसी से मत बोलना, झूठ भी बोलने की जरूरत नहीं है और किसी से बोलने की भी जरूरत नहीं है। अगर तेरे से कोई पूछे कहाँ गई थी तो ऐसे बोलना पिताजी के साथ गई थी, बस पिताजी के साथ गई थी, खत्म बात। और उसके बाद फिर मैंने छुप करके, हमारे यहाँ एक होता है एक कमरा होता है, कमरे के ऊपर एक छोटा सा कमरा जैसा बनाया रहता है, वहां सामान रखा रहता है, तो उस कमरे में जाकर के मैंने रियाज करा बहुत धीरे आवाज में, बहुत धीमे आवाज में, नीरे गरे नीरे सा नीरे गमांगरे, ऐसे करके ताकि आवाज बाहर ना जाए। और जैसे ही मैंने हाई स्कूल करा अपने स्कूल से, उसी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज नेस्टोन में पहली गढ़वाली महिला म्यूजिक टीचर बन गई मैं। और उसके बाद तब सबको पता लगा है ये लड़की कहाँ जा रही है भाई। अभी मेरे को बहुत सारे पुराने मेरे जो मेरे मेरे बुजुर्ग हैं वो मेरे को मिलते हैं तो मेरे को मेरी बात बताते हैं कि हम बेटा ऐसे सोचते थे, हमने सोचा कि ये फ्रॉक पहनने वाली लड़की यार ये साड़ी पहन के कहाँ जा रही है, ये रोज साड़ी पहन के कहाँ जाती रहती, कैसे ड्रामा करती रहती है, ये इतने ड्रामाबाज है, ऐसे ऐसे बोलते थे हम। अतः पता लगा हमें कि तू तो टीचर बन गई, तो सबने कहा कि ऐसे टीचर कैसे बन जाएगी, ना इसने बीएड करा ना इसने कुछ करा ना इसने बीटीसी करी ना कुछ करा। तब सबको पता लगा कि भाई गाना बजाना भी विषय होता है। तब उन्होंने कहा बेटा हमारे बच्चों को भी कर ले। तब हजारों बच्चों को सिखाया, आज वो प्रिंसिपल होके बड़े बड़े कलाकार होके रिटायर हो रहे। उसके बाद फिर एक प्रेरणा स्रोत बनी थी। और दूसरी चीज, जब गाँव में जाती थी मैं तो अपनी भाभी दादी नानी सबके साथ उनके पल्ला पकड़ करके और जंगल चल जाती थी, और तब वहां पर जोर जोर से गाती थी मैं, बहुत जोर जोर से, तो जितनी देर मैं गाती थी उतनी देर सारे पक्षी चुप रहते थे और जैसे ही मैंने गाना बंद कर देती थी वैसे चिल्लाना शुरू कर देते पक्षी। तब मेरी भाभी मुझसे कहती थी चल तू ही गा, इन्होंने हमारा दिमाग खराब कर दिया, कितना चिल्ला रहे हैं ये। फिर मैं गाना शुरू कर देती थी तो वहां कोई नहीं था, क्योंकि गांव में कोई नहीं था, वहां जंगल होता था बिल्कुल, वहां की आवाज कहीं नहीं जाती थी, जंगल में ही गुम होती थी। तो ये भी था मेरे साथ, जब कभी मेले वेले में गई होंगी तो वहां पर अगर कोई बुजुर्ग महिला मेरे को मिली तो पिताजी मेरे को अगर जलेबी उलेबी खाने के लिए देते थे तो मैं उनको खिला देती थी कि दादी मुझे गाना सुना दो आप, तो मुझे गाना सुनाती थी, है ना।

0: जी अभी इस तरह से लोकगीत उनसे सुना, पर एक जब आपकी लगन अच्छी होती ना तो ईश्वर रास्ता जरूर देता। पहले उसने मुझे टीचर बनाया, फिर उसने मुझे आकाशवाणी नजीबाबाद में भारत की पहली महिला म्यूजिक डायरेक्टर बनाया। भारत की पहली महिला, उस जमाने में सब पुरुष होते थे म्यूजिक डायरेक्टर, पहली म्यूजिक डायरेक्टर बनी महिला। तो वहां पर भी फिर मेरे को एक मंच मिल गया, एक रास्ता मिल गया। तब मैं हर गांव में गई और गांव में जा जाके जितनी महिलाएं अच्छे गाती थी उनको रेडियो से अप्रूव करवाया, फिर उनको उनको कलाकार बनाया। वो भी उनका भी जीवन सुधर गया और फिर जो है वही लोकगीत जो है अपने दिमाग में भरती गई और अब लॉकडाउन में वो सारे लिख दिए, क्योंकि वो लोग तो इस दुनिया से जा चुके, जिससे मैंने सीखा वो तो इस दुनिया से जा चुके, उन बेचारों को किसी ने पूछा तक नहीं। तो फिर मेरे को तब फिर मैंने लिखा, फिर आज मैं सबके सामने ये बताती हूँ कि भाई ये हमारा लोकगीत है कितना सुंदर है। अब जैसे वो दया रे दया, वो जो था दया रे दया चढ़ गए पापी पिछवा, ऐसे बहुत सारे लोकगीत हैं। ओ पार भीड़ की बसंती चोरी रुमा झूमा गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गई है कि नहीं, कितने बढ़िया बढ़िया लोकगीत हैं, इतने सुंदर सुंदर लोकगीत हैं। और उनमें क्या नहीं है, रहन सहन खान पान रीति रिवाज सब कुछ है लोकगीतों में। लोक संस्कृति के असली असली संवाहक हैं लोकगीत, उनमें सब कुछ है। अगर एक माँ का बर्ताव अच्छा नहीं था तो वो भी लोकगीत में गाए गए, अगर एक सास का बर्ताव बहुत अच्छा है तो वो भी लोकगीत में, अगर एक सास का बर्ताव अच्छा नहीं है तो वो भी लोकगीत में, उसमें कोई नहीं दुराभाव कहीं नहीं है, सब यथार्थ तो घेरा गया है सच्चाई। और वो जो है आज वो
1: इसका मतलब है? इसका मतलब जो लोकगीत है वो जस का तस है, जैसा किसी ने अनुभव किया वैसा उसने रख दिया, उसमें कोई लेप शेप या उसमें किसी प्रकार का ऑर्नामेंटेशन नहीं किया गया है, डाइल्यूशन नहीं है,
0: ना ना यथार्थ है, सारा यथार्थ है, जैसा था वैसा ही है। और ऐसा आश्चर्य भी होता है लोगों के कि ऐसा भी हो, और धुने कितनी सुंदर थी, कितनी सृजनात्मकता थी उन महिला उन लोगों में कि कितनी सुंदर सुंदर धुने उन्होंने करी। और वही राग जो है फिर हमारे राग तो ये है ना कि कोई धुन है कोई वो है और उनको नियमबद्ध करके वो राग का नाम रख दिया। अब जैसे वो है सा

0: बाजी भूपाली राग है इसमें, कितना सुंदर है। गजिया गुड़ी के नवेली गुड़ी, ये जो है दुर्गा राग, कितने सुंदर सुंदर राग है। ऐसा भी देखा मैंने कि कर्नाटक पद्धति का राग भी है हमारे लोकगीतों में,
1: एक सुनाई है कर्नाटक पद्धति शैली का।

0: गोपिका बसंत राग। अभी इसी राग को अगर दक्षिण भारत के लोगों को मैं इस लोकगीत को सिखाऊंगी तो कितना बढ़िया गाएंगे वो। आहा, पूरा विश्व मतलब वसुधैव कुटुंबकम है इन लोकगीतों में, पूरा विश्व।
1: माधुरी जी सच में आज मुझे ना बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मैं जागा हूँ, मैं जैसे सो रहा था, क्योंकि मुझे हमेशा से ऐसा लगता था, मैं बचपन से संगीत में रुचि रही है, सीखा है, और हमेशा से मुझे ऐसा लगता है जैसे शास्त्रीय संगीत जो है वो नींव है, ऐसा लगता था
0: ना।
1: लेकिन और ऐसा लगता था कि भाई लोक गीतों में शास्त्रीय संगीत कैसे जाएगा, क्योंकि किसी के पास समय ही नहीं है वहां पर कि रोजमर्रा के कामों को छोड़ करके कोई संगीत सीखने बैठे, ग्रामर सीखे, व्याकरण सीखे संगीत का। तो मुझे ऐसा लगता था शायद लोकगीतों में इतना शास्त्रीय व्याकरण नहीं है, लेकिन आपसे बात करते हुए, आपकी बातों को सुनते हुए ऐसा लगता है कि भाई ये तो मैं उल्टा सोचता था, सब कुछ शुरू तो लोकगीत से हुआ है और धीरे धीरे वो परिष्कृत होते हुए शास्त्रीय रूप लिया है उसने
0: जी। और फिर मैं सोचती हूँ ना कि ईश्वर जो है, ईश्वर ने मुझे बात बात में मुझे उसने सजेशन भी दिया है मुझे। जब मेरा इंटरव्यू हुआ था लखनऊ में, वो संगीत निर्देशिका के लिए मेरा इंटरव्यू हुआ जब लखनऊ में, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि कोई लोकगीत गाइए आप, तो मैंने गाया था, तो उन्होंने कहा कौन से राग में है, मैंने कहा ये भूपाली राग में है, तब उन्होंने कहा भूपाली राग सुनाइए, फिर मैंने भूपाली राग सुनाया। तो इस तरह से मेरे को लगा कि मेरे को यही लोकगीतों पर PhD करनी चाहिए। तो तब मैंने कहा कि गढ़वाली लोकगीतों में राग रागनियां, तब मैंने उसमें बताया कितने राग जो है ये लोकगीतों से ही उपजे।
1: ये भी एक इंटरव्यू है लेकिन लखनऊ वाला नहीं, ये तो दिल से दिल का इंटरव्यू हो रहा है। इसमें अगर आप वो गीत गा सके जो आपने अपने इंटरव्यू में गाया था तो बहुत अच्छा लगेगा।
0: बस यही था कि जिया बिना कीड़ा जिया ढोल बाजे, कितना सुंदर। और ये मैंने बचपन में जब गांव में गई होंगी वो उसमें, तो वहां पर मैंने उनसे सुना। और ये नाग देवता का, नाग भाई थे तो उनके जो है माता थी तो बहुत।
1: और ये जो गीत आपने गाया, इस गीत में झेणामता झेणामता मैंने आवाज वर्ड सुना जो कि शायद ओडिसी डांस में भी आता है।
0: अब ये देखिए, आपने शास्त्रीय संगीत में देखा होगा त्रिवट या चतुरंग, आपने सुना उसमें देखा होगा, तो वही त्रिवट ही है इसमें। इसमें शब्द भी है, अगर इसमें जो है हम वो स्वर बोल देंगे, और उसमें जो है झेणामता झेणामता, हमारे यहाँ ढोल होता है, ढोल सागर, तो ढोल के बोल है वो झेणामता झेणामता।
1: हाँ। तो और यही ढोल के बोल जो है ओडिसी नृत्य में भी आता है, झेणामता झेणामता। तो मतलब कहीं ना कहीं देश के अलग अलग हिस्सों में जो भी संगीत बसा हुआ है वो कनेक्टेड है, वो आपस में जुड़े हुए हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए संगीत जब ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई वो हमारे बद्रीनाथ क्षेत्र से, वहीं से हुई, ठीक है। उसके बाद जो है मनुष्य जन्म भी शुरू हुआ, लेकिन संगीत की उत्पत्ति भी भगवान शंकर ने यहीं पर, क्योंकि पार्वती का जन्म भी यहीं हुआ, भगवान शंकर भी यहीं निवास है, तो वो संगीत की उत्पत्ति भी यहीं से हुई। तो वो ही फिर सारी दुनिया में फैल गई धीरे धीरे धीरे धीरे। तो स्वाभाविक है यहाँ का, यहाँ उत्तराखंड में जो है ना पूरा हिंदुस्तान निवास, पूरा विश्व निवास करता है। इसीलिए तो मैं वसुधैव कुटुंबकम की तरह उसको प्रणाम करती हूँ। आप देखिए कि उड़ उड़ रे मारा काड़ा रे कागड़ा, जेदे मारे पियो जी घर आमे, जेदे मारे पियो जी घर आ, खीर खांडला जीवन जीमाऊ, है कि नहीं, हमारे यहाँ भी है सही।

0: का सुना की ठूंडी है।
1: मतलब हे कागा, तुम वृक्ष में बैठो और सबको संदेश भेजो और निमंत्रित करो सबको, और शगुन वचन बोलो तुम, और तुम्हारे बराबर वचन कोई नहीं बोल सकता। और तुम ये करोगे तो तुमको मैं सोने की चोंच दूंगी, ये सोने की चांदी की तुम्हें खुर दूंगी, और तुम्हें बहुत सारी चीजें दूंगी, खीर खांड खीर खिलाऊंगी। कितनी बढ़िया बात, वही भाव वहां है, वही भाव यहाँ। कोई गुजराती गरबा देखिए आप, गुजराती गरबा देखिए आप, कि गौराबा पर आधारित होता है गरबा। गौराबा गौराबा का ही, गौराबा से ही गरबा बन गया, निमित्त गौराबा गौराबा की है। और गौराबा के पास जो है पूरे विश्व भर की जो राजकुमारियां होती थी उस जमाने में, वो उनसे शिक्षा लेने आती थी। तो गुजरात से भी आई होंगी। अब गुजरात से कौन आई, ये तो आप भावी पीढ़ी को ढूंढना पड़ेगा, गुजरात से कौन राजकुमारी आई माता से सीखने के लिए। और तब उन्होंने सीखा, माता ने उनको चौंफला लोक गीत सिखाया, वो भी ऐसे ऐसे कर ऐसे वो होता है, और उसमें नृत्य भी बिल्कुल पैचाप भी वही है, हाथ भी वही है, सब चीज वैसी है, भाव भी वैसी, और धुन भी मतलब सब कुछ एक जैसा है। तो इस तरह से तो वो चौंपला लोक नृत्य सीखा होगा उन्होंने। तो वो अपने साथ जो है ना तो धुन ले जा पाई, ना वो उसके बोल ले जा पाई, वो अपने साथ क्या ले गई, रिदम। और रिदम के साथ वहां जब ले गई तो वो स्वाभाविक है, भगवान कृष्ण का जो वो डांडिया है उसके साथ उन्होंने उसको मिक्स कर दिया, और वो गरबा के नाम से उसको वो करा, संरक्षित किया उन्होंने, तो उन्होंने उसको जीवंत कर दिया इस चौंपला को। तो ये है उसका घोर।

0: हरिद्वार है, कोई गर्व कोई फर्क है, कुछ फर्क नहीं, एक ही चीज। तो हम इस तरह से पूरे विश्व को हम एक सूत्र में बांध सकते हैं संगीत के द्वारा। तो इसमें बहुत काबिलियत है, बहुत ज्यादा संग ही रहता है, कोई इसको सीमा रेखा में नहीं बांध सकता इसको सीमा।
1: ये जो आपने बात कही कि संगीत जो है पूरे विश्व को जोड़ सकता है, जोड़ता ही है
0: जी,
1: कुछ भी नहीं तो सिंपल हैप्पी बर्थडे टू यू भी जोड़ता है लोगों को, सब जगह की हाँ, धुन में गाते हाँ, हैं लोग
0: हाँ,
1: लेकिन संगीत जो है कई कुरीतियों का भी सामना कर सकता है, उनको भी तोड़ने का कदम उठा सकता है। क्या आपने अपने जीवन काल में इस चीज को होते हुए या किया है या करते हुए आपने कुछ ऐसे उदाहरण है आपके पास जहाँ पर आपने लोक संगीत के माध्यम से कुछ कुरीतियों को तोड़ा है या उनके तरफ लोगों का ध्यान खींचा है?
0: शुरू में तो जो है शास्त्रीय संगीत सीख करके फिर मैंने उसका वो कुरीतियों को तोड़ा। फिर दूसरी चीज ये है कि पहली महिला म्यूजिक डायरेक्टर बनी, वो भी एक सकारात्मक मार्गदर्शन था मेरे सबके लिए। और तीसरा चीज ये है कि यहाँ पर जब देहरादून आई मैं, तो यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ किसी को कुछ आता ही नहीं है, कुछ नहीं आता था। फिर वो महिलाएं जो घर में खाना बनाती हैं, क्योंकि एक माँ सब कुछ काम कर सकती, सफाई भी वही करती है, खाना भी वही बनाती है, डॉक्टर भी वही बनती है, सब कुछ वही, बच्चे भी वही पालती है, सब कुछ कर सकती है, तो इस संगीत क्यों नहीं बना सकती वो आगे, इसको आगे क्यों नहीं बढ़ा सकती। तब फिर मैंने उनको मांगल लोकगीत जो मैंने आपको सुनाया था सबसे पहले, वो मांगल लोकगीत संस्कार लोकगीत फिर मैंने उनको सिखाए अपने घर में। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी थी कि हमको दीदी ये मांगल गाने के लिए ना किसी के घर भेजेंगे नहीं हमारे हाथ में, मतलब घर वाले। तो मैंने कहा तुम्हें नहीं भेजेंगे तो मैं जाऊंगी ना, जो मेरे साथ चलना चाहे चले। तो बहुत सारे कुछ लोग ऐसे थे जो मेरे साथ चले गए। जब मैंने एक जगह गाया तो मैंने मेरे भाई के लड़के की शादी थी, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा सुन इनको सबको 1000-1000 रुपए टीका लगा दे और इनको दक्षिणा दे दे 1000-1000 रुपए। तो जब सब उनको पता लगा कि है पैसे भी मिलते हैं इसमें, तब सबसे बड़ा रुपया, तो फिर सबके सब तो है आज जो है सैकड़ों हजारों ग्रुप बन गए, क्योंकि जिनको मैंने सिखाया उन्होंने सबने ग्रुप बना लिया अपने। कुछ सीखा तो सही, आज वो कहां से कहां लाखों रुपया कमा रही हैं वो महिलाएं, अपना घर चला रही हैं, अपने सशक्त कर दिया उन्होंने अपने आप को, और किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, पति से भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, बच्चों का देखरेख भी करती हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को एडमिशन करा रही हैं, इससे बड़ी बात और क्या होगी। दूसरी चीज यह है जब इन महिलाओं ने जैसे ग्रुप बना लिए, तो इन्होंने फिर पुरुष वर्ग के उसमें आश्रय में रहे कि वो ढोलक बजाएंगे, वो हारमोनियम बजाएंगे, तब हम उनके साथ जाएंगे, या हम कैसे करें कैसे करें। तो मैंने कहा तुम ढोल दमाऊ सीखो, तो ढोल दमाऊ हमारी बहुत पौराणिक परंपरा है, वो खत्म हो चुकी है। तो जब पुरुष वर्ग नहीं कर रहा है उसको तो तुम करो, तब उनको उनके गले में ढोल डाल दिया मैंने। तब फिर वो जो है मेरे साथ, तब उन्होंने ढोलक वो करा। तब तक यहाँ पर एक कोई IAS ऑफिसर थी, उन्होंने कहा कि दीदी आज जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन जरा आप उनको यहाँ स्टेज पर करा दे। तो मैंने यहाँ पर उनको स्टेज पर भी उनको ढोल दमाऊ बजवाया मैंने उन महिलाओं से। तो सारे कुछ लोग उसमें ऐसे भी थे जो कि नकारात्मक भी होते हैं, तो उसमें एक बुजुर्ग महिला थी, तो वो मेरे पास आई, तुमने क्या करा ये महिलाओं के गले में डाल दिया ढोल, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ नहीं होता होगा, मैं कर सकती हूँ इसको। तब उसने कहा, मैंने कहा तुम लोग बन गए अंग्रेज और तुमने अपनी संस्कृति सब खत्म कर दी, तुम हो गए अंग्रेज, तुमने अपनी पोती के लिए एक ब्यूटी पार्लर खोल दिया, किसका काम है बताओ, जवाब दो, किसका काम है, जो हमारे भाई हैं उनके उनका काम है, तुमने भी तो अपनी पोती को उस लड़की पुरुष वर्ग का काम करवाया, तो तुमने क्यों करवाया, तुमने उस समय क्यों नहीं सोचा ये चीज। बिल्कुल चुप होगी, ऐसी बैठ गई होगी जिसकी कोई हद नहीं है ना। तो ऐसे उनके लिए जवाब भी बहुत सकारात्मक होना चाहिए, तब वो सकारात्मक सवाल से कोई सामने उसको डिनाई नहीं कर सकता है ना, ये बहुत जरूरी है।
1: और माधुरी जी, जैसे आपकी ये कहानियों को मैं सुन रहा हूँ तो मुझे भी और मैं समझता हूँ हमारे श्रोताओं को भी ये लगता होगा कि संगीत ना केवल हमारे अंदर रस लाता है लेकिन हमको सशक्त भी बनाता है, सामना करने की भी शक्ति लेकर के आता है और हमारे अंदर उपार्जन के नए नए तरीके ढूंढ के लाता है। जैसे मांगल गाने वाली महिलाओं को एक उपार्जन का साधन मिल गया कि भाई मैं तुम्हारी मंगल कामना कर रहा हूँ लेकिन उसमें करते करते मेरे परिवार के लिए भी मैं कुछ संजो सकता हूँ, ये एक बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसमें जो अभी की पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, जो प्रेजेंट जनरेशन है, उसको इसमें भी इतना ही मजा आता है जितना आपको या आपके जनरेशन के लोगों को आता है?
0: देखिए जब मैं उनके सामने ना वैज्ञानिक रूप से सामने रखती हूँ किसी चीज को, तो उसको मानते हैं वो, और फिर मेरे पास सीखने भी आते हैं, जैसे हमको ये वाला सिखा दीजिए। अब हजारों लोकगीत हैं, तो उनमें से अगर कुछ भी सीखेंगे तो वो भी बहुत है, बहुत बड़ी चीज है। अगर अगर 100 बच्चों में से 10 में नहीं, 10 ने भी सीखा ना, वो भी बहुत बहुत बड़ी चीज होती है। क्योंकि जो 100 बच्चे में 90 लोग कुछ भी करें तुम चलो कोई, पर 10 लोग अगर सीख रहे हैं तो बढ़िया तरह से सीखें और उसको फिर आगे बढ़ाएं, तो उसमें जो है उसमें सकारात्मकता होती है। दूसरी चीज ये होती है कि उसमें सबका भला होता है, और उसमें कोई जो है ना, कोई जिस समय वो इधर उधर कोई उठपटांग बात सोचता है तो उस समय संगीत भी अपने साथ रहता है, तो फिर उसको सकारात्मकता भी मोड़ देता है, है ना। जैसे देखा आपने कि चाहे कितने बड़े हो जाओ, चाहे कितने बड़े भी हो जाओ तुम, और उसके बाद तुमको जमीन में कोई पटकता है, बहुत बहुत सारी ऐसी होते हैं कि तुम्हारे को उसकी भाषा अच्छी नहीं लगती, तुमको उसने विचलित कर दिया, तुम्हारे लिए उठपटांग बात कर दी, तो अगर तुम्हारे साथ संगीत है ना, तो तुम एक वैसे ही दर्द दर्द वाला गाना गा दोगे तो उससे तुम्हारा सारा दर्द गायब हो जाएगा, है ना। ऐसे ही होता है, जब तुम्हारे में खुशी होती तो तुम खुशी का गाना गाते, जब तुम अकेले रहते हो, मुझे अकेले रहने दो, तो अकेले कमरे बंद करके भी बैठा हुआ है कोई और उसको रो रहा है वो, तो उस समय भी अगर कोई चाहे भजन गाए, चाहे वो फिल्मी गाना गाए, चाहे वो सुगम संगीत का कोई भी गाए या लोकगीत गाए, जो भी गाएगा, तो उसको उसका साथी होता है, वो उसका दर्द खत्म कर देता है, ये भी होता है। अब मुझसे लोग बोलते हैं कि दीदी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, अरे मैं इनका क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरे साथ है ना ये, सब एक जैसे नहीं होते।
1: तो इसका मतलब भले सामने जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, भले सबके सब इस चीज को नहीं समझे और ना अपना सके, लेकिन कुछ भी अगर अपनाते हैं तो भी ये बहुत बड़ी बात है। और उन कुछ लोगों को ढूंढने के लिए आपने अपने जीवन को हमेशा से तत्पर रखा है, एक तपस्विनी की तरह आपने तपस्या की है। शुरुआत आपने जंगल में पक्षियों को गीत सुनाने से की थी, लेकिन कब उनको गीत सुनाते सुनाते आप वो कोकिला बन गए जो पूरे समाज को गीत सुना रही, इसका आपको भी नहीं पता चला। लेकिन नजीबाबाद से आपका कुछ विशेष कनेक्शन है, क्योंकि आप सीखने भी वहीं जाते थे, आकाशवाणी के डायरेक्टर भी आप वहां के बने, तो नजीबाबाद के लोग जब सुनते थे आकाशवाणी में आपके कार्यक्रमों को, कोई ऐसा रिमार्क, कोई ऐसा एप्रिसिएशन, कोई ऐसा प्रोत्साहन जो आपको याद आता हो, क्योंकि हमारे बीच में रेडियो के श्रोता हैं, तो जी, जी, कैसे रेडियो, क्योंकि आप टीवी में भी जा सकते थे, आपने आकाशवाणी को चुना, तो क्या कनेक्शन है रेडियो का।
0: अब देखिए आकाशवाणी में गई मैं, तो मेरे लिए फिल्मों से भी बहुत सारे आए, बहुत सारे मेरे को फिल्मों में भी काम करने के लिए, क्योंकि शक्ल भी ठीक ही थी उस समय, तो
1: अभी भी बहुत अच्छी है,
0: तो इसलिए जो है वो मतलब हर कुछ ड्रामा भी कर सकती थी मैं, उसमें भी सब कुछ गा भी सकती थी, और तो मेरे लिए मतलब आए थे पिताजी के पास, तो पिताजी ने कहा कि वो तो नहीं जाएगी, वो मना करती है, उसने बस उसी में संलग्न है, वो जाएगी नहीं कहीं, तो मेरे को कितना उन्होंने प्रलोभन दिया लेकिन मैं नहीं गई। तब फिर मैं क्या करा कि जब मैं वहां पर चली गई तो एक महिला थी मैं, तो सबके लिए प्रेरणा स्रोत बनी, जो वहां पर घूंघट में महिलाएं रहती थी, तो उनको भी मैं बाहर लेके आई, अगर कोई महिला बाथरूम में गा रही है, मैंने सुन लिया उसको, तो उसको भी सीधे आकाशवाणी में कलाकार बना के, और आज बहुत बड़ा नाम उनका होता है, तो वही अपने लिए बहुत बड़ा पुरस्कार मेरे को लगता है, इससे बड़ा पुरस्कार और कुछ नहीं है। आज वो मैं नजीबाबाद जाती हूँ तो मेरे को छुप कर जाना पड़ता है, वहां किसी को पता न लगे, नहीं तो एक बोलेगा दीदी मेरे घर, एक बोलेगा दीदी मेरे घर, और बस फिर मैं कहाँ जाऊंगी, कई महीने गुजर जाएंगे मेरे को सबके घर जाने जाने में ना, तो इसलिए फिर मैं कभी कभी, अभी जब से पद्मश्री मिला तब से मैं, वो मेरे को कितना बार बुला रहे हैं लेकिन मैं जा ही नहीं पा रही, तो मैं इनका जरा सब फ्री हो जाऊंगी तब जाऊंगी, पर नजीबाबाद मेरा क्या बोलूं, मेरे लिए तो मेरा जीवन पूरा वही गुजरा, और 32 साल मैंने वहां सर्विस करी, असली जीवन तो वही बीता मेरा, जवानी वाला ये सारा जो कर्मठ था जिसमें मैंने दिखाई, और क्या नहीं करा वहां, नाटक भी लिखे मैंने, नाटक भी प्रसारित करे, एक अगर चपरासी अगर बैठा हुआ है तो उसको भी एक रोल दे दिया मैंने, चल इसको याद कर, चल इसको ये बोल, अगर ये माता तुम्हारी जय हो ये धारावाहिक बनाया, तो उसमें जो है अब इतने आर्टिस्ट तो मैं ला नहीं सकती थी बहुत सारे, फिर उनके फिर एक रूल रेगुलेशन भी होता है कि 3 महीने के पैसे पहले इनको बुकिंग नहीं दे सकते, 3 महीने बाद दे सकते हैं, ये भी था, फिर बहुत सारे नियम भी होते हैं, बहुत सारे नियमों में तब्दीली भी मैंने उनको भी करवाने के लिए बहुत कर जोड़ प्रयत्न करा, और जो है तब जो ये धारावाहिक बनाया एक धरोहर, उसमें जो है उसमें बहुत सारे सारी मतलब रोहिलखंड और उत्तराखंड की पूरी धरोहर है उसमें संरक्षित आकाशवाणी में। तो उसमें नाटक भी हैं, उसमें कथाएं भी हैं, उसमें लोकगीत भी हैं, उसमें सब कुछ है। और फिर इसी के साथ साथ जो है उन्हीं उन्हीं दिनों में जब मेरे पर इतना बड़ा वज्रपात हुआ कि मेरे पति दूसरे लोक में चले गए, तो फिर मैं उसमें कोमा में ही चली गई थी, लगभग कोमा में। अब देखिए कि कोमा में क्या चली गई, मतलब मैं दूसरे लोक में भी चली गई थी। और उसके बाद 20-25 सेकंड के बाद फिर मेरी जान वापस आ गई। और वही चीज मैंने आपके यहाँ जब मैं वहां गई माउंट आबू में, तो वही जो आपका ये मधुबन है उससे पहले जब मैंने देखा वहां पर, तो मैं जो है स्तब्ध रह गई। क्योंकि वो मैंने जब मैं दूसरे लोक में गई थी तो वही ले गए थे मेरे को भगवान शंकर अपने पीछे पीछे, और फिर उन्होंने कहा कि वो है, जब मैं वहां गई तो उन्होंने कहा कि वो है तुम्हारा, वो है नश्वर प्राणी होता है ना, उसके जीवन इतना ही था, उसका जीवन इतना ही था। मैं कितना, मैं उस समय फिर बहुत आघात लगा मुझे और मैं बैठ गई वहां पर, और जो मेरे साथ थे बेचारे वो भी परेशान हो गए मेरे से कि इनको क्या हुआ। पर मैंने जब देखा सामने तो वही पर्वत था वो, और उसके आगे आगे वो जा रहे थे, तब मुझे पता लगा कि उसके पीछे जो है पुष्कर जी है। तब मैं पुष्कर, वही पुष्कर ले गए थे मुझे, और वहां पर जो है मेरे चाचा जी जो इस दुनिया में नहीं थे तो वो भी मेरे को वहां मिले। उन्होंने कहा कि तू यहाँ क्यों आई, तू भाग यहाँ से वापस जा। तब उन्होंने मेरे को वहां से वापस भेजा और तब मेरे में प्राण वहां पर, तब डॉक्टर ने कहा कि अब ठीक है, अब कुछ नहीं होगा इनका। उसके बाद 3 साल तक मैं लगभग कोमा में ही रही। तब मेरे ऑफिस वाले मेरे को गाड़ी में ले जाते मरी हुई जिंदा लाश को, और फिर उन्होंने स्टूडियो में बैठा करके तब मुझसे बोले दीदी इसमें इसके बाद क्या है, दीदी इसके बाद क्या है। तब उन्होंने मेरे को पुनर्जीवित करा। जब मैंने अपने थीसिस लिखी गढ़वाली लोकगीतों में राग राग में, तो वो जब उसमें कर नहीं पाई मैं, तो फिर वो फिर दोबारा से मेरे को अप्लाई करना पड़ा। फिर मैंने उसका अब अप्लाई करा, तो फिर वहाँ के जो प्रोफेसर थे वो मेरे घर आए। फिर उन्होंने, मैं दिन में भी नहीं सोती थी, रात में भी नहीं सोती थी, बस आंखें खुली रहती थी, तो बोलते थे कि दीदी क्या कर रही हो। मैंने कहा कुछ नहीं। कुछ नहीं क्या मतलब है, कौन लिखेगा वो? पहला चैप्टर ये है कि गढ़वाली लोकगीतों में भौगोलिक अध्ययन, तो कौन लिखेगा? अच्छा, मैंने कहा लिख रही हूँ, लिख रही हूँ, लिखते जाओ। 4,000 पेज लिख गई उस स्थिति, 4,000 पेज लिख गई। और तब उन्होंने मेरे को जीवंत करा, उनके मैं धन्यवाद देती हूँ, कितने बड़े लोग हैं वो लोग ना। तो एक नौटियाल, डॉक्टर नौटियाल हैं, डॉक्टर भट्ट हैं, सब लोग, तो इन्होंने जो है फिर मेरे को जीवंत करा। और फिर मैंने, तब जो मेरे गाइड थे तो उन्होंने कहा कि दीदी कितने पेज लिखे। मैंने कहा देख लो 4,000 पेज है ये, तो कहने लगे कि 300 पेज होने चाहिए। तब उसमें कार्ड केवल जो है 300-400 पेज की। मैंने कहा 400 से ज्यादा कम नहीं कर सकती मैं, 400 पेज की तब वो थीसिस मेरी जमा हुई, तब उसको मेरे को डॉक्टरेट मिली ना। तो इसलिए इंसान अगर अपने आप, मतलब दूसरे तो उसको जान देते ही हैं, लेकिन खुद भी उठना पड़ता है, खुद भी सजग होना पड़ता है ना। तो इसलिए बहुत
1: दूसरे दूसरे तो जान देंगे लेकिन खुद भी उठना पड़ता है। ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा लाइन है, बहुत बड़ा सशक्त करने वाला एक प्रेरणादायी वाक्य है। लेकिन आपकी कहानी जो है कईयों को प्रेरणा देती है, और इसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो ये कि न केवल 2018 में भारत सरकार ने आपको एक सशक्त नारी, नारी सशक्तिकरण के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया, लेकिन 2021-22 में आपको पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा। ये जो पुरस्कार है, ये जो सम्मान है, ये दरअसल उस व्यक्ति का नहीं है, परंतु उसके पीछे जो वो विचार है, वो जो प्रेरणा है जिससे उस व्यक्ति ने ये मुकाम हासिल किया है, उस विचार को पुरस्कृत किया जाता है, उस विचार को मानोन्नत किया जाता है। इसलिए माधुरी जी, आपका नाम तो मधुर है ही, आपके जीवन में हर प्रकार का रस रहा है, लेकिन फिर भी जो माधुर्य रस है वो सबसे ज्यादा खिल करके आता है। आपने अभी हमसे जितनी भी बातें की उसमें मुझे बहुत प्रेरणा मिली, और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे श्रोता साथी सुन रहे हैं उनको भी ये उमंग उत्साह आएगा कि उनके आसपास में भी कोई ऐसा धुन गुनगुनाने वाला व्यक्ति हो अगर, तो उसको सुने जरूर और उस धुन को अपनाए जरूर। क्योंकि लोकगीतों में, जैसे आपने कहा, लोकगीतों में हमारे पूर्वजों का, हमारे प्राचीनतम इतिहास का प्राण बसता है, तो इन लोकगीतों को धरो के रखना, संजो के रखना, इनको संरक्षित करना केवल एक माधुरी जी का कर्तव्य नहीं है दोस्तों, मेरा, आपका, हम सबका कर्तव्य है। मैं तो यहां तक भी इस मंच के थ्रू कहना चाहूंगा कि माधुरी जी आप एक ऐसी शख्सियत हैं इस देश के लिए जिनके कहे हुए वाक्यों पर सरकार भी बहुत ज्यादा गौर करेगी। मैं आपके थ्रू ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हर स्कूल में हर बच्चों को अपने अपने क्षेत्र के लोकगीतों को जरूर कंपल्सरीली सिखाना चाहिए, क्योंकि इससे उनके अंदर न केवल अपने क्षेत्र के प्रति जागरूकता, प्यार और भावनाएं बढ़ेंगी, लेकिन साथ ही साथ उन लोक कलाकारों के लिए भी भावना बढ़ेगी जो इस चीज के लिए अपने जीवन को समर्पित किए हुए हैं। तो मुझे लगता है ये रिक्वेस्ट मैं आपके थ्रू सब तक पहुंचाना चाहूंगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक मैं खुद भी अपने यहाँ के स्कूलों में भी मैं चाहती हूँ ऐसा कि अगर एक स्कूल में मैं जा करके चार लोक गीत भी सिखा दूंगी, चार लोक गीत, चार लोक नृत्य, चार किस्म के साजों को उनको सिखा सकूंगी, तो वो अगर 1000 भी स्कूलों में गई मैं तो 4000 लोक गीत संरक्षित हो जाएंगे, जीवंत हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है। और कल नहीं तो ऐसा होगा, ऐसा जमाना आएगा कि अपने माता पिता को भी भूल जाएंगे कि माँ का नाम क्या रहा होगा, पिताजी का नाम क्या रहा होगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज है कि हमारे हिंदुस्तान से ही संगीत की उत्पत्ति हुई है, पूरे विश्व में फैली। और देखिए आपकी कि मतलब इसमें जो है बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि अब जैसे ये पद्मश्री मिला मेरे को तो ये ईश्वर ने सोचा होगा कि ये नहीं तो यही दुबक के रह जाएगी अपने ये करने। तो इसलिए इसको सबके सामने आना बहुत जरूरी है, वरना एक गुरु तो जो है ना पर्दे के पीछे ही रहता है। तो मैं पर्दे के पीछे ही थी, मैंने सबको आगे बढ़ाया लेकिन मैं कभी सामने नहीं आई। अभी भी मेरा आदत वही है कि बस अपने सबको सिखा दो और जाओ और बढ़िया आहा बहुत सुंदर ना। तो ऐसा भी है, तो ये भी उन्होंने सामने लाए तब आपको आपको भी पता लग गया कि मेरे से बात करो। तो यही कहां से होता वरना। तो इसलिए मैं बहुत जरूरी है ये कि एक दूसरे से मेल मिला। और ये सीमा रेखा नहीं होती, मैंने आपको बताया कि पूरे एक ही भाव है, सब में एक ही भाव है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ एक वो है, इनमें नीति परक लोक गीत भी है ना, नीति परक भी कि झंगोरा की बाला, झंगोरा की बाला, सारे गा मगर सा आहा, भैरवी राग है इसमें। अब देखिए

0: बादल। अब इस लोकगीत में कहा गया है कि तेरे बहुत सारे बच्चों से तो मेरे दो बच्चे ही अच्छे हैं, अगर वो अच्छे बच्चे निकलेंगे तो बहुत सारे बच्चे अगर काबिलियत ही नहीं है उनमें तो क्या करना उनका, है ना। ये भी कहा गया है इन लोकगीतों में, हजारों साल पुराने लोकगीत है ये। आज हम बोल रहे हैं कि दो बच्चे अच्छे होते हैं, और जो है कि गोरी मुखड़ी है, गोरी है बिल्कुल, मुंह बहुत गोरा है, और उसमें कोई लक्षण ही नहीं है, उसमें कोई वही नहीं है, काबिलियत ही नहीं है उनमें कोई, या कुछ गुण ही नहीं है, तो क्या करना उस गोरी मुखड़ी का। तो 10 दिन चलेगी, जब तक जवानी है तब तक रहेगी, क्या करना उस गोरी मुखड़ी का अगर उसमें काबिलियत नहीं है। उससे तो मेरी चपटी नाक वाली ही ज्यादा बढ़िया है अगर वो गुणवान है तो। ये भी कहा लोगों ने, कितनी बढ़िया बात है, मतलब जो हम बात कई शब्दों में नहीं बोल सकते वो हम एक लाइन में बोल देते लोकगीतों, कितनी बढ़िया बात है ना। तो इसलिए बोल रही हूँ कि कोई भी, सब में काबिलियत सब में होती है, लेकिन उसको देखना पड़ता है कि हमने हम में कौन सी काबिलियत है, और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि मैं बहुत सुंदर गा सकती हूँ तो मैं, ये नहीं कि मैं दूसरा काम और उसमें फेल हो जाओ तो क्या फायदा। उसी चीज को चुनो जो तुम्हें काबिलियत है।
1: तो जैसे आपने बताया कि लोकगीत जो है इतनी लंबी लंबी बातों को दो शब्दों में सार रूप में ला सकता है, वो शक्ति है। ऐसे अभी हम आपकी शक्ति को परखने वाले एक रैपिड फायर राउंड के साथ, जिसमें हम आपको एक कड़ा सवाल देंगे और उसका जवाब आपको एक शब्द में देना होगा और एकदम तुरंत देना होगा। अच्छा। तो माधुरी जी मुझे लगता है आप रेडी है।
0: हाँ।
1: ओके, तो पहला सवाल आपके लिए, लोकगीत क्या है?
0: लोकगीत अपनी आत्मा है।
1: वाओ, आप तो बहुत कड़ी खिलाड़ी लग रहे हैं, आपके लिए सवाल भी थोड़े और कड़े होने चाहिए। आपने पूरे भारत देश का भ्रमण किया है, भारत के सभ्यता के बारे में आपने पढ़ाई भी की है, जानते भी हैं, भारत क्या है?
0: भारत तो भरत मुनि जो है, तब भरत जो थे ना वो हमारे यहीं पैदा हुए थे, शकुंतला के पुत्र, तो भरत पूरा हमारे यहीं है, तो भरत ने सब कुछ करा, तो इत्तेफाक से वो भी मैं उसी भूमि की रहने वाली हूँ, तो मैं तो भारत से सलाम प्रणाम करती हूँ।
1: संस्कार क्या है?
0: संस्कार जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिए हैं, जो हमारा घर से उपजता है संस्कार, जिसमें हमारी पहचान हो वो हमारे संस्कार।
1: संघर्ष क्या है?
0: संघर्ष तो वो है कि जो हम दिगे ना, और चाहे रास्ता कैसा भी हो हम चलते चले जाएं और उसको मात दे दें।
1: सफलता क्या है?
0: सफलता तो सफलता ही है जो कि खुश तो करती है, लेकिन ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए उसको, वो गिरा भी सकती है।
1: संगीत क्या है?
0: तंग रहने वाला
1: संगीत तो है,
0: तंग ही तो है।
1: माधुरी कौन है?
0: माधुरी तो वो है कि जो एक माँ है वो धुरी ही है, पूरे परिवार की धुरी ही है, तभी वो माधुरी बन सकती है।
1: माधुरी जी आपसे बात करते हुए तो मुझे ऐसा लगता है 10 एपिसोड आपके साथ होने चाहिए, क्योंकि केवल आपके साथ बात करने में मजा नहीं आता, जो बीच बीच में आपने पूरे इस इंटरव्यू को जो आपने अपने धुनों की खूबसूरती के साथ जो पिरोया है ना, ये दैट इज प्रीशियस, मतलब ये अनमोल है, और इस वजह से मैं तो चाहूंगा कि आपसे हम और भी मिले, लेकिन आपका समय बहुत बेशकीमती है, लेकिन फिर भी आप जरूर हमको समय दे ताकि हम आपसे ऐसी ही कुछ और बातें करें। हाँ। जिससे हमारे जो श्रोता हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
0: अरे काबिलियत आप में है ना, तब आपने मेरे को ऐसे ऐसे दिन याद दिलाए जिनको मैं फटाफट बोलती रही, तो कितनी, ये भी तो बहुत बड़ी बात है, क्वेश्चन भी तो अपने आप में बहुत सुरीला होना चाहिए।
1: आपका आशीर्वाद है। माधुरी जी, मैं इस कार्यक्रम का अंत अपनी आवाज से नहीं आपके धुनों से करना चाहूंगा, तो इसलिए एंडिंग अगर आपको एक बहुत सुंदर सा गीत गा करके करें और उस गीत का थोड़ा भाव पहले सुना दे और फिर उस गीत से एंडिंग करें।
0: ठीक है, अब ये जो है सबसे मैं ये अनुरोध करना चाहूंगी, अनुरोध ही होता है चाहे वो बड़े हो चाहे छोटे हो, है ना, तो उनसे मैं ये गुजारिश और अनुरोध करना चाहूंगी कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कभी मत सोचना कि मेरी उम्र बहुत बड़ी होगी अब मैं कैसे करूंगी, अपने पीछे अपने भूतकाल को देखें और उससे जो है जो आप नहीं कर सके उसको अब आप कर सकते बुढ़ापे में भी, और क्योंकि मन बूढ़ा नहीं होता, तन बूढ़ा हो जाता है लेकिन मन नहीं होता, इसलिए बहुत काबिलियत सब में होती है और उसको ढूंढो अपने अंदर से और उसके बाद उसको परिलक्षित करो सबके सामने और फिर उसके ऊपर समर्पित हो, लेकिन ये नहीं है कि आज एक करा कल दूसरा करा परसों तीसरा करा, नहीं, एक सूत्री कार्यक्रम होना चाहिए, एक सूत्री कार्यक्रम, कि अरे बस मेरा मन भर गया, अब नहीं करता मैं। अरे भाई उसके जड़ तक जाओ, उसको पूर्ण रूप से ढूंढो उसको, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि संगीत सीख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि जो फिजिक्स वो कर रहे होंगे, तो संगीत में फिजिक्स केमिस्ट्री ये भी है, सब कुछ है संगीत में, क्योंकि उसके वीणा के 36 इंच लंबे तार पर स्वरों की स्थापना करी गई है, तो वो तो फिजिक्स ही है ना। और उसमें जो है 7 स्वरों को स्थापित किया गया। लेकिन हमारा ऐसे ऐसे लोकगीत है जिसमें कि बोला गया है कि 9 स्वर होते हैं, 9 सुरिया बांसुरी। अब जीतू बग्रवाल जो था उसकी 9 सुर की बांसुरी थी, और तब परियां उसको हरण करके ले गई थी। या भगवान कृष्ण जब यहाँ पर आए थे हमारे केदारनाथ साइड में, इस साइड में हमारे हिमालय पर्वत पर, तो उन्होंने भी यहाँ पर 9 सुरिया बांसुरी बजाई थी भगवान शंकर को थोड़ा सा उनको। तो बहुत जरूरी है कि ये 9 स्वर कौन से, पहले 3 ही स्वर होते थे, उसके बाद 7 स्वर बने, वो भी तो विद्वान थे, उन्होंने भी तो 7 स्वर ढूंढे। तुम 9 स्वर ढूंढो ना, 9 स्वर कौन से हैं। बहुत सारे लोग गीत ऐसे इन 7 स्वरों में भी नहीं आते, ये मैंने देखा है ना। इसलिए कोई भी चीज पूरी तब होगी जब उसको समझोगे तुम, कि उसके पीछे भागोगी जब, है ना। और पूरा कौन करेगा, हमारी भावी पीढ़ी करेगी उसको पूरा। और मेरी जरूरत जब भी पड़ेगी मैं जरूर सबके साथ रहूंगी, क्योंकि अपने साथ कुछ नहीं ले जाना चाहती मैं इस दुनिया से, मैं तेरा तुझको अर्पण करना चाहती हूँ। तब मैंने एक किताब जब अभी छपवाई, मांगल दो गीतों की किताब, उसको मैं भगवान बद्रीनाथ जी के शिव चरणों में अर्पित करके आई, तेरा तुझको अर्पण, मेरा कुछ भी नहीं है ना। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें अपनी संस्कृति की तरफ मुड़ना, हमको उसको संरक्षित करना, और पूरे विश्व को उसके साथ जोड़ना, और पूरे सबका भला करना, सबका भला करना। अब ऋतु मारी तो करी तो बड़ी, ऋतु मारी तो करी तो बड़ी। अब ऋतु ये भी कठिन नहीं है, ऋतु मारी तो करी तो बड़ी, कौन ऋतु सबसे बड़ी है, ऋतु मारी तो बसंत बड़ी, बहुत सरल है, ये सबकी समझ में आएगा, इसलिए मैं इसका अर्थ नहीं बता रही। ऋतु मारी तो करी तो बड़ी, ऋतु

0: को देव पाड़ो, देव मा देव को देव पाड़ो, देव मा देव महादेव पाड़ो, देव मा देव महादेव पाड़ो, गंगा मा गंगा को गंगा पाड़ी, गंगा मा गंगा भागीरथी पाड़ी, देव मा देव को देव पाड़ो, देव मा देव महादेव पाड़ो, नारियो मा नारी को नारी पाड़ी, नारियो मा नारी वसीता पाड़ी, और वेदों मा वेद को वेद पाड़ो, वेदों मा वेद सामवेद पाड़ो। संगीत सबसे बड़ा है विषय, सामवेद है उसमें। तो ये हमारा लोकगीत है, और इसको मैंने जब मेरठ यूनिवर्सिटी में सिखाया बच्चों को, क्योंकि संगीत की कोई सीमा रेखा नहीं होती, उन्होंने मेरे को बुलाया था, मैंने वहां बच्चों को सिखाया, और ऐसे ऐसे लोकगीत सिखाया कि उन्होंने उन लोकगीतों में कथक करा, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे बढ़िया लोकगीत है, और ये इनमें उन्होंने चौंपला और थड़िया सारे लोकगीत करे, तो कितनी बढ़िया बात है। तो ये है मेरा लक्ष्य भी यही है, और सबको मेरा तहे दिल से नमस्कार है कि मेरे अपनी संस्कृति को सब संरक्षित करें, जहां भी जो रह रहा है वहां की संस्कृति को संरक्षित, ये सबका कर्तव्य है। इसमें कर्तव्य में कोई अहंकार भी नहीं होता, और उसमें निर्वहन करने के लिए ईश्वर रास्ता भी जरूर देता है, अगर सच्ची दिल से अगर आप करोगे।
1: तो सुना दोस्तों आपने, अगर सच्ची दिल से अगर आप करते हैं तो उस कार्य को, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ईश्वर भी आपको मदद करता है, आपके आसपास के लोग भी आपके मददगार बन जाते हैं, और वो लक्ष्य फिर आप पा ही लेते हैं। तो माधुरी जी से हम बात कर रहे थे आज यशस्वी भारत कार्यक्रम में, जिसमें हम आपसे ऐसे शख्सियतों का मुलाकात कराते हैं जो कि अपने कर्तव्य से उन्होंने देश को एक नई परिभाषा दी है। डॉक्टर माधुरी बर्थवाल जी हमारे एक ऐसी भारत की बेटी हैं जिन्होंने भारत को एक नई दिशा दी है, भारत की एक परिभाषा में एक स्वर अपना भी जोड़ा है। डॉक्टर माधुरी बर्थवाल जी से हम फिर कभी दोबारा मिलेंगे, और उनसे फिर से ऐसे ही हम उनके मधुर आवाज में उनके गीतों को सुनेंगे, लोकगीतों का आनंद लेंगे। तब तक के लिए आप सभी को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो मधुबन की तरफ से मैं आरजे शांतनु आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ।

0: प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटीफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू कर दे, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: आरती ऐसे ही एक किनारे पर खड़ी थी। वक्त के भंवर पैरों से लिपटे हुए थे, वक्त की गर्दिश तेज थी और पांव रोके नहीं रुकते थे।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव थिंकिंग की। अभी तक हम सुनते आ रहे थे, पढ़ते आ रहे थे, लेकिन जीवन में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। कोशिश मुझे लगती थी कि कर सकती हूँ, और एक थॉट ही तो बदलना है। हर चीज़ को अगर पॉजिटिवली ले लें तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और पॉजिटिव थिंकिंग में कर पाऊंगी। लेकिन जब इम्प्लीमेंट किया तो समझ में आया कि नहीं, उसके पहले ज़रूरी ये है कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास जा रही है, हर रोज़ की जो जानकारी मेरे पास आती है, मेरे जो आसपास का माहौल है जो मुझे इन्फ्लुएंस करता है, वो पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। और उसमें कैसे फिल्टर करना है वो मेरे हाथ में है। सिचुएशंस, इन्फ्लुएंसेस, लोगों को नहीं बदला जा सकता, लेकिन जो जानकारी मैं लेना चाहती हूँ वो मेरे हाथ में है। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि और कौन से स्टेप्स होंगे कि मैं पॉजिटिव थिंकिंग को इनकॉर्पोरेट कर पाऊँ या अपने थिंकिंग प्रोसेस को पॉजिटिव कर पाऊँ। और हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, पिछली कड़ी में अगर हम देखें तो एक होमवर्क हमारे साथ था कि किस तरह से जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास जा रही है वो मुझे गवर्न कर रही होती है। और हमने ये समझा था कि हर थॉट, मेरी सोच जो है वो पूरी की पूरी डिपेंडेंट हो जाती है जिस तरह की जानकारी जा रही है।
1: अभी क्या होता है, सुबह उठे नहीं कि यू नो माय फर्स्ट अब्सॉर्प्शन जो होती है, जो ब्लॉटिंग पेपर एकदम क्लीन है उस पे फर्स्ट चीज जो अब्सॉर्ब करते हैं दैट इज द फर्स्ट पेज। मतलब मेजॉरिटी के तो हम देखते हैं बेड में ही न्यूज़पेपर आता है, तो फर्स्ट पेज एक क्लीन माइंड के ऊपर क्या छाप दिया सुबह सुबह। फिर अब उसके बाद बोलो पॉजिटिव थिंकिंग, then we are looking for something very difficult. फिर आपको मेहनत ज़्यादा, result कम, क्योंकि आपने foundation तो negative information का create किया, लेकिन अब आप सारा दिन मेहनत ये करने वाले हैं कि positive thought create करनी है, तो आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कुछ step नहीं लिया जाएगा, let us not expect miracle. और इसीलिए हो रहा है कि इतना सोचने के बाद भी, समझने के बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं निकल रही है, क्योंकि उस पे जो थोड़ा सा परिवर्तन। और हमने बहुत भाई बहनों से मिले हैं जिन्होंने सिर्फ ये किया है अभी, और ज्यादा तो किया ही नहीं है कुछ, उसके बाद कुछ नहीं किया है मेहनत, उसके बाद सिर्फ इतना किया कि सुबह सुबह अखबार पढ़ना बंद कर दिया, दे आर फाइंडिंग अ चेंज।
0: इन फैक्ट नो, आई विल टेल यू, बिकॉज़ मैंने भी जब शुरू में किया, आप बहुत लाइट रहते हैं।
1: अगर हर एक अपने आप को सिर्फ अपने जीवन को रिवाइंड करे थोड़ा सा, लास्ट कब बैठकर एफर्ट करके पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन भरी थी अपने अंदर, व्हेन वाज दैट द लास्ट टाइम, तो हमें याद नहीं आएगा। तो जो चीज भरी नहीं वो क्रिएट कहाँ से होगी। फॉर एग्जांपल, आज मेरे घर पे कोई लेट आए शाम को, तो एक्सीडेंट ना हो गया हो, ये ना हो गया हो, ये जो नेगेटिव नेचुरल हम कहेंगे नेचुरल आ जाता है, ये नेचुरल इसलिए आता है क्योंकि सुबह मैंने वही भरा था। आप थोड़े दो महीने के लिए सुबह वो भरना बंद करें और सुबह सुबह ये भरें जो परमात्मा के महावाक्य हैं कि आपके साथ जो हो रहा है अच्छा, आप कल्याणकारी बाप के कल्याणकारी बच्चे हैं, आपके साथ क्या गलत होगा। अब रात को देखो अगर कोई लेट आता है तो यू डोंट हैव टू मेक एफर्ट दैट टाइम। अभी तो पॉजिटिव उस टाइम बोलेंगे, उस टाइम तो याद नहीं रहेगा कि पॉजिटिव सोचना है, उस टाइम तो वो पूरा एपिसोड खत्म हो जाएगा, यू नो ड्रेनिंग योर सेल्फ आउट, तो ये उस टाइम नहीं एफर्ट हो सकता कि हाँ नाउ समवन हैज कम लेट नाउ और हैज नॉट रीच्ड नाउ आई हैव टू थिंक पॉजिटिव। ये तो ऐसा तो होने नहीं वाला है, बिकॉज अगेन थिंकिंग हैज बिकम वेरी ऑटोमेटिक। लेकिन हमें इसलिए सिक्योर रहेंगे क्योंकि हमें पता है भरा ही क्या था, और ये प्रैक्टिकल में आपको रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। सेकेंड चीज जो हमें प्रैक्टिस करनी होगी, ये भी ऑटोमेटिकली नहीं होगी, वो है साक्षी दृष्टा या डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन। अगेन detached word sunte hi it will see your face only how it has become,
0: because it becomes like you know it is a feeling lot of people say ki detachment kehte ho to aisa lagta hai ki cold there is a coldness which sets in, matlab aisa lagta hai ki bilkul har cheez se hum pare ho gaye, to wo usse dar lagta hai logon ko lagta hai ki hum dur ho jayenge apno se, hum apno se pyar hi nahi kar payenge, aur koi mujhse detached ho gaya to wo mujhse dur chala jayega।
1: डिटैचमेंट को तो हम समझेंगे ही वो क्या है, लेकिन फर्स्ट वे सेइंग डिटैचमेंट मीन्स डिटैच्ड ऑब्जर्वर, कि एक परिस्थिति को एक साक्षी दृष्टा होकर देखने से मुझे क्या प्राप्ति होने वाली है। व्हाई डू आई नीड टू सी इट, बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड द वन थिंग ओवर लास्ट फ्यू डेज कि सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है, नाउ आई एम मैनेजिंग माई सेल्फ, तो उस पर तो हम आ गए। लेकिन सेल्फ को मैनेज करने के लिए मुझे उससे एक स्टेप पीछे होकर उस परिस्थिति को देखना पड़ेगा, ताकि परिस्थिति मेरे ऊपर हावी ना हो जाए। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि मैं लोगों से दूर हो जाती हूँ. डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, किसी को बीमार होना हो, किसी को दर्द हो रहा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. दैट्स नॉट डिटैचमेंट. डिटैचमेंट इज नॉट कोल्डनेस लाइक यू से. इट्स नॉट हार्डनेस ऑल्सो. कई लोग समझते हैं बहुत हार्ड हो जाते हैं, बहुत कड़क हो गए हैं, या जैसे दैट इज इनसेंसिटिव. वो इनसेंसिटिव है. उल्टा जो डिटैच्ड होगा, सही मायने में डिटैच्ड होगा, वो तो और भी कंसर्न्ड होगा. क्योंकि डिटैच्ड अगर हम होंगे तो मैं दर्द में नहीं गई, और अगर मैं दर्द में नहीं गई तो मैं आपके लिए तो और भी कर सकूंगी. आपके लिए जो कंसर्न है, आपको अगर मदद करनी है तो मैं और भी ज्यादा कर सकूंगी. बट माय सेइंग कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट्स नॉट डिटैचमेंट. दैट इज इनसेंसिटिव. दैट इज अनकंसर्न्ड, नॉट बॉदर्ड अबाउट पीपल. दैट्स नॉट अ पॉजिटिव, नॉट अ वेरी हेल्दी थिंग फॉर रिलेशनशिप्स. डिटैचमेंट मतलब एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए पॉज एंड स्टेप बैक, ताकि जो हमारा रिस्पॉन्स होगा वो, जिसको कहते हैं ना सोच समझ कर फिर बोलना या सोच समझ कर करना, दैट इज डिटैचमेंट. कि टेक दैट वन मोमेंट टू पॉज, ताकि जो हमारा रिस्पॉन्स होगा वो एक मेजर्ड रिस्पॉन्स होगा. मतलब एक
0: नपातुला होगा.
1: मेजर नपातुला, यस राइट. मतलब एक आई नो व्हाट आई एम रिस्पॉन्डिंग. बट अगर डिटैच नहीं होते तो इट इज अ रिएक्शन,
0: और वो फैलता है फिर. वो
1: दैट इज मेरा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हैबिचुअल रिएक्शन हो गया ना, वो मेरा रिएक्शन हो जाता है. डिटैचमेंट मतलब रिस्पॉन्ड करना. और पहले हम क्या करते थे, हम दूसरे के, जैसे सपोज अगर आप मुझे कुछ सुना रहे हैं अपने बारे में, आपकी लाइफ में ये हुआ या ये है ये है, इंस्टेड ऑफ सीइंग इट एज अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर एंड देन अंडरस्टैंडिंग इट, आई वुड गेट सक्ड इनटू इट. एंड तो क्या होता था कि अगर आप दर्द में हैं तो आप रो रहे हैं अंदर से या बाहर से जो भी, एंड वेरी सून यू विल फाइंड कि मैं भी आपके साथ रो रही हूँ.
0: क्योंकि आप उसके साथ ही मर्ज हो गए ना, मैं उसमें.
1: यू गेट सक्ड इनटू द इमोशंस ऑफ समबडी एल्स. तो डिटैचमेंट इज जस्ट दैट वन मोमेंट, एक मोमेंट उस तरफ से. जैसे कि सपोज अगर हम स्टेज पर हैं तो हम पूरे प्ले को उतनी ठीक से नहीं देख सकते, लेकिन जो ऑडियंस है वो ऑडियंस उस प्ले को बहुत अच्छी तरह से देख सकती है. तो जब मैं परिस्थिति में हूँ तो मुझे परिस्थिति राइट पर्सपेक्टिव में नहीं समझ में आती, क्योंकि मैं परिस्थिति को सिर्फ अपनी साइड से देख रही हूँ. मैं आपकी साइड से या किसी और साइड से तो उसको देख ही नहीं पाती, बिकॉज आई एम स्टक टू माई पोजिशन. पोजिशन कुड बी माई आइडिया. सपोज मैं राइट हूँ, आप रॉन्ग है. दिस इज अटैचमेंट टू माई आइडिया ऑफ बींग राइट. तो मैं अपने राइट के आइडिया से इतनी अटैच्ड हूँ कि आपका आइडिया तो देखने का मेरे पास कोई मार्जिन ही नहीं है. सो अनलेस आई सेपरेट माई सेल्फ फ्रॉम माई अटैचमेंट ऑफ अ राइट आइडिया, हाउ विल आई बी एबल टू अंडरस्टैंड यू. एंड जब तक मैं आपको अंडरस्टैंड नहीं किया, तो जो परिस्थिति है वो राइट पर्सपेक्टिव में मुझे कहाँ दिखाई देगी. इट्स नॉट पॉसिबल. तो डिटैचमेंट मतलब स्टेज से हटकर एक मिनट ऑडियंस की तरफ से देखें.
0: लोगों का एक और इस पे आता है कि हम कब तक करते रहे.
1: हाँ, वो तो जब तक आप अपने आप को मैनेज करना चाहते हैं. सी वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, हम कुछ भी किसी और के लिए नहीं कर रहे. हम ये समझते हैं कि आपने गुस्सा किया और मैं चुप रही, ये आपके लिए किया, आपके लिए नहीं किया. हम ये प्रॉब्लम इसलिए होने लगती है, मैंने सहन किया आपके लिए किया. ना ना, किसी और के लिए तो कुछ करने की भी जरूरत नहीं है. इट इज ओनली टू बी डन फॉर माई सेल्फ. हाँ, उसका बेनिफिट ऑटोमेटिकली औरों को होता जाएगा, लेकिन हम जो भी करते हैं हम अपने लिए कर रहे हैं. एंड ये हरेक कर रहा है, विद द ज्ञान और विदाउट द ज्ञान. दैट इज डेफिनेटली, भले हमें ऊपर ऊपर से पता नहीं चलेगा बिकॉज इट इज हैपनिंग सो फास्ट, लेकिन हम जो भी कर रहे हैं. आज अगर मैं गुस्सा भी कर रही हूँ तो किसके लिए कर रही हूँ. हमें लगता है वो मैं आपके फायदे के लिए कर रही हूँ, आपको सुधारने के लिए कर रही हूँ. नहीं नहीं, उसके लिए गुस्सा करने की जरूरत नहीं है. गुस्सा मैं इसलिए कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा कर दिया है जो मेरे attached ideas of right mein nahi fit hota hai, and that is why I am reacting. It is because I am hurt, so I have reacted. It's nothing to do with you.
0: लेकिन मैं अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज पे कॉम्प्रोमाइज करे जा रहा हूँ. अपने जॉब में मुझे कंटिन्यू करना है क्योंकि मेरा परिवार कैसे चलेगा, या मैं एक रिश्ते में जिसमें हूँ तो उसमें बच्चा. बहुत सी आज
1: कॉम्प्रोमाइज कहाँ हो रहा है. स्टेबल रहकर वी आर टॉकिंग कॉम्प्रोमाइज. हम कॉम्प्रोमाइज बाहर तो कर लेते हैं, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है सर. अंदर. तो वी आर टॉकिंग कि सिचुएशन कोई भी होगी, क्या हम अपने आप को सिचुएशन में स्टेबल रख सकते हैं और उसके लिए मुझे क्या करना है. एंड उसमें ये जो अगर हम प्रैक्टिस करें, दिस विल अगेन नॉट हैपन ऑटोमेटिकली. कि सिचुएशन है आपके सामने, अभी आज आप अपनी सारी 1, 2, 3 सिचुएशंस लिख लीजिए, जो जो आपकी परिस्थितियां हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन है, चाहे वो जॉब की जो प्रॉब्लम है. अब इसको अपनी जगह से हटकर इस पोजीशन को देखने की कोशिश करें और कोशिश करें दूसरे के दृष्टिकोण से देखने के लिए. बिकॉज व्हाट यू आर सेइंग एंड व्हाट यू आर थिंकिंग इज आल्सो राइट, बट इट्स ओनली राइट फ्रॉम द अदर साइड.
0: It's so difficult.
1: It's not right from my side.
0: लेकिन it is so difficult. Another thing जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बार बार हम ये कह तो रहे हैं कि अंदर से करें, लेकिन सचिवानी आज ऊपर से ही मेंटेन कर पाना इतना मुश्किल हो जाता है, खासकर जब रिश्तों की बात घर में.
1: ऊपर से मेंटेन करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि हम ऊपर से मेंटेन कर रहे हैं,
0: अंदर से कर ही नहीं रहे.
1: That is why we are saying again and again, अंदर तो फाउंडेशन पूरा गड़बड़ हो गया, ऊपर आप बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं अपने ऊपर, तो वो हर थोड़े दिन के बाद वो आपकी बिल्डिंग क्रैश हो जाती है. और हम कहते हैं हम तो कितनी मेहनत कर रहे हैं, आवर रिलेशनशिप्स, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड आवर रिलेशनशिप्स, व्हाट्स द फाउंडेशन. तो फाउंडेशन पर क्योंकि टाइम नहीं है या इंक्लिनेशन नहीं है या पता ही नहीं है कैसे करना है फाउंडेशन पर, तो सारी मेहनत हो रही है उस स्ट्रक्चर को खड़ा करने में. आई वांट टू बिल्ड माय रिलेशनशिप एंड एवरी फ्यू डेज दैट स्ट्रक्चर जस्ट फॉल्स.
0: हां ऑफ कोर्स
1: दैट स्ट्रक्चर जस्ट फॉल्स, देन अगेन आई स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, बट आई एम जस्ट नॉट वर्किंग ऑन द फाउंडेशन, जस्ट नॉट वर्किंग. इज इट पॉसिबल फॉर वन डे? और उसके लिए सिर्फ क्या करना पड़ेगा, थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ता है थॉट प्रोसेस को. कि जैसे ही कोई परिस्थिति में हम आते हैं, और ये तब हो पाएगा अगर हमने मॉर्निंग के टाइम पर वो थोड़ा सा साइलेंस एक्सपेरिमेंट किया.
0: सिचुएशन ऐसी लें कि हस्बैंड आते ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, मतलब बहुत घरों में ये होता है कि, और सेम सिचुएशन ही हो जाती है, उसी सिचुएशन पे बार बार लड़ाई होती जाती है और दोनों में से कोई भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता कि वो गलत है या वो. वैसे ही बॉस और सबॉर्डिनेट का भी सिचुएशंस अगर देखें तो मैक्सिमम टाइम वही होती है. उसकी आदत हमारे, हमें सबकॉन्शियस में जो भी है वो ऐसी हो चुकी होती है कि जैसे ही वो सिचुएशन आई मेरा रिएक्शन वही हो रहा होता है.
1: आपने अभी कहा कि हम वो कोशिश कर रहे होते हैं ढूंढने की कि वो गलत है या वो गलत है, बट एक्चुअली दोनों में से कोई भी गलत नहीं है. कौन गलत है दोनों में से? Which one of the two is ever wrong? Have you been able to find out? अगर आप logically decide करने की कोशिश करेंगे तो आपका answer हमेशा एक ही होगा कि मैं right हूँ, आप गलत है. इसीलिए तो हम, मैं जो कह रही हूँ वो तो right ही, मैं wrong थोड़ी बोलूँगी. That is the same way I will have to understand कि सोच समझ कर अपने दृष्टिकोण से मैं जो भी कर रही हूँ, जो भी बोल रही हूँ, वो मेरे हिसाब से उस समय वो right है. And same goes for you. I may look at it and say it's wrong, but for you, it's right.
0: लेकिन मैं तो सोच समझ के बोल रही हूँ, वो तो सोच समझ के बोल ही नहीं रहे.
1: ये किसने बताया?
0: यही तो हम कहते हैं हर
1: बार. आपने कभी खुद ये गलत है ये सोचकर ऐसा किया? This is wrong. Now come, let me do it. ऐसा आपने कभी? Even if let's say I'm going to tell a lie, yeah, I am going to give a bribe, or I'm going to take a bribe, or whatever, anything.
0: But this is a need of the hour.
1: Whatever. तो सारी logic है ना उसके पीछे कि ये नहीं देंगे तो काम नहीं होगा, फिर वो government office में मेरा काम रुक जाएगा. तो logic तो दे देंगे ना उसको अपने आप को. और जैसे ही logic दिया, मतलब क्या कहने की कोशिश की?
0: It's justified. It's okay.
1: तो it's right. मेरे लिए वो right है, भले even the law of the country says that it's wrong. But मेरे लिए उस समय वो राइट है. हमें कई अपने कर्म थोड़ी देर के बाद लग सकता है कि ये गलत थे, लेकिन जिस क्षण हम वो कर रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं, उस क्षण हमें वो राइट ही लगते हैं. कभी भी सोच समझ के कोई गलत नहीं करेगा. उसके पीछे उसके पास लॉजिक होगा कुछ ना कुछ करने के लिए. लेकिन बट द सेम अप्लाइज टू एवरीवन एल्स. एंड जिस समय, लेकिन आपका राइट देखने के लिए मुझे इस कुर्सी से उठकर उस कुर्सी पर आना पड़ता है कि आपको क्या दिखाई दे रहा है जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा. लेकिन वो देखने के लिए मुझे अपनी सिचुएशन से, अपनी साइड से, अपने आइडिया से डिटैच होना पड़ेगा. तो डिटैचमेंट डजंट मीन यू नो कट ऑफ या बीइंग इनसेंसिटिव. इट मींस बीइंग एब्सोल्युटली देयर, लेकिन डिटैच्ड मतलब उस सिचुएशन के प्रभाव से डिटैच्ड.
0: जो हमने कहा
1: सिचुएशन से नहीं डिटैच्ड, सिचुएशन से नहीं डिटैच्ड. कुछ लोग क्या होते हैं, सिचुएशन से विड्रॉ कर जाएंगे, चलो ये मेरे से नहीं हो रहा फॉर फेस, लेकिन सिचुएशन के प्रभाव से डिटैच्ड, और डिटैच्ड मतलब स्टेबल. सिचुएशन के प्रभाव में आ गए, जो वो हमने कहा नदी पर, तो फिर कभी दर्द भी होगा, कभी कुछ होगा, लेकिन सिचुएशन के प्रभाव से डिटैच्ड मतलब पेनलेस एग्जिस्टेंस. नाउ इफ आई वांट टू लिव अ पेन फ्री लाइफ, दैट्स माय चॉइस, इट्स नॉट कोल्डनेस. और जितना पेन फ्री मैं हूँ, दर्द के बिना हूँ, उतना मेरा औरों के साथ रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा. तो कई लोगों को लगता है डिटैचमेंट मतलब फिर ये तो परिवार में
0: डजंट वर्क,
1: बट एक्चुअली वो रिश्ते और भी
0: स्ट्रॉन्ग
1: होते जाएंगे. से समथिंग टू मी राइट नाउ विच इज लाइक वेरी इंसल्टिंग, इफ आई एम वेरी अटैच्ड, मेरे को कह दिया ऐसा, आई विल गो इनटू सो मच पेन. उसके बाद मैं चार दिन आपसे चाहे बात ही ना करूँ या जो भी करूँ, लेकिन यू आर राइट वट एवर यू आर सेइंग, बट आई स्टिल हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. तो मैं थोड़ी देर में आपसे फिर से बात करना शुरू कर दूंगी. लेकिन दर्द में गई, फिर उस प्रोसेस से गुजरी, फिर अपने आप को ठीक किया, कितना टाइम बीता.
0: लेकिन वो इतनी जल्दी मैं आपसे बात करना शुरू कर पाऊंगी,
1: वो तो कितना टाइम लेके आता है, कितना टाइम हम लगाते हैं टू गेट ओवर दैट व्हाटएवर, बिकॉज क्रिएट भी हमने किया, अब उसको गेट ओवर भी हमने ही करना है. हाउ मच टाइम, दैट डिपेंड्स ऑन अगेन मी, नॉट ऑन यू, नॉट ऑन यू. तो जितना जल्दी आई विल बी एबल टू गेट डिटैच्ड फ्रॉम माई आइडिया ऑफ व्हाट इज, this is mine, this is what I think is right, I'll be able to see your perspective. और इस तरह अगर हम सारा दिन में प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा माइंड है ना हल्का रहता है. नहीं तो सबकी बहुत सारी क्लटर जो है वो सारा दिन यहाँ चलती रहती है, एक इंटरनल चैटर जो है ना वो सारा दिन यहाँ चलती रहती है, और फिर साइलेंस प्रैक्टिस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सारा दिन अगर बहुत सीन्स के अंदर बहुत ज़्यादा entangled हो जाते हैं, तो अगर मॉर्निंग में साइलेंस में बैठने की भी कोशिश करेंगे अपने आप को देखने की, लेकिन वो सारा दिन जो नॉइज क्रिएट की थी वो ही वापस रिप्ले होने लगती है. तो साइलेंस सिर्फ मॉर्निंग में नहीं, वॉचिंग योर थॉट्स सिर्फ मॉर्निंग में नहीं, लेकिन सारा दिन, सारा दिन कि इस परिस्थिति को साक्षी होकर जिसको देखना, एंड साक्षी मीन स्टेबल स्थिति में. तो लेकिन क्योंकि हमारी स्थिति अभी स्टेबल नहीं है, सो वी आर गोइंग द अदर वे अराउंड, कि लेट मी फर्स्ट लुक एट द सिचुएशन. अब उस समय ये नहीं कर पाएंगे, हो सकता है कि जैसे ही सिचुएशन आए, अभी हमें प्रैक्टिस नहीं है तो हम कर नहीं सकते. हम ये कर सकते हैं जो सिचुएशन गुजर गई है, लेट्स से
0: उसको एनालाइज कर ले,
1: ताकि वो मेरा लर्निंग, नॉट उसके दर्द में चले जाए. दैट इज अगेन वेरी
0: इंपॉर्टेंट. वो तो हम जाते ही हैं, हाँ. वो तो चलते ही रहता है हमारे साथ. कुछ हमारे साथ हो गया, किसी ने कल कुछ कह दिया या कुछ ऐसा हो गया, वो दर्द तो कंटिन्यूस प्रोसेस हम अपने साथ रखते हैं.
1: फिर वो डिटैचमेंट नहीं प्रैक्टिस हो पाएगा, क्योंकि डिटैचमेंट मतलब दर्द नहीं. लेकिन अगर हमें पास्ट के सिचुएशन से कुछ सीखना है, तो हम एक पल के लिए उस सिचुएशन को वैसे का वैसे सामने लाएं, लेकिन एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें, अगेन ऑडियंस में बैठकर, कि वो सिचुएशन मुझे कैसी दिखाई देती है, ताकि उसमें आप सिर्फ, मैं अपना रोल नहीं लेकिन आपका रोल भी उतना ही इक्वली बैठकर देखूं, तो शायद मुझे उस सिचुएशन में क्लैरिटी और आती जाएगी. लेकिन सिर्फ अपने रोल पर देख रही हूँ और आपके रोल को तो बिल्कुल दूसरी साइड से देख रही हूँ कि ये तो है ही गलत सारा कुछ, देन आई एम नॉट एबल टू कम आउट ऑफ that pain, and then my mind is filled with so much of bitterness, so much of pain the whole day. For clarity or stability, ये possible.
0: और self को लेके जो self pity वाला aspect है,
1: victimization.
0: मेरे साथ गलत हुआ. But जब भी मैं analyze करने लगती हूँ अपने साथ जो situation हुई होती है, चलिए खुद अंदर भी analyze कर रहे हैं, तो हर बार मुझे नजर आता है कि मेरे साथ गलत हुआ. Maximum लोग यही सोच पाते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ. तो एक साक्षी भाव, यानी कि मैं अपने आप से भी परे हूँ,
1: yes.
0: और उससे भी परे हूँ,
1: yes. और उसमें जो हम आगे देखेंगे कि सोल कॉन्शियसनेस, जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं कि मैं कौन हूँ, तो वो है डिटैचमेंट, कि मैं कौन हूँ, ये सब तो मेरे रोल्स हैं, ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये सब मेरे रिलेशनशिप्स हैं, लेकिन मैं कौन हूँ जो ये रोल प्ले कर रही हूँ. वो मैं जब इस पूरे ड्रामा को देखेगा, तो वो ड्रामा को उसके सही परिप्रेक्ष्य में देख पाएगा, नहीं तो इट गेट्स सक्ड इनटू द ड्रामा. You know, it just gets consumed by the whole scene, and then it can't see the scene in its right perspective. तो इसको अगर हम सारा दिन में, मुझे अगर रोज की अपनी तैयारी करनी है, तो इसकी प्रोग्रामिंग मुझे सुबह से शुरू करनी पड़ती है। तो इसको हम आज तो 2 मिनट के लिए अभ्यास भी करेंगे, लेकिन सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि कल एक दिन इसको प्रैक्टिस करेंगे 24 आवर्स। आज आप प्रोग्राम देख रहे हैं, कल जब आप फिर प्रोग्राम देखेंगे आप तब तक अपनी चेकिंग करेंगे कि सिर्फ 24 आवर्स के लिए एक प्रैक्टिस करनी है कि वो हर सीन जैसे जैसे गुजरता जा रहा है, हर डायलॉग इंटेंगलमेंट जैसे जैसे होती जा रही है, एक दिन के लिए थोड़ा सा स्लो डाउन करके उसको देखने की कोशिश करें रादर देन गेटिंग कंज्यूम इन टू द ड्रामा। इट विल नॉट हैपन ऑन द फर्स्ट डे इन अ वेरी ईजी मैनर, बिकॉज हमें आदत पड़ी हुई है उस सीन के अंदर जाने की। तो डिटैच्ड होने के लिए शुरू में, क्योंकि हमें अभ्यास नहीं है, हमें उसी सीन के अंदर 2 मिनट साइलेंस कर लेना चाहिए। लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग, देयर इज लॉट ऑफ नॉइज, एवरीवन इज गोइंग इनटू केओस, क्या होगा कैसा होगा, जस्ट 2 मिनट स्टेप बैक एंड ट्राई एंड लुक एट द सीन। आपको वो सीन बहुत बड़ा पता चलेगा कि इतना बड़ा है नहीं। जैसे ना कभी कंपनी में होता है प्रोजेक्ट नहीं हो रहा, ओ यू विल फाइंड दैट इट जस्ट गोज इनटू केओस, क्या किया तुमने, नहीं किया, ऐसा नहीं हो, स्टेप स्टॉप बैक 1 मिनट। तो जैसे ही आप ये स्टेप बैक अगर कल प्रैक्टिस करेंगे, यू विल रियलाइज वेरी सून एक बहुत वंडरफुल चीज, और वो ये कि मेरी स्थिति तो मेरे हाथ में,
0: क्योंकि मैं कर पाई। इवन स्टेप बैक में तो मैंने अपने आप
1: डिसाइड किया, मैंने ही तो किया अपने आप। सिर्फ ये याद रखना है कि मुझे करना है, एंड भले थोड़े दिन अटेंशन से करना पड़ेगा, थोड़े दिन के बाद इट विल बिकम वेरी इजी टू डू, कि देन वी विल रियलाइज कि परिस्थिति ने क्रिएट कर रही है ये सारा जो हम क्रियोस क्रिएट कर रहे थे, ये जो मैं अभी तक शोर मचा रही थी इस तरह से, ये मैं खुद ही बना रही थी, परिस्थिति तो वैसे की वैसे है। एंड धीरे धीरे वो रियलाइजेशन, जो ज्ञान समझ में आ गया है कि परिस्थिति नहीं स्थिति क्रिएट करती, लेकिन उसका एक्सपीरियंस, वो परिस्थिति में हमें एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। विल यू ट्राई टुमारो?
0: वेरी ट्रू,
1: यस। लेट्स डू 2 मिनट्स मेडिटेशन। इस सृष्टि नाटक रंगमंच पर हम सब एक्टर्स अपना अपना रोल प्ले करते हैं। आज सारा दिन जैसे जैसे मैं अपना रोल प्ले करते जाऊं, तो मुझे सिर्फ एक स्मृति रखनी है, मैं एक्टर हूं, ये मेरा रोल है, और मुझ एक्टर को इस रोल को अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। और मुझ एक्टर की विशेषता है, आई एम अ पावरफुल बींग, मैं शक्तिशाली हूँ, और इस शक्ति के साथ मैं हर रोल प्ले करने वाली हूँ आज। चाहे कोई भी परिस्थिति आए, मेरे चारों तरफ कुछ भी हो जाए आज सारा दिन, आई एम अ पावरफुल बींग, आई एम द मास्टर ऑफ द सिचुएशन। जैसे ही मैं ये परिस्थिति में ये स्मृति रखती हूँ, तो परिस्थिति छोटी होती जाती है। जस्ट वन थॉट टू टेक विद मी टुडे द होल डे, आई एम अ पावरफुल बींग, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, एंड आई एम मास्टर ऑफ एवरी सिचुएशन। परिस्थिति मेरी रचना है। अगर आप सुबह कुछ देर, ये तो हमने बहुत, बट दिस इज अ कॉन्वर्सेशन, दिस इज अ मेंटल प्रोग्रामिंग दैट आई एम डूइंग ना, आई विल डू दिस अगेन टुमारो मॉर्निंग, एंड कल के अपने दिन को फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा सा देख लें, क्योंकि नॉर्मली पता होता है आज सारा दिन में क्या क्या सीन्स आने वाले हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड अपने आप को उन सब सीन्स में देख लीजिए ऑलरेडी, कि यू आर गोइंग टू रिमेन स्टेबल। सो दिस इज अ सीन, यू नो दिस इज अ सजेशन व्हिच आई एम ऑलरेडी टेलिंग माई सेल्फ, कि दिस इज योर कैपेसिटी, तुम ये कर सकते हो, क्यों, बिकॉज यू आर अ पावरफुल बींग। लेकिन अगर मैंने अपने आप को थॉट दिया मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, that will be the result. The thought is creating destiny, right? So just the thought, I am a powerful being. Paristhiti is here, I am here. Paristhiti mere upar nahi, main apni sthiti se परिस्थिति को परिवर्तन करते हो, स्टार्ट द डे उन थॉट्स के साथ, और फिर जैसा हम हर बार करते हैं हर एक घंटे के बाद एक मिनट बीच में, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि थॉट्स फिर कई बार कहाँ कहाँ चली जाती है और फिर पता ही नहीं चलता, तो इसलिए बीच में रुक कर कल एक ही थॉट लेते हैं सिर्फ, आई एम अ पावरफुल बींग, मैं शक्तिशाली हूँ, और हर एक घंटे के बाद उस एक ही थॉट को ही लेना है, लेट्स नॉट डू टू मच हार्ड वर्क, एक थॉट, आई एम अ पावरफुल बींग, वो एक थॉट मुझे सारी सिचुएशन को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में दिखाता है बिल्कुल. So let's try that out tomorrow.
0: And we should all try actually. Sister Shivani, thank you so much. आज जो हमने बात की, और यहीं से पॉजिटिव थिंकिंग क्या पॉजिटिव लाइफ शुरू हो सकती है, यू नो, क्योंकि यहीं से थॉट जो है वो मेरी पॉजिटिव डेस्टिनी बनता जाएगा. थैंक यू सो मच. ओम शांति.
1: ओम शांति.
0: कोई सवाल कोई बात आपके पास है, आपका हम स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से. आप हमें फोन पर संपर्क करें या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0998-73-666-555, 0999-99-744-555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@pkmail.org. Awakening with Brahma Kumaris में आज इतना ही, लेकिन जिस पॉजिटिव थिंकिंग प्रोसेस पर हम चल रहे हैं वो हमारा अपना अनुभव हो सकता है. हर रोज का अनुभव, हर रोज का होमवर्क हमें मिल रहा है जो कि हमें एम्पावर करेगा, हमें वो खुशी देगा जिसे हम शायद सिचुएशंस में भूलते जा रहे थे, उसके अंदर सक्टिन होते जा रहे थे, तो अब हम सिचुएशन से ऊपर हो जाएंगे, ये हमें एक एश्योरेंस मिल रही है. आने वाली कड़ी में फिर मुलाकात करेंगे. इजाजत दीजिए. ओम शांति.

चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। संतों का उदय होना ही संसार के लिए शुभ नक्षत्रों की तरह कल्याणकारी है। जो विद्वान केवल शब्दों तक स्वयं को सीमित रखते हैं, वो उपदेशक हो सकते हैं, समाज सेवी हो सकते हैं, लेकिन संतों की वाणी द्वारा जो अनुभव और साक्षात्कार मुखरित होता है, साधक उससे मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। संतों ने अपने आचरण से जो दिया, उससे ही आचार संहिता बन गई। उनकी वाणी से जो विचार मुखरित हुए, वही शास्त्र बन गए। लोक कल्याण के लिए ये वाणियां गंगा की कलकल मधुर ध्वनि की तरह हृदय के तारों को स्पर्श कर जाती है। भारतीय संत परंपरा की एक ऐसी ही पवित्र जलधारा हैं संत रैदास, जो संत कुलभूषण कवि रविदास के नाम से भी जाने जाते हैं। संत रविदास का जन्म काशी में माघ पूर्णिमा के दिन हुआ था। उनके पिता का नाम संतोख दास और माता का नाम कलसा देवी था। बाल्यकाल से ही वो प्रभु भक्ति में लीन रहते थे। उन्हें संसार से विरक्त देखकर उनके माता पिता ने उन्हें पैतृक व्यवसाय में लगा दिया। वे अपने पिता के साथ काम भी करते और संत महात्माओं की सेवा भी करते। किशोरावस्था तक आते आते उनका मन पैतृक व्यवसाय में भी कम लगने लगा और प्रभु भक्ति तथा संत सेवा की प्रवृत्ति बढ़ती गई। तब पिता ने उनके विवाह का निश्चय किया, लेकिन विवाह के बाद भी उनकी दिनचर्या वैसी ही बनी रही, बल्कि उनकी पत्नी भगवती लोना जी भी साधु सेवा में उनका साथ देने लगी। रैदास और कबीर गुरु भाई थे, दोनों ही संत रामानंद के शिष्य थे। रामानंद गंगोत्री हैं, जिनसे कबीर और रैदास की धाराएं बही हैं। रैदास के गुरु रामानंद और उनकी शिष्या मीरा जैसी अद्भुत नारी, इन दोनों के बीच रैदास की चमक अनूठी है। भारत के संतों से भरे आकाश में रैदास ध्रुव तारा हैं। संत रैदास ने वही कहा जो बुद्ध ने कहा, लेकिन बुद्ध की भाषा ज्ञान की भाषा है और रैदास की भाषा प्रेम की भाषा है। ज्ञान के साथ तर्क हो सकता है, लेकिन प्रेम के सामने झुकने के सिवाय कोई उपाय ही नहीं। रैदास ओस में भीगे फूल की तरह प्रेम से भारी होकर झुके हुए थे ईश्वर के चरणों में।

संतन के मन होत है सबके हित की बात, घट घट देखें अलख को पूछें जात न पात। संत रविदास की वाणी भी वसुधैव कुटुंबकम की वाणी थी, उनके लिए मनुष्य मात्र एक है। वे जाति धर्म वर्ग संप्रदाय नहीं मानते, वे मूलतः भक्त थे, लेकिन समाज सुधार की भावना उनके दर्शन और ज्ञान पर आधारित, अपनी गहन अनुभूति के आधार पर ही उन्होंने मानव एकता की बात कही थी। रविदास एकै ब्रह्म का होइ रहियो सगल पसार, एकै माटी सब घट सरजै एकै सबकु सर्जनहार। वो परमात्मा की ज्योति का प्रकाश सभी में देखते थे, इसीलिए किसी तरह का भेद उनके मन में नहीं था। हर मनुष्य में परमात्मा का अंश उन्हें दिखता रहा, इसीलिए दीन दुखियों की सेवा, मनुष्य मात्र से प्रेम उनका सहज स्वभाव था। उनके पिता ने अपने व्यवसाय से बहुत पैसा कमाया था। संत रविदास में संचय की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं थी, वो तो संतों की सेवा और दान पुण्य में रत रहते थे। अपनी संपत्ति को लुटता हुआ देखकर पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया। घर के पीछे ही थोड़ी सी जगह दे दी, जिसमें फूस की झोपड़ी बनाकर वो पत्नी के साथ रहने लगे। किसी तरह उनकी आजीविका चलती रही। कहा जाता है कि एक बार उनकी दरिद्रता को देखकर एक साधु ने उन्हें पारस मणि लाकर दी। उन्होंने साधु को वो मणि छप्पर में खोंस देने को कहा। मणि खोंस कर साधु चला गया। 13 महीने बाद वो साधु फिर लौटा और पारस मणि के बारे में पूछा। इस पर रविदास जी ने उत्तर दिया, जहां रख गए थे वहीं देख लो। संत रविदास के लिए तो पारसमणि परमात्मा ही थे। ईश्वर से ईश्वर के अलावा उन्होंने कुछ न मांगा। वो कहते थे, दुखिया दर्द मंद दर्य आया, बहुतै प्यास जवाब न पाया। कही रविदास सरणि प्रभु तेरी, ज्यों जानहु त्यों करु गति मेरी। अर्थात परमात्मा के दरवाजे पर जो दुखी की तरह आया, दर्दमंद की तरह आया, कुछ मांगने आया, उसे कभी कोई उत्तर नहीं मिला। उसकी सारी प्रार्थना व्यर्थ चली गई। वो कहते थे कि हम तेरी शरण में हैं, तेरी जो मर्जी वैसी मेरी गति करो। रैदास जी कहते थे कि मांगा हुआ स्वर्ग मेरे काम का नहीं है, बिन मांगे जो तुम दे दो वही मेरा स्वर्ग है। संपूर्ण समर्पण और प्रेम को ही उन्होंने भक्ति कहा।

और आत्मा में ही परमात्मा के दर्शन की बात करते हैं। वो कहते हैं, बाहर खोजत का फिरे, घट भीतर ही खोज, रविदास उन्मान साध कर देखो पिया को आज। वो ईश्वर को बाहर नहीं ढूंढते, न किसी कर्म कांड में पाते हैं। संत रविदास की यात्रा भीतर की यात्रा है। वो कहते हैं, जो प्रेम का उद्गम स्थान है हमारा हृदय, वही परमात्मा का भी स्थान है। अपने उदार स्वभाव और निष्प्रिय जीवन के कारण संत रैदास की ख्याति पूरे भारत में फैलने लगी। उनके सामने कितना भी विरोध लेकर कोई उपस्थित होता, उनका प्रेम उसे झुका देता। चित्तौड़ की रानी झाली ने भी उन्हें अपना गुरु माना था। काशी नरेश वीर सिंह बघेले ने भी आरंभिक विरोध के बाद उनका गुरुवत सम्मान किया। संत रैदास जी ने सिद्धियों की साधना नहीं की, वे तो केवल भक्ति और सहज साधना के द्वारा ही सिद्ध हो चुके थे। उनकी भक्ति साधना से केवल जन साधारण ही नहीं, बल्कि सैन, धन्ना, नानक और कबीर जैसे संतों ने भी उनका गुणगान किया। उनका परस्पर मिलना, विचारों का आदान प्रदान, सत्संग और प्रवचन समय समय पर होता रहता। सत्संग को संतों ने साधना का एक प्रमुख साधन माना है। संतों की मंजिल एक थी और वे एक साथ आनंद के गीत गाते गाते उस ईश्वर तक पहुंचना चाहते थे।

पीड़ा से उत्पन्न हुआ संत भगवान बुद्ध की तरह दूसरों की पीड़ा का अनुभव भी करने लगता है और सिद्ध होकर उसका उपाय भी ढूंढ लेता है। यूं संतों की आत्मा स्वयं ही उद्धारक होती है। रविदास जी कहते थे कि हम सब एक ही नौका पर तो हैं। उसी भवसागर की पीड़ा का अनुभव कर उन्होंने उसका समाधान दिया, विरोधियों का सामना भी किया, लेकिन उनकी वाणी का प्रभाव समाज पर पड़ा और उनकी वाणी को मान्यता मिली। संत रविदास ने परंपरा, कट्टरता, हठधर्मिता और रूढ़ियों में से जो कुछ अच्छा था उसका समन्वय कर एक ऐसी विचारधारा का निर्धारण किया जिससे मनुष्य के बीच की खाइयों को पाटने में सहायता मिली। उन्होंने कहा, कृष्ण करीम राम हरि राघव जब लक एक न पेवा, वेद कतेव कुरान पुरातन सहज एक नहीं वेशा। उनकी वाणी में विचारों का एक अद्भुत सामंजस्य है जिसका आकलन परंपरागत दृष्टि से नहीं हो सकता। अनुभूति ही संत धर्म की आधार भूमि है। व्यक्तिगत साधना द्वारा ही उन्होंने सामाजिक चेतना प्राप्त की थी। मानवतावादी काव्य उनकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति थी। उनकी अनगढ़ अटपटी वाणी ही जनसाधारण के लिए काव्य बन गई, क्योंकि उनके विचारों की सरलता लोगों के हृदय तक पहुंचती थी। उनका जीवन बताता है कि वैराग्य करना नहीं पड़ता, संसार नहीं छोड़ना पड़ता, भागना नहीं।

नहीं पड़ता। वो गृहस्थ होकर भी परम वैराग्य को प्राप्त थे। बस वो राम के साथ रमे रहे, अपने भीतर की सीढ़ियां उतरते रहे और पहुंच गए अपने गंतव्य तक। संत रविदास लगभग 120 वर्ष की दीर्घायु व्यतीत कर ब्रह्मलीन हुए। वो एक निष्काम भक्त थे, उनके हृदय में कोई अभिलाषा नहीं थी। वो कहते हैं, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। अपने संपूर्ण अस्तित्व को ईश्वर में देखने वाले भक्त की भला और क्या अभिलाषा हो सकती है, सिवाय इसके कि वो निरंतर भगवत प्रेम का रसपान करता रहे। यहां भक्ति स्वयं ही उद्देश्य है। ये वो प्यास है जो कभी मिटती नहीं, और जब मिटती है तो कोई प्यासा नहीं रहता। ऐसा भक्त हृदय ही कह सकता है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ऐसे महान संत कवि रविदास को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया श्री राजेश प्रसाद मिश्र ने, समन्वय किया संजय यादव ने और इसे प्रस्तुत किया सुनीता सिंह ने।

0: भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन नाउ इवन अगर कल बीत गया इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
2: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

आप और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी. ओम शांति. जिंदगी के कई सारे इन मरहलों से गुजरने के बाद अब बारी आती है कि हम हर रोज़ अपनी ज़िंदगी को कैसे जिए. बार बार हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बात करते आए हैं कि ब्रह्मा कुमारी सेंटर जो जहाँ आप हैं उसके बहुत नज़दीक ही आपको मिल जाते हैं और किस तरह उस सेंटर से जुड़ सकते हैं, कैसे वहाँ जाकर आपको लगता है कि आप परमात्मा के घर में हैं और कैसे ये कनेक्शन जो है वो जिस सशक्त होने का, जिस एम्पावरिंग का बात करता है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाती है. मुरली एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम परमात्मा के जो महावाक्य हैं उनसे रूबरू होते हैं हर रोज़. क्या होता है ऐसा ख़ास मुरली में, क्यों ज़रूरी है और किस तरह से हमारी ज़िंदगी में बदलाव आ सकते हैं, इन सभी पर बात करने के लिए आज फिर हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी. ओम शांति. सिस्टर शिवानी, इतना सब कुछ हमने जाना है, इतना सब कुछ समझ लिया है, लेकिन एक बार फिर बात यही आ जाती है कि क्या मेरे या आपके द्वारा संभव है ये सब कह पाना, ये समझ पाना, ये जान पाना, या फिर ये वो परमात्मा है जो सीधी बात कह रहे हैं.
1: हर चीज़ जो हम इस प्रोग्राम के दौरान डिस्कस कर रहे हैं, हर ज्ञान की वो बात, हर वो सत्य वास्तविकता जिससे हम बहुत दूर हो चुके थे, वो परमात्मा द्वारा ही हमें समझाई जाती है. सृष्टि रंगमंच पर जैसे जैसे ये ड्रामा आगे बढ़ता, तो वर्तमान समय जो हम कहते हैं परिवर्तन का समय चल रहा है, क्योंकि चारों तरफ अंधकार है. यू नो मोर इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज़ कि इतना भय है, और बहुत बार सुनने को मिलता कि ये कलयुग है. आखिर ये कलयुग कब तक ऐसा चलेगा? तो कलयुग अर्थात कलह कलहेश का युग, कि आत्माएं सारी कलह कलहेश में, घर घर में कलेश है, और आत्मा सारा दिन में बहुत ज़्यादा दुख और दर्द का अनुभव करती, तो ये कलयुग है. लेकिन कलयुग सदा तो नहीं चल सकता, और वर्तमान समय आजकल देखे तो बहुत भय भी हो गया है कि आखिर इस सृष्टि का भविष्य क्या है, क्या होने वाला है आगे. तो यही वो समय है जो परमात्मा अपने वायदे अनुसार, आज दिन तक हमने कई बार ये पढ़ा कि जब जब इस सृष्टि पर धर्म की अतीक लानी होगी, तो परमात्मा का वायदा है कि मैं स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित होऊंगा. तो ये वो समय है जब वो निराकार परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित होते, और अवतरित होकर सबसे पहले वो हम आत्माओं को अपना परिचय देते कि हम कौन हैं आत्मा, और फिर आत्मा से जुड़ी हुई हर बात हमें समझ में आने लग जाती है, और फिर परमात्मा अपना परिचय देते कि जैसे तुम निराकार जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट कॉन्शियसनेस, तो मैं भी तुम्हारे ही तरह, और अपना नाम भी बताते कि मेरा नाम है शिव, और क्योंकि वो हमारे पिता हैं तो हम उन्हें शिव बाबा कहकर पुकारते हैं. और फिर परमात्मा हमें समय का परिचय देते हैं कि समय जो ये चल रहा है ये नहीं कि कोई विनाश होने वाला है, क्योंकि वो हम बहुत डर में रहते, लेकिन एक परिवर्तन की वेला है. हम इस कलयुगी सृष्टि से सत्ययुगी दुनिया की ओर जा रहे हैं. सृष्टि तो वही होगी, लेकिन आत्मा जो वर्तमान समय कमज़ोर है वो जब शक्तिशाली बन जाएगी तो वही सृष्टि बहुत सुंदर बन जाएगी, प्रकृति पवित्र हो जाएगी. तो ये परिवर्तन का जो कार्य है कि अ बैटरी द सोल जो कम्प्लीटली वीक हो चुकी है, आज वो फिर से चार्जिंग की प्रोसेस पर चल चुकी है, वो पावर हाउस के बिना नहीं हो सकता. हम आत्माएं समझे, हम अपने आप को सशक्त कर लें, तो ये वर्तमान समय थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हम बहुत कमज़ोर हो चुके हैं. और क्या होता कि वायुमंडल,
0: आसपास जो माहौल है, बिल्कुल
1: वायुमंडल भी बहुत चैलेंजिंग है. तो अगर हम थोड़ा सा ट्राई भी करते, फिर हमारे सामने इतनी सारी बातें आ जाती कि हम फिर से अपने आप को कमज़ोर महसूस करते. तो ऐसे समय पे वो पावर हाउस की शक्ति मिलना, वो परमात्मा से संबंध जुड़ना, वो इस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को ईजी बना देता है. और सबसे सुंदर बात तो ये कि परमात्मा द्वारा दिया हुआ ज्ञान हमें जब रोज़ रोज़ सुनने को मिलता, जो हम सेंटर पे जाते और जिसको मुरली कहते हैं, वो निराकार परमात्मा शिव बाबा के डायरेक्ट सुनाए हुए महावाक्य, वो महावाक्य जब हमें सुनने को मिलते, तो वो प्योर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे जब पढ़ती जाती है, तो जैसी इन्फॉर्मेशन उसी से थॉट्स चेंज होते जाते हैं, उसी से बिलीफ सिस्टम में क्लैरिटी आती जाती कि आज दिन तक हम क्या सोच के चल रहे थे. और बस थोड़ा सा फिर प्रोसेस होता है उसको अपने जीवन में ट्राई आउट करने का, और जैसे ट्राई करते हैं तो उस सुप्रीम टीचर की दी हुई टीचिंग है, तो लगता कि ये तो ईजी है, इसको ऑब्स्टिकल तो मैंने ही बनाया हुआ था कि ये बहुत डिफिकल्ट है, करने लगे तो लगता ईजी है, और जैसे ही वो प्राप्ति होती गई तो और करने की मोटिवेशन मिलती गई। एंड मेडिटेशन में, क्योंकि वो पावर भी साथ में मिलती, तो एक है नॉलेज और दूसरी है पावर, और ये दोनों चीज़ें मिल जाएं तो ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरल होने लगता है, हम हेल्दी होते जाते हैं। तो किसी भी परिस्थिति को फेस करने की पावर क्रिएट नहीं करनी पड़ती, इट्स लाइक नेचुरली आई एम बिकमिंग पावरफुल। तो इसलिए अगर हम थोड़ा समय निकाल कर सेंटर पे जाते हैं तो परमात्मा के जो महावाक्य हैं बहुत सिंपल होते हैं, दे आर सो सिंपल कि एक क्षण के लिए आप समझेंगे इतना सिंपल,
0: यू नो, ये तो मुझे मालूम था, हाँ
1: इतना सिंपल, क्योंकि सुप्रीम टीचर ने हमारी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को एकदम सिंपल करके रख दिया,
0: सहज सा बन जाता है बिल्कुल। वहाँ से दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि मुरली, आज तो हम मुरली की बात कर रहे हैं और मुरली सुनेंगे भी हम कुछ, लेकिन कितने बजे, क्योंकि वक्त का जो एक हर रोज वहाँ वक्त निकालना, ज़्यादातर स्केड्यूल्स अगर हम देखते हैं तो मुश्किल हो जाता है, तो क्या कैसे हम कब कब मुरली जो है वो सुनाई जाती है?
1: जो हर सेंटर पे, एवरी सेंटर ऑल ओवर द वर्ल्ड इन एवरी कंट्री, एक होती है मॉर्निंग क्लास और एक होती है इवनिंग क्लास। तो मॉर्निंग क्लास हर सेंटर पे अप्रोक्सीमेटली 6:30 और 7 के बीच शुरू होती, थोड़ा सा सिटी में वेरी करेगा, बट अदरवाइज नॉर्मली इट इज़ एनीवेयर बिटवीन 6:30 से 7 बजे सुबह, और ये अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स to 1 आवर की क्लास होती, जिसमें 10 मिनट्स 15 मिनट मेडिटेशन भी होता एंड 45 मिनट्स के लिए हम ये ज्ञान की चर्चा भी करते। तो मॉर्निंग क्लास एक है, फिर दूसरा है इवनिंग क्लास, कि जो लोग मॉर्निंग में नहीं आ सकते, तो इवनिंग में भी समय थोड़ा थोड़ा वेरी करेगा सेंटर पे, बट एनीवेयर बिटवीन अगेन 6:30 to 7:30, शाम के 6:30 से 7:30 बजे के बीच क्लास होगी हर सेंटर पे। लेकिन इसके भी अलावा अगर आपको मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइमिंग नहीं सूट करता, इसके भी अलावा आप मॉर्निंग 8 o'clock से दोपहर 12 बजे के तक कभी भी सेंटर पे जा सकते हैं और आपको बहनें मुरली सुनाएंगी, और शाम को भी 4:30 से 7:30 बजे तक आप कभी भी सेंटर पे जा सकते हैं। हाँ, आज हम कुछ महावाक्य डायरेक्ट सुनते हैं। जैसे कई बार हम लोगों का क्वेश्चन उठता कि हम करना तो चाहते हैं, हम उस स्टेज तक पहुंचना तो चाहते हैं जो स्टेबिलिटी की है, या जिसको हम कहें कंप्लीशन की है या पॉजिटिविटी की है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं कर पाते, क्या है जो हमें रोक देता है? तो शिव बाबा परमात्मा हमें सुनाते कि उस स्थिति तक पहुंचने के लिए मुख्य दो कारण देखे जाते जो उससे हमें रोकते हैं। एक तो है वेस्ट अर्थात गवाना, और दूसरा वेट अर्थात वज़न ज़्यादा। अब फिर बाबा ये एक्सप्लेन करेंगे कि इसका अर्थ क्या। जैसे आजकल के ज़माने में शारीरिक रोगों का कारण वेट जास्ती है, सर्व बीमारियों का निवारण वेट कम करना है, यू नो, बहुत सारी बीमारियां ओबेसिटी के कारण होती हैं, तो बाबा ने कहा सर्व बीमारियों का निवारण वेट कम करना है। वैसे पुरुषार्थ की गति का कारण कि क्यों नहीं पुरुषार्थ तेज हो पाता, वो है वेट ज़्यादा। तो वेट कम न करना, जैसे शरीर में भारीपन होने के कारण ऑटोमेटिकली बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, वैसे आत्मा के बोझ से भी आत्मिक रोग भी स्वतः ही पैदा हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, बाबा इतनी सिंप्लीफाई करके उसको समझाते हैं कि हमें क्लियरली दिखाई देता है कि आत्मा पर बोझ इतना ज़्यादा है कि बीमारियां फिर जो रोग हैं आत्मा के वो ऑटोमेटिकली आ जाते। सबसे ज़्यादा वेट बढ़ने का कारण क्या होगा?
0: बहुत से थॉट्स एक्चुअली,
1: पर वो किस तरह के थॉट्स? शारीरिक हिसाब से ज्यादा वेट बढ़ने का कारण होता है सड़ी हुई चीजें खाते हैं, जंक खाना। तो बाबा ने जंक खाने के लिए कहा सड़ी हुई चीजें खाते हैं। वैसे यहाँ भी सड़ी हुई वस्तु अर्थात बीती हुई बातें,
0: यस,
1: जंक है, क्योंकि उससे कोई एनर्जी कोई एनर्जी नहीं मिलने पड़ती, बिल्कुल जंक यार्ड में फिट करने जैसा। तो अर्थात बीती हुई बातें जो न सोचने की हैं, अर्थात न खाने की हैं,
0: आधे से ज्यादा वक्त हम जिंदगी का इसी
1: पे, नहीं उससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा समय पास्ट में होता है। सी पास्ट कैन बी नॉट बहुत पहले,
0: पिछला
1: ये क्षण नहीं, ये क्षण, यू नो, इस क्षण से परे हट के ऐसा क्यों हुआ,
0: अभी जो हुआ है
1: एक क्षण। तो बाबा ने कहा जो बीती हुई बातें जो न सोचने की हैं, अर्थात न खाने की हैं, ऐसी सड़ी हुई बातों को बुद्धि द्वारा स्वीकार कर लेते हैं, अथवा हर आत्मा की कमियों या अवगुणों का स्वयं में धारण करना। परमात्मा ये बहुत क्लियर करके हमें, ये बहुत डीप फिलोसफी है जो बाबा ने आकर बहुत सिंपल कर दिया, कि जितना समय आप किसी आत्मा के अवगुण को देख रहे हो या आप किसी कमजोरी को देख रहे हो, तो आप समझ लो कि उसको आप अपने अंदर धारण कर रहे हो। सो इनिशियली व्हेन आई यूज्ड टू लिसन टू दिस एट द मुरली, आई वाज लाइक हाउ इज दिस पॉसिबल कि आप किसी की कमजोरी को देख रहे हो तो वो आपकी कैसे बन जाएगी। बट देन स्लोली ग्रेजुअली यू रियलाइज कि किसी की कमजोरी को देखना मतलब क्या,
0: उसी से होकर गुजरो,
1: नहीं वो थॉट्स क्रिएट करना ना। लेट्स से कि मैं आपके अंदर कमजोरी देख रही हूँ कि आप बहुत गुस्से वाले हो, लेट्स से, एंड मेरा फोकस सारा इस पर आ जाता है, तो मेरी हर थॉट जो क्रिएट हो रही है वो क्रोध से रिलेटेड है। इसका मतलब आपकी एनर्जी मैंने कंज्यूम कर ली। और इसी का ऑपोजिट कि हर आत्मा की विशेषता को देखना,
0: कि वो बहुत अच्छी है, बहुत प्यार वाली है,
1: जो भी, क्योंकि हर आत्मा के अंदर
0: अच्छाई तो है,
1: दोनों चीजें हैं, लेकिन मेरा दृष्टिकोण बहुत ज्यादा आज कमियों को ढूंढता रहता है
0: हमेशा। बहुत अच्छी बात ये है कि जहां हमने कमियों को ढूंढना शुरू किया, मतलब उस कमी को हमने खुद धारण कर
1: लिया। और अगर ये समझ में आ जाए तो हम कितना अटेंशन रखेंगे,
0: हम क्यों करेंगे, डेफिनेटली द वे यू नो लाइक समवेयर व्हेन वी अंडरस्टैंड कि जैसे गुस्सा करते हैं हमारे ब्रेन सेल्स परमानेंटली डेड हो जाते हैं, तो वो गुस्सा करने का थॉट भी नहीं आएगा,
1: नहीं आएगा। अब यही मुझे समझ में आने लगे कि जो कमजोरी मुझे आपके अंदर अच्छी नहीं लग रही है, लेट्स से मुझे नहीं अच्छी लगती कि आपके अंदर ये आदत है, लेकिन उसके ऊपर फोकस करने से आपके अंदर तो वो है ही है, मुझे अच्छी नहीं लग रही है और एक्चुअली मैं उसको ग्रहण कर रही हूँ, तो कितना डैमेज है। और चिंतन ये कर रही हूँ कि आपको कैसे चेंज कर दूँ कि आपके लिए ये बहुत हानिकारक है, लेकिन वो चिंतन करते करते मैं उस एनर्जी को अपने अंदर कंज्यूम करती हूँ। तो बाबा ने कहा दो बातें, सड़ी हुई भोजन है जो हम खाते हैं, बीती हुई बात जो हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, और दूसरा है आत्माओं की कमियाँ वो व अवगुण को स्वयं में धारण करना, इसको भी सड़ी हुई वस्तु ही कहेंगे। तली हुई जो वस्तु होती है वो खाने में बड़ी अच्छी लगती है, तली हुई है हम सबको पता है कि वो हार्मफुल है, फिर भी वो बहुत टेम्पटिंग है, बहुत अट्रैक्टिव है। तो बाबा ने कहा तली हुई वस्तु खाने में बड़ी अच्छी लगती है, अपने तरफ आकर्षण भी बहुत करती है, न दिल होते भी थोड़ा सा खा लेते हैं, जितना ही आकर्षण वाली होती है उतना ही नुकसान वाली भी होती है। वैसे यहां भी फिर आकर्षण की चीजें हैं, एक दो द्वारा व्यर्थ समाचार सुनना और सुनाना, गॉसिप। एंड अगेन गॉसिप करना मतलब अगर हम क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं किसी को तो हम वही एनर्जी अपने अंदर क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन गॉसिप मतलब किसी के बारे में बात करना, इधर उधर की बात करना, पता होते हुए भी अट्रैक्टिव बहुत लगते हैं और बहुत जल्दी हम उसकी तरफ तो इसलिए कितनी अच्छी तरह से बताया कि तली हुई चीज पता भी है फिर भी वो आकर्षण करती है, न चाहते हुए भी करते हैं कि थोड़ा सा खा ले। तो इसी तरह यहाँ जो आकर्षण की चीजें हैं वो है एक दो द्वारा व्यर्थ समाचार सुनना और सुनाना। कितनी बार एक दूसरे के पास जाते हैं और क्या खबर है, यू नो, कि क्या खबर मिलती है, समथिंग न्यू, ऑफिस में क्या हो रहा है, आस पड़ोस में क्या हो रहा है, लेन देन करने का होता है लेकिन उसका रिजल्ट, कहते हैं हम बातों में लेन देन कर रहे हैं सिर्फ, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, न्यूज एक्सचेंज, उसका रिजल्ट एक दो के प्रति घृणा दृष्टि हो जाती है। आपको पता है वो ऐसे, आपको पता है वो ऐसे, जितना मैं जिसके साथ शेयर करूंगी तो एक दो के प्रति हमारी क्या हो जाएगी, घृणा दृष्टि हो जाती है। समझते हैं मनोरंजन है, टाइम पास नहीं कहते, क्या कर रहे थे, बस टाइम पास बातें कर रहे थे, लेकिन अनेकों के मन को रंजन करते हैं, अनेकों के मन को चोट पहुंचाते हैं, दर्द देते हैं। तो बाहर का रूप आकर्षण का है लेकिन रिजल्ट गिराने वाला है। ऐसी बातों का बुद्धि द्वारा धारण करना अर्थात सेवन करना, इस कारण से वेट बढ़ जाता है। हमें रियलाइज भी नहीं होता सारा दिन में कि किन बातों से आत्मा के ऊपर का बोझ जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो बाबा ने तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें आज बताई, पास्ट का चिंतन करना, बीती हुई बातों के बारे में सोचना, दूसरा आत्माओं की कमियां, कमजोरियों को देखना, और तीसरा व्यर्थ समाचार की लेन देन करना, जो हम समझते कि मनोरंजन है लेकिन अनेकों के मन को रंजन करता है। जैसे शारीरिक वेट बढ़ने के कारण दौड़ी नहीं लगा सकते, चढ़ाई नहीं चढ़ सकेंगे, वैसे ही यहाँ भी जब आत्मा पर इतना बोझ हो जाएगा तो यहाँ भी पुरुषार्थ में तीव्र गति नहीं प्राप्त कर सकते। फिर कहेंगे हम करना तो चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा, तो वो हमें पता नहीं चलता कि ये जो सारा दिन में छोटी छोटी बातें कर दी, इसकी वजह से आत्मा पर बहुत बोझ हो गया है। अब जब हम वो ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं तो वो हो नहीं सकता। सारा दिन हल्का रहना चाहते हैं, इंटरनली उड़ते रहना चाहते हैं, लेकिन हैवी हो गई, तो आई कांट फ्लाई इनसाइड। हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव नहीं कर सकते। चढ़ती कला अर्थात मेरी जर्नी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चल रही है, इन अ बेटर डायरेक्शन, इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, वो हो नहीं पाएगा। वजन भारी वाला हर स्थान पर सेट नहीं हो पाता। अगर किसी का बहुत ज्यादा वेट है, उसको सीट बहुत मुश्किल से उसके लिए मिलती है, और अगर कोई बहुत पतला है वो कहीं भी फिट हो जाएगा। तो बाबा ने कहा इसी तरह हम, अगर आत्मा भारी है तो वो हर परिस्थिति में अपने आप को सेट नहीं कर पाएगी। तो बाबा ने कहा इसलिए हल्के रहना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए बाबा भी बार बार याद दिलाते कि वेट कम करो। इसका साधन क्या साधन होगा वेट कम करने का? जैसे शारीरिक हल्केपन का साधन है एक्सरसाइज, वैसे ही आत्मिक एक्सरसाइज, योग अभ्यास द्वारा हम वेट को कम कर सकते हैं। अब बाबा ने यह भी बताया कि योग अभ्यास क्या करना है। अभी अभी कर्म योगी अर्थात साकारी, कर्म कर रहे हैं ना, कर्म से तो न्यारे नहीं होंगे, तो अभी अभी कर्म योगी साकारी, साकारी मतलब कॉर्पोरियल फॉर्म में, इस साकार शरीर में, तो इस क्षण इस साकार शरीर में, नेक्स्ट क्षण निराकार, यू नो दिस इज लाइक दिस एक्सरसाइज। अब जैसे हम स्ट्रेट हैं एंड देन वी बेंड डाउन एंड टच, अगेन कम बैक स्ट्रेट, अगेन बेंड डाउन एंड टच, जब हम बार बार ये करते हैं तो हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है और फिर हम किसी भी सिचुएशन में
0: हैंडल कर सकते हैं।
1: अगर मेरी बॉडी बहुत स्टिफ है, यू नो, तो फिर अगर मुझे बहुत मूव करना पड़े, एडजस्ट करना पड़े, मैं थोड़ा सा ऐसे करती हूँ तो मेरे हाथ में दर्द हो जाएगा क्योंकि मेरी बॉडी बहुत स्टिफ है। लेकिन रोज वो फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करने से किसी भी सिचुएशन में बहुत इजी।
0: बस जैसे सिचुएशन आएगी मुझे निराकार जाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी,
1: नहीं आएंगे। और ज्यादातर होगा क्या कि बार बार ये एक्सरसाइज करने से मेरे अंदर इतनी पावर उस टाइम भरी होगी, जैसे हम हमेशा अनुभव करते कि 2 मिनट भी योग करते तो कितना पावरफुल लगता है। तो अगर हर घंटे ये किया होगा, साकार निराकार, साकार निराकार, और ये हम घंटे के बीच भी कर सकते हैं। निराकार अर्थात जो इस साकार दुनिया से परे है, जो हम हमेशा देखते कि परम धाम अपना घर, तो 1 सेकेंड मैं यहाँ हूँ, अगले सेकेंड वहां। अभी क्या हो रहा है, हम बैठते हैं, करने लगता है, पहुंच नहीं रहे, हो नहीं रहा, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। इसको सारा दिन में अगर अभ्यास किया होगा, 1 सेकंड यहाँ, नेक्स्ट सेकंड वहां, तो फिर करना बहुत इजी हो जाएगा। तो अभी अभी कर्म योगी अर्थात साकारी बन, साकार सृष्टि का पाठ बजाना, इस साकार सृष्टि पर अपना पाठ बजाना और अभी अभी निराकारी बन परम धाम का अनुभव करना। ऐसे बुद्धि की एक्सरसाइज करो तो सदा हल्के हो जाएंगे, भारीपन खत्म हो जाएगा, पुरुषार्थ की गति तीव्र होती जाएगी। बिकॉज जितनी फ्लेक्सिबिलिटी आती जाएगी उतना फिर ट्रांसफॉर्मेशन लाना बहुत ईजी हो जाएगा। और जितनी बार हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो सोल कॉन्शियसनेस
0: ज़्यादा होती जाएगी, ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी
1: एक्चुअली। सोल कॉन्शियसनेस मेरी नेचुरल बनती जाएगी और जितनी सोल कॉन्शियसनेस होती गई ईगो खत्म होता जाएगा। और जहाँ ईगो खत्म हो रहा है वहाँ सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है क्योंकि सेल्फ एस्टीम मेरा बहुत बढ़ जाता है। फिर बाबा ने कहा कि ये सब कुछ समझ तो आ जाता है हमें, लेकिन फिर भी करते करते इस यात्रा के दौरान मुश्किल क्यों लगता है? सहज फिर भी मुश्किल लगता। तो बाबा ने कहा ज्ञान का कोर्स तो 7 दिन का ही है, 7 दिन में सब कुछ समझ में आ जाता, सारी पॉइंट्स भी समझ में आ जाती, सत्य परिचय भी मिल जाता, लेकिन फिर भी चलते चलते कहते ये मुश्किल क्यों? और जबकि इस राजयोग को हम कहते ये सहज राजयोग है, लेकिन फिर भी हम खुद ही उसको मुश्किल बना देते। परंतु मुश्किल क्यों होता है? उसका कारण है अपनी ही कमजोरी, कोई ना कोई पुराना संस्कार। बाबा ये नहीं कहता आपका संस्कार, बाबा नेवर सेज कोई ना कोई आपका संस्कार बीच में आता, बिकॉज ही इज वेरी क्लियर कि आपका संस्कार तो ओरिजिनल। कोई ना कोई पुराना संस्कार सहज रास्ते के बीच में बंधन बन रुकावट डालता है, जो हमने देखा ऑब्स्टिकल अपने ही संस्कार कई बार बन जाते और शक्ति न होने के कारण पत्थर को तोड़ने लग जाते हैं। जो हमने देखा ना ऑब्स्टिकल आएगा हम उसको ही तोड़ने लग जाते हैं और तोड़ते तोड़ते दिल शिकस्त हो जाते हैं,
0: थक जाते हैं।
1: लेकिन सहज तरीका क्या है? पत्थर को तोड़ना नहीं है लेकिन जंप लगाना है। द होल हर्डल थिंग कम्स फ्रॉम द मुरली। तो कई बार भाई बहने कहते हैं ये कहाँ से इतना सिंप्लिसिटी से आता, ये सारा कुछ तो बाबा ने मुरली में ही सुनाया है। तो पत्थर को तोड़ना नहीं है लेकिन जंप लगा के पार होना है। ये क्यों हुआ? ये होना नहीं चाहिए, आखिर ये कब तक चलेगा, ये तो बड़ा मुश्किल है, ऐसा क्यों होता है? ये सब है व्यर्थ संकल्प, पत्थर को तोड़ने का प्रयास। क्यों हुआ, क्या क्या कर रहे हैं हम? मूव अहेड? नो, वील स्टैंड देयर,
0: स्टक देयर एक्चुअली।
1: तो कितने बाबा कहते सारे आपके क्वेश्चन है ये क्यों हुआ, ये होना नहीं चाहिए था। जो क्यों हुआ ठीक है समझ में आ गया, होना नहीं चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको, ये होना नहीं चाहिए था, आखिर ये कब तक ऐसा चलेगा, ये तो बड़ा मुश्किल है, ऐसा क्यों? तो ये सारे व्यर्थ संकल्प पत्थर तोड़ना है, लेकिन एक ही शब्द है ड्रामा। ये ड्रामा की ये सीन है, इस सीन को एक्सेप्ट करें एंड जंप। इसे पत्थर तोड़ो नहीं, पत्थर के ऊपर जंप कर जाओ। लेकिन उस समय इस पॉइंट को याद रखना है कि ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है, एक्यूरेट है, बेनिफिशियल है। तो उसके लिए एक ही वर्ड याद रखना पड़ता, ड्रामा। कि ड्रामा में ये सीन इस टाइम जैसी है वैसी परफेक्ट है। दूसरी कमजोरी ये होती है कि समय पर पॉइंट टच ही नहीं होती। बहुत सारा ज्ञान सुन लिया, समझ लिया, पढ़ भी लिया, यहाँ बैठ भी गया, लेकिन बाबा कहते हैं समय पर तो पॉइंट याद ही नहीं रहे।
0: yes.
1: समय पर जब वो परिस्थिति आई बाद में सोचेंगे राइट एक्सेप्ट करना चाहिए, चेंज तो हम लोगों को कर नहीं सकते, तो बाद में सारी पॉइंट्स याद आ जाती है, लेकिन समय पर वो पॉइंट टच नहीं होती। वैसे सब पॉइंट्स बुद्धि में या डायरी में बहुत सारे हैं, लेकिन समय रूपी डायरी में उस समय वो पॉइंट टच नहीं होती। इसके लिए क्या करें? सदा ज्ञान की मुख्य पॉइंट्स को रिवाइज करते रहो। इट शुड बी देयर ऑन माय टॉप शेल्फ, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऊपर आती जाती है ना, और ये सारी जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है ये कहीं ना कहीं अंदर के कबर्ड में चली जाती है। तो फिर जब वो परिस्थिति आती है तो उतना टाइम नहीं होता कि जो उसको बैक ऑफ द माइंड से आगे लाना है। तो बहुत सिंपल तरीका है कि हर रोज ज्ञान के मुख्य पॉइंट्स को रिवाइज करते रहो, और यही रिविजन का साधन मुरली बन जाती है। क्योंकि रोज जब हम सेंटर पर मुरली सुनने जाते हैं तो ज्ञान के वो पॉइंट्स रिवाइज होती जाती है बार बार, रोज रोज रिवाइज। अगर हम महीने में एक बार सुने तो फिर तो कभी भी नहीं याद रहेगी परिस्थिति के दौरान। अनुभव में फिर लाते रहो, पहले रिवाइज करते रहो, फिर उसको अनुभव में लाते रहो, चेक करते रहो, और अपने आप को चेक करते करते साथ में चेंज करते रहो। सिर्फ नॉलेज को पॉइंट बनाकर डायरी में रखेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं निकलेंगे। तो चेक करते रहो और चेक करते करते साथ साथ चेंज करते रहो, फिर कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। जो पत्थर तोड़ने में टाइम वेस्ट होता है कि क्यों, क्या, कैसा, तुरंत वर्ड याद आएगा ड्रामा एंड आई जंप। ड्रामा मीन्स एक्सेप्टेंस, जैसे ही हम ड्रामा शब्द कहते हैं तो एक्सेप्टेंस याद आता। अभी कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में नहीं लगना, व्यर्थ संकल्पों के हथौड़े से समस्या रूपी पत्थर को तोड़ने में नहीं लगना। Now I just have to visualize myself doing this. कि परिस्थिति है, वो एक पत्थर ऑब्स्टिकल सामने खड़ी है और मैं जितनी बार व्यर्थ संकल्प उसके प्रति क्रिएट करती तो मैं उस पत्थर को हथौड़े से तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये मजदूरी करना छोड़ दो। अब इतनी सुंदर ये महावाक्य होते कि इतनी सुंदर बात सारा दिन में ऑटोमेटिकली मुझे याद रहती है और जब वो सीन बनाकर उसको फिट कर लेते हैं।
0: Whenever the problem comes, actually, ये तो हमने भी realize किया है कि memory में अगर आपके आ गया एक बार तो वो कभी भी flash आ जाता है। जैसे situation होती है धीरे धीरे ये होने लगता है कि जैसे situation आएगी वही flash आएगा आपका mind।
1: आप regularly सुन रहे हो ना, तो regularly अंदर feed करने से।
0: तो आज की इस पूरी बातचीत के लिए मुरली आपने हमें सुनाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। जीवन को चलाने के लिए हमें हर रोज दिशा निर्देश चाहिए, क्योंकि हम उस युग में हैं जहां शायद स्व के साथ काम करके, अपने आप काम करके, पूरे एनवायरनमेंट के साथ हम एक ना हो पाए और जिस राह पर हम चलना चाहते हैं वो ना चल पाए। ऐसे में सेंटर पे जाना और मुरली सुनना जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करता है। कोई बात है, कोई ऐसा सवाल जो आपके पास है, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें फ़ोन कीजिए या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसका ये सफर यूं ही चलता रहेगा। आपके सवाल अभी भी हमारे पास है तो उन्हीं सवालों का जवाब मिलकर तलाशेंगे आने वाली कड़ी में। अब दीजिए इजाज़त। ओम शांति।

0: साल मुबारक साहिब जी,
1: साल मुबारक साहिब जी।
0: लो आज पियो हंस के दो घूंट सोम रस के,
1: लो आज

0: साल मुबारक पापा जी,
1: साल मुबारक काका जी।
2: लो लो आज पियो हंस के दो घूंट सोम रस के, साल भर इसका नशा रहेगा।
1: और जो आज हंसे हंसे जो आज

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट। वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप नहीं कहता है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ मिलता ही नहीं यहाँ, लड़ने वालों के कदम में जहान होता है।

0: उड़ेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
1: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियाँ बांटो।
2: नमस्कार, वेलकम टू एवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी वेलकम।
3: ओम शांति।
2: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन।
3: थैंक यू।
2: आपने बड़ा डिफिकल्ट होमवर्क दे दिया मुझे।
3: डिफिकल्ट?
2: आपने बोल दिया मी एज अ कपड़ा।
3: द शर्ट दैट आई एम वेयरिंग इज आई।
2: आई, हाँ, तो मैं अपने आप को सोचू कि मैं ये हूँ।
3: हाँ।
2: तो मैंने सोचा जब मैं ये हूँ तो फिर मैं ये नहीं हूँ।
3: हाँ, बॉडी नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, ठीक है, बट ये मैं हूँ। और अब मैं सारा दिन काम कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा?
2: तो ध्यान उधर ही रहेगा, मेरे भी कपड़ों पे, दूसरों के भी कपड़ों पे।
3: एक फर्स्ट चीज ये होगी कि ध्यान किस पर रहेगा, सिर्फ
2: कपड़ों
3: मेरे
2: पे?
3: भी कपड़ों पे, दूसरों के भी कपड़ों पे, ठीक है। एक दूसरे के साथ अपना कंपैरिजन अगर हम करने लगेंगे कि कौन बेटर, यू नो हाउ वी टेंड टू डू, कौन बेटर, कौन हायर, कौन मोर ब्यूटिफुल, तो किस बेसिस पे करने लगेंगे?
2: मेरी शर्ट ज्यादा सफेद है।
3: वेरी ट्रू, क्योंकि हमने सोचा मैं शर्ट हूँ। अब अगर चलते चलते, खाना खाते हुए, कुछ करते हुए इस कपड़े पे कुछ गिर गया,
2: मैं मैला हो गया,
3: मैं मैला हो गया, फिर अगर किसी दरवाजे से, कीले से लटके ये फट गया, तो कौन फट गया?
2: मुझे चोट लग गई,
3: मैं फट गया। इज इट ट्रू?
2: इज इट ट्रू? मेरे कपड़े को लगी,
3: मेरे कपड़े को लगी और मैं फट गया, दोनों में फर्क? दोनों में फर्क। ये लगती कितनी छोटी बात है, लेकिन अगर इस तरह से हम जीवन जीने लगे तो सारा दिन हमारा ध्यान सिर्फ किस पर होगा? ये ड्रेस उस ड्रेस से बेटर होनी चाहिए। अगर ये ड्रेस पर दाग लग गया तो ये ड्रेस परफेक्ट कैसे हो जाए, और अगर ये ड्रेस फट गई तो हाय मैं फट गया, मेरा क्या होगा, ये जीवन कैसी जीवन होगी। अब इस ड्रेस के नीचे हमने एक और ड्रेस पहनी हुई है, वो है ये ड्रेस। जितना हमें ये डिफिकल्ट लग रहा था एक घंटे के लिए करना कि इस ड्रेस को मैं समझूं, उतना ही इजी और नेचुरल हमने इसको बना दिया है, इस ड्रेस को हमने मैं समझना शुरू कर दिया है। वो भी किसी दिन शुरू हुआ होगा।
2: हम शीशे में नहीं देख के कपड़े पहन के नहीं पूछते अपनी वाइफ से, फ्रेंड से, मैं कैसे लग रहा हूँ,
3: हाउ एम आई लुकिंग टूडे इज बेस्ड ऑन हाउ दिस बॉडी इज लुकिंग। क्योंकि आई थॉट बॉडी इज आई।
2: क्या
3: अब अगर आपने मैं ड्रेस को समझ लिया होता, तो ड्रेस अगर ब्यूटीफुल होती तो मैं ब्यूटीफुल। शरीर को मैं समझ लिया तो शरीर अगर ब्यूटीफुल तो मैं ब्यूटीफुल। जब आपने कहा मैं ड्रेस हूं अगर, तो अपने को भी ड्रेस देखा तो दूसरे को भी ड्रेस देखा। तो मैं शरीर समझ लिया अगर, तो अपने को भी शरीर देखा, दूसरे को भी क्या देखा?
2: शरीर ही देखा।
3: कंपेयर किया तो किस बेसिस पर किया? शरीर के बेसिस पर ही किया। इस शरीर को कहीं थोड़ा सा कुछ हुआ तो हमने कहा मुझे हो गया, मेरा नाक परफेक्ट नहीं, मेरा दांत परफेक्ट नहीं, मैं समझने लग गया, क्योंकि आई वॉन्टेड टू बी परफेक्ट, सो आई स्टार्टेड मेकिंग माई बॉडी परफेक्ट।
2: तो इंस्टेड ऑफ सेइंग मेरा नाक, आई से मैं परफेक्ट नहीं हूँ,
3: मैं परफेक्ट नहीं हूँ,
2: मैं कितना खराब हूँ,
3: यस, मैं
2: कितना गोरा हूँ।
3: फिर चलते चलते इस शरीर को अगर कोई बीमारी हो गई, तो हमने ये नहीं कहा मेरे शरीर को ये बीमारी हुई है, हमने कहा मुझे ये बीमारी हो गई, मुझे है डायबिटीज, मुझे है कैंसर, मुझे है ये सब, मुझे नहीं था। ये दोनों चीजों में बहुत फर्क है। मुझे जो बीमारियां वो अलग है, और मेरे शरीर को जो बीमारियां वो अलग है, लेकिन मेरे शरीर को जो बीमारियां हुई, मैंने कहा मुझे ये हो गया। जो मैं नहीं है उसको मैं नहीं कहना, जो मेरा है उसको मेरा कहकर ही चलाना, उसको मैं नहीं समझना, क्योंकि उससे बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। अब देखो इस कॉन्शियसनेस शिफ्ट में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। आज एक फुल इंडस्ट्री है जो सिर्फ शरीर को परफेक्ट बनाने में लगी हुई है। फुल इंडस्ट्री है जो शरीर को ब्यूटिफाई करने में लगी हुई है।
2: सबसे ज्यादा बिजनेस वही कर रहे हैं,
3: शरीर को सुंदर,
2: नाक के, कान के।
3: क्यों? क्योंकि जो मैं हूं मेरा संस्कार है ब्यूटी, मेरा संस्कार है परफेक्शन, लेकिन मैंने समझा मैं कौन हूँ, ये शरीर, तो मैंने ब्यूटी और परफेक्शन किस में ढूंढनी शुरू कर दी, शरीर को ब्यूटीफुल और परफेक्ट बनाने में मेरी सारी अटेंशन चली गई। दोनों चीजों में फर्क था, तो मैंने ब्यूटी भी शरीर में ढूंढी, परफेक्शन भी शरीर में ढूंढी। बीमारी हुई तो मैंने कहा मैं बीमार हो गई, कंपैरिजन किया तो भी शरीर के बेसिस पे किया। इतना स्ट्रेस सारा दिन इस बात का है कि आई नीड टू लुक गुड, इट्स ट्रू, आई नीड टू लुक गुड, बट हु इज द आई हु नीड्स टू लुक गुड? आई नीड टू लुक गुड, वी स्टार्टेड सेइंग आई नीड टू लुक गुड। दोनों बातों में फर्क। एंड ये नहीं है कि शरीर ठीक नहीं चाहिए, हेल्दी नहीं चाहिए, चाहिए, लेकिन आई नीड टू लुक गुड जब इधर फोकस हो गया तो यहाँ आय जो था उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग गई। उसमें ईर्ष्या भी आने लग गई, उसमें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी आने लग गया, उसमें रिजेक्शन की फीलिंग भी आने लग गई। इस आय में ये सब होने लगा जब दिस वॉज नॉट लुकिंग गुड। इफ माई इंटेंशन इज दैट आई नीड टू लुक गुड, तो मेरा अटेंशन कहाँ पे होना चाहिए? आई नीड टू लुक गुड,
2: माई बिहेवियर शुड लुक
3: गुड, आई नीड टू लुक गुड, आई वॉन्ट टू बी ब्यूटिफुल, सो वेयर डू आई वॉन्ट टू बी ब्यूटिफुल? आई वॉन्ट टू बी ब्यूटिफुल। आई,
2: व्हाट इज दिस आई?
3: आई, ये आई वो है जो इसको माई कहता है, ये मेरा शरीर है। वो कौन है जो सबको कह रहा है मेरा है, लेकिन खुद को भूलने के कारण अपनी परफेक्शन, अपनी ब्यूटी को हम अपने अंदर नहीं, अपनी जो चीजें हैं उनके अंदर ढूंढना शुरू कर दिया। बॉडी शुड बी परफेक्ट, माय रोल शुड बी परफेक्ट, माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई हैव टू डू परफेक्टली, इम्पोर्टेंट, बट फर्स्ट आई हैव टू बी परफेक्ट, then everything else perfect. But in the process of making everything else perfect, I went, because मैंने I पर ध्यान नहीं दिया। तो ये सब कुछ जो मेरा है, जिसको हम चलाते हैं, जिनको हम निभाते हैं, ये सब को चलाने वाली जो शक्ति है, जो energy है, उसको हम I कहेंगे। वो energy कह रही है this is mine. That energy, आपने कहा ये आंखें, हम इन आंखों के द्वारा देखते हैं। आंखें दो लोगों की सेम हो सकती हैं, लेकिन उन आंखों के द्वारा देखना क्या है वो कौन डिसाइड करेगा?
2: आई,
3: आई। आपकी और मेरी आंखें दिखने में सेम है, लेकिन इस पूरे गार्डन में आप अपनी आंखों के द्वारा क्या देखते हैं और मैं अपनी आंखों के द्वारा क्या देखना चूज करती हूँ, डिफरेंट,
2: अपना अपना परसेप्शन अलग अलग है।
3: तो वो ये आंखों को यूज करते हुए हम क्या देखेंगे? तो ये आंखें मेरा इंस्ट्रूमेंट है।
2: थ्रू दीज आईज आई सी। जैसे मैं अपनी गाड़ी में बैठ के यहाँ से वहां तक ट्रेवल करता हूँ,
3: सो थ्रू दीज आईज आई सी, थ्रू दिस माउथ आई स्पीक। मुख नहीं बोल रहा, मुख के द्वारा बुलवाने वाली वो शक्ति कौन है जो चूज करती है मीठा बोलना है, प्यारा बोलना है, कड़वा बोलना है? वो कौन है? ये मुख अपने आप तो नहीं बोलता। कान सुन रहे हैं, लेकिन कान के द्वारा सुनना क्या है? किसी की महिमा सुननी है या किसी की ग्लानी सुननी है? ये हाथ है, आपका मेरा हाथ दिखने में एक जैसा है, लेकिन इस हाथ के द्वारा किसी को आशीर्वाद देना है या किसी को थप्पड़ मारना है, वो कौन डिसाइड करेगा?
2: I
3: who is using this body, I who is operating through this body, I who is playing all my roles and responsibilities through this body. इस हाथ में एक चाकू लिया, ठीक है, उस चाकू से हम सब्जी भी काट सकते हैं, उस चाकू से हम किसी को मार भी सकते हैं। चाकू की responsibility? Is it the knife which will decide?
2: No, it's my choice.
3: Is it the hand which will decide?
2: No.
3: Then who will decide?
2: I will decide.
3: I. We are very clear ke chaku instrument hai. Haath kya hai?
2: Haath bhi is mera instrument hi samajh sakta hu.
3: Mera instrument bhi samajh sakta hu? Nahi, hai instrument.
2: Haan.
3: Hai instrument.
2: Haan.
3: जैसे वो चाकू इंस्ट्रूमेंट था, उसके पास डिसीशन मेकिंग पावर नहीं थी कि क्या करना है। ये हाथ के पास भी डिसीशन मेकिंग पावर नहीं है क्या करना है, ये भी इंस्ट्रूमेंट है। इस हाथ के द्वारा मुझे क्या करना है, आई। तो सिमिलरली ये पूरा शरीर भी मेरा क्या है। फिर
2: वो गलती से हाथ उठ गया, गलती से मुंह खुल गया, गलती से टंग जबान फिसल गई, ये सब बातें क्या रॉन्ग है? सब
3: आए, गलती से

0: किया ना, आप अपने जीवन की यात्रा में कितने सारे रिश्ते अक्वायर करते हैं।
1: इट इज बाय बर्थ ना।
0: सबसे पहली चीज आपको क्या मिली? ये शरीर मिला,
1: फिर माँ, फिर बाप,
0: फिर पेरेंट्स मिले, फिर भाई बहन मिले,
1: दोस्त, टीचर्स,
0: फिर फ्रेंड्स, फिर टीचर्स, फिर स्पाउस, फिर चिल्ड्रन। ये सब रिश्ते अक्वायर किए ना इस पूरी जीवन की यात्रा में।
1: अक्वायर भी किए, फिर छूट भी जाने।
0: दिस रियलाइजेशन, अक्वायर भी किया, छूट भी जाना है।
1: वो जॉब जो है, जो जनरल था आर्मी का, वो भी छूटेगा, प्राइम मिनिस्टर का भी छूटेगा, एक्टर का भी टाइम खत्म हो जाएगा, मतलब बॉडी का भी, इस बॉडी का भी।
0: दिस इज इट। इसका मतलब सब कुछ जो अक्वायर किया,
1: जो सब कुछ जो है वो मतलब टेम्पररी है।
0: सब कुछ जो अक्वायर किया वो टेम्पररी है।
1: हाँ, अक्वायर किया
0: सब कुछ।
1: बॉडी को हम अक्वायर किया कह सकते हैं?
0: बॉडी को ही सबसे पहले अक्वायर किया। सब कुछ जो मेरा है,
1: जो मिली, समझो, जो मिली, मिली और मेरा है,
0: मिली है, जो मिली है,
1: एक
0: जो
1: ब्यूटीफुल लाइन थी सिस्टर, आज मेरे समझ में आ रही है। मेरे गुरु के गुरु कहते थे, मेरे तब समझ में नहीं आई थी। उन्होंने इंग्लिश में लिखा था, एवरीथिंग इज फॉर मी, नथिंग इज माइन। सब कुछ मेरे लिए है, मेरा नहीं।
0: मेरे लिए है मतलब,
1: उसको ऐसे समझो कि आज ये कुर्सी जो भी है, आज जिस गद्दी पे प्राइम मिनिस्टर बन के मैं बैठा हूँ, आज ये मेरे लिए। इवन दिस चेयर,
0: इवन दिस,
1: इवन दिस शर्ट टूडे,
0: शर्ट तो मेरे लिए, बट इवन दिस,
1: हाँ,
0: ये मेरे लिए।
1: इसके बाद यहाँ आ रहा हूँ मैं, कुर्सी, फिर शर्ट, फिर ये बॉडी, मेरे लिए है,
0: मेरे लिए,
1: मेरे
0: अब
1: नहीं,
0: मेरे लिए। अब ये लाइन
1: यहाँ अटैचमेंट हटाने के लिए,
0: ये मेरी नहीं, ये मेरे लिए है। तो फॉर मी करके जब हम उसको यूज करें, डिटैच हो गया, और डिटैच होके बहुत अच्छे से यूज करेंगे। डिटैच होंगे तो इसको बहुत अच्छे से यूज करेंगे।
1: देखिए आपकी बातों से
0: माइंड कहकर
1: शास्त्र क्लियर हो रहे हैं। जब मुझे समझ में नहीं आया था, जब अष्टावक्र ने ज्ञान दिया था अपने राजा जनक को, उनको इतना ज्ञान मिला तो बोले मैं तो जा रहा हूँ जंगल, अब क्या मैं राजा की गद्दी पे बैठा। नहीं, बोले अब मैं, अब ज्ञान रख के, मेरे लिए समझ के, अब तुम गद्दी पे बैठो।
0: मीन्स ट्रस्टी होकर,
1: ट्रस्टी होकर
0: उस सब चीज को यूज करना है। स्पिरिचुअलिटी क्या सिखाती है? डिटैचमेंट। डिटैचमेंट से हम एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं कि डिटैचमेंट मतलब जैसे कि हमारा किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा, हम एक
1: बहुत
0: बैराग। डिटैचमेंट मीन्स हम उन चीजों से डिटैच होंगे, जब ट्रस्टी होकर उनको यूज करेंगे, तब हम उन चीजों को, वो चीज मतलब शरीर हो सकती है, वो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, हम उसको बहुत एक्यूरेटली और बहुत प्यार से निभाएंगे। लेकिन मेरा है तो कैसे भी यूज करते हैं उसको।
1: तो यहाँ तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपसे, ये तो मुक्ति भी होगी।
0: हाँ देखो,
1: एक जैसे अब डिटैच हो गए तो मुक्त हो गए,
0: डिटैच हो गए तो अटैचमेंट से सबसे पहले मुक्त हो गए।
1: बस
0: हम क्या कहते हैं परमात्मा को, ये तन मन धन सब कुछ तेरा है। गाते हैं ना सुबह खड़े होकर, ये तन मन धन सब कुछ तेरा है। अब ये सुबह हमने कह दिया कि ये तन मन धन सब कुछ तेरा है, क्या सारा दिन में हम उस लाइन को जीते हैं?
1: नहीं,
0: सिर्फ एक घंटे के लिए कॉन्शियसनेस शिफ्ट कि ये तन मन धन सब कुछ तेरा है, अब इसको यूज करें पूरा दिन।
1: तो जैसे बैंक का मैनेजर है,
0: ट्रस्टी होता है,
1: धन उसका है, भाई ये तेरे पासबुक ले जा, तू ये लेके जा, तू ये कर ले, मतलब ही जस्ट सिटिंग देयर, सबका सब कुछ दे रहा है।
0: ये क्यों हमें सिखाया गया कि रोज सुबह बोलो ये तन मन धन सब कुछ तेरा है?
1: क्यों?
0: तूने दिया, तुझको अर्पण, ये सब कुछ तेरा है। क्यों सिखाया गया? ताकि हम इन तीनों चीजों को, फिर ये तीनों भी तो शक्तियां है ना, तन मन धन की जो शक्ति है, हम इन तीनों चीजों को सारा दिन में फिर कितने ब्यूटीफुली और एक्यूरेटली यूज करेंगे। और किसकी अमानत?
1: घर में किसी का बच्चा भी कुछ दिन रहने के लिए आता है, बेटी, तो बोलते हैं संभाल के रखना, ध्यान से, यहाँ कुछ गड़बड़ ना हो जाए हमारे घर में, अच्छी तरह जैसे आई वैसे वापस भेजना।
0: बच्चा क्यों? अगर कोई अपना कोई पेट डॉग भी आपके घर छोड़ के चला जाए कि मैं एक दिन बाहर जा रहा हूँ, ये आप संभालना, ट्रस्टी होकर संभालेंगे। किसी की

0: कार चलाने होंगे, किसी और की कार है, ट्रस्टी होकर संभालेंगे। एक दिन ये थॉट क्रिएट करें, ये शरीर उसका है, उसने दिया है, मुझे इसको अब सारा दिन यूज करना है। तो इस शरीर को कैसे यूज करेंगे?
1: दूसरे की अमानत।
0: इसमें क्या डालेंगे, क्या नहीं डालेंगे?
1: जो मंदिर में खिलाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, वो यहाँ भी लगाएंगे।
0: हम बाकी सब चीजों का इतना ध्यान रखते हैं, फिर इसका क्यों नहीं रखेंगे?
1: शर्ट का रखते हैं। ये बहुत महंगा कपड़ा है, देखो स्त्री कितनी डिग्री पे है, पहले दूसरे कपड़े पे स्त्री करके देखते हैं कि जल तो नहीं रहा, ठीक है।
0: और इस शरीर में क्या कुछ डाल देते हैं, अंदर जाके वो क्या क्या कर रहा है
1: शरीर में, थॉट्स में, ब्रेन में, माइंड में,
0: तन मन धन
1: सब में।
0: अब ये सब कुछ जो हमें मिला है यूज करने के लिए, जो मेरा है, अगर हमारा इससे अटैचमेंट हो जाता है, पहले तो रॉन्ग इमेज एंड देन अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज, तो क्या रिजल्ट होगी? सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये मुझे मिला है यूज करने के लिए, ठीक है। अब मैंने इसको पकड़ा ऐसे, जब मैंने इसको ऐसे पकड़ा, मुझे मालूम है ना ये एक दिन गिरेगा। फॉर हाउ लॉन्ग कैन आई होल्ड इट लाइक दिस?
1: जब तक उसकी लाइफ है, जब तक उसकी बैटरी है, जब तक वो,
0: ये एक दिन गिरेगा, राइट? ये कुछ घंटे बाद गिर सकता है, ये कुछ दिन बाद गिर सकता है, आई डोंट नो। लेकिन ये नॉलेज है कि ये एक दिन
1: गिरेगा जरूर,
0: ये सर्टेन है,
1: सर्टेन है, 100%
0: नॉलेज है। जैसे आपने कहा गिरना सर्टेन है, लेकिन फिर भी पकड़ा ऐसे कि गिरना नहीं चाहिए। फाइनली एक दिन ये गिरा, लेट से ये 10वें दिन गिरा, 10 डेज आई वॉज एबल टू होल्ड इट वेरी टाइट, तो 10th डे दिस फॉल्स, 10वें दिन ये गिरा, 10th डे आई विल फील बैड कि मेरी ये चीज चली गई, गुम गई, टूट गई, व्हाटएवर, 10th डे। क्वेश्चन इज 10 दिन कैसे बीते?
1: टेंशन में।
0: क्यों टेंशन में?
1: क्योंकि पकड़ के रखो, ध्यान रखो, संभाल के रखो, और फिक्र है कि टूटे ना, गिरे ना, खत्म ना हो जाए।
0: तो मतलब 10 दिन भी उसको एंजॉय करने की बजाय
1: हाथ से छूटे ना,
0: फियर, ये फियर है, हाथ से छूटे ना, स्ट्रेस है। अब अगर कोई आया और किसने इसकी तरफ देखा भी, तो मैंने उसको भी डांट देना है, कहीं मेरी चीज ही ना ले जाइए मेरे हाथ से। ये हमारा जीवन है, इस जीवन में हर चीज मिली थी यूज करने के लिए। आपने कहा एवरीथिंग इज फॉर मी, शरीर मिला यूज करने के लिए, रिश्ते मिले एंजॉय करने के लिए, रिलेशनशिप्स, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के लिए, लेकिन सब कुछ जो मिला,
1: सिर्फ एक चीज आप भूल गए,
0: पैसे मिले
1: यूज करने के लिए पकड़ के रखे हैं उसको,
0: इसको कुछ ना हो
1: जाए,
0: प्रॉब्लम नहीं है, इसको कुछ ना हो जाए तो
1: रोज पूजा भी करते लोग, मेरे फैक्ट्री में आग ना लग जाए, ना खत्म ना हो जाए, लॉस ना हो जाए,
0: केयर एंड कंसर्न बट नॉट वरी। अगर ऐसे पकड़ा तो आपने कहा 10 दिन भी टेंशन में बीते। सपोज ये शरीर मुझे मिला है 80 साल के लिए, ठीक है, सपोज दैट्स माय डेस्टिनी, 80 इयर्स ये शरीर मिला, रोल मिले, रिश्ते मिले, 80 इयर्स मिला था, जिसमें आपने कहा ये सब चीजें मिलती भी हैं और साथ साथ यात्रा में कुछ कुछ चीजें जाती भी हैं। इस यात्रा के स्टार्टिंग से हमें नॉलेज है कि एक दिन ये सारी चीजें जानी है, इवन दिस बॉडी, ये भी जाना है, पर ये 80 इयर्स के बाद जाना है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये 80 इयर्स बाद जाना है। मैंने अपने जीवन का हर दिन ये सारी चीजें, चाहे वो शरीर, चाहे वो रिश्ते, चाहे वो रोल, चाहे वो कुर्सी पोजीशन, सबको ऐसे पकड़ा कि ये ना चला जाए, तो वो जो पूरा जीवन था उसको एंजॉय करने के बजाय, उसको ट्रस्टी होकर यूज करके निभाने के बजाय, मैंने फियर, वरी, एंजाइटी और स्ट्रेस में क्रिएट कर दिया, बिकॉज आई थॉट ये सब कुछ आए है, ये ना चला जाए, ये आए है। आपने कहा डेजिग्नेशन मिलती है, आज डेजिग्नेशन छूटने के बाद भी हम अपनी डेजिग्नेशन को पकड़ के रखते हैं।
1: सही बात है, लोग करते हैं,
0: विजिटिंग कार्ड पे लिखा होता है छोटा सा
1: एक्सेलेंस,
0: नेम प्लेट जो घर की होती है उस पे लिखा होता है छोटा सा रिटायर्ड सो एंड सो, पोजीशन थी चली गई, क्यों पकड़ के रखा हुआ है उसको? बिकॉज दैट वॉज आई, इफ दैट इज नॉट आई देन हु एम आई? दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी क्राइसिस।
1: मैं फलाने बैंक में एक बार उसके बोर्ड पे था, एक्स मेंबर ऑफ दिस एक्स,
0: क्योंकि वो पोजीशंस जो अक्वायर की उसको ही अपनी आइडेंटिटी बना लिया।
1: मुझे मेरे अंकल बोलते थे, अरे आप आए नहीं, मेरा देखा नहीं, रुआ आप क्या? जब सुबह बैंड बजा के मुझे सिपाही उठाते थे सैल्यूट, उसकी वाइफ भी लग जाती थी साथ में, अरे आंटी भी, अरे ये तो अनु की पता, सुरेश जी चाय के कप क्या स्टाइल में आती थी, क्या झंडे क्या लोग।
0: तो हम उसी दर्द में हैं हम अभी तक, क्योंकि वो पोजीशन वो आइडेंटिटी चली गई है। तो ये जो सारी चीजें हमने अक्वायर की, हमें मालूम थी छूट जाएंगी, शरीर भी जाना ये भी मालूम है, लेकिन सब चीजों को ऐसे पकड़ा, स्ट्रेस में जी रहे हैं, फियर में जी रहे हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सबको यूज करने वाली शक्ति मैं हूं, वो मैं को भूल गए हैं, और ये सब जो मेरा है उसको मैं समझ लिया, और इन सारी चीजों में ही मैं अपनी ब्यूटी, मैं अपनी परफेक्शन, इन सब खुशी सुख इन सब चीजों में ढूंढने लग गई, क्योंकि मैं जो हूं वो मैं भूल गई कि मैं कौन हूं। ईगो, अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ, ये ईगो से जीने से वन कॉन्शियसनेस बिलीफ, रॉन्ग बिलीफ, डेस्टिनी बदल जाएगी। हु एम आई, कॉन्शियसनेस शिफ्ट। अब वो जो आई जो है वो अंदर है, और ये लेयर लेयर लेयर लेयर लेयर, इतनी लेयर्स जब बन जाती हैं तो वो आई भूल जाता है। जैसे अगर किसी को याददाश्त चली जाए, उसको भूल जाए मैं कौन हूं, जीवन कैसे हो जाएगी? लॉस्ट, कंफ्यूज्ड, पेन, इन फियर। इसको भी हम कहेंगे स्पिरिचुअल एमनेशिया। आई हैव फॉरगॉटन हु आई एम, आई हैव फॉरगॉटन हु यू आर, I have forgotten what is the purpose of my life. I have forgotten why I am here. I have forgotten. And that's why आज सब कुछ प्राप्त हो गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन हम फिर भी कहते हैं पता नहीं क्यों मैं खाली खाली क्यों हूँ। तो I have forgotten के वो मैं ही कौन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आज हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं सारा दिन, एक एक जो अपने ऊपर लगा लेबल है,
1: वो बारी नाम बारी का लेबल हैं।
0: नाम का लेबल सबसे पहले लगा था, शरीर के बाद सबसे पहले नाम मिला, फिर रिश्ते मिले, पोजीशन। एक एक लेबल को हटाएं, लेबल छूट नहीं रहा, जा नहीं रहा कहीं, लेकिन डिस आइडेंटिफाई करें उसके साथ, ये मैं नहीं, ये मेरा लेबल है। एक एक लेबल को, जैसे परत होती है ना, एक एक परत को, एक एक परत को, एक एक परत को हटाते जाएं, till we reach I, and then we will use all these labels. वो सब कुछ हम यूज करेंगे, सब कुछ करेंगे, but with the understanding, ये I, ये सारे मेरे labels. अब इनको मुझे निभाना है, करना है, लेकिन attention फिर I पर आ जाएगा. तो just sit back 2 minutes and try right now. अभी देखते हैं अपने आप को कि एक एक चीज, क्योंकि हर एक ने अलग अलग चीजें अक्वायर की है जीवन में, लेकिन एक एक चीज को देखते हुए अपने आप को चेक करते हैं, इस जीवन की यात्रा में एक एक चीज जो अक्वायर की है उसको देखते हैं। सबसे पहले शरीर मिला, जस्ट सिट बैक एंड लुक एट योर बॉडी, फील दिस बॉडी इज माइन, मेरा शरीर, मैं इसको चलाने वाली शक्ति, मैं इसको यूज करने वाली एनर्जी, ये शरीर मैंने पहना हुआ है, ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है, आई द बींग, आई एम सेपरेट फ्रॉम दिस बॉडी। Feel the difference. इस हाथ को, आंखों को, मैं यूज करती हूं। रिश्ते मेरे हैं, परिवार मेरा है, पोजीशन मेरी है, प्रॉपर्टी मेरी है, मैं ये सब कुछ जो मेरा है आज है कल नहीं। मैं कौन हूं इनको यूज करने वाला? लेट मी फील द आई, लेट मी लुक एट द आई, लेट मी अंडरस्टैंड दैट आई। ओम शांति।
1: ओम शांति। थैंक यू सो मच।
0: ओम शांति।
2: दिस बॉडी इज माइन, but we are living with the consciousness that this body is I. We like beauty and perfection, which is our true nature. So we started looking for beauty and perfection in the body. This sometimes caused I, the soul, to feel inferior, imperfect, rejected, and I, the soul, shifted from true beauty and perfection. When the body gets diseased, we believe that I have this disease. I, the soul, do not have the illness, and neither does I, the soul, ever die. The body dies. I, the soul, am eternal and imperishable. Believing that we are this body made us live in the fear of death. The body is our instrument which we use. We see through the eyes, speak through the mouth. Eyes and mouth are the instrument through which I, the soul, choose what to do. We get attached to everything we acquire. Where there is attachment, there will be fear of losing. Even though we know that eventually we will lose all that we have, including our body, we spend our life holding on to it with stress, hoping we never lose our body, family, position, or property.
3: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099-99-559-660.

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या। यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते, क्यों? स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई? क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है। तो आप जाइए, वहां वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, वापस आइए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ।
2: आबू की जान, आबू की शान, आबू निवासियों की है पहचान। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
3: नमस्कार, करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। जैसे कि हम लोग पिछली बार एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट के बारे में बातें की थी, ऐसे कि होम्योपैथी के बारे में। होम्योपैथी क्या है और कैसे हम लोग जुड़ सकते हैं और कितना टाइम लगता है और कैसे उसका मेडिसिन बनते हैं, कितना सेफ है, उसके बारे में डॉक्टर संदीप चेलके ने हमें काफ़ी अच्छी जानकारी दिया था। और जो लोग होम्योपैथी के प्रति आकर्षित हैं या उसमें कुछ अपना करियर करना चाहते हैं, उसमें कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए मार्गदर्शन भी उन्होंने प्रॉपरली दिया था। तो आइए आज के इस शो में हम लोग बात करेंगे प्रिंटिंग के बारे में, आर्ट के बारे में। तो वो सारी चीजें करियर इन डिजिटल प्रिंटिंग के बारे में कैसे हम लोग कर सकते हैं, इस विषय को लेकर हम लोग बातें करेंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा फील्ड है, फाइन आर्ट कहें या आजकल जो है मीडिया से जुड़ी हुई है या फिर सोशल मीडिया पर हम लोग काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में हमें जो है इस आर्ट का ही सहयोग लेना पड़ता है। भले सीखा नहीं हो आप, लेकिन फिर भी उसका पूरा उपयोग आप दिन भर करते रहते हैं किसी ना किसी माध्यम से। तो ये भी एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर हम अच्छा कुछ कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा जो है हमारा करियर बन सकता है। तो आइए आज के इस शो में करियर इन डिजिटल प्रिंटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। विशेष हमारे साथ मोहन जी उपस्थित है। मोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप?
4: नमस्कार, मैं बहुत अच्छा हूँ।
3: जी जी जी जी, मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए, वर्तमान में आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? जी
4: मैं वार्तालाप शुरू करने से पहले एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, जो आर्ट की आपने बात करा, इसमें अभी जो हम बात करेंगे वो हम डिजिटल प्रिंटिंग पे बात करेंगे। उसमें जो व्यवसाय है, नौकरियां है या अपना बिजनेस करने का किसी का लक्ष्य है, उसमें कैसे सुविधा मिल सकती है, हम उस पर बात करेंगे।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
4: अभी 35 साल से इसी डिजिटल प्रिंटिंग लाइन में रहा हूँ और मैंने इसका प्रोग्रेस देखी है, कैसे एक टीना पे हैंड पेंट प्रिंटिंग की जाती थी और आज जो डिजिटल प्रिंटिंग हो रही है 6 कलर 8 कलर, वो मैंने जमाना भी देखा है। और अभी मैं एज अ रिटायर्ड पर्सन दिवाड़ी राजस्थान में मैं स्टे करता हूँ।
3: अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो मोहन जी, मैं चाहूंगा कि ये डिजिटल जो है जिसके बारे में आप बात करने वाले हैं, डिजिटल प्रिंटिंग के बारे में, तो ये जो है इसका जो फेज है आपने देखा, और उसके पहले जो चीजें थी वो थोड़ा सा एक ऐतिहासिक तौर पर कुछ चीजें बताइए कि आपका जुड़ना कैसे हुआ है।
4: जी, डिजिटल प्रिंटिंग को जो हम बोलते हैं उसको मैं एक साधारण भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जो हम सड़क पर एक बिलबोर्ड्स बोलते हैं, होर्डिंग्स बोलते हैं, वो जो हम 20x40 और 20x60 का, चाहे वो बस शेल्टर हो या वो म्युनिसिपैलिटी के पोल्स हो, यहाँ पर हम कहीं पार्क में और कहीं बिल्डिंग पे डायरेक्शनल साइंस देखते हो, इसको हम डिजिटल प्रिंटिंग बोलते हैं। इसको करने के तरीके और इसके माध्यम अलग अलग हैं। आप पिक्चरों के पोस्टर देखते हैं, आप किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन आप देखते हैं, उसमें सेलिब्रिटी और वो प्रोडक्ट रहता है, वो भी एक डिजिटल प्रिंटिंग का ही हिस्सा है। हम कहीं पर सुलभ शौचालय का बोर्ड पढ़ते हैं, वो भी डिजिटल प्रिंटिंग के ही अंतर्गत में आता है। अब जो चीज हम करीबन 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट के डिस्टेंस पे देखते हैं, उसका जो प्रिंटिंग का माध्यम होता है वो कहलाता है फ्लेक्स, FLEX। ये एक प्लास्टिक का बना हुआ पेपर मटेरियल होता है जो रोल्स में आता है, और ये फ्लेक्स प्रिंटिंग पर डिफरेंट कलर में, मीन्स 4 कलर, 6 कलर प्रिंटिंग में छापा जाता है। ऐसा ही दूसरा, जो हम मॉल्स में जब जाते हैं, जहां पर हम 1 फीट के डिस्टेंस पे कोई विज्ञापन देखते हैं, उसमें हम बहुत बारीकी और शार्पनेस देखते हैं, उसको हम विनाइल प्रिंटिंग कहते हैं। वो भी 4 कलर और 6 कलर की प्रिंटिंग में आता है। अब रहा इनकी डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स आती हैं और डिफरेंट मटेरियल रहता है, इनकी डिफरेंट प्रिंटिंग कॉस्ट आती है, और इनसे ही संबंधित आपके रोजगार के साधन और व्यापार के साधन भी निकलते हैं। अगर आप चाहें तो मैं कंटिन्यू करूं, नहीं तो बीच में ब्रेक
5: बिल्कुल
4: लेके हम
5: बिल्कुल
4: कर सकते
5: बिल्कुल
4: हैं।
5: नहीं, कंटिन्यू थोड़ा कीजिए, 5-10 मिनट। हाँ
4: जी, तो इसमें जो चीज होती है, हमने कहा कि ये पहले हम हाथ से कोई चीज, कोई आर्टिस्ट, कोई कलाकार होता था, तो वो एक टीना का बोर्ड के ऊपर वो उसको लिखा करता था, हनी ब्रांड शहद या भोलानाथ एंड कंपनी की दुकान, यहाँ पर आपको विश्वासी माल मिलेगा। तो ऐसे बोर्ड हुआ करते थे। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 1950s, 60s में भी हम लेके चले, 70s में भी लेके चले। एक्चुअल रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन लेट 80s और अर्ली 90s, जब बाहर से इंपोर्ट करी गई मशीनरी हिंदुस्तान में लाई गई, और उसका शुरुआत हुई थी विनाइल कटिंग प्लॉटर से। प्लॉटर को समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि ये डिजिटल प्लॉटर, जिससे हम अपने आर्किटेक्चुरल नक्शे भी बनाते हैं, वो पेन प्लॉटर होते हैं। यहाँ पे मैं पेन प्लॉटर की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं विनाइल कटिंग प्लॉटर की बात कर रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, एक पहले फाइल बनाई जाती है। फाइल हमारी बनती है फोटोशॉप में, पेज पेकर में। तो पहला जो व्यवसाय या पहला जो रोजगार बनता है वो ये है कि हमें इस की नॉलेज मिलनी चाहिए। जैसे हम अपने आप को 12th पास कहते हैं, या ग्रेजुएट कहते हैं, इंजीनियर कहते हैं, या मेडिकल साइंस स्टूडेंट कहते हैं, तो ये भी एक लाइन है जिसको हमें उसकी एक्सपर्टीज गेन करनी है। तो इट इज अ पीपल दोज हु हैव अ क्रिएटिव माइंड। मैं ये नहीं कहूंगा कि बाकी लोगों के लिए ये नहीं हो पाएगा, बट द पीपल दोज हु आर वेरी इमेजिनरी एंड दे आर विजनरी एंड दे हैव अ क्रिएटिव माइंड, उनके लिए ये बहुत आसान हो जाता है इसको कैप्चर करना और इसको सीखना। तो फिर वो फाइल का मतलब रहता है कि अगर मैंने उसमें अल्फाबेट्स लिखने हैं तो वो अल्फाबेट्स बनाए जाएंगे, या उसमें अगर मुझे किसी चीज का फोटो पिक्चराइज करना है, चाहे वो प्रोडक्ट है या एक ह्यूमन बीइंग है या एनिमल है या प्लांट है, मशीनरी है, उसको वहां पर या तो मैं उसको ड्राइंग के थ्रू बनाऊंगा, या मैं आज के जमाने में वो नेट से उसको डाउनलोड करूंगा, या मैं उसको क्लिक करूंगा, जिसे हम पिक्चराइज कहते हैं, वो पिक्चर करके। सो इन सब का मिश्रण करके वो एक फाइल बनाई जाती है। उस फाइल को जब मैं फायर करता हूँ, मैंने बताया वो फोटोशॉप पेज मेकर में बनता है, उसको जब मैं डिजिटल प्लॉटर पे डालूंगा तो वो कट के निकलेगा। इट इज अ विनाइल विच इज हैविंग ए स्टिकी सबस्ट्रेट। आगे से वो कलरफुल होती है, लाल पीली हरे रंग की होती है, और पीछे से उसके ऊपर गमिंग करा हुआ एक कागज चिपका रहता है। तो व्हेन आई विल फायर दैट फाइल, वो उसको वो उस शेप में, कृष्ण भगवान के शेप में, या एक साइकिल के शेप में, या एक मोटरसाइकिल या कार के, उसको काटेगा। देन आई विल पील इट ऑफ, तो पीछे का जो मेरा कागज है वो हट जाएगा और ये मेरी एक इमेज निकल के बाहर आ जाएगी। इसको और सिंप्लीफाइड वे में हम बात करें तो वी कैन चेक दैट जो हमारे गाड़ी के नंबर प्लेट्स होती हैं या हमारे घरों के बाहर जो नेम प्लेट्स लगी रहती है, लाइक माय नेम इज मोहन, सो व्हेन आई हैव क्रिएटेड द फाइल आई हैव रिटन देयर MOHAN, तो व्हेन आई गिवन अ कमांड और उसको पील करा तो एम मेरा अलग से निकल के आ गया, ओ मेरा अलग से निकल गया, एच मेरा अलग से निकल के आ गया। नाउ आई हैव दीज अल्फाबेट्स इन ए विनाइल शेप इन माय हैंड, ईदर आई कैन paste it on any substrate, it could be the steel, it could be ply or it could be ACP, aluminium composite panel, उस पर मैंने उसको चिपका दिया। जैसे मैंने बताया गाड़ी के नंबर प्लेट, तो गाड़ी के नंबर प्लेट जो है ये एक शीट होती है, उस पर मैंने चिपका दिया DLMC1234 और वो मेरी प्लेट बन गई, और जैसे मैंने मोहन लिखा तो वो मेरी नेम प्लेट बन गई। सो दिस वॉज द फर्स्ट डिजिटल फेज ऑफ what you call plotter cutting. फिर gradually we move to printing. ये तो था कि इसमें हम क्या करते, इसमें graphics को ज्यादा हम डाल नहीं सकते थे, but when we started importing printers, उसमें फिर हमने four colors से start किया था, जो cyan, yellow, magenta, black, ये basically four colors होते हैं, basic colors होते हैं जिससे billions of colors बनते हैं। तो इन चार कलर्स की मशीन हिंदुस्तान में शुरुआत में आई और उसको हमने 8 फिट के बड़े रोल पे लिया। उस समय पेपर 10 फिट का नहीं आता था, तो ये जो मैंने फ्लेक्स बताया ये 8 फिट का आता था, उसके ऊपर हमने ये फाइल्स फायर करी और उसको प्रिंट निकाला, जिसे आज की तारीख में हम बिलबोर्ड होर्डिंग्स बोलते हैं, जो हम बस शेल्टर्स और डायरेक्शनल साइनेज में हम देखते हैं। Then gradually, but 8 feet से वो फिर 10 feet तक आ गए। So this was the two revolutionary steps. One was the plotter and second was the printing. अब इसमें भी रोजगार के लिए वही चलता है, वही फोटोशॉप, वही आपका चलेगा इसमें, और आपको वो जानकारी है तो आप मशीन ऑपरेटर बन सकते हैं। Depending upon the ABC cities, जो इसका सैलरी स्ट्रक्चर रहता है, एक फ्रेशर के लिए अगर हम बात करें तो 12,000 से लेकर दिस कैन गो अप टू 40,000 रुपीज, डिपेंडिंग अबाउट द विच सिटी यू आर एंड व्हाट टाइप ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव। दैट फर्स्ट जो हमने बताया दैट इज ग्राफिक डिजाइनर कम मशीन ऑपरेटर। अब जिनके पास जिस ये कौन आपको जॉब देंगे और कौन करेंगे, इनको हम बोलते हैं PSP, प्रिंट सर्विस प्रोवाइडर। अब ये बड़े बड़े एक कारखाना ही आप कह सकते हैं जहां जिन्होंने ये मशीनें लगाई होती हैं, जो इंटर्न कॉर्पोरेट्स या गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। जैसे अगर हम बात करें एयरटेल या रिलायंस, तो इनके जो भी एडवर्टाइजमेंट के काम आएंगे वो इन PSPs के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे कि हमें इस तरह के अपना लोगोस चाहिए, इस तरह के हमारे एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम है, मैं जैसे G5 रिलायंस लॉन्च कर रहा है या एयरटेल G5 लॉन्च कर रहा है नेशनली, तो हमारे इतने लाखों स्क्वायर फीट, ये जो गिना जाता है, जैसे हम अपने मकान को लेते हैं तो हम कितने सोच बताते हैं कि हमारा कितने स्क्वायर फीट का घर है, चार कमरे, तो चार कमरे से नहीं हम कहते हैं हमें धरती का स्क्वायर फीट बताइए। तो ऐसे ही हम जब प्रिंटिंग की बात करते हैं तो जो भी ये फ्लेक्स छपता है या विनाइल कटती है तो हम इसको स्क्वायर फीट में गिनते हैं। तो ये लाखों स्क्वायर फीट का जॉब होता है जो ऑपरेटर से, उससे कुछ लेना देना नहीं, ऑपरेटर ने तो एक फाइल बनाई और मशीन को कमांड दिया, नाउ द मशीन इन टर्न चर्न आउट दैट मच लैक्स ऑफ स्क्वायर फीट। उसकी मशीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसका स्पीड क्या है, दैट इज सेकेंडरी। राइट नाउ हमें फोकस करना है कि हम मेरे को रोजगार कैसे मिलेगा और मेरे लिए उसके लिए क्या बेसिक क्वालिफिकेशन होने। तो वेरी फर्स्ट आई मेंशन्ड हियर इट इज द ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर एंड ग्राफिक डिजाइनर। सो दीज आर द टू इन डिजिटल प्रिंटिंग आज की तारीख में है और जिनका मैंने सैलरी स्ट्रक्चर बताया, एंड इट इज अ वेरी डिग्निफाइड आई विल कॉल इट, क्योंकि ये जो हमारे साथीगण होते हैं जिन्हें हम ऑपरेटर या ग्राफिक डिजाइनर कह रहे हैं, ये उन बड़ी कंपनियों के एग्जीक्यूटिव के साथ बैठ के मीटिंग करते हैं, उनका पहले विचार अपने जहन में लेते हैं कि उनको क्या चाहिए, उसको फिर वो अपने स्टेप्स वाइज एक एक दो दो तीन तीन चार चार डिजाइन बना के उनको दिखाते हैं, उनसे अप्रूवल लेते हैं। कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी के लिए, जो उनका कलर होता है, जो उनका लोगो का कलर होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उस पे उसकी उसकी मिश्रण बनाना कैसे रहेगा, तो वो बताना, उन एग्जीक्यूटिव से उसका अप्रूवल लेना। तो इसलिए ये काम मैं बहुत ही, बिकॉज दीज आर द वेरी प्रिलिमिनरी कहूंगा, बट स्टिल दे आर वेरी वेरी वैल्यूएबल पीपल, बिकॉज वो जब तक फाइल नहीं बनाएगा, जब तक कमांड नहीं देता, तब तक वो पीएचडी तो कमाई नहीं होगी। सो दिस इज वेरी बेसिक एप्लीकेशन विच आई एम टॉकिंग अबाउट।
5: बिल्कुल बिल्कुल। देन मोहन जी, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और इसके बाद में आगे हम लोग जो है डिजिटल प्रिंटिंग के बारे में वैश्विक तौर पे कैसे काम कर सकते हैं आगे आपसे सुनेंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। करियर इन डिजिटल प्रिंटिंग के बारे में बातें हो रही हैं। निश्चित तौर पे आपको ये बातें सुनकर अच्छा भी लग रहा होगा, और जो लोग कंप्यूटर से रिलेटेड काम करना चाहते हैं और कुछ बनाने में या इस चीज को शौकीन है और वो इस तरह की कुछ चीजें करना चाहते हैं, एडवर्टाइजमेंट में या फिर प्रिंटिंग में अपना कुछ करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और ये मुझे लगता है कि सीखने के लिए भी शायद सबसे ज्यादा कम टाइम लगता है इन चीजों को सीखने में, समझने में, अगर आपकी रुचि हो तो। तो आइए इस विषय को लेकर और आगे बात करते हैं। कितना टाइम हमें ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने में लगता है या फिर किस तरह के कोर्सेस अवेलेबल है, इसके बारे में अभी जानते हैं। तो मोहन जी, फिर से एक बार स्वागत है।
1: इसमें अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट, हेलो,
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: हाँ, दीज आर नॉट डिग्री कोर्सेज जैसे हम BA और LLB करते हैं,
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो ऐसा ये किसी विश्वविद्यालय में नहीं बताया जाता। आज तक जो हमने देखा है ये ऑन जॉब पर ही इसको कराया जाता है। आज की तारीख में जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो डाउनलोडेबल हैं और फ्री मिलते हैं। तो बेसिकली पेज मेकर एंड फोटोशॉप एंड कोरल ड्रॉ, अगर ये तीन सॉफ्टवेयर को आप नोट कर लें और इसको आप ऑनलाइन डाउनलोड करें और उस पे अपना हाथ साफ करने की कोशिश करें, तो वो आप कम से कम नहीं तो 2 महीने 3 महीने 4 महीने आप वो कर लेते हैं, तब आप किसी PSP को अप्रोच कर सकते हैं। एंड एज आई सेड कि आपको वो फ्रेशर अपॉइंट करेंगे,
0: बिल्कुल,
1: और आपसे वो जानना चाहेंगे कि आप कितना तुरंत उसको फाइल को बना सकते हैं और कलर्स का मिश्रण कर सकते हैं। तो ये तो हमने बात करी इनके ऑपरेटर्स लेवल पे। अब आपने जॉब कर लिया, अब आप इसको अगर व्यवसाय में लेना चाहते हैं, तो मैंने जहां 2 मशीनों की बात करी, वन वाज द विनाइल कटिंग प्लॉटर एंड सेकंड वाज द डिजिटल प्रिंटर, तो इनकी कीमत आज की तारीख में जो शुरुआत हुई थी 90s और लेट 80s और अर्ली 90s में, वो तो बहुत महंगी थी, बट नाउ द प्राइसेस हैज गॉट स्लैश, कॉम्पिटिशन बढ़ गया है और विश्वव्यापी इसका प्रोडक्शन होने लगा है, और आज की तारीख में हिंदुस्तान में भी अब ये प्रोड्यूस करी जा रही है।

0: लोन 10 लाख रुपए तक का इन प्रोफेशनल्स को दिया जा रहा है, जिसमें किसी भी तरह का कोई कोलेटरल नहीं लिया जाता। ये आप किसी भी सरकारी बैंक में जाएंगे और आप अपना बेसिक क्वालिफिकेशन बताएंगे कि हाँ जी मैं ग्रेजुएट हूँ या 12वीं पास हूँ, और साथ में मैं ये इस चीज का हुनर रखता हूँ कि मुझे ये डिजिटल का काम करना है। अगर आप ऐसे ही अपनी प्रतिलिपि बना के उनको बैंक को देते हैं तो वो आपका लोन पास करते हैं, और वो 10 लाख रुपए आप लेके उसमें कम पैसा है तो वो बच जाता है, और अगर ज्यादा है तो आपको अपनी तरफ से डाल के ये चीज आप ले सकते हैं। अब रहा इसकी स्पेस का सवाल, तो जब आप काम करते हैं तो डिजिटल प्लॉटर, जैसे मैंने कहा कि आप एक ऑटोमोबाइल मार्केट में जाके ये प्लॉटर लगा सकते हैं, वहां पे लोगों को बोल सकते हैं कि मैं नंबर प्लेट्स बनाता हूँ, जबकि आज की तारीख में हाई सिक्योरिटी वाली नंबर प्लेट्स आ गई हैं, इनका प्रचलन बहुत कम हो गया है, बट आज भी लोगों के घरों में उनकी नेम प्लेट्स और उनके चित्रकारी के लिए आज भी ये प्रचलित है। तो आप ये छोटा सा, आपको स्पेस चाहिए, दिस वी कैन नीड अबाउट 8x8 का अगर जगह है, वहां पे आपको बेसिक एक कंप्यूटर है और आपके पास ये विनाइल कटिंग प्लॉटर है, तो आप ये व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। और जहां तक प्रिंटर का है, क्योंकि 10 फीट की तो मशीन ही है और 10 फीट का रोल आता है, तो उसके लिए आपको कम से कम ही तो 12x15 की एक स्पेस चाहिए जिसमें आप ये प्रिंटर लगा सकते हैं। और रहा ये किसी व्यावसायिक औद्योगिक क्षेत्र में लगाए तो ज्यादा रहेगा, क्योंकि वहीं पे आपके जो बोर्ड्स होंगे, दुकानदारों के बोर्ड्स होंगे, या कंपनी के जो फैक्ट्रीज हैं उनके अंदर में जो जिनके डिजाइन वगैरह का जो रहेगा और साइनेज का जो काम रहेगा वो आपको मिलेगा। सरकारी टेंडर्स का भी इसमें योगदान रहता है। जेम करके ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार अपने टेंडर्स निकालती है, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ने निकाला या रेलवे ने निकाला, ये भी अपने प्रमोशंस के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए टेंडर खोलते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करके। तो रोजगार और व्यवसाय दोनों की इस समय इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। एक्चुअली आज की तारीख में गिना जाए तो इंडिया में इट्स बिलियंस डॉलर की इंडस्ट्री बन चुका है। ये आज एक मतलब एक रोग की तरह हर जगह ये फैल चुका है। आपको मैंने कहा ना कि इसमें आई यूज अ वेरी टिपिकल टर्म, मैं कहता हूं कि खुराफाती दिमाग। अगर आपका खुराफाती दिमाग है तो आप
1: बिल्कुल
0: इसमें,
1: बिल्कुल
0: इस व्यवसाय और इस रोजगार में सफलता पा सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता, बिकॉज ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। जैसे हम सीए की बात करते हैं, लॉयर की बात करते हैं, तो आपने डिग्री ले ली पर आपको काम फिर भी नहीं मिल पाता, बिकॉज आपको अपना नाम स्टैब्लिश करना पड़ता है।
1: जी जी
0: सिमिलरली इन दिस ट्रेड ऑल्सो यू हैव टू मेक योर नेम कि यस ही इज द फला ग्राफिक डिजाइनर, ही इज द फला मशीन ऑपरेटर। एक ही मशीन है पर उस मशीन को चलाने के तरीके जो है वो 10 तरह के हो सकते हैं। हाउ यू आर गोइंग टू मेंटेन, हाउ यू आर गोइंग टू रन दैट, हाउ इफेक्टिवली यू आर मेंटेनिंग दैट, सो दीज आर द थिंग्स जो कि आपके व्यवसाय और उसमें चलते हैं। इसी में आगे एक प्रोडक्ट और आता है जिसको हम लेजर कटर या प्लॉटर कहते हैं, राउटर कहते हैं। राउटर जो होता है वो हमारा लकड़ी को, एमडीएफ को, एल्यूमिनियम को, ग्लास को, मार्बल को, इनको काटा जाता है, और जो लेजर है वो भी आपका एसीपी स्टील और आयरन लोहे को काटता है। तो ये जहां पे मैंने डिजिटल प्रिंटिंग की बात करी उसकी जगह पर ये 3D के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये कटिंग करते हैं, ये प्रिंटिंग नहीं करते हैं। जब भी आप फाइलें वही रहती हैं बट इसमें सिर्फ एक और सॉफ्टवेयर जुड़ जाता है जिसे हम 3D सॉफ्टवेयर बोलते हैं, वो सॉफ्टवेयर जुड़ जाता है, उससे हम इन इनके जो वर्ड्स हैं या जो इमेजेस हैं, बच्चों के खिलौने हैं, या अगेन डायरेक्शनल साइन में हमने सब लिख दिया कि सुलभ शौचालय, पर उसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए मैंने एक एमडीएफ की डंडी काट के, लकड़ी काट के उसका डायरेक्शन दिखाया। सो दैट इज पॉसिबल थ्रू द लेजर।

0: एंड दिस राउटर मशीन। तो ये भी वो उसी फील्ड में गिने जाते हैं जो कि पीएसपी के पास होते हैं, प्रिंट सर्विस प्रोवाइडर्स के पास, बिकॉज दिस दीज ऑल थिंग्स आर फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड। ये सारी चीजें एक ही छत के नीचे रहती हैं, तभी वो कॉरपोरेट्स या गवर्नमेंट आपके पास अप्रोच करता है उस काम को करने के लिए। तो जहां विनाइल कटिंग प्लॉटर और प्रिंटर का मैंने कॉस्ट और जगह बताया, ऐसे ही इसमें लेजर और राउटर में भी अब हिंदुस्तान में ये चीजें बनने लगी हैं। ये भी आपको 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं, और इनकी इनकी टेबल साइज होती है। जहां मैंने आपको प्रिंटर का विड्थ बताया रोल वो 10 फीट का, तो ये टेबल साइज होती है 4x8, 3x3, 2x2। जितना बड़ा आप साइज का कोई भी टुकड़ा काट के उस पर डिजाइन बनाना चाहते हैं, आज की तारीख में अगर हम इस लाइन से जो जुड़े होते हैं वो आर्किटेक्ट भी जुड़े होते हैं। अगर आपने आज की तारीख में मॉल्स देखे हैं या घर देखे हैं, पेंट हाउसेस देखे हैं, तो वहां पे लोग एमडीएफ की कटिंग लगाते हैं, स्टील की कटिंग लगाते हैं, डिजाइंस लगाते हैं। तो ये इसमें जो एक और महकमा जुड़ता है वो आर्किटेक्ट का जुड़ता है, वो अपने डिजाइन्स इन लोगों से बनवाते हैं, और फिर किस सबस्ट्रेट पे जोड़ना है इसमें वास्तुशास्त्र जुड़ जाती है। लोग कहते हैं नहीं जी एमडीएफ वाला नहीं, हम आज की तारीख में एसएस चल रहा है तो ड्राइंग रूम में एसएस की जाली लगनी चाहिए। सो दीज आर द मिक्सचर्स ऑफ ऑल, बट वी एज अ ऑपरेटर और एज ए जॉब वर्कर और एज ए ओनर ऑफ द मशीन्स, हमें उनसे लेना देना नहीं, हमें अपना व्यापार देखना है कि उसको किस दाम पर हम करें सो दैट हम अपनी ईएमआई मशीनों में निकाल सकें, अपने वर्कर्स को पैसा दे सकें और हम घर में कुछ प्रॉफिट भी कर सकें। सो ये दो चीजें और जुड़ जाती है, वन इज लेजर एंड वन इज अ राउटर विच इज कवरिंग द डिजिटल प्रिंटिंग एस्पेक्ट्स, जो एक ही अम्ब्रेला में ही सारी चीजें जुड़ती हैं।
1: जी जी जी मोहन जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। मैं फिर से आपको थोड़ा सा वो बताना पूछना चाहूंगा, जैसे कि डिजिटल प्रिंटिंग और फिर वो आपने जो बताया था प्लॉटर, जो मजा प्लेट वाले प्लॉटर,
0: जी जी जी जी,
1: तो इसमें दोनों में क्या अंतर रहता है, उसमें क्या कर सकते हैं, और डिजिटल प्रिंटिंग में शायद बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो दोनों का
0: दोनों
1: काम
0: में देखिए, सॉरी दोनों में जो आपका क्वालिफिकेशन है वो सेम रहती है। आपको मैंने बताया कि आपको वो पेज मेकर, फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ सीखना पड़ेगा। हाँ, बट अब जब व्यवसाय में आप आना चाहते हैं तो उसकी इन्वेस्टमेंट आपकी जो बैंडविड्थ है वो आपको फर्क कर जाती है। जैसे मैंने कहा प्लॉटर आपका वो 60,000 से 1.5 लाख रुपए तक में आपका व्यापार शुरू हो जाता है।
1: इसमें भी वो डिजिटल प्रिंटिंग में जो काम हो रहे वो इसमें भी हो जाएगा ऐसा?
0: नहीं, प्रिंटिंग इज प्रिंटिंग, यहाँ पे सिर्फ विनाइल कटिंग प्लॉटर होगा, विनाइल कटेगी, जहां पर भी आप किसी तरह की चित्रकारी को चिपकाएंगे, प्रिंट नहीं करता ये। अच्छा, मैंने बताया ये विनाइल है, विनाइल एक सबस्ट्रेट है, उसको वो भी पीवीसी के ही प्लास्टिक से ही बना रहता है, पर इसमें पीछे कागज लगा रहता है, मतलब इसमें गमिंग होती है। अच्छा। तो जब मैं उसको प्लॉट करता हूँ, एक पेन होता है, एक पेन की जगह पे एक नीडल होती है, और जब मैंने वो फाइल फायर करी तो वो नीडल उस विनाइल के ऊपर चलती है। मैंने राधा कृष्ण का फोटो छापा है, मतलब राधा कृष्ण का फोटो की फाइल बनाई, तो जब मैंने उसको विनाइल कटर पे डाला तो उसने वो राधा कृष्ण की बांसुरी, मोर मुकुट और ये सब काट दिया। अब मैंने उस पेपर को पीछे से पील ऑफ कर दिया तो मेरे पास एक हॉलो नजर आ गया, राधा कृष्ण का हॉलो आ गया। अब वो राधा कृष्ण का हॉलो या तो मैं सीधा दीवार पे चिपका सकता हूँ, या मैं एमडीएफ पे चिपका सकता हूँ, एसीपी पे चिपका सकता हूँ, ग्लास पे चिपका सकता हूँ, तो वो मेरा जो कलरफुल जो राधा कृष्ण का हॉलो था वो निकल के आ गया। वो तो ये चीजें बहुत चल रही है, आपने ग्लास के ऊपर देखा होगा कि बहुत चित्रकारी है। अब ग्लास पे प्रिंट भी होता है, ग्लास पे विनाइल भी लगता है। विनाइल सस्ता वो है जिसे जुगाड़ कहते हैं, ये हल्का काम है, प्रिंटिंग महंगा काम है। तो जहां पे ग्लास इंडस्ट्री, जो जहां पे अगर आपने प्लॉट लगाया और आपने अपने मोहल्ले, अपने कॉलोनी के ग्लास बेचने वाले, जो शीशा बेचने वाले, उनको अप्रोच करा उनसे कहा कि देखिए ये आपका नंगा ग्लास है, ये 4 mm का 45 रुपए का है। अब इस 4 mm का 45 रुपए के ग्लास के ऊपर अगर मैं ये राधा कृष्ण की फोटो चिपका देता हूँ तो यही 45 रुपए का जो आपका ग्लास है वो आपका 70 रुपए 80 रुपए 100 रुपए में बिकना शुरू हो जाएगा। तो आपका दोनों का एक सामंजस्य बैठ गया, ग्लास वाले का और आपका। अब ग्लास वाले के बाद जब कोई ग्राहक आता है तो वो उनको बोलेगा कि मैं आपके ग्लास को कलरफुल बना सकता हूँ। कैसे बनाऊंगा? वो फिर चित्रकारी दिखाएगा उनको, फिर ये बच्चे को अप्रोच करेगा जिसके पास प्लॉटर होगा, वो उसको ग्लास पे चिपका के उसको दे देगा। तो इस तरह से ये एक चेन है जो कि पूरे व्यवसाय को बढ़ाती है। तभी मैंने कहा इट इज अ बिलियन डॉलर इंडस्ट्री, इट इज नॉट ए स्मॉल कोई मोहल्ले का काम नहीं रह गया है। तो अब आ जाते हैं प्रिंटिंग के ऊपर। तो प्रिंटिंग का बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज सब्सटेंशियली हाई, जबकि जो आपकी कौशलता है वो कौशलता सेम है, आपने उसमें भी वही ग्राफिक बनाया, इसमें भी वही ग्राफिक बनाया, बट आपको पहला पैसा थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ा, थोड़ी स्पेस ज्यादा लेनी पड़ी। अब यहाँ पे हम वो चिपकाते नहीं है, यहाँ पे हम सीधा छापते हैं,
1: छापते हैं।
0: अब जो मैंने राधा कृष्ण का मैंने उस पर हॉलो बनाया, वो मैं हॉलो नहीं बनाऊंगा, इस पे सीधा वो राधा कृष्ण का मुकुट, मोर, बांसुरी, मटकी, वो सीधा प्रिंट हो जाएगा।
1: बिल्कुल।
0: अब वो प्रिंट को मैं लेके जाऊंगा और मैं कहूंगा कि आपके ग्लास की जगह पे मैं इसको पेंटिंग के रूप में, या आप कैनवस के ऊपर भी छाप सकते हैं, फ्लेक्स के ऊपर भी छाप सकते हैं, विनाइल के ऊपर भी छाप सकते हैं, और फिर आप उस जो जो आदमी ग्लास वाले के पास गया था उसी के घर में ये पेंटिंग बनके उनके ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में, लिविंग रूम में लग सकती है, या मैंने बताया कि ये होर्डिंग्स पे चल सकता है। तो इनका मार्केट, आप क्या क्या करना चाहते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट है, क्या बैंडविड्थ है आपकी, कितना
1: नेटवर्किंग,
0: जी हाँ, नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके कॉन्टेक्ट होने चाहिए, नहीं तो बनाने पड़ेंगे। तो उस हिसाब से आप उसको चला सकते हैं। एक हो गया आपका प्लॉटर, एक हो गया आपका प्रिंटर। सेम फिर हम बात करते हैं वो लेजर कटिंग के ऊपर। अगर आपने एक और जो स्ट्रीम जोड़ ली, आपने सेगमेंट जोड़ लिया, दैट इज आर्किटेक्चर का, उनको अप्रोच करा, तो फिर आपका जो लेजर और जो राउटर की इन्वेस्टमेंट है वो आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी एंड यू विल गेट द फास्टर रिटर्न आउट ऑफ इट।
1: मोहन जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से प्लॉटर काम करता है और किस तरह से प्रिंटिंग का काम होता है, वो सारी चीजें आपने बिल्कुल स्पष्ट करके बताया। और निश्चित तौर पे जब हम लोग इस विषय को लेकर बात करते हैं तो ये दोनों चीजें जो है अपनी अपनी जगह पर है, तो दोनों एक नहीं है, दोनों का अलग अलग वर्कआउट है और दोनों के कस्टमर्स और अपन देखेंगे तो वो सब चीजें जो है अलग अलग हो जाएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। करियर इन डिजिटल प्रिंटिंग के बारे में बातें हो रही हैं और हमारे साथ मोहन जी हैं जो इस व्यवसाय के काफी बड़े अनुभवी हैं और अभी वर्तमान में वो इस काम को जो है करते हुए अपने साथ बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे बड़ा अच्छा लगता है। और जब कोई व्यक्ति इन सभी चीजों को करने के बाद जब बताता है तो एक्सपीरियंस आपके पास बहुत ही अच्छी तरह से वो शेयर करते हैं और उनका एक्सपीरियंस जो है सुनकर आप समझ पाते हैं कि हाँ ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी। आपके मनस पटल पर कुछ कुछ सवाल आते होंगे तो सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे। रेडियो मधुबन के 94 14 15 14 15 इस नंबर पे आप मैसेज करके कोई सवाल हो तो जरूर पोस्ट कर सकते हैं और फिर अगले एपिसोड में हम लोग इस विषय को लेकर, उसी सवालों को लेकर बातचीत भी कर सकते हैं। तो मोहन जी, मैं चाहूंगा कि जाते जाते हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं उन सभी के लिए अभी करंट सिनेरियो में हम लोग कैसे कैसे काम कर सकते हैं और आने वाले समय में इनकी संभावनाएं तो बढ़ती जा रही हैं क्योंकि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे लोग एक्टिव रहते हैं। तो किस तरह से हम लोग जो हैं एज ए ग्राफिक डिजाइनर या फिर हम लोग कुछ और चीजें जैसे आपने कहा पेज मेकर, फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ, इन चीजों को अगर ठीक से समझ लेते हैं, सीख लेते हैं तो क्या क्या करने की संभावना और कौन कौन सी जगह पे हम अगर समझो बिजनेस नहीं स्टार्टअप करते हैं थोड़ा समय के लिए और हम लोग कहीं नौकरी करना चाहते हैं तो जो आपने बताया कि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस, इसके अलावा हम लोग कोई कंपनी में या फिर कहीं कॉर्पोरेट्स जो वर्ल्ड है उसमें कहाँ अपन अपनी जगह बना सकते हैं, थोड़ा सा वो बताएं।
1: जी जरूर। इसमें अभी आपने जो तीन चीजें कही जी, तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ जो अभी उठता हुआ जो हम डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल लाइन की बात करते हैं जिसमें हमारा ये जो रेडियो और टेलीविजन का जो माध्यम आ रहा है जिसके थ्रू हम अपने चीजों को पॉपुलर करके और लोगों को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज इंडोर एडवर्टाइजमेंट एंड आउटडोर एडवर्टाइजमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट एंड दिस इज अ डिजिटल एडवर्टाइजमेंट। सो ये तीसरा सेगमेंट जुड़ गया, आयाम जुड़ गया। हम अभी तक पहले इंडोर और आउटडोर की बात करते थे। आउटडोर वो हुए जो सड़कों पे होर्डिंग्स लगते थे, इंडोर वो हुए जो मॉल्स में और कारखानों में, फैक्ट्रियों के डायरेक्शन साइंस में आया। अपना जो डिजिटल मार्केटिंग वाला जो अप्रोच हुआ, तो खुशी की बात ये है कि जब आपने ये हुनर हासिल किया, ये हुनर आपके तीनों जगह पे ही चलेगा क्योंकि आपने अगर उसको, मैंने डिजिटल ग्राफिक के थ्रू अगर उसको एडवर्टाइजमेंट करना है, प्रमोट करना है और ये मोबाइल पे और टेलीविजन पे दिखाना है तो मेरे को फिर भी वो इमेज तो बनानी ही बनानी है ना, तो वो तो रहेगी ही रहेगी। तो इसलिए ये व्यवसाय आप एज ए प्रोफेशनल लेना चाहें या अपनी एज ए हॉबी लेना चाहें, मैं इसको बड़े जोर परोश से कहूंगा कि इसको प्रमोट करना ये आपके लिए बहुत जरूरी है। आप अपने इसको लीजिए, अपनी हॉबीज में जो आप अभी कहते हैं मैं म्यूजिक करता हूँ या मैं साइकिलिंग करता हूँ या मैं ट्रैकिंग करता हूँ, तो ये भी एक चीज है, ये भी गिटार बजाने की तरह ही है, ये भी आपको अपने तनाव से मुक्ति देने वाली चीज है। आप अगर एक कलम उठाएंगे या अपने कंप्यूटर पे ये चीज बनाएंगे तो वो बहुत ही आपको सुकून देगा। तो ये तो रहा आपका अपने तीनों सेगमेंट के लिए हुनर को लेना। अब आता है इसको मैं व्यवसाय में ना लेके अगर मैं नौकरी के लिए ढूंढूं तो मैं कैसे कर सकता हूं। तो उसकी भी खुशी की बात यह है कि जो आज बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, मैंने जो बात बताई जैसे रिलायंस और एयरटेल की मैंने बात करी है, हिंदुस्तान लीवर की हम बात करें या नेस्ले की हम बात करें, इनका करोड़ों का बजट होता है जो कि इंडोर, आउटडोर और डिजिटल तीनों के लिए, प्रमोशनल के लिए आज की तारीख में सेगमेंट होता है। वहां पे ब्रांड मैनेजर्स बैठे होते हैं, वहां पे डिजाइनर्स बैठे होते हैं। आज की तारीख में हर अच्छी कंपनी विच इज अबाउट 50 करोड़ ऊपर की जिसका टर्नओवर है वो, और एफएमसीजी में है या वाइट गुड्स में है, उसमें उसने अपनी चाहे 2 लोगों की टीम हो या 12 लोगों की टीम हो अपने इनहाउस रखे हैं। बिकॉज व्हेन दे अप्रोच टू पीएसपीज के पास जाते हैं तो अपना कुछ खाका लेके जाते हैं कि दिस इज व्हाट कहते हैं ना, मेरे जहन की चीज को वो लड़का जो लड़की है वो पहले उतारती है। जो सीईओ उस कंपनी का या वाइस प्रेसिडेंट उस कंपनी का है, जो मार्केटिंग मैनेजर उस कंपनी का है या ब्रांड मैनेजर उस कंपनी का है, वो पहले इनको कारीगरों को बोलता है कि ये चीज मुझे करके दिखाओ। जब वो इनहाउस, इसको बोलते हैं इनहाउस, सो इन हाउस में वो उसको बना के दिखाते हैं, फिर देन दे अप्रोच टू द ये एक्सटर्नल एजेंसीज। वो एजेंसीज होती हैं एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड वाइड की, दीज आर ऑल्सो वेरी ह्यूज वन। तो आपका सिर्फ रोजगार लेने का जरिया यहाँ पर नहीं खत्म हो जाता, यू कैन हैव अपना तजुर्बा लीजिए, आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन है चाहे वो बीए है, बीकॉम है, या आपकी इसमें बीसीए में है, उसके बाद आपने ये हुनर हासिल किया तो आप ये कॉर्पोरेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ये आप पीएसपीज वालों को भी अप्लाई कर सकते हैं, ये आप सरकारी में भी जा सकते हैं। डीएवीपी एक सरकार का है, डायरेक्टरेट ऑफ ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी, ये भी एक डिपार्टमेंट है सरकार का जो ये काम करते हैं और ऐसे लोगों को व्यवसाय में रखते हैं। तो ये चीज लेना, कहते हैं कई बार हुनर बिना पैसे के भी खर्च करा जा सकता है अगर आपको गुरु ऐसा अच्छा मिल गया, और कई बार आपको पैसा लगा के भी लेना पड़ता है। तो किसी भी तरीके का अगर आप चीज करते हैं तो ये लेना अच्छा रहेगा आपके लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए मोहन जी, बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया, और मुझे लगता है कि हम अगर कुछ छूट रहा है हमसे तो अगले एपिसोड में जरूर कवर करेंगे। मुझे लगता है कि आपके पास काफी इन्फॉर्मेशन भी है, नॉलेज भी है, हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जैसा वक्त मिलेगा। तो आज के लिए बस
1: मुझे खुशी होगी अगर हमारे श्रोतागण अगर उन अपनी जो जो उनकी जिज्ञासा है, जो उनकी क्वेरीज है,
0: उनके क्वेरीज अगर वो मैसेज करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, और हम फिर कंटिन्यू कर सकते हैं अगले एपिसोड में। मोहन जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत ही अच्छा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपने बातें की। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। करियर इन डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हमने बातें की, और जो ए टू जेड शुरुआत से लेकर अब तक की बातें आपको क्लियर करके मोहन जी ने बताया है।
2: अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो प्लीज आप 9414151415 इस नंबर पर मैसेज करके अपने सवाल या अपनी भावनाओं को साझा कर सकते हैं। आप अपने करियर को बहुत अच्छा बनाएं, अपना और परिवार का नाम रोशन करें, इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में, कुछ नए करियर के बारे में वार्तालाप करेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफस्टाइल चेंज। दीज आर लाइफस्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: इतिहास से, भूगोल से,
3: समाज से, संस्कार से,
2: आधुनिकता से और विचार से,
3: खूबियों से भरा अनोखा है मेरा भारत।
2: एक महान राष्ट्र है मेरा भारत,
4: अतुल्य भारत।
3: चलिए आपको बताते हैं
2: भारत की 69 ऐसी विशेषताओं के बारे में
3: जो बनाती हैं भारत को पूरी दुनिया से अलग
2: और प्रदान करती हैं हमें एक गर्वित भारतीय नागरिक होने का हक। क्या आपको पता है कि भारत की भूमि अनेकानेक वीरों की जननी है? उन्हीं में से एक कुशल योद्धा महान देशभक्त थे छत्रपति शिवाजी। शिवाजी की गोरिल्ला रणनीति सारे जग में प्रसिद्ध है। फजल खान की हत्या, शाइस्ता खान पर सफल हमला और औरंगजेब जैसे योद्धा की मांद यानी कैद से भाग आना उनकी इसी प्रतिभा और विलक्षण बुद्धि का परिचायक है। भारत की विशेषताओं को करते रहिए सलाम।
3: पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो। जय हिंद,
2: जय भारत।
5: भारत अनोखा राग है।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हे जानिया मैम साहब
1: टैक्सी पकड़ी कॉलेज पहुंची सुन लिया लेक्चर राधा पढ़ते पढ़ते याद आ गया किसी से लंच का वादा खिसक के पहुंची रेस्तरा जान में आई जो
2: हाय हीरो हाय हीरो हाय हीरो
3: हाय बेबी हाय बेबी हाय बेबी
2: हाय
3: हाय हाय हाय
0: हनी मैं तो बोर हो गया
2: डॉक्टर मिदा डॉक्टर मिदा डाल।

रगी छिड़ गई कब कब चौटले का मिले न मेकअप कदम कदम पर धोती वाले मोटी कोंदों वाले लाले किस्मत में जापान चलेंगे नहीं तो इंग्लिश थान चलेंगे।

अंधी को उसके माजी से निकालना चाहता था, लेकिन वो मुड़ मुड़कर अंधी आंखों से अंधेरा माजी टटोलती थी। इंद्र की आवाज में उसे शून्यता ही शून्यता सुनाई देती थी।

होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर, मगर, मगर

जुगल, चैन, आराम, राती, सुबह, दोपहर और शाम, छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं, देखो ना दर्द, हिस और जख्म दे जाते हैं, तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर

0: गाओ।
1: आओ। ओए जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर, फेच अ पेल ऑफ वाटर। ओए जैक एंड जिल वेंट अप द हिल।
0: यू इडियट।
1: मैं नहीं, तू है इडियट बेबी। मैं नहीं,

बचा के छोड़ूंगा क्योंकि मेरी लॉटरी लग जाते।

0: क्या हुआ?
1: हाय गम का फसाना बन गया अच्छा
0: अच्छा जी
1: एक बहाना बन गया अच्छा
0: अच्छा।

मैं हसीना, तुम डाकू मैं हूँ शीशा, तुम पत्थर शीशा पत्थर, टकराने दो। आने वाला आएगा, जाने वाला जाएगा, तुम ना मानो तो जाने दो। तोबा तोबा, क्या होगा, होना है जो वो होगा, होता है जो हो जाने।